0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर

0: आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
3: somebody save me,
2: to timeless favorites,
3: and life is like a song,
2: and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: You and I, so much more than a history.
1: सच्ची खबर।
4: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। कल 4,000 से ज्यादा भक्तों ने लिया बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। शनिवार को 1827 लोगों ने पवित्र धाम में टेका मत्था। इस साल अब तक 1,91,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं को सराहा। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब। तो वहीं संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़। होटल में घुसा पानी, प्रशासन ने संभाले हालात, पर्यटकों को बाहर निकाला गया। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना सुचोवा को हराया। तो वहीं 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
7: आज की भगवत चर्चा में हमने एक शब्द निकाला है मध्य। क्या मध्य को जानते हैं आप? मिडल। मिडिल को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं मध्य। क्या कहते हैं? मध्य। आज का हमारा शब्द भी यही है, इसी पर हम एक चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में जब नारद जी यात्रा पर निकले तो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में एक स्त्री रोती हुई दिखाई पड़ी। उसकी दोनों जंघों के ऊपर दो वृद्ध लेटे हुए थे और वह स्त्री रो रही थी। नारद जी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ में तनिहौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध हैं इनका नाम, एक का ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। भगवत प्राप्ति के तीन मार्ग हैं, ज्ञान

और वैराग्य और तीसरा भक्ति। ज्ञान, वैराग्य और तीसरा भक्ति, भगवान को पाने के ये तीन रास्ते हैं। या तो आप ज्ञान से पा सकते, अथवा आप वैराग्य से पा सकते, अथवा भक्ति से पा सकते। भगवान को ये तीनों रास्तों से पाया जा सकता है, पर सर्वोत्तम रास्ता भक्ति है। पूछो क्यों? पूछो, जोर से पूछो। ज्ञान आने के बाद पक्का है अभिमान आ सकता, जिसे ज्ञानाभिमान कहते। जैसे रावण अहंकारी था, ज्ञानी तो था पर अहंकारी था। और ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि जान लो तो ज्ञानी बन गए। बहुत से लोग पीएचडी डीएड बीएड कर लेते हैं, कहते हैं कि आई एम ग्रेजुएट एजुकेटेड। ठटरी केवल, केवल जो है डिग्रियां पा लेना ज्ञान नहीं है, संसार की सच्चाई को जान लाना ही ज्ञान है। पर कई लोग बहुत नॉलेज हो जाता तो उन्हें ज्ञान का अभिमान हो जाता, तो ज्ञान में अहंकार संभव, थोड़ा कठिन रास्ता। वैराग्य क्या है? वैराग्य है त्याग। हमें संसार से मतलब नहीं, संसार के लोगों से मतलब नहीं, कपड़ों से भी मतलब नहीं, महलों से भी मतलब नहीं, ये वैराग्य है। ये तो और कठिन है, ज्ञान से ज्यादा कठिन तो वैराग्य। आदमी कुछ करे या ना करे पर कल के भोजन की चिंता तो करते ही। और वैराग्य ये कहता कि कल की क्या, आज की चिंता मत करो। और आप कहते कि आज की चिंता ना करो, लोग तो 2 साल के लिए भारत में अचार ही रखते। अचार भी आम का रखते हैं तो 2 साल की तैयारी रखते हैं कि 2 साल बाद काम आएगा। और मकान भी बनाते हैं तो बोले बेटियों के भी काम आएगा, फिर नाती पोते होंगे उनकी भी बहुएं आएंगी तो उनके काम आएगा। तो मकान में एक हाउस एक्स्ट्रा, एक रूम एक्स्ट्रा, तो वैराग्य तो असंभव ही है। तो फिर उपचार क्या भगवान को पाने का? भक्ति, मध्य का मार्ग। ना ये ज्ञान है ना ये वैराग्य है, इसमें दोनों ही समावेश है। वैराग्य भी इसमें है और भक्ति भी इसमें, ज्ञान भी इसमें समा है। मेरे प्रिय जनों, भगवान को पाने का यही मार्ग है भक्ति का। लेकिन अब भक्ति कैसी हो, ये बड़ी विचित्रता। देखो मध्य बड़ी अद्भुत चीज है। क्या है? इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ का मजा लेना है तो बीच में रहो। दोनों तरफ का मजा लेना है तो बीच में रहो। जैसे पूज्य कवि बिंदु जी हुए, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सका, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मध्य का बड़ा आनंद है। राम जी ने भी जब धनुष तोड़ा तो ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, मध्य से तोड़ा। तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो ना इधर से तोड़ा ना उधर से, बोले कहां से तोड़ा? मध्य से तोड़ा। और राम जी का अवतार भी जब हुआ तो कब हुआ? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, मध्य दिवस

श्री कौशल्या नंदन दशरथ नंदन भगवान राम श्री सीतापति राम जब प्रकट भए तो वो ना सुबह हुए ना शाम को हुए। बोले कब हुए? बोले दोपहर में हुए, मध्य में हुए। कब हुए? बोलो बोलो बोलो, मध्य में हुए। भगवान मध्य में क्यों प्रकट हुए? तो भगवान बोले भैया इसलिए मध्य में प्रकट हुए, सुबह यदि प्रकट होते तो शाम नाराज हो जाती, शाम को नाराज हो प्रकट होते तो सुबह नाराज हो जाती, मध्य में हुए तो दोनों ही नाराज हैं। लेकिन एक लफड़ा फंस गया, रात हो गई नाराज। जैसे ही राम जी का अवतार हुआ, सूर्य भगवान को पता लगा हमारे कुल में वंश में रघुनंदन राम प्रकट भए, तो सूर्य भगवान एक महीने तक गए ही नहीं और कोई समझ भी नहीं पाया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा मास दिवस कर मर, मास दिवस का दिवस भा मयम मरम न जाने कोई। एक महीने का दिन हुआ, कोई जान नहीं पाया। अब इतने में रात परेशान, अच्छा रात आए कब? जब सूर्य जाए तो रात आए, दिन जाए तब तो वो बिचारी आए। लेकिन जैसे ही देखा एक महीने तक सूर्य भगवान गए नहीं, रात परेशान रोने लगी। इतने में हवन हुआ, हवन का धुआं हुआ, धुआं से अंधेरा छाया, रात को मौका मिल गया। राम जी के महल में जाकर, जहां राम जी प्रकट हुए थे कौशल्या के भवन में, वहां पर जाकर पलने के पीछे खड़ी होकर रोने लगी। राम जी ने पूछा कौन? उसने कहा प्रभु मैं रात, आई एम नाइट, मैं रात हूं। राम जी बोले तुम क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो? रात बोली रोना तो करें क्या, आपने पूरा मौका दिन को दे दिया, हमें तो दर्शन ही नहीं हो रहे और एक महीने से सूर्य भगवान जा नहीं रहे, आप मध्य में प्रकट भए तो हमें दर्शन ही नहीं हो रहे। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, हम राम अवतार लेकर आए तो दिन में मध्य में आए, लेकिन जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो रात में मध्य लेकर के आएंगे। लेकिन तब भी कब? राम अवतार भी मध्य में हुआ, लेकिन कृष्ण अवतार भी कब हुआ? वो भी मध्य में हुआ, ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बब करण में भगवान श्री यदुनंदन बनकर के प्रकट भए, वो भी मध्य में। और राम जी भी प्रकट कब भए? मध्य में। धनुष भी कहां से तोड़ा? मध्य में। ये आज का सूत्र है, मध्य का मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है, भक्ति का मार्ग। अब इसको उदाहरण से समझो। देखो दुनिया में गुण है तो अवगुण है, सत्य है धर्म है अधर्म है, पाप है तो पुण्य। लेकिन अब हमारा ऐसा मानना, संतों का मानना, गुण अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन जिसमें गुण ज्यादा हो अवगुण बहुत कम हो उसको देवता कहते। क्या कहते? जिसमें अवगुण ज्यादा हो और गुण बहुत कम हो उसको दानव कहें, लेकिन जिसमें गुण अवगुण बराबर हो उसको मानव कहते। जिस गुण और अवगुण दोनों बराबर हो, सेम लाइफ उसको। अच्छा सोने का वो बनता आभूषण, हम कल जहां रुके थे तो हमारे त्रिपाठी जी के परिवार में हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा, तो उस उन्होंने बिफोर मनाया तो हमको गोल्ड का हनुमान जी पहनाया, तो हमने ये पहन करके हम आज सुबह देख रहे थे सोने को, तो हमने एक मित्र से पूछा, हमने कहा क्या प्योर सोना है? बोले नहीं नहीं, प्योर सोने से आभूषण नहीं बन सकता। हमने कहा क्यों? बोले अब वो लचीला होता 24 कैरेट से कोई आभूषण, उसमें कुछ मिलावट जरूरी। तो हमें बात समझ आई, हमका देखो सोना भी असली हो लेकिन वो आभूषण तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें कोई खोट ना हो, खोट ना हो तब तक वो भी आभूषण। हम आपसे भी यही कहना चाहते, गुण ही गुण भरे रहेंगे तो तुम आभूषण ना बन पाओ, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हम यही कहना चाहते, सत्य और धर्म के आचरण से तुम्हारा जीवन भरा रहना चाहिए और एक कोने में अधर्म पड़ा रहना चाहिए। अधर्म रहे उसकी कोई बुराई नहीं है, आपको उसको बुरा भी ना मानना। कई लोग कहते हमसे बहुत पाप हो गए, हम तो भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, हमें तो भगवान देखेंगे ही नहीं, हम तो बहुत पापी हैं। अरे भाई अधर्म रहे कोई दिक्कत नहीं, पर धर्म का आचरण इतना विराट हो कि अधर्म कोने पे भी पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक कालिख लगी हो, और वैसे भी बालक सुंदर होता तो माँ काला टीका लगा, और लाला गोरा और टीका काला, बालक बालका गोरी पर टीका काला, भाई काला टीका क्यों लगे? नजर ना लगे। ऐसे ही गुण और अवगुण
दोनों के बीच में एक मध्य का मार्ग। आहा, लेकिन ये हमारा जीवन सुंदर बनेगा कैसे, इसके लिए भी संतों ने उपाय बताया। भक्ति मिलेगी कैसी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपाय बताया। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। बोले भक्ति का मार्ग क्या है? बोले भक्ति का मार्ग है भगवान का भजन। क्या है? बोलो बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, तुलसीदास जी भी बहुत चतुर हैं, उन्होंने कहा अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जला। कौन सा दीपक जला? ज्ञान का। लेकिन दीपक जला तो लो, पर एक खतरा है, बुझ जल्दी जाती है। जलने में तो टाइम लगता है, पर बुझ हवा चले हो एक सेकंड में बुझ जाता। जलाने में चाहे 2-3 माचिस की कड़ाई लग जाए तब जलता है, और बुझाने में एक पंखा के सामने बुझ गया। तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हमारा दीपक जल तो जाएगा ज्ञान का, पर जला ही रहे ये है। तुलसीदास जी बोले तुम पागल हो जो दीपक जला रहे। बोले फिर? बोले एक दूसरा दिया है। बोले कौन सा? बोले प्लास्टिक वाला, विदेशों में चलता है, वो बुझता ही नहीं, लाइट से यदि जल जाए तो। ये कहा ये कौन सा दिया है? बोले अज्ञान को मिटाने का ये दिया है ज्ञान का दीपक, इसको मणि दीप कहा गया, राम नाम मणि। अच्छा, मणि में ना घी लगता ना तेल लगता, वो जलती स्वप्रकाशित, वो जलती रहती, उसमें ना घी देखना ना बाती देखना ना तेल देखना। बोले लेकिन जलाना। अच्छा, अब विचित्र बात एक और है। बोले मकान के कमरे हैं दो और दीपक है एक, कमरे हैं दो और दीपक हो एक। अब बताओ, एक कमरे में दिया रखेंगे तो दूसरे में अंधेरा, दूसरे में रखेंगे तो इसमें अंधेरा, और जिसमें अंधेरा रहेगा वहां कहीं सिर लगेगा, कहीं हाथ लगेगा, कहीं घुटने लगेंगे, कहीं गिरा ही पड़ेंगे। अब करें क्या कि दोनों कमरों प्रकाशित हो जाएं, और दिया एक। एक उपाय पूछो, क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से पूछो, मध्य में, जिसको देहरी कहते। देहरी जानते? दरवाजे की जो चौखट होती उसको देहरी कहते, देहरी, उसको मध्य कहते। तो तुम दोनों कमरों के मध्य में दीपक रख दो, इसमें भी उजाला रहेगा, उसमें भी उजाला। तुम्हारे पास भी दो कमरे हैं, अब पूछो कौन से? शरीर रूपी संसार में दो कमरे, एक बाहर एक अंदर। अगर तुम बाहर ज्ञान का दीपक जलाओगे तो अंदर अंधेरा रहेगा, और अंदर दीपक जला लोगे तो बाहर अंधेरा रहेगा। बोले उपाय क्या? बोले मुख पर ज्ञान का नाम का दीपक जला लो, बाहर भी उजाला रहेगा, अंदर भी उजाला। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई जिसका नाम राबिया था। राबिया नाम की बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई, बहुत अद्भुत दार्शनिक थी वो। राबिया एक दिन अपने मकान के बाहर, जो गली निकली हुई थी, गली के बाहर में सुई खोज रही थी। तो गांव वाले आए, क्या कर रहे? बोले सुई खो गई। बोले अच्छा, हम भी देखते हैं। तो गांव वाले खोजने लगे, वो भी खोजने लगे, 2-4 और आए वो भी खोजने लगे, जकार्ता वाले भी पहुंचे वो भी खोजने लगे, सब सुई खोज रहे, इधर देखें उधर देखें उधर देखें। राबिया बड़ी प्रसिद्ध संत, तो भला कौन मदद ना करे। सब देखने लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक एक कोना कोना छान मारा गली का। धीरे से पूछा गिरी कहां थी? राबिया बोली अंदर। प्रचार और आए वो भी, जकार्ता वाले भी पहुंचे वो भी खोजने लगे, सब सुई खोज रहे, इधर देखें उधर देखें उधर देखें। राबिया बड़ी प्रसिद्ध संत, तो भला कौन मदद ना करे। सब देखने लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक एक कोना कोना, अंदर दीपक जला लोगे तो बाहर अंधेरा रहेगा। बोले उपाय की एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई जिसका नाम राबिया था। राबिया नाम की बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई, बहुत अद्भुत दार्शनिक थी वो। राबिया एक दिन अपने मकान के बाहर, जो गली निकली हुई थी, गली के बाहर में सुई खोज रही थी। तो गांव वाले आए, क्या कर रहे? बोले सुई खो गई। बोले अच्छा, हम भी देखते हैं। तो गांव वाले खोजने लगे, वो भी खोजने लगे। राबिया बोली अंदर। अंदर गिरी तो बोले, अब सब माता पकड़ के बोले, पे बाहर क्यों खोज रहे? तो बोली कि अंदर उजाला नहीं था, बाहर उजाला था, इसलिए हम बाहर खोज रहे, अंदर अंधेरा था। हम लोगों का भी वही हाल है, हम लोग शांति खोजते बाहर हैं, होती अंदर है। हम लोग सुख को होता अंदर है, सुख शांति होती अंदर है, पर खोजते कहां? बाहर। तो तीन अवस्था है, कितनी अवस्था? ध्यान की तीन अवस्थाएं हैं, कितनी? बोलो बोलो, अरे जरा जम के बोलो। एक
आंख बंद करके ध्यान करो, दूसरा आंख खोलकर ध्यान करो, त्राटक एक टक त्राटक, तीसरा न बंद करो न खोलो, बीच में रखे रहो। ये ध्यान बड़ा गजब का, क्योंकि यदि पूरा खोल करके त्राटक करो एक टक करो तो बाहर तो दिखता रहेगा, भीतर नहीं देख पाओ। और केवल भीतर देखने के लिए आंख बंद करो तो भीतर में तो सब देख पाओगे, बाहर में भीतर नहीं देख पाओ। अब दोनों को देखना उसका मार्ग है क्या है, जरा जोर से बोलो, मध्य। और यही मध्य मार्ग की पुष्टि भागवत में श्री प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह ने पुष्टि की। भगवान प्रकट भए नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, नाम नरसिंह। भगवान प्रकट भए, प्रहलाद जी सामने खड़े, भगवान के सामने प्रहलाद जी के सामने भगवान नरसिंह गए, जाकर के प्रहलाद जी के सामने खड़े होकर के भगवान ने कंधे पर हाथ रखा और प्रहलाद से कहा हमें माफ।

0: दुनिया के पहले परमात्मा। ऐसा ब्रह्म भला कौन होगा जो भक्त से कहे हमें माफ कर। प्रहलाद जी बोले, प्रभु ऐसी बातें क्यों करते? भगवान बोले, हमारे आने में देरी हो गई, हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। इतने कष्ट तुमको पाने पड़े, इतनी पीड़ा तुमको पानी पड़ी पिता से, इतना कष्ट पाना पड़ा, भगवान के सब हमें माफ कर दो। प्रहलाद प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आप आ गए यही बहुत। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे ताई अहिर की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपका चिंतन करते तब भी आप उनके चित्त में नहीं उतरते और हमारे सामने चरित्र में उतर गए हैं, तो ये क्या कम है? ये कम थोड़ी है, ये तो बहुत है। फिर भी भगवान वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सकल संसार को अपनी उंगलियों पर चलाने वाला ब्रह्म है, अग्नित रविशस्य शिव।
1: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, कल 4,000 से ज्यादा भक्तों ने लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा आस्था का सैलाब, शनिवार को 18 से 27 लोगों ने पवित्र धाम में टेका मथा, इस साल अब तक 1,91,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं वहां। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी लगी भक्तों की कतार, तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं को सराहा। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़। होटल में घुसा पानी, प्रशासन ने संभाले हालात, पर्यटकों को बाहर निकाला गया। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना मुचोवा को हराया। 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: खराब मौसम के बावजूद पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। लगातार बढ़ रही है धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए चारधाम पहुंचे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहे श्रद्धालु। आस्था और विश्वास के साथ बना हुआ है चारधाम यात्रा का उत्साह। चमोली में यात्रा मार्ग सही होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी, नहीं हो रही है कोई परेशानी। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर। पूरे उफान पर बह रही है नदी। ग्यारह जुलाई को 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। शनिवार को 1827 यात्री पहुंचे और अब तक 1,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा जारी। अब तक 2.25 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं की तारीफ की। पहलगाम में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए। हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जय घोष से गूंज रही घाटी। इस साल 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। पुणे में दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर निकले भक्त। पुणे से दिवे घाट पार करते हुए सासवड़ की ओर बढ़े श्रद्धालु। ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ पंढरपुर पहुंचेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने शुरू की तैयारी। अधिकारियों ने शिविर और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। पुरी में रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन। एनडीआरएफ पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने लिया हिस्सा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की परखी गई तैयारी। ओडिशा की पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां। विशाल रंगोली बनाने में जुटे कलाकार। रथ यात्रा से पहले विशेष वस्त्र तैयार करने में जुटे दर्जी और कारीगर। 17 कारीगर कर रहे हैं निर्माण। रथ को सजाने के लिए 1250 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया। जगन्नाथ जी और बलदेव जी के रथों के लिए 425 मीटर और सुभद्रा जी के लिए 400 मीटर कपड़े का होता है इस्तेमाल। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस बार 16 जुलाई को निकलेंगे रथ। पुरी में 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। 16 जुलाई से 27 जुलाई तक बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज। 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान आया सामने। मंदिर के निर्माण कार्य की कर ली गई है समीक्षा, अब सिर्फ 2 कार्य पूरे किए जाने बाकी हैं। मंदिर परिसर में स्मारक के रूप में सुरक्षित पुराने राम मंदिर में 24 घंटे चलने वाली ज्वाला की व्यवस्था होनी बाकी, बचे हुए निर्माण कार्य पूरे। श्री राम मंदिर परिसर में दूसरे स्मारक का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा पूरा। 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का काम। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य नवंबर दिसंबर तक हो सकता है पूरा। राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार। अब आगे के काम पर होगा निर्णय। जम्मू कश्मीर में गांव की महिलाएं सरकारी डेयरी योजना का उठा रही हैं लाभ। उधमपुर में डेयरी के काम में लगी महिलाओं ने बताई अपनी सफलता की कहानी। लक्सकोजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आधारशिला रखी है। एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 76 में प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया। अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग। गुजरात के नवसारी शहर में बड़ा हादसा होते होते टला। झुकती हुई दो इमारतों को तुरंत खाली कराकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 100 से ज्यादा लोग। करीब 40 साल पुराने अमरदीप अपार्टमेंट की दो इमारतों में अचानक दरारें पड़ गई और भवन एक ओर झुक गए। नगरपालिका फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने तुरंत लिया एक्शन। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी नौसेना में शामिल हुआ। विशाखापट्टनम में हुई कमीशनिंग सेरेमनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्र गिरी की नौसेना में कमीशनिंग। तो वहीं रक्षा मंत्री ने नेवी को बधाई दी, कहा यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर है। भारत के प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी 75% स्वदेशी उपकरणों से लैस है। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइलों से लैस जंगी जहाज है INS महेंद्र गिरी। भारतीय नौसेना पूर्वी घाट के महेंद्र गिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। जहाज का नाम शक्ति मजबूती और अटल संकल्प का है प्रतीक। नौसेना को इस साल मिला छठा युद्धपोत है INS महेंद्र गिरी। 40 और जंगी जहाजों के निर्माण का काम जारी। अगले 2 महीने में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज। जनवरी 2025 से अब तक मिल चुके हैं 18 युद्धपोत। रक्षा क्षेत्र के मोर्चे से देश के लिए आई शानदार खबर। भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनेंगे मॉडर्न लॉन्चर। मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर है कार्ल गुस्ताफ MK4। पुराने लॉन्चर की जगह लेकर नया मल्टी रोल MAC4 सिस्टम। तो वहीं झज्जर प्लांट में होगा कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का निर्माण। इस हल्के और हाईटेक हथियार को कहीं भी लाना ले जाना है आसान। तकनीकों की ताकत होगी दोगुनी। डिजिटल फायर कंट्रोल लैस लॉन्चर जो पहली गोली में ही करेगा सटीक वार। 84 मिलीमीटर पुराने गोला बारूद से भी लैस होगा कार्ल गुस्ताफ। न्यूजीलैंड के दौरे के साथ पीएम मोदी ने पूरी की 3 देशों की यात्रा। आज भारत लौटेंगे पीएम मोदी। न्यूजीलैंड के दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। करीब 40,000 से ज्यादा लोग रूबरू हुए। संबोधन से पहले अपने नाम और नंबर 100 वाली जर्सी के साथ दिखे पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ऑकलैंड में खेल प्रदर्शनी का दौरा किया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के साथ भी बातचीत की। तिरुपति में अलीपेरी वॉकवे के पास दिखा तेंदुआ। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को इलाके से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़। होटल में घुसा पानी पर्यटकों को बाहर निकाला गया। प्रशासन हालात संभालने में जुटा। मेरठ के हस्तनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। 5 चरवाहों और सैकड़ों भेड़ बकरियों को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन की अपील, लोग नदी किनारे और निचले इलाकों से दूर रहें। उत्तरकाशी में धराली खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा। पुलिस ने नदी किनारे रहने वालों को सावधान किया।

0: तूफान बावी चीन के पूर्वी हिस्से में पहुंच रहा, बीजिंग समेत चाइना के कई शहरों में राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, देहरादून टिहरी पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बारिश तो वहीं तापमान में गिरावट के साथ खुशगवार हुआ मौसम। बेगूसराय में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, घुसा पानी सड़कों पर, जल भराव से ट्रैफिक। पटना में भी कुछ घंटों की बारिश से जगह जगह पर भरा पानी, लोगों को घुटनों तक भरे पानी को पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उड़ीसा में भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भुवनेश्वर में भारी बारिश के बीच आंधी की चेतावनी। नीता अंबानी बनी फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में किया गया सम्मानित। नीता अंबानी की दूरदर्शी लीडरशिप को देखते हुए मिला सम्मान, इवेंट में बिजनेस से लेकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों की भारत की प्रमुख महिला लीडर्स हुई शामिल। कोलकाता में चाइनीज ड्रैगन बोट फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन हुआ, चाइना के साथ कोलकाता स्थित कौंसिल जनरल शू वे हुए शामिल। 6 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में आयोजित किया गया कार्यक्रम, भारतीय और चाइना के युवा ने ड्रैगन बोट रेस में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने दी झारखंड और छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात, 9,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या बच्चे का जन्म का समय उसके भाग्य पर असर डाल देता है? बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या उसकी सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का नाम रखने में भी बहुत सावधानियों का पालन करना चाहिए? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: ट्यून इन इज योर ऑल इन वन ऑडियो ऐप, रेडियो, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कि अगर बच्चे का जन्म हो तो किन बातों का ध्यान रखने से उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई सावधानियां कौन सी हैं और बच्चे के जन्म के समय की स्थिति क्या होती है, कौन सी बातें बच्चे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के समय में किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो सामान्य स्थितियों में आप जन्म का समय निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर सर्जरी से संतान होने वाली है तो लोग समय डिसाइड करते हैं। अगर अवसर मिले तो समय सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर का है या मध्य रात्रि का है तो इसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दोनों समय अभिजित मुहूर्त के समय होते हैं और अभिजित में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली के दोष कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है और ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। वैसे तो देखिए, मोटे तौर पे आप समय डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के आसपास नवमांश बदल जाता है, तो आप बहुत ज्यादा समय डिसाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि नवमांश तो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप 4 मिनट तक का एक्यूरेट टाइम तो ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मोटा समय भी डिसाइड कर रहे हैं कि 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, तो उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जन्म का समय सूर्यास्त के आसपास का डिसाइड मत करिएगा। एक तो हो गया बच्चे का जन्म समय, दूसरा होता है बच्चे का जन्म नक्षत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का सारा जीवन इस जन्म नक्षत्र पर और इसके स्वामी पर आधारित होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र है। अगर बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, ये 6 मूल नक्षत्र हैं, तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य में और उसकी मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो तुरंत मूल नक्षत्र की शांति जितना जल्दी हो करवा लेना चाहिए। और अगर मूल नक्षत्र का जन्म नहीं है तो आप ये देखिए कि वो नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कैसा है, और उसकी स्थिति के आधार पर आपके बच्चे का जीवन आगे बढ़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयु में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, उनकी कुंडली की दशाओं के अलावा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मोटे तौर पर जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानते हैं। देखिए, बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसके आयु और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब स्थान में है, 6, 8, 12 में है, चंद्रमा अस्त है या बुरी तरह पापक्रांत है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा बाला रिष्ट योग बना रहा है, यानी बचपन में अरिष्ट की, अशुभता की संभावना बना रहा है, तो वो बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेके पहले 4 साल वो अपनी मां के भाग्य से चलता है, उसके बाद के 4 साल वो अपने पिता के भाग्य से चलता है, और 8 से लेके 12 साल तक वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार चलता है। तो 12 साल तक सामान्यतः कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जन्म के समय जब पत्री बने तो उसमें चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए, और चंद्रमा अगर नकारात्मक है या निगेटिव सिचुएशन में है तो माता पिता को उस चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर उसका बुरा असर ना पड़े। अब एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसका नाम रखने की, नाम के लिए तमाम कोशिश, तमाम रिसर्च शुरू हो जाती है। और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका अर्थ परमात्मा को भी शायद नहीं पता होगा। अंट शंट कोई भी नाम रख दिए जाते हैं, और इसलिए रख दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यूनिक है। अब यूनिक के चक्कर में कोई भी नाम रख लेंगे क्या? बच्चे के नाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, बच्चे का जो नक्षत्र है, उसके 4 चरण हैं। जिस चरण में उसका जन्म हुआ होगा उससे शुरू होने वाला अक्षर उसका नाम, उसकी राशि का नाम होगा। तो बच्चे की जो राशि के नाम का अक्षर है उससे बच्चे का नाम मत रखिएगा। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह मजबूत है उससे संबंधित अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए, और ऐसा नाम मत रखिए जिसका कोई सर पैर ना हो। आजकल ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिसका मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो जिन नामों का कोई अर्थ ना हो ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। सरल नाम, साधारण नाम, अच्छे नाम आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश में मिल जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नाम रख दिए, कहीं भी नाम रख दिए। नाम सोच समझ के रखिए, क्योंकि वो जीवन भर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम राम है, उसको रामू या रामा मत करिए। बच्चे का नाम कृष्ण रखा है तो किशनवा मत कर दीजिए। यानी अगर देवी देवता के नाम पे बच्चे का नाम है तो नाम तरीके से, शांति से, स्पष्टता से बोलिए। ऊट पटांग नाम उसको मत बनाइए। अगर कोई विवाह संबंधी मुकदमा आपका चल रहा है, सेपरेशन का, मेंटेनेंस का, ऐसा कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो उचित तरीके से आपका मुकदमा हल हो जाएगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको बार बार मित्रों से धोखा मिल रहा हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए या गाय को खिलाइए तो बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
4: चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। कल 4000 से ज्यादा भक्तों ने लिया बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। शनिवार को 1827 लोगों ने पवित्र धाम में टेका मथा। इस साल अब तक 1,91,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं को सराहा। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब। तो वहीं संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़। होटल में घुसा पानी, प्रशासन ने संभाले हालात, पर्यटकों को बाहर निकाला गया। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना सुचोवा को हराया, तो वहीं 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आज शो में बात करेंगे बच्चे के जन्म होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बच्चे का नक्षत्र भी महत्वपूर्ण होता है, किस नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चों के लिए रखनी होती है विशेष सावधानी, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वहीं कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव से लेकर बच्चे के नाम रखते समय क्या करें विचार, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर कोई विवाह संबंधी मुकदमा आपका चल रहा है, सेपरेशन का, मेंटेनेंस का, ऐसा कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो उचित तरीके से आपका मुकदमा हल हो जाएगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि 12 जुलाई 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:06 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चे के जन्म के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई सावधानियां कौन सी हैं और बच्चे के जन्म के समय की स्थिति क्या होती है, कौन सी बातें बच्चे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के समय में किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो सामान्य स्थितियों में आप जन्म का समय निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर सर्जरी से संतान होने वाली है तो लोग समय डिसाइड करते हैं। अगर अवसर मिले तो समय सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर का है या मध्य रात्रि का है तो इसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दोनों समय अभिजित मुहूर्त के समय होते हैं और अभिजित में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली के दोष कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है और ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। वैसे तो देखिए मोटे तौर पे आप समय डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के आसपास नवमांश बदल जाता है, तो आप बहुत ज्यादा समय डिसाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि नवमांश तो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप 4 मिनट तक का एक्यूरेट टाइम तो ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मोटा समय भी डिसाइड कर रहे हैं कि 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, तो उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जन्म का समय सूर्यास्त के आसपास का डिसाइड मत करिएगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र भी महत्वपूर्ण होता है और इसको कैसे समझा जा सकता है।
1: एक तो हो गया बच्चे का जन्म समय, दूसरा होता है बच्चे का जन्म नक्षत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का सारा जीवन इस जन्म नक्षत्र पर और इसके स्वामी पर आधारित होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र है। अगर बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, ये 6 मूल नक्षत्र हैं, तो तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य में और उसकी मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो तुरंत मूल नक्षत्र की शांति जितना जल्दी हो करवा लेना चाहिए। और अगर मूल नक्षत्र का जन्म नहीं है तो आप ये देखिए कि वो नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कैसा है, और उसकी स्थिति के आधार पर आपके बच्चे का जीवन आगे बढ़ेगा।
0: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी आप आज का सबसे पहला सवाल किसका लेना चाहेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न कुमुद जी ने हमें लिखा है, और कुमुद जी देहरादून उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1994। जन्म का समय दोपहर में 2:10। जन्म का स्थान है नैनीताल। कुमुद कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी 2 साल पहले हुआ है, लेकिन मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरी शादी चल सकेगी या सेपरेशन हो जाएगा? कुमुद, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में इतनी दिक्कतें नहीं हैं, थोड़ा एडजस्ट करके अगर आप चलें तो मुझे लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन बचेगा भी और चलेगा भी। अक्टूबर 2026 तक थोड़ी शांति रखें, इसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो चला है दूसरे सवाल का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका रहेगा?
1: जी, अगला प्रश्न नीलकंठ जी ने हमें लिखा है और नीलकंठ जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 23 अक्टूबर 1990, रात में 8:15, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की नौकरी अच्छी है, करियर अच्छा है और फिलहाल बेंगलोर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही है, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो मेरी बेटी का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीलकंठ जी, आपकी पुत्री के विवाह का योग चल रहा है और साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनका विवाह होने की संभावना बन रही है। आप ऐसा करिए, इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल धारण करवाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चे का चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण होता है और इस पर कैसे विचार करना चाहिए।
1: देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयु में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, उनकी कुंडली की दशाओं के अलावा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मोटे तौर पर जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानते हैं। देखिए, बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसके आयु और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब स्थान में है, 6, 8, 12 में है, चंद्रमा अस्त है या बुरी तरह पापक्रांत है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा बाला रिष्ट योग बना रहा है, यानी बचपन में अरिष्ट की, अशुभता की संभावना बना रहा है, तो वो बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेके पहले 4 साल वो अपनी मां के भाग्य से चलता है, उसके बाद के 4 साल वो अपने पिता के भाग्य से चलता है और 8 से लेके 12 साल तक वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार चलता है। तो 12 साल तक सामान्यतः कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जन्म के समय जब पत्री बने तो उसमें चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए, और चंद्रमा अगर नकारात्मक है या निगेटिव सिचुएशन में है तो माता पिता को उस चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर उसका बुरा असर ना पड़े।
0: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि बच्चे का नाम कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसका नाम रखने की, नाम के लिए तमाम कोशिश, तमाम रिसर्च शुरू हो जाती है, और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका अर्थ परमात्मा को भी शायद नहीं पता होगा। अंट शंट कोई भी नाम रख दिए जाते हैं, और इसलिए रख दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यूनिक है। अब यूनिक के चक्कर में कोई भी नाम रख लेंगे क्या? बच्चे के नाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, बच्चे का जो नक्षत्र है, उसके चार चरण हैं। जिस चरण में उसका जन्म हुआ होगा उससे शुरू होने वाला अक्षर उसका नाम, उसकी राशि का नाम होगा। तो बच्चे की जो राशि के नाम का अक्षर है उससे बच्चे का नाम मत रखिएगा। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह मजबूत है उससे संबंधित अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए, और ऐसा नाम मत रखिए जिसका कोई सर पैर ना हो। आजकल ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिसका मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो जिन नामों का कोई अर्थ ना हो ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। सरल नाम, साधारण नाम, अच्छे नाम आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश में मिल जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नाम रख दिए, कहीं भी नाम रख दिए। नाम सोच समझ के रखिए, क्योंकि वो जीवन भर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम राम है, उसको रामू या रामा मत करिए। बच्चे का नाम कृष्ण रखा है तो किशनवा मत कर दीजिए। यानी अगर देवी देवता के नाम पे बच्चे का नाम है तो नाम तरीके से, शांति से, स्पष्टता से बोलिए, ऊट पटांग नाम उसको मत बनाइए।
0: और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशि फल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चोट चपेट से सावधान रहें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई दुविधा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल करना होगा। पंडित जी, अब तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, अगला प्रश्न अभिजीत जी ने हमें लिखा है और अभिजीत जी हमें मेल लिखते हैं पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1980, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। अभिजीत जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया हूं, तो मुझे प्रॉपर्टी का फायदा कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अभिजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्रॉपर्टी इसी साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में खरीद पाएंगे। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की संभावना बन रही है। आपको सलाह ये है कि आप लोन बहुत ज्यादा मत लीजिएगा और अपनी सामर्थ्य से ऊपर जा करके पैसा मत लगाइए, सोच समझ करके ही प्रॉपर्टी खरीदिएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसका रहेगा?
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न सरला जी ने हमें लिखा है और सरला जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1973। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है बांदीकुई, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, पति का बच्चों का कोई सपोर्ट नहीं है, हमेशा परिवार में तनाव बना रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति बेहतर बनी रहे। सरला जी, आपकी कुंडली में जो राहु और चंद्र की स्थिति है वो ये कहती है कि तनाव हमेशा बना रहता है, बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर आप परेशान होती हैं और वो तनाव का एक बड़ा कारण बन जाता है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। दूसरे नंबर पर एक मोती, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब बात होगी उनकी जिनका जन्मदिन 12 जुलाई को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: 12 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर और धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम दिखाई दे रहा है। अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो मूल नक्षत्र की शांति हो जाने तक क्या उसके पिता को उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। हर नक्षत्र के साथ ये बात लागू नहीं होती, ज्यादातर ये बात लागू होती है अश्विनी और अश्लेषा नक्षत्र के साथ।
1: और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं कि 12 जुलाई 2026 का शुभ पहर क्या रहने वाला है।
0: दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की

0: विशेष लाभ हो सकता है।
1: और चलिए अपने आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको बार बार मित्रों से धोखा मिल रहा हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए या गाय को खिलाइए तो बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: मतलब बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाती है। TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode,

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: अब बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में हैं। पूरा पुरी धाम इस समय भक्ति के रंग में सराबोर है। कारीगरों के हाथ दिन रात भगवान के रथों और उनके परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देखिए,

0: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में है। पूरा पुरी धाम इस समय भक्ति के रंग में सराबोर है। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजती पुरी की ये धरती, जहां आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है जिसे देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और इसी भव्य यात्रा की गवाह बनती है पुरी की रथ यात्रा। इस महायात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सड़कों को दुरुस्त करने से लेकर भगवान के रथ को सजाने का काम जारी है। साथ ही भगवान के लिए भी विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। 17 हुनरमंद कारीगर दिन रात एक एक कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के इन दिव्य परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
1: रथ के ऊपर जो पारा भड़ी होता है उसके ऊपर से जो पोटोल बनता है, पोटोल का वो झालर होता है, वो झालर में पोटोल के बीच में किंभिरिया लगता है। ये टोटली जो काम जो बनता है, ये हम जैसे चाहते हैं जो जगन्नाथ जी का रथ जितना सुंदर हो, उसके लिए जो भी जो सामान होता है, जैसे लेस होता है, जो हमारा फूल होता है।
0: महाप्रभु के विशाल रथों को सजाने में भी भव्यता की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इन दिव्य रथों को सजाने के लिए इस बार कुल 1250 मीटर विशेष कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से भगवान जगन्नाथ और भैया बलदेव के रथों के लिए 425-425 मीटर, जबकि देवी सुभद्रा के रथ के लिए 400 मीटर कपड़ा उपयोग में लाया जा रहा है।
1: जो कपड़े का काम होता है, ये सब जैसे जगन्नाथ जी का खाली दर्जी का सेवक होता है वो बात नहीं है, जो भोई सेवक होते हैं, रूपकार सेवक होते हैं, चित्रकार सेवक होते हैं, बहुत सारे सेवक होते हैं, सबको मिला के जगन्नाथ जी का काम होता है। एक कोई एक काम भी नहीं बना सकते, वो स्वयं जगन्नाथ खुद ही माने उनका काम वो खुद ही करते हैं।
0: लाखों करोड़ों भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि 5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है।
2: पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन, इलैबोरेट पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन फॉर द अपकमिंग रथ यात्रा 2026 एंड मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज बीन आल्सो अरेंज्ड। देयर आर मोर देन 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस हैज बीन डिप्लॉयड along with 19 IPS officers who has been heading the eight different verticals of crowd management, traffic management, inside temple arrangement, outside temple arrangement, control room, rooftop arrangement and other coastal security and railway arrangement. The main purpose and objective of the arrangement is safe, secured and hassle-free darshan of Mahaprabhu Sri Balabhadra, Mahaprabhu Sri Jagannath, Devi Subhadra and Chakraraj Sudarshan, their pahandi and the car festivals and whole Ratha Yatra, the main objective is to hassle-free darshan for the devotees.
0: सुरक्षा कारणों से 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक बिना अनुमति के किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यानी आस्था के सबसे बड़े महोत्सव में सुरक्षा से लेकर भव्यता तक हर एक बारीक पहलू पर पैनी नजर रखी जा रही है। बस अब इंतजार है उस पल का, जब महाप्रभु रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करेंगे अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और राम कथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।

0: का बड़ा केंद्र, अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है, जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
1: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था, जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है, जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य, इस प्रकार 30 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
0: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय, जिसमें 20 गैलरी हैं, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा, उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
1: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है, राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है, 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है, और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा, उस पर अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय दिया जाएगा।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आपको बता दें, 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रहा है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कांवड़ यात्रा और सावन के मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारी कर रही है, कांवड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है।
2: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गयी। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कांवड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 20 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कांवड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मेले के दौरान कोई भी कांवड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी, डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to Tune In on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on Tune In.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: चार धाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, कल 4,000 से ज्यादा भक्तों ने लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा आस्था का सैलाब, शनिवार को 1827 लोगों ने पवित्र धाम में टेका मथा, इस साल अब तक 1,91,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी लगी भक्तों की कतार, तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं को सराहा। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना मुजोवा को हराया, 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता।
2: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: खराब मौसम के बावजूद पवित्र चार धाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, लगातार बढ़ रही है धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए चार धाम पहुंचे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़, बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहे श्रद्धालु, आस्था और विश्वास के साथ बना हुआ है चार धाम यात्रा का उत्साह। चमोली में यात्रा मार्ग सही होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी, नहीं हो रही है कोई परेशानी। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर बह रही है नदी। ग्यारह जुलाई को 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, शनिवार को 1827 यात्री पहुंचे और अब तक 1,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा जारी, अब तक 2,25,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं की तारीफ की, पहलगाम में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए। हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जय घोष से गूंज रही घाटी, इस साल 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। पुणे में दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर निकले भक्त। पुणे से दिवे घाट पार करते हुए सासवड की ओर बढ़े श्रद्धालु, ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ पंढरपुर पहुंचेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने शुरू की तैयारी, अधिकारियों ने शिविर और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। पुरी में रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन, NDRF पुलिस और RPF के जवानों ने लिया हिस्सा। पुरी रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील जगहों पर बड़े पैमाने पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की परखी गई तैयारी। ओडिशा की पुरी में रथ यात्रा से पहले भव्य तैयारियां, विशाल रंगोली बनाने में जुटे कलाकार। रथ यात्रा से पहले विशेष वस्त्र तैयार करने में जुटे दर्जी और कारीगर, 17 कारीगर कर रहे हैं निर्माण। रथ को सजाने के लिए 1250 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया। जगन्नाथ जी और बलदेव जी के रथों के लिए 425 मीटर और सुभद्रा जी के लिए 400 मीटर कपड़े का होता है इस्तेमाल। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस बार 16 जुलाई को निकलेंगे रथ। पुरी में 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। 16 जुलाई से 27 जुलाई तक बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज। 30 जुलाई तक श्री राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य हो जाएंगे पूरे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान आया सामने। मंदिर के निर्माण कार्य की कर ली गई है समीक्षा, अब सिर्फ 2 कार्य पूरे किए जाने बाकी हैं। मंदिर परिसर में स्मारक के रूप में सुरक्षित पुराने राम मंदिर में 24 घंटे चलने वाली ज्वाला की व्यवस्था होनी बाकी, बचे हुए निर्माण कार्य पूरे। श्री राम मंदिर परिसर में दूसरे स्मारक का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा पूरा। 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का काम। मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य नवंबर दिसंबर तक हो सकता है पूरा। राम कथा संग्रहालय की 20 गैलरी की स्टोरी लाइन भी तैयार, अब आगे के काम पर होगा निर्णय। जम्मू कश्मीर में गांव की महिलाएं सरकारी डेयरी योजना का उठा रही हैं लाभ। उधमपुर में डेयरी के काम में लगी महिलाओं ने बताई अपनी सफलता की कहानी। लक्सकोजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आधारशिला रखी। एशिया का सबसे बड़ा गार्मेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 76 में प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया, अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग। गुजरात के नवसारी शहर में बड़ा हादसा होते होते टला, झुकती हुई 2 इमारतों को तुरंत खाली कराकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 100 से ज्यादा लोग। करीब 40 साल पुराने अमरदीप अपार्टमेंट की 2 इमारतों में अचानक दरारें पड़ गई और भवन एक ओर झुक गए। नगरपालिका फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने तुरंत लिया एक्शन। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हुआ। विशाखापट्टनम में हुई कमीशनिंग सेरेमनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आईएनएस महेंद्रगिरी की नौसेना में कमीशनिंग, तो वहीं रक्षा मंत्री ने नेवी को बधाई दी, कहा यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर है। भारत के प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का 6ठा स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस महेंद्रगिरी, 75% स्वदेशी उपकरणों से लैस है। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइलों से लैस जंगी जहाज है आईएनएस महेंद्रगिरी। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है डिजाइन। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया निर्माण। आईएनएस महेंद्रगिरी में है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। हाई स्पीड वाले जहाज को रडार पर ट्रैक कर पाना मुश्किल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, आईएनएस महेंद्रगिरी पर लगाई जा सकती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स लैस है ये फ्रिगेट। आधुनिक रडार और सेंसर सूट्स भी मौजूद। पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है जहाज का नाम, शक्ति मजबूती और अटल संकल्प का है प्रतीक। नौसेना को इस साल मिला 6ठा युद्धपोत है आईएनएस महेंद्रगिरी। 40 और जंगी जहाजों के निर्माण का काम जारी। अगले 2 महीने में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज। जनवरी 2025 से अब तक मिल चुके हैं 18 युद्धपोत। रक्षा क्षेत्र के मोर्चे से देश के लिए आई शानदार खबर, भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनेंगे मॉडर्न लॉन्चर, मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर है काल गुस्ताफ MK4। पुराने लॉन्चर की जगह लेकर नया मल्टी रोल MAC4 सिस्टम, तो वहीं झज्जर प्लांट में होगा काल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का निर्माण। इस हल्के और हाईटेक हथियार को कहीं भी लाना ले जाना है आसान, तकनीकों की ताकत होगी दोगुनी। डिजिटल फायर कंट्रोल से लैस लॉन्चर, जो पहली गोली में ही करेगा सटीक वार, 84 मिलीमीटर पुराने गोला बारूद से भी लैस होगा काल गुस्ता। न्यूजीलैंड के दौरे के साथ पीएम मोदी ने पूरी की 3 देशों की यात्रा, आज भारत लौटेंगे पीएम मोदी। न्यूजीलैंड के दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, करीब 40,000 से ज्यादा लोग रूबरू हुए। संबोधन से पहले अपने नाम और नंबर 100 वाली जर्सी के साथ दिखे पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ऑकलैंड में खेल प्रदर्शनी का दौरा किया, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के साथ भी बातचीत की। तिरुपति में अलीपेरी वॉकवे के पास दिखा तेंदुआ, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को इलाके से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़, होटल में घुसा पानी पर्यटकों को बाहर निकाला गया, प्रशासन हालात संभालने में जुटा। मेरठ के हस्तनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, 5 चरवाहों और सैकड़ों भेड़ बकरियों को सुरक्षित निकाला गया, प्रशासन की अपील, लोग नदी किनारे और निचले इलाकों से दूर रहें। उत्तरकाशी में धराली खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा, पुलिस ने नदी किनारे रहने वालों को सावधान किया। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए किए गए सेवा कार्य, लोगों के बीच लड्डू बांटे गए, गांव के लिए भी तैयार किए गए बूंदी के लड्डू। जापान और ताइवान में तबाही मचाने के बाद तूफान बावी चीन के पूर्वी हिस्से में पहुंचा, बीजिंग समेत चाइना के कई शहरों में राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, देहरादून टिहरी पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बारिश तो वहीं तापमान में गिरावट के साथ खुशगवार हुआ मौसम। बेगूसराय में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, घुसा पानी सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक। पटना में भी कुछ घंटों की बारिश से जगह जगह पर भरा पानी, लोगों को घुटनों तक भरे पानी को पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उड़ीसा में भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भुवनेश्वर में भारी बारिश के बीच आंधी की चेतावनी। नीता अंबानी बनी फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में किया गया सम्मानित। नीता अंबानी की दूरदर्शी लीडरशिप को देखते हुए मिला सम्मान, इवेंट में बिजनेस से लेकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों की भारत की प्रमुख महिला लीडर्स हुई शामिल। कोलकाता में चाइनीज ड्रैगन बोट फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन हुआ, चाइना के साथ कोलकाता स्थित कौंसल जनरल शु वेई हुए शामिल। 6 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में आयोजित किया गया कार्यक्रम, भारतीय और चाइना के युवा ने ड्रैगन बोट रेस में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने दी झारखंड और छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात, 9,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कोंडाकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो डाइव्स लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। वैष्णव ने स्वदेशी रेल निर्माण और मेक इन इंडिया पहल के तहत कर्मचारियों के कौशल विकास प्रयासों की समीक्षा की, तकनीकी क्षमताओं के लिए संवाद किया। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात की मंत्री रिवाबा जडेजा, युवाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वदेशी का दिया संदेश। पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इंदौर में विशेष आयोजन, लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए किया गया प्रेरित। पेड़ लगाने के लिए अनोखी अपील के तहत इंदौर में लोगों को फ्री में खिलाया गया पोहा, पिलाई गई चाय, लगी लंबी कतार। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ हुआ, मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को फ्री बांटी जाएगी 3 लाख कॉपीज। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। 11 अगस्त तक पूरे एक महीने राज्य भर में चलेगा अभियान। गुवाहाटी के दौरे पर सीएम बिस्वा, असम राज्य चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट की समीक्षा की। चिड़ियाघर को विश्व स्तरीय वन्य जीव सुविधा में बदलना है प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद। आधुनिक पशु चिकित्सालय और दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी एवियरी बनाने की है योजना। दौरे के दौरान सीएम ने लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अब गलत लेन में गाड़ी चलाने पर कटेगी जेब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइविंग का होगा चालान। पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर लागू होगा लेन सिस्टम। लागत लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने उठाया कदम। कैमराज के जरिए किया जाएगा चालान। एक्सप्रेसवे पर बंद पड़े सभी कैमराज को बदल कर लगाए जा रहे हैं आधुनिक हाईटेक कैमरा। दवाओं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय की। तय अधिकतम कीमत से ज्यादा रेट पर नहीं बेची जा सकेंगी दवाएं। डायबिटीज, हाई बीपी, दिल की बीमारी, इन्फेक्शन, नाखून की बीमारी, सांस की तकलीफ और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए आई गुड न्यूज। समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशन से चलेंगी 8 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। एयर इंडिया ने किया ऐलान, जोधपुर एयरपोर्ट से चलने वाली उसकी सभी उड़ानें एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग से होंगी संचालित। यात्रियों को ज्यादा आराम और बेहतर ऑपरेशनल क्षमता देता है 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा में फैला नया टर्मिनल। पीएम मोदी ने 4 जुलाई को किया था टर्मिनल भवन का उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को दी विकास की सौगात। 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में रामबन के चंद्रकोट में सीआरपीएफ ने लगाया 61 फीट का हाई मास्ट। राष्ट्रीय ध्वज चेनाब नदी के किनारे लहराया तिरंगा। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपना डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर। फिल्म की कार्यकारी निर्माता हैं प्रियंका चोपड़ा। दिल्ली के कलाकार पीके महानंदिया पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री की कहानी। सच्चे प्यार की तलाश में भारत से स्वीडन तक 6,000 मील की यात्रा पर साइकिल से निकले थे महानंदिया। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर रिलीज। क्रांति प्रकाश झा और निकितन धीर अपनी पहली वाली भूमिकाओं में ही आएंगे नजर। 16 जुलाई को अमेजॉन MX प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी वेब सीरीज रक्तांचल 3। करण पटेल, माही गिल, राजेश कुमार, विक्रम कोचर भी अहम भूमिकाओं में। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक पुरस्वानी बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ सात फेरे लिए। एक्टर शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा आशियाना पौशे इलाके पंचशील पार्क में उस पूरी बिल्डिंग के बने मालिक जहां शादी के बाद की थी अपनी जिंदगी की शुरुआत। शाहरुख और गौरी खान के लिए खास है ये घर। इमारत के बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर पहले से था मालिकाना हक, अब दूसरे और तीसरे फ्लोर के भी बने मालिक। दूसरी बार मां बनेंगी दीपिका पादुकोण, सोशल मीडिया पर फैंस को जानकारी दी। चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा बनी विंबलडन की नई चैंपियन। खिताबी मुकाबले में हम वतन कैरोलिना मोचोवा को हराया। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में लिंडा ने मोचोवा को 6-2, 5-7 और 6-3 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री हुई। नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेंटों में हराकर लगातार दूसरी बार बनाई जगह। आज होगा विंबलडन फाइनल का मैच, जोनिक सिनर से भिड़ेंगे अलेक्जेंडर ज्वेरेव। महाराष्ट्र के 31 साल के हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने डायमंड लीग में रचा इतिहास। मोनाको मीट में तीसरा स्थान हासिल किया। डायमंड लीग में पोडियम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर और ओवरऑल चौथे भारतीय एथलीट बने। इससे पहले नीरज चोपड़ा, विकास गौड़ और गुरली श्री शंकर के नाम थे उपलब्धि। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में फ्रांस से होगी टक्कर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत अब और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS महेंद्र गिरी शामिल हो चुका है। स्वदेशी तकनीक से बना स्टेल्थ युद्धपोत INS महेंद्र गिरी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। ये युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत को नौसेना के हवाले किया और कहा कि इस पोत में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा सकता है।

0: प्रबल, सतर्क, अचूक, चट्टान जैसी दृढ़ता, रण शौर्य का प्रतीक, समंदर की लहरों पर राज करने वाला स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। INS महेंद्रगिरी के शामिल होने से समंदर में अब और मजबूत हो जाएगी भारतीय नौसेना। स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी जो न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम का प्रतीक है, बल्कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस समंदर में नौसेना का नया प्रहरी भी है।
1: तेज दृष्टि, अद्भुत धैर्य और सही समय पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। समुद्र में भी एक वारशिप से यही अपेक्षा होती है, वह हर समय अलर्ट रहे, दूर तक देख सके, हर परिस्थिति का सही आकलन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने में भी वह सक्षम हो। यह क्रेस्ट अपने आप में INS महेंद्रगिरी की कैपेबिलिटी का प्रतीक है।
0: महेंद्रगिरी का डिजाइन भारतीय नौसेना के WDB यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इसे आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भारतीय नौसेना के इस शूरवीर को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया जाएगा।
1: तो INS महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं।
0: समंदर के इस नए प्रहरी का नाम पूर्वी घाट के प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया है। इसके खासियत की बात करें तो सतह से सतह और सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस है। इसके अलावा इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक सेंसर, एंटी सबमरीन वेपन्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से ये एक साथ मुकाबला कर सकता है। महेंद्रगिरी स्टिल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट है, जो दुश्मन के रडार को चुनौती देगा। समंदर में चुपचाप आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर घातक प्रहार करने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि महेंद्रगिरी के निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है, जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: महेंद्रगिरी भले ही एक वॉरशिप है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, समुद्री सुरक्षा गश्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशनों में भी किया जा सकेगा। समंदर में फंसे लोगों की सहायता से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक ये कई अहम जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, कल 4,000 से ज्यादा भक्तों ने लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद, अब तक 15,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा आस्था का सैलाब, शनिवार को 18 से 27 लोगों ने पवित्र धाम में टेका मथा, इस साल अब तक 1,91,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी लगी भक्तों की कतार, तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं को सराहा। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़, होटल में घुसा पानी, प्रशासन ने संभाले हालात, पर्यटकों को बाहर निकाला गया। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलाइना मोचोवा को हराया, 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगो युगो में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 की उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगाई।

रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसे थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की।

0: तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मैसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मैसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मैसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मैसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मैसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
1: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
0: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था। लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी। यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: बच्चे के जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या बच्चे का जन्म नक्षत्र उसके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है? बच्चे के जन्म के समय किन बातों का रखें ध्यान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: Good news today is really अच्छा लगता है. इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, कल 4,000 से ज्यादा भक्तों ने लिया बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, शनिवार को 1827 लोगों ने पवित्र धाम में टेका मत्था, इस साल अब तक 1,91,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार, तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं को सराहा। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब, तो वहीं संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़, होटल में घुसा पानी, प्रशासन ने संभाले हालात, पर्यटकों को बाहर निकाला गया। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना सुचोवा को हराया, तो वहीं 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कि अगर बच्चे का जन्म हो तो किन बातों का ध्यान रखने से उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 8:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:06 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई सावधानियां कौन सी हैं और बच्चे के जन्म के समय की स्थिति क्या होती है, कौन सी बातें बच्चे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के समय में किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो सामान्य स्थितियों में आप जन्म का समय निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर सर्जरी से संतान होने वाली है तो लोग समय डिसाइड करते हैं। अगर अवसर मिले तो समय सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर का है या मध्य रात्रि का है तो इसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दोनों समय अभिजित मुहूर्त के समय होते हैं और अभिजित में जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली के दोष कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन जाती है और ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं। वैसे तो देखिए, मोटे तौर पे आप समय डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 के आसपास नवमांश बदल जाता है, तो आप बहुत ज्यादा समय डिसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि नवमांश तो आपके कंट्रोल में है नहीं। आप 4 तक का एक्यूरेट टाइम तो ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मोटा समय भी डिसाइड कर रहे हैं
कि एक घंटे का समय, डेढ़ घंटे का समय, तो उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जन्म का समय सूर्यास्त के आसपास का डिसाइड मत करिएगा। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है। करियर में समस्या हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। एक तो हो गया बच्चे का जन्म समय, दूसरा होता है बच्चे का जन्म नक्षत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का सारा जीवन इस जन्म नक्षत्र पर और इसके स्वामी पर आधारित होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र है। अगर बच्चे का जन्म किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल या रेवती, ये छह मूल नक्षत्र हैं, तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य में और उसकी मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। तो अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो तुरंत मूल नक्षत्र की शांति जितना जल्दी हो करवा लेना चाहिए। और अगर मूल नक्षत्र का जन्म नहीं है तो आप ये देखिए कि वो नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कैसा है और उसकी स्थिति के आधार पर आपके बच्चे का जीवन आगे बढ़ेगा। सिंह राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयु में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, उनकी कुंडली की दशाओं के अलावा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, मोटे तौर पर जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानते हैं। देखिए, बच्चे के चंद्रमा से बचपन में उसके आयु और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब स्थान में है, 6, 8, 12 में है, चंद्रमा अस्त है या बुरी तरह पापक्रांत है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा बाला रिष्ट योग बना रहा है, यानी बचपन में अरिष्ट की, अशुभता की संभावना बना रहा है, तो वो बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बच्चे की आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेके पहले 4 साल वो अपनी मां के भाग्य से चलता है, उसके बाद के 4 साल वो अपने पिता के भाग्य से चलता है, और 8 से लेके 12 साल तक वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार चलता है। तो 12 साल तक सामान्यतः कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि जन्म के समय जब पत्री बने तो उसमें चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए, और चंद्रमा अगर नकारात्मक है या निगेटिव सिचुएशन में है तो माता पिता को उस चंद्रमा के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर उसका बुरा असर ना पड़े। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा।
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, चोट चपेट से सावधान रहें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब एक बात जो और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसका नाम रखने की, नाम के लिए तमाम कोशिश, तमाम रिसर्च शुरू हो जाती है। और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका अर्थ परमात्मा को भी शायद नहीं पता होगा। अंट शंट कोई भी नाम रख दिए जाते हैं, और इसलिए रख दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि यूनिक है। अब यूनिक के चक्कर में कोई भी नाम रख लेंगे क्या? बच्चे के नाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, बच्चे का जो नक्षत्र है, उसके चार चरण हैं। जिस चरण में उसका जन्म हुआ होगा, उससे शुरू होने वाला अक्षर उसका नाम, उसकी राशि का नाम होगा। तो बच्चे की जो राशि के नाम का अक्षर है, उससे बच्चे का नाम मत रखिएगा। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह मजबूत है, उससे संबंधित अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए। और ऐसा नाम मत रखिए जिसका कोई सर पैर ना हो। आजकल ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिसका मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो जिन नामों का कोई अर्थ ना हो, ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। सरल नाम, साधारण नाम, अच्छे नाम आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश में मिल जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नाम रख दिए, कहीं भी नाम रख दिए। नाम सोच समझ के रखिए, क्योंकि वो जीवन भर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम राम है, उसको रामू या रामा मत करिए। बच्चे का नाम कृष्ण रखा है तो किशनवा मत कर दीजिए। यानी अगर देवी देवता के नाम पे बच्चे का नाम है तो नाम तरीके से, शांति से, स्पष्टता से बोलिए। ऊट पटांग नाम उसको मत बनाइए। अगर कोई विवाह संबंधी मुकदमा आपका चल रहा है, सेपरेशन का, मेंटेनेंस का, ऐसा कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो उचित तरीके से आपका मुकदमा हल हो जाएगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको बार बार मित्रों से धोखा मिल रहा हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हर मंगलवार को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए या गाय को खिलाइए तो बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: Jyoti Randhawa ke saath, Good News Today.
2: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

आज की भगवत चर्चा में हमने एक शब्द निकाला है मध्य। क्या मध्य को जानते हैं आप? मिडिल, मिडिल। मिडिल को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं मध्य। क्या कहते हैं? मध्य। आज का हमारा शब्द भी यही है, इसी पर हम एक चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में जब नारद जी यात्रा पर निकले तो वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में एक स्त्री रोती हुई दिखाई पड़ी, उसकी दोनों जंघों के ऊपर दो वृद्ध लेटे हुए थे और वह स्त्री रो रही थी। नारद जी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ मे तनिऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध हैं इनका नाम, एक का ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। भगवत प्राप्ति के तीन मार्ग हैं, ज्ञान और वैराग्य और तीसरा भक्ति। ज्ञान, वैराग्य और तीसरा भक्ति, भगवान को पाने के ये तीन रास्ते हैं। या तो आप ज्ञान से पा सकते, अथवा आप वैराग्य से पा सकते, अथवा भक्ति से पा सकते। भगवान को ये तीनों रास्तों से पाया जा सकता है और सर्वोत्तम रास्ता भक्ति है। पूछो क्यों? पूछो, जोर से पूछो। ज्ञान आने के बाद पक्का है अभिमान आ सकता, जिसे ज्ञानाभिमान कहते। जैसे रावण अहंकारी था, ज्ञानी तो था पर अहंकारी था। और ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि जान लो तो ज्ञानी बन गए। बहुत से लोग पीएचडी डीएड बीएड कर लेते हैं, कहते हैं कि आई एम ग्रेजुएट एजुकेटेड। ठटरी केवल, केवल जो है डिग्रियां पा लेना ज्ञान नहीं है, संसार की सच्चाई को जान लाना ही ज्ञान है। पर कई लोग बहुत नॉलेज हो जाता तो उन्हें ज्ञान का अभिमान हो जाता, तो ज्ञान में अहंकार संभव, थोड़ा कठिन रास्ता। वैराग्य क्या है? वैराग्य है त्याग। हमें संसार से मतलब नहीं, संसार के लोगों से मतलब नहीं, कपड़ों से भी मतलब नहीं, महलों से भी मतलब नहीं, ये वैराग्य है। ये तो और कठिन है, ज्ञान से ज्यादा कठिन तो वैराग्य। आदमी कुछ करे या ना करे पर कल के भोजन की चिंता तो करते ही, और वैराग्य ये कहता कि कल की क्या, आज की चिंता मत करो। और आप कहते कि आज की चिंता ना करो, लोग तो 2 साल के लिए भारत में अचार ही रखते। अचार भी आम का रखते हैं तो 2 साल की तैयारी रखते हैं कि 2 साल बाद काम आएगा। और मकान भी बनाते हैं तो बोले बेटियों के भी काम आएगा, फिर नाती पोते होंगे उनकी भी बहुएं आएंगी तो उनके काम आएगा। मकान में एक हाउस एक्स्ट्रा, एक रूम एक्स्ट्रा, तो वैराग्य तो असंभव ही है। तो फिर उपचार क्या भगवान को पाने का? भक्ति, मध्य का मार्ग। ना ये ज्ञान है ना ये वैराग्य है, इसमें दोनों ही समावेश है। वैराग्य भी इसमें है और भक्ति भी इसमें, ज्ञान भी इसमें समाहित है। मेरे प्रिय जनों, भगवान को पाने का यही मार्ग है भक्ति का। लेकिन अब भक्ति कैसी हो, ये बड़ी विचित्रता। देखो मध्य बड़ी अद्भुत चीज है। क्या है? इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ का मजा लेना है तो बीच में रहो। दोनों तरफ का मजा लेना है तो बीच में रहो। जैसे पूज्य कवि बिंदु जी हुए, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मध्य का बड़ा आनंद है। राम जी ने भी जब धनुष तोड़ा तो ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, मध्य से तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो ना इधर से तोड़ा ना उधर से, बोले कहां से तोड़ा? मध्य से तोड़ा। और राम जी का अवतार भी जब हुआ तो कब हुआ? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, मध्य दिवस

श्री कौशल्यानंदन दशरथ नंदन भगवान राम श्री सीतापति राम जब प्रकट भए तो वो ना सुबह हुए ना शाम को हुए। बोले कब हुए? बोले दोपहर में हुए, मध्य में हुए। कब हुए? बोलो बोलो बोलो, मध्य में हुए। भगवान मध्य में क्यों प्रकट हुए? तो भगवान बोले भैया इसलिए मध्य में प्रकट हुए, सुबह यदि प्रकट होते तो शाम नाराज हो जाती, शाम को नाराज हो प्रकट होते तो सुबह नाराज हो जाती, मध्य में हुए तो दोनों ही नाराज हैं। लेकिन एक लफड़ा फंस गया, रात हो गई नाराज। जैसे ही राम जी का अवतार हुआ, सूर्य भगवान को पता लगा हमारे कुल में वंश में रघुनंदन राम प्रकट भए, तो सूर्य भगवान एक महीने तक गई नहीं और कोई समझ भी नहीं पाया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा मास दिवस कर मर, मास दिवस का दिवस भा मयम मरम न जान ये कोई। एक महीने का दिन हुआ कोई जान नहीं पाया। अब इतने में रात परेशान, अच्छा रात आए कब? जब सूर्य जाए तो रात आए, दिन जाए तब तो वो बिचारी आए। लेकिन जैसे ही देखा एक महीने तक सूर्य भगवान गए नहीं, रात परेशान रोने लगी। इतने में हवन हुआ, हवन का धुआं हुआ, धुआं से अंधेरा छाया, रात को मौका मिल गया। राम जी के महल में जाकर, जहां राम जी प्रकट हुए थे कौशल्या के भवन में, वहां पर जाकर पलने के पीछे खड़ी होकर रोने लगी। राम जी ने पूछा कौन? उसने कहा प्रभु मैं रात, आई एम नाइट, मैं रात हूं। राम जी बोले तुम क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो? रात बोली रोना तो करें क्या, आपने पूरा मौका दिन को दे दिया, हमें तो दर्शन ही नहीं हो रहे और एक महीने से सूर्य भगवान जा नहीं रहे, आप मध्य में प्रकट भए तो हमें दर्शन ही नहीं हो रहे। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, हम राम अवतार लेकर आए तो दिन में मध्य में आए, लेकिन जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो रात में मध्य लेकर के आएंगे। लेकिन तब भी कब? राम अवतार भी मध्य में हुआ, लेकिन कृष्ण अवतार भी कब हुआ? वो भी मध्य में हुआ, ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बब करण में भगवान श्री यदुनंदन बनकर के प्रकट भए, वो भी मध्य में। और राम जी भी प्रकट कब भए? मध्य में। धनुष भी कहां से तोड़ा? मध्य में। ये आज का सूत्र है, मध्य का मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है, भक्ति का मार्ग। अब इसको उदाहरण से समझो। देखो दुनिया में गुण है तो अवगुण है, सत्य है धर्म है अधर्म है, पाप है तो पुण्य। लेकिन अब हमारा ऐसा मानना, संतों का मानना, गुण अवगुण दोनों हो तो, लेकिन जिसमें गुण ज्यादा हो अवगुण बहुत कम हो उसको देवता कहते। क्या कहते? जिसमें अवगुण ज्यादा हो और गुण बहुत कम हो उसको दानव कहते, लेकिन जिसमें गुण अवगुण बराबर हो उसको मानव कहते। जिसको गुण और अवगुण दोनों बराबर हो, सेम लाइक उसको। अच्छा सोने का वो बनता आभूषण, हम कल जहां रुके थे तो हमारे त्रिपाठी जी के परिवार में हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा, तो उसको उन्होंने बिफोर मनाया, तो हमको गोल्ड का हनुमान जी पहनाया, तो हमने ये पहन करके हम आज सुबह देख रहे थे सोने को, तो हमने एक मित्र से पूछा, हमने कहा क्या प्योर सोना है? बोले नहीं नहीं, प्योर सोने से आभूषण नहीं बन सकता। हमने कहा क्यों? बोले अब वो लचीला होता, 24 कैरेट से कोई आभूषण, उसमें कुछ मिलावट जरूरी। तो हमें बात समझ आई, हमका देखो सोना भी असली हो लेकिन वो आभूषण तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें कोई खोट ना हो, खोट ना हो तब तक वो भी आभूषण। हम आपसे भी यही कहना चाहते, गुण ही गुण भरे रहेंगे तो तुम आभूषण ना बन पाओ, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हम यही कहना चाहते, सत्य और धर्म के आचरण से तुम्हारा जीवन भरा रहना चाहिए और एक कोने में अधर्म पड़ा रहना चाहिए। अधर्म रहे उसकी कोई बुराई नहीं है, आपको उसको बुरा भी ना मानना। कई लोग कहते हमसे बहुत पाप हो गए, हम तो भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, हमें तो भगवान देखेंगे ही नहीं, हम तो बहुत पापी हैं। अरे भाई अधर्म रहे कोई दिक्कत नहीं, पर धर्म का आचरण इतना विराट हो कि अधर्म कोने पे भी पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक कालिख लगी हो, और वैसे भी बालक सुंदर होता तो माँ काला टीका लगा, और लाला गोरा और टीका काला, बालक बालका गोरी पर टीका काला, भाई काला टीका क्यों लगे? नजर ना लगे। ऐसे ही गुण और अवगुण
दोनों के बीच में एक मध्य का मार्ग। आहा, लेकिन ये हमारा जीवन सुंदर बनेगा कैसे, इसके लिए भी संतों ने उपाय बताया। भक्ति मिलेगी कैसी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपाय बताया। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। बोले भक्ति का मार्ग क्या है, बोले भक्ति का मार्ग है भगवान का भजन। क्या है, बोलो बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, तुलसीदास जी भी बहुत चतुर हैं, उन्होंने कहा अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जला। कौन सा दीपक जलाओ, ज्ञान का। लेकिन दीपक जला तो लो, पर एक खतरा है, बुझ जल्दी जाती। जलने में तो टाइम लगता है, पर बुझ हवा चले हो एक सेकंड में बुझ जाता है। जलाने में चाहे दो तीन माचिस की कड़ाई लग जाए तब जलता है, और बुझाने में एक पंखा देता मैं तो बुझ गया। तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हमारा दीपक जल तो जाएगा ज्ञान का, पर जला ही रहे ये। तुलसीदास जी बोले तुम पागल हो जो दीपक जला रहे। बोले फिर, बोले एक दूसरा दिया है। बोले कौन सा, बोले प्लास्टिक वाला, विदेशों में चलता है, वो बुझता ही नहीं, लाइट से यदि जल जाए तो। ये कहा ये कौन सा दिया है, बोले अज्ञान को मिटाने का ये दिया है ज्ञान का दीपक, इसको मणि दीप कहा गया, राम नाम मणि। अच्छा, मणि में न घी लगता न तेल लगता, वो जलती स्वप्रकाशित, वो जलती रहती, उसमें ना घी देखना ना बाती देखना ना तेल देखना। बोले लेकिन जलाना। अच्छा, अब विचित्र बात एक और है। बोले मकान के कमरे हैं दो और दीपक है एक, कमरे हैं दो और दीपक हो एक। अब बताओ, एक कमरे में दिया रखेंगे तो दूसरे में अंधेरा, दूसरे में रखेंगे तो इसमें अंधेरा, और जिसमें अंधेरा रहेगा वहां कहीं सिर लगेगा, कहीं हाथ लगेगा, कहीं घुटने लगेंगे, कहीं गिरा ही पड़ेंगे। अब करें क्या कि दोनों कमरों प्रकाशित हो जाएं, और दिया एक, एक उपाय पूछो क्या, जोर से पूछो, अरे जोर से पूछो, मध्य में, जिसको देहरी कहते। देहरी जानते, दरवाजे की जो चौखट होती उसको देहरी कहते, देहरी, उसको मध्य कहते। तो तुम दोनों कमरों के मध्य में दीपक रख दो, इसमें भी उजाला रहेगा उसमें भी उजाला। तुम्हारे पास भी दो कमरे हैं, अब पूछो कौन से। शरीर रूपी संसार में दो कमरे, एक बाहर एक अंदर। अगर तुम बाहर ज्ञान का दीपक जलाओगे तो अंदर अंधेरा रहेगा, और अंदर दीपक जला लोगे तो बाहर अंधेरा रहेगा। बोले उपाय क्या, बोले मुख पर ज्ञान का नाम का दीपक जला लो, बाहर भी उजाला रहेगा

0: हम लोगों का भी वही हाल है, हम लोग शांति खोजते बाहर हैं, होती अंदर है। हम लोग सुख को होता अंदर है, सुख शांति होती अंदर है, पर खोजते कहां? बाहर। तो तीन अवस्था है। कितनी अवस्था? ध्यान की तीन अवस्थाएं हैं। कितनी? बोलो बोलो, अरे जरा जम के बोलो। एक, आंख बंद करके ध्यान करो। दूसरा, आंख खोलकर ध्यान करो, त्राटक एक टक त्राटक। तीसरा, ना बंद करो ना खोलो, बीच में रखे रहो। ये ध्यान बड़ा गजब का, क्योंकि यदि पूरा खोल करके त्राटक करो, एक टक करो, तो बाहर तो दिखता रहेगा, भीतर नहीं देख पाओ। और केवल भीतर देखने के लिए आंख बंद करो, तो भीतर में तो सब देख पाओगे, बाहर में भीतर नहीं देख पाओ। अब दोनों को देखना उसका मार्ग है, क्या है? जरा जोर से बोलो, मध्य। और यही मध्य मार्ग की पुष्टि भागवत में श्री प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह ने पुष्टि की। भगवान प्रकट भए नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, नाम नरसिंह। भगवान प्रकट भए, प्रहलाद जी सामने खड़े, भगवान के सामने प्रहलाद जी के सामने भगवान नरसिंह गए। जाकर के प्रहलाद जी के सामने खड़े होकर के भगवान ने कंधे पर हाथ रखा और प्रहलाद से कहा, हमें माफ कर दो। दुनिया के पहले परमात्मा, ऐसा ब्रह्म भला कौन होगा जो भक्त से कहे हमें माफ कर दो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु ऐसी बातें क्यों करते? भगवान बोले, हमारे आने में देरी हो गई, हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। इतने कष्ट तुमको पाने पड़े, इतनी पीड़ा तुमको पानी पड़ी पिता से, इतना कष्ट पाना पड़ा, भगवान के सब हमें माफ कर दो। प्रहलाद, प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप आ गए, यही बहुत। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे ताई अहिर की छोरियां छचियावर छाच पे नाच नचावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपका चिंतन करते, तब भी आप उनके चित्त में नहीं उतरते और हमारे सामने चरित्र में उतर गए हैं, तो ये क्या कम है? ये कम थोड़ी है, ये तो बहुत है। फिर भी भगवान, वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सकल संसार को अपनी उंगलियों पर चलाने वाला ब्रह्म है, अग्नि त्रविशिशि चतुरानन बहुगिरी शरद सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव स्वयं देखा जो सुनाना काऊ, ऐसा ब्रह्म जो सारे संसार को चलाने वाला पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, वो शक्तिमान ब्रह्म भी अपने भक्त से क्या कह रहा, हमको माफ कर। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आके कहते, प्रभु ऐसी बातें मत करो। प्रहलाद जी को अंक में गोद में भर लिया, अंक में बैठा लिया, गोद में भगवान ने प्रहलाद को बैठाया और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मांगो कुछ। प्रहलाद जी बोले, अब हम क्या मांगे? नासा भक्तिया सा वही बड़ी, जो मांगता है भक्ति में वो बिजनेसमैन है, पक्का बिजनेसमैन।
1: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए रामबाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
17: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
21: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
22: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
21: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
22: Remember, around here, we use the F Word,
21: never the S Word.
0: The S Word, available now on TuneIn, wherever you get your podcasts, and on the S Word YouTube channel.
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
23: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
27: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
23: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
6: चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। कल 4000 से ज्यादा भक्तों ने लिया बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। शनिवार को 18 से 27 लोगों ने पवित्र धाम में टेका मत्था। इस साल अब तक 1,91,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं को सराहा। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब। तो वहीं संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़। होटल में घुसा पानी, प्रशासन ने संभाले हालात, पर्यटकों को बाहर निकाला गया। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना सुचोवा को हराया। तो वहीं 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोमवोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्किमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संभाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संभाग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संभाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संभाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट से, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25-40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60-80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड, एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है, एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर भूगोल भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहाँ पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: उन्नीस सौ अस्सी के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर और लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजीशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। आईएनएस जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
7: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: Right fields and it will
7: from the first pitch of the season to the stretch run.
8: That's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
0: बीते कुछ सालों में चीन ने मालदीव को करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया, इनमें से ज्यादातर कर्ज आर्थिक विकास और निर्माण क्षेत्र के लिए ही दिया गया है।
2: हिंद महासागर और अरब सागर से सटे तमाम ऐसे देश जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर चीन ने अपनी कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिस वजह से ये देश कहीं ना कहीं चीन के गुलाम भी बनते जा रहे हैं, लेकिन ये भारत की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा किया है, इसको अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया है, और ये भारत के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी नौसैनिक ताकतों को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लेकर युद्धपोतों तक को इसमें शामिल किया है, और साथ ही साथ हमारे तटरक्षक बलों को भी अत्याधुनिक साजो सामान से पूरी तरह से लैस किया गया है, ताकि समुद्री सीमा में भी चीन का मुकाबला किया जा सके।
0: लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर का है। अरब सागर में करीब 30,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। अरब सागर की सीमा यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, भारत और मालदीव को छूती है। ये एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो कई अहम शिपिंग लेन और बंदरगाहों को जोड़ता है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये बहुत अहम रास्ता बन जाता है। अरब सागर में जहाजों की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए लक्षद्वीप समूह का इस्तेमाल ही किया जाता है। समंदर में भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आकार बहुत विशाल है और इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है। लक्षद्वीप की वजह से भारत को समंदर के बड़े इलाके पर अधिकार मिल गया है, जिससे दूर दूर तक गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। लक्षद्वीप के पर्वतीय द्वीप पर भारतीय नौसैनिक अड्डा है, और इसके साथ ही भारत के पास अब INS जटायु के तौर पर लक्षद्वीप पर एक और मजबूत नेवल बेस भी तैयार हो चुका है, जिससे चीन का मुकाबला करने के लिए बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
1: लक्षद्वीप भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन 400 किलोमीटर पश्चिम में है और 36 आइलैंड है, 4200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका लगूंस का एरिया बनता है। और जब हम 200 मील के नॉटिकल मील का जब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोड़ते हैं तो 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मिलता है, जिसमें भारत के फिशिंग राइट्स रहेंगे, जिसमें हमारे शिपिंग राइट्स रहेंगे, जहां पर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं। यानी कि भारत के लिए लक्षद्वीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है।
0: भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। इसमें केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का एक बड़ा केंद्र है।
2: कोची केरल का अहम बंदरगाह है और ये सीधे सीधे लक्षद्वीप के साथ भी सटा हुआ है। हिंद महासागर और अरब सागर में स्थित ये इलाका बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। दरअसल आज की तारीख में ही नहीं, अगर हम प्राचीन काल से देखें तो ये कहीं ना कहीं तमाम जहाजों की आवाजाही का एक मेन पोर्ट रहा है।
0: केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है, जहां सैटेलाइट प्रक्षेपण यान और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और उनका विकास किया जाता है। इसीलिए इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप समूह पर भारत की सामरिक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है।
2: लक्षद्वीप समूह की भौगोलिक स्थितियां दरअसल भारत के लिए चिंता पैदा करती हैं। लक्षद्वीप मालदीव से बेहद करीब है, करीब करीब अंदाजा लगाया जाए तो 100 मील की दूरी पर है। और मालदीव जिस तरीके से हाल फिलहाल में चीन के इशारों पर चल रहा है, ऐसे में भारत को लक्षद्वीप और खासतौर पर इसके आसपास के इलाकों में अपनी ताकत को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन और मालदीव दोनों को जवाब दिया जा सके।
0: चीन के प्रभाव में तो मालदीव है ही, वहाँ चरमपंथी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ साथ मजहबी कट्टरपंथ का निर्यात भी इन देशों से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों से ISI में जिहादी भर्तियों का सबसे बड़ा आंकड़ा भी मालदीव से ही रहा है। मालदीव के सैकड़ों द्वीप निर्जन हैं और वहां चरमपंथी ताकतों के मजबूत होने का खतरा बना रहता है, जिसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा है।
1: ये देखा जाए तो बहुत अफसोस की बात है कि आज मालदीव में चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया है, और जिसका कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, और वहां के लोकल लोगों को भी ये समझना चाहिए, जो आवाज

0: करीब 900 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर वॉरशिप, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स, सर्वे एंड रिसर्च वेसल्स को हिंद महासागर में भेजा है। पिछले 5 साल का अगर डेटा देखें, 2019 में चीन के 29 जहाज हिंद महासागर में घूमते पाए गए। साल 2020 में आंकड़ा बढ़कर 39 हुआ। अगले ही साल यानी 2021 में 45 चीनी जहाजों ने हिंद महासागर में डेरा डाला और फिर साल 2022 में 43 जहाज फिर से इंडियन नेवी की जासूसी के लिए हिंद महासागर में चक्कर काटते नजर आए। 15 सितंबर 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में 28 चीनी जहाजों का दौरा हो चुका है। रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन हिंद महासागर में भारतीय नेवी की जासूसी करता है। चीनी शिप में दूर से छिपकर बातों को सुनने वाले उपकरण लगे हैं और इनकी मदद से जहाज में सैकड़ों किलोमीटर दूर से हो रही बातचीत को भी सुना जा सकता है।
1: देखा जाए तो खबर आती रहती है कि चाइना के जहाज बार बार इंडियन ओशन में हिंद महासागर में घूमते रहते हैं, कभी श्रीलंका के पास जाते हैं, कभी मालदीव की तरफ जाते हैं। जब हमारा मिसाइल प्रशिक्षण होता है तब वो वहां पर डिप्लॉय हो जाते हैं, निगाह रखते हैं या हमारी नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखते हैं। एक तरह से चाइना की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है, वो लगातार अपनी इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत किस प्रकार से अपना सुरक्षा तंत्र बढ़ा रहा है इसके ऊपर भी वो नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कोची से 650 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कारवार नौसेना बेस पर प्रोजेक्ट सी बर्ड देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करना है। पड़ोसी देशों के ज्यादातर लड़ाकू विमानों की पहुंच से बाहर है और फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों के बहुत करीब स्थित है। INS कदम्बा भारतीय नौसेना का एक कंबाइंड रणनीतिक नौसेना अड्डा है जो भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक में कारवार के पास बेनगा खाड़ी में स्थित है। ये मौजूदा समय में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है। हिंद महासागर में ही बसा है अंडमान निकोबार और ये मलक्का स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से में है, या कहें कि ठीक उत्तर में अंडमान निकोबार ही आता है। दरअसल ये ऐसा इलाका है जो समुद्री जहाजों की आवाजाही के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इलाका काफी संकरा भी है। चीन की टेंशन यहीं से शुरू होती है। इलाका संकरा होने की वजह से अगर भारत यहां पर बढ़त बना लेता है तो कभी भी चीन और भारत के बीच अगर टेंशन होती है तो यहां से जहाजों की आवाजाही पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अंडमान निकोबार कमान भारत में एकमात्र ट्राइड सर्विस थिएटर कमान है जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के साथ देश के थिएटर कमान के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। यहीं से मलक्का स्ट्रेट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमान दरअसल एक ऐसी प्रणाली है जो कि जल, थल और नभ तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाती है। तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से एक साथ रण क्षेत्र में उतर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर भी कोई किसी के साथ संपर्क में न भी रहे तब भी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इसका मकसद भी सीधे तौर पर यही है। एकीकृत थिएटर कमान बनाने के पीछे सोच ये है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो युद्ध की स्थिति में उनका प्रदर्शन कई गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है। फिलहाल भारत में 3 से 4 थिएटर कमान बनाने पर विचार किया जा रहा है और हर कमान का नेतृत्व एक 3 सितारा अधिकारी को सौंपने की बात हो रही है। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल 3 सितारा अधिकारी होते हैं। इस योजना के तहत हर थिएटर कमांड के पास तीनों बलों के संसाधन होंगे और इन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार थिएटर के कमांडर के पास होगा।
2: अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक भारत अपनी सैनिक ताकत में और ज्यादा इजाफा कर रहा है, अपनी नौसेना को अत्याधुनिक बना रहा है। इतना ही नहीं, मॉरिशस के अगले द्वीप को भी भारत विकसित कर रहा है। दरअसल लक्षद्वीप से

0: लेकर अगले द्वीप तक भारत एक संपर्क बिंदु बनाना चाहता है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में सामरिक तौर पर भारत को बढ़त हासिल हो सके।
1: चीन खुद को नई महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस तनातनी के चलते हिंद महासागर में चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। चीन ने 2017 में जिबूती में एक नौसैनिक अड्डा बनाया था। जिबूती में अमेरिका, फ्रांस और जापान सहित 8 देशों के नौसैनिक अड्डे हैं। चीन अपनी सामरिक रणनीति के तहत म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव समेत हिंद महासागर से जुड़े देशों में सक्रियता बढ़ा रहा है। चीन ने तंजानिया के बागामोयो में एक कमर्शियल पोर्ट तैयार करने की योजना बनाई है। शक जताया जा रहा है कि वो वहां नौसैनिक अड्डा बना सकता है। साथ ही चीन ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसकी बदौलत वो भारत की घेराबंदी कर सके, और इसके लिए चीन पड़ोसी देशों को साध रहा है। उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर अपने इशारे पर नचाने को मजबूर करता है। चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर रहा है। अब ये क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये भी समझा देते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चीन के ऐसे नेवल बेस की चेन है जिससे वो भारत को घेरने की कोशिश में जुटा है। साजिश की इस माला की शुरुआत जिबूती से होती है, जहां चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया। इस माला का दूसरा मोती है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जहां चीनी फौज तैनात है। वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल की लीज पर लिया है। बांग्लादेश के चटगांव में भी चीन ने अपना बंदरगाह विकसित कर लिया है। वहीं म्यांमार के ख्वाकवो बंदरगाह में भी चीन की मौजूदगी खतरे का सायरन है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन अपने कमर्शियल समुद्री सुविधा के लिए करता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर कर सकता है।
2: चीन एक विस्तारवादी देश है, हमेशा से इसकी ये चाहत रहती है कि अपने बॉर्डर्स इंक्रीज करे, दूसरों की सीमाओं में जाए और अपनी सीमाओं में उनको मिलाए। चाइना का इंडियन ओशन में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वो भारत को नॉर्दर्न बॉर्डर से तो हम सब जानते हैं, और डोकलम के बारे में हमने सुना है, और हमने जो लद्दाख में देखा वो सब हम जानते हैं। चाइना का वॉर भी हमने देखा है, पर इंडियन ओशन की तरफ से ये जो नया प्रहार है, जो हमें घेरने की कोशिश है, चाहे वो बांग्लादेश में चिटगांव हो या फिर हम्बनटोटा हो श्रीलंका में, या फिर ये जो ग्वादर पोर्ट हो कराची के पास, इन सबों को मिला के वो चाहता है कि अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाए पोर्ट्स एंड हार्बर्स में अपनी, या जिबूती में उसका जो देखते हैं नेवल बेस जो बन रहा है, अफ्रीकन कोस्ट में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो यहाँ से वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है इंडियन ओशन को, भारत को प्रभाव में लाना चाहता है और इन देशों के साथ जुड़कर एक स्ट्रिंग जो उन्होंने बनाया है जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कर रहे हैं। साथ साथ वो जो मैरिटाइम सिल्क रूट है उसको भी वो इनर्जाइज करके चाहता है कि वो इन जगहों को जोड़ें और यहां से अपनी शक्ति को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें अपनी नौसेना के प्रभाव को।
1: चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के जवाब में भारत अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें एक्स ईस्ट पॉलिसी के तहत सैन्य और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही बंदरगाहों के निर्माण से लेकर सैन्य और नौसेना संबंध को बढ़ावा भी देना है। भारत की इसी बहुआयामी रणनीति का उद्देश्य चीन को जवाबी तौर पर घेरने का है।
0: नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के तहत भारत लगातार अपनी समुद्री बंदरगाहों को विकसित कर रहा है, और इसी के साथ साथ निगरानी प्रणाली को भी इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में अगर कहीं भी चीनी पनडुब्बियों या जहाजों की मूवमेंट होती है तो उसे तुरंत ट्रैक किया जा सके।
1: भारत एशिया के कई देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक बेस का विस्तार भी किया जा रहा है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर, इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट, सुशेल्स का अजम्पशन आइलैंड, ओमान का दुकम बंदरगाह, ईरान का चाबहार पोर्ट बेहद अहम है। साल 2018 में भारत ने सिंगापुर के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया था, जिसके बाद चांगी नेवल बेस का भारतीय नौसेना के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया। यहां भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ रिफ्यूलिंग के लिए चांगी बेस का इस्तेमाल कर सकता है। साल 2018 में ही भारत को दुक्कम बंदरगाह के इस्तेमाल की परमिशन मिली। यहाँ भारत को नेवल एक्सेस है। ग्वादर और जिबूती के बीच मौजूद होने की वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। सुशेल के अजम्पशन आइलैंड पर भारतीय नौसेना का एक्सेस मौजूद है। इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट के जरिए मलक्का स्ट्रेट पर भारत की मौजूदगी बढ़ जाती है। वहीं वियतनाम, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ अपना नेवल कॉर्पोरेशन भी भारत ने बढ़ाया है।
2: नेकलेस ऑफ डायमंड एक स्ट्रेटजी है जो भारत को चाइना के इंडियन ओशन के प्रेजेंस के विरुद्ध अपनी एक नीति देता है, और ये नीति एक तरह से भारत का दूसरे विश्व के साथ एक कोलैटरल कोलैबोरेशंस, चाहे वो इंडियन ओशन में हो या चाइना के चारों तरफ से, साउथ से इंडिया है ही और एक तरफ से फिर ईरान में चावार पोर्ट का निर्माण या हमारे ओमान पोर्ट में, दोकम में पोर्ट में हमारा जो सामंजस्य बना है 2015-16-17-18 में, ये सारे डेवलपमेंट हुए प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में के साथ, ये सब देशों का दौरा हुआ और फिर पहली बार भारत का प्रधानमंत्री मंगोलिया गया तो नॉर्थ में भी चाइना को घेरा गया और फिर जापान के बेस में या सवांग में, इंडोनेशिया के बेस देखें या हम वियतनाम की बात करें, इन सब जगहों पे हमने अपना नेवल बेस और एयर कॉरिडोर भी स्थापित किया है ताकि हम एक जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी की तहत चाइना को इनसर्किल कर सकें और मिलजुल कर एक सहयोग के साथ चाइना को साउथ चाइना सी में या दूसरे जगहों पे हम काउंटर कर सके ताकि उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है उसका अच्छी तरह से काउंटर मेजर हो सके और चाइना को एक अच्छा करारा जवाब जरूरत पड़ने पर मिलते रहे।
1: भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। इंडियन नेवी ने वक्त के साथ अपनी क्षमताओं को काफी विकसित किया है। बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाया है। सेना को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत न केवल युद्धपोतों के माध्यम से बल्कि समुद्री टोही विमानों के जरिए भी हिंद महासागर में अपनी निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना से मुकाबला करने की हिमाकत कोई नहीं करता।
0: रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: We've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन। हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। पुरी में गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में, मंदिर के जीर्णोद्धार और ढांचागत मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है पूरा। वीकेंड पर 4,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। पुणे में भी दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए निकले हजारों भक्त। विंबलडन के महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा में हम वतन कैरोलिना मोचोवा को हराया। 21 साल की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम जीता।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं अगर वो घर शुभ हो, उस घर की तरंगें अच्छी हों, तो उस घर में रहने पर आप उन्नति करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका घर कितना शुभ है, कितना मंगलकारी है, और आपको लग्न के अनुसार बताएंगे कि आपके घर में कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और उनको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। जीवन में अगर प्रेम बढ़ाना हो, जीवन में किसी टूटते रिश्ते को बचाना हो, किसी संबंध को बेहतर करना हो, तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है। नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से करिए। जिस रिश्ते को, जिस संबंध को बचाना है, जहां पर मधुरता लानी है, वहां पर इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता क्यों ना टूट रहा हो, अगर इस मंत्र का निरंतर आप रोज प्रातः काल जप करें तो रिश्ते में माधुर्य बढ़ेगा और रिश्ता टूटने से बच जाएगा। देखिए, ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि ग्रह शुभ है, ग्रह अशुभ है, या ये कहते हैं कि आपके कर्म शुभ हैं या कर्म अशुभ हैं। क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं? और अगर घर शुभ या अशुभ होते हैं तो इनका प्रभाव क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं, ज्यादा या कम मात्रा में हर चीज के अंदर तरंगे होती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि आपके कपड़ों में, आपकी वस्तुओं में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। ये तरंगे शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। जब कहीं पर नकारात्मक तरंगे ज्यादा हो जाएं, जब अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। ऐसे अशुभ मकानों में, ऐसे अशुभ जगहों पर रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा समय ठीक चल रहा है, मेरी दशा ठीक चल रही है, लेकिन जीवन में कुछ शुभ नहीं हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि जिस मकान में, जिस घर में वो रहते हैं, वो अशुभ होता है, वहां की तरंगे अशुभ होती हैं और वो जीवन में शुभता नहीं लाने देती।
ये जो अशुभता है कि आपका घर शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने घर में, अपने रिहाइश में, तो अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने जमीन की अशुभता को, नकारात्मक तरंगों को महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अशुभता है, अगर आपके घर में अशुभ तरंगे इकट्ठा हो गई हैं, तो वो मकान, वो जमीन अशुभ हो जाती है, और वहां रहने पर कुंडली के शुभ योग भी बहुत काम नहीं कर पाते हैं। अब ये जानते हैं कि जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनसे मकान कैसे शुभ या अशुभ हो जाता है। देखिए, आम तौर पर जैसा लोगों का मानना है कि पूरब और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पूर्व दिशा के मकान और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं होते। देखिए, ऐसा है नहीं। हर दिशा अपने आप में पवित्र है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका मकान पूर्व दिशा का है, पूरब मुखी अगर आपका मकान है, तो पूरी तरह से सात्विक रहिएगा। पूर्व दिशा का मकान अत्यंत पवित्र मकान है, ऐसे मकानों में सामान्यतः मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ऐसे मकान में पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। अगर मकान पश्चिम दिशा का है, वेस्ट साइड का है, तो मकान में, घर में लकड़ी का प्रयोग कम करें, अन्यथा लकड़ी खराब होगी, दीमक लगेगी और घर में नुकसान होगा। तो अगर पश्चिम दिशा का मकान है, तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है, तो आग और बिजली के उपकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में जहां पर खाना पकाते हैं, फायरप्लेस है, आग वाली चीजें हैं, वहां पर ध्यान रखिए, और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिए अगर उत्तर दिशा का मकान है तो। दक्षिण दिशा का अगर मकान है, तो वहां पर सीलन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, और दक्षिण दिशा के मकानों में गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि

लेंगी, घर में उन्नति नहीं होगी। एक बात और समझिए कि घर के जो मुखिया हैं उनकी कुंडली के हिसाब से मकान होना चाहिए। जैसे अगर घर की मुखिया के कुंडली में मंगल अच्छा है तो दक्षिण दिशा का मकान आप ले सकते हैं। घर के मुखिया की कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो पश्चिम दिशा का मकान लिया जा सकता है। यानी घर का डायरेक्शन क्या होगा ये घर के मुखिया की कुंडली से देखेंगे तो लाभ ज्यादा होगा और घर का फायदा आप ज्यादा उठा पाएंगे। तो एक चीज हो गई घर की दिशा, वो घर में शुभता और अशुभता पैदा कर सकती है। अब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है और सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह की अशुभता जीवन में पैदा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है उन घरों में बीमारी और अशुभता बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है। लेकिन जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पर अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में बीमारियां जरूर आती हैं और छोटे से लेकर बड़े लोग बीमार रहते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर घर में नहीं आएगा तो ऐसे घर में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में निगेटिव एनर्जी अगर इकट्ठा होती है तो वो निकल नहीं पाती, निगेटिव एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए भय का और नकारात्मकता का अनुभव होता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आया और आपने घर में दुनिया भर के उपाय कर रखे हैं, कोई उपाय काम नहीं करेगा। घर में सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आना जरूरी है क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में आएगा तो घर में नकारात्मकता इकट्ठा नहीं होगी। अब अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो कौन सा उपाय करना चाहिए? घर में शीशा लगाकर शीशे की सहायता से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए या घर में ऐसा सुधार करिए जिससे थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आने लगे। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख जरूर बजाइए ताकि नकारात्मक तरंगे हट जाएं। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा।
बोल बोल कर रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और घर में लोहे का सामान कम से कम रखिएगा। अगर इतना करने के बावजूद भी घर की अशुभता नष्ट नहीं हो रही है, घर की अशुभता में कमी नहीं आ रही है, तो घर बदल दीजिएगा। बेहतर होगा एक शीशा ऐसा लगाएं जिससे रिफ्लेक्ट होकर घर में सूर्य का प्रकाश आए, या दीवार में खिड़की बनवाएं, रोशनदान बनवाएं। ऐसा करने से भी घर में सूर्य का प्रकाश आएगा, और जब किसी घर में सूर्य का प्रकाश आता है वहां अशुभता बहुत समय तक नहीं रह पाती है। तो घर की दिशा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब जो आप अपने घर में कलर का प्रयोग करते हैं, जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उन रंगों से किस तरह से अशुभता पैदा होती है, देखिए। घर में अगर आपने गलत जगह पर गलत रंग का प्रयोग किया है तो इससे आपकी किस्मत खराब हो सकती है, क्योंकि रंग जो हैं वो तरंग तो पैदा करते ही हैं। ये आपके सोच को, दिलो दिमाग को प्रभावित करते हैं। तो घर में गलत रंगों के प्रयोग से आपकी किस्मत खराब हो सकती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में आपने बैलेंस करके अगर रंग नहीं लगाए हो, तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। घर में रहने वाला इंसान निगेटिव सोचता है, उसकी सोच में दिक्कतें आ जाती हैं। गाढ़े रंगों का अगर आप अपने घर में प्रयोग करें, बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें, या बहुत ज्यादा भूरे रंग का, काले रंग का प्रयोग करें, तो ऐसे घर में रहने पर जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा रंग, लाल रंग, गाढ़ा हरा रंग नौकरी में समस्याएं बढ़ा देता है। और अगर आपने अपने घर में ब्राउन कलर का, भूरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल

किया है तो इसकी वजह से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। यानी आपके घर में कौन सा स्थान किस रंग का होना चाहिए ये समझना आपके लिए जरूरी है, और अगर आप सही रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। क्या उपाय करें, घर के रंगों को कैसे बेहतर करें? घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें, लाइट और ब्राइट शेड के रंगों का प्रयोग करने से लाभ होगा। घर की छत का रंग हमेशा आपको सफेद रखना चाहिए। घर की छत का रंग अगर सफेद रखेंगे तो अच्छा होगा। घर में ज्यादातर सफेद रंग का और हल्के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने घर में गलत रंग लगाए हुए हैं तो उसको बदलिए। पहले वहां सफेद रंग लगाइए और इसके बाद जो रंग चेंज करना है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग करें। मेन डोर पर काले रंग का दरवाजा, काले रंग का गेट ना लगाएं, वाइट या क्रीम कलर का प्रयोग करें। मुख्य गेट को आप हल्का ब्राउन रख सकते हैं, लेकिन मेन डोर का रंग भूल कर भी काला नहीं होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जो लोग घर में रहते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं उससे किस तरह की अशुभता पैदा होती है। देखिए, अगर घर में बुरे स्वभाव के लोग हों, बुरी आदत वाले लोग हों, तो घर में अशुभता पैदा होगी। घर में चीख चिल्लाहट मचती हो, क्रोध में झगड़े होते हों, घर में मदिरा पान किया जाता हो, यानी बुरी आदतें हों, तो ऐसे घर में अशुभता आएगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो तो घर में अशुभता आएगी। घर में गलत तरीके से पैसा आएगा तो वो पैसा बीमारियां और कष्ट अपने साथ ले आएगा और इसमें आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, किसी ने सुसाइड किया हो या सडन डेथ हो गई हो, तो घर में इसकी वजह से भी अशुभता पैदा होती है अगर इसका उपाय ना किया जाए। और अगर घर के लोगों की वजह से, लोगों के स्वभाव की वजह से अगर घर में अशुभता पैदा होती है तो ऐसी दशा में घर में धीरे धीरे दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगता है और घर में बच्चे बीमार रहने लगते हैं, उनके अंदर अजीब आदतें आ जाती हैं और घर इतना ज्यादा अशुभ हो जाता है कि घर में अकेले रहने पर डर लगता है या घर में कोई है ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो मुख्यतः
घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आदतों से, उनके खान पान से, उनके स्वभाव से घर में अशुभता पैदा हो सकती है। इसलिए घर में रहने वाले लोगों को अपने आचरण का, अपने जीवन का बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? गलत और बुरे कामों से तौबा करिए। गलत काम, अशुभ काम, बुरे काम मत करिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे को काटने का या एक दूसरे के खिलाफ राजनीति का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। ऐसा पैसा जैसे आएगा वैसे जाएगा। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड किया है या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है, तो पूरे घर की सफेदी करवाइए और एक महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करवाइएगा। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करिएगा और उसकी नियम पूर्वक रोज पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि आप बाकी सारी चीजों के उपाय कर सकते हैं, दिशाओं का, घर में रहने वालों का, घर के रंगों का, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए रोशनदान निकलवा के, खिड़की निकलवा के, शीशा लगाकर ऐसी व्यवस्था जरूर करें जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे। देखिए, अलग अलग लग्न के लोगों की, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं, अलग अलग लग्न के लोगों की कुंडली में संपत्ति की स्थिति अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से उनके घर की समस्याएं होती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि किस लग्न के व्यक्ति के जीवन में घर में किस तरह की समस्या होती है और इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। इनके घर में आम तौर पर सफाई की और पौधों की समस्या होती है। इनके घर में साफ सफाई बेहतर नहीं होती। बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उस चक्कर में घर में गड़बड़ियां होती हैं। इसीलिए मेष लग्न वाले अपने घर में सोच समझकर पौधे लगाएं, उल्टे सीधे गलत पौधे ना लगाएं और घर को अगर साफ सुथरा बनाए रखें तो आपके घर की शुभता बढ़ेगी और उस घर में रहने पर आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के घर में आम तौर पर सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होती है, गड़बड़ी होती है उसमें, क्योंकि ये अपना घर बहुत अच्छा तो बना लेते हैं,
सजा लेते हैं, रंग पे ध्यान दे लेते हैं।

वास्तु पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की समस्या इनके घर में आम तौर पर रहती है। सूर्य के प्रकाश की दिक्कत इनके घर में पाई जाती है, इसीलिए आप देखेंगे कि वृषभ लग्न वालों के घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो घर में पर्याप्त रोशनी की और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, चाहे खिड़की तोड़कर, चाहे रोशनदान तोड़कर, चाहे शीशा लगाकर अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर की शुभता बढ़ेगी। मिथुन लग्न, इनके घर में बेवजह का सामान भरा रहता है, अनावश्यक कूड़ा कबाड़ क्लटर ये भर करके अपने घर में रखे रहते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी जूता नहीं हटाएंगे पुराना, जरूरत नहीं है फिर भी पुराने कपड़े नहीं हटाएंगे, तो इनके घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है। देखिए, अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो घर में व्यर्थ के सामान मत भरिए। वायु का वेंटिलेशन, एयर का वेंटिलेशन ठीक रखिए, घर में हवा पानी ठीक से आती रहे, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। क्योंकि अगर आपका मिथुन लग्न है और आप अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करेंगे, आपका ज्यादातर पैसा उधार बांटने में और बीमारी में खर्च होगा। कर्क लग्न, इनके घर में बाथरूम का मामला गड़बड़ होता है, बाथरूम में टाइल टूट जाएगी, बाथरूम में पानी टपकता रहेगा, ये लगातार घर की साफ सफाई करते रहते हैं लेकिन घर में गंदगी बनी रहती है। तो कर्क लग्न वालों के बाथरूम का और सफाई का मामला आम तौर पर गड़बड़ होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो घर में बाथरूम में पानी का ध्यान दें कि बेवजह पानी बर्बाद ना हो, और बाथरूम का फर्श टूट गया, टोटी खराब हो गई, उसको बदलवाइए और अपने घर में सफाई रखिए। बाकी लोगों से भी कहिए कि आपको सफाई रखने में वो सपोर्ट करें, मिल करके घर को साफ सुथरा रखें, बहुत अच्छा होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के घर में प्रकाश की व्यवस्था अक्सर गड़बड़ रहती है, किसी कोने में बल्ब फ्यूज हो गया, कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं घर का कोई हिस्सा पूरी तरह से अंधेरा है, ऐसा भी सिंह लग्न वालों के साथ देखा गया है। देखिए, अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो बिजली का और प्रकाश का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, बिजली बिल्कुल ठीक हो और बिजली की फिजूल खर्ची ना करें। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के घर का मेन डोर गड़बड़ होगा। 90% मामले में देखिएगा कि कन्या लग्न वालों का घर बड़ा शानदार होता है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन इनका मेन डोर गड़बड़ होता है। मुख्य द्वार या तो टूटा रहता है या मुख्य द्वार का

ये काला करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कन्या लग्न वालों के घर के मुख्य द्वार में गड़बड़ी पाई जाती है। जो कन्या लग्न के लोग हैं, इनको अपने घर के मुख्य द्वार का और वाहन की पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से और संपत्तियां बना पाएंगे, जीवन में और धनवान बन पाएंगे। अब जानते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के जो लोग हैं, इनके घर में क्या दिक्कत होती है? इनके घर में बेवजह के झगड़े बहुत होते हैं। छोटी छोटी बात पर घर में कलेश होता है, विवाद होता है, और रसोई इनके घर में गड़बड़ होती है। रसोई की दिशा ठीक नहीं होती, इस वजह से तुला लग्न वालों के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो घर में शांति बनाए रखिए और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दीजिए। पूजा उपासना पूरी करिए। रसोई में खाना बनाते समय बहुत ध्यान दीजिए, आपका चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। घर में शांति रखिए, रसोई को साफ सुथरा रखिए, खाना बनाते समय पूरब या उत्तर की तरफ चेहरा रखिए, तो निश्चित रूप से आपके घर की अशुभता दूर हो जाएगी। वृश्चिक लग्न, इनके घर में अक्सर पानी की गड़बड़ी रहती है। पानी बेवजह का बहता है, बेवजह का पानी वेस्ट होता है, और घर में सीलन भी रहती है इनके, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो घर में पानी की स्थिति पर और सीलन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में पानी की सिचुएशन ठीक रखें, पानी की बर्बादी ना करें और अपने घर में सीलन से घर को बचाइएगा। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अक्सर खराब होते हैं। अक्सर इनके घर में बिजली की समस्या होती है। अक्सर इनके घर में रसोई की समस्या भी पाई जाती है। अगर आपका धनु लग्न है तो घर की वायरिंग पर, बिजली के फिटिंग पर, बिजली के उपकरणों पर और रसोई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु लग्न वालों के घर में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है। और धनु लग्न वाले ये भी जान लें कि आपके घर में बिजली के सामान जो खराब होते रहते हैं, उसकी वजह से पैसे की बर्बादी बहुत होती है। तो घर की वायरिंग ठीक रखें और अपने घर की रसोई पर विशेष ध्यान देंगे। मकर लग्न, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है। गाढ़ा रंग करवा लेंगे, किचन में गुलाबी करवा लेंगे, बेडरूम में पीला करवा लेंगे, उल्टे सीधे रंग उल्टी सीधी जगह पे लगवा लेते हैं। इसकी वजह से मुश्किल होती है, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है और प्रकाश की कमी रहती है। घर में अक्सर अंधकार महसूस होता है। इनको अपने घर में सही रंगों पर ध्यान देना चाहिए। खिड़की दरवाजे ऐसे रखने चाहिए जिस

से नेचुरल प्रकाश सूर्य का प्रकाश घर में आता रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर की अशुभता दूर होगी और घर की स्थितियां बेहतर होंगी। कुंभ लग्न, इनके घर में सफाई की समस्या होती है।

0: स्थितियां बेहतर होंगी। कुंभ लग्न, इनके घर में सफाई की समस्या होती है, अक्सर घर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है और घर की चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, एक जगह पर नहीं रह पाती, घर में अव्यवस्था रहती है और सफाई की समस्या भी रहती है। इनको घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। आपका पैसा बीमारियों में बेवजह बांटने में खर्च नहीं होगा। मीन लग्न वालों के घर में एक तो पानी बेवजह टपकता बहुत है, पानी बेवजह बर्बाद बहुत होता है और सूर्य का प्रकाश इनके घर में आम तौर पर नहीं आता, जिसकी वजह से घर में बीमारी भी होती है, पैसे की बर्बादी भी होती है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें, खिड़की निकलवा के, रोशनदान लगवा के, शीशा लगवा के, जैसे भी संभव हो सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें और पानी की बर्बादी से बचिए। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं और पानी की बर्बादी करने वाले के पास पैसा कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं बचेगा, पैसे की बचत को लेकर परेशान रहेंगे। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
3: Today, achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
10: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति, सफर होगा आसान। यूपी में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आज रोपे जा सकते हैं 35 करोड़ पौधे, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण और प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन, हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। पुरी में गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में, मंदिर के जीर्णोद्धार और ढांचागत मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है पूरा। शानदार मौसम के बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं भक्त, कुदरत के नजारे भी कैमरे में कर रहे हैं कैद। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे मेसी की टीम अर्जेंटीना, तो वहीं एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: बद्रीनाथ धाम के पास बादल और धुंध के बीच खूबसूरत प्राकृतिक नजारा, पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। शानदार मौसम के बीच भक्त कर रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन, कैमरे में भी कैद कर रहे हैं शानदार नजारा। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर बह रही है नदी। बादलों से घिरे नजर आ रहे हैं चमोली के पहाड़, दूर दूर तक दिख रही है बारिश की फुहार। बद्रीनाथ में 11 जुलाई को 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लिया भगवान का आशीर्वाद, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। ओडिशा में रथ यात्रा को भव्य और सुरक्षित बनाने की पूरी तैयारी, यात्रा मार्ग के साथ मंदिर परिसर की भी सजावट।

0: पुणे में दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर निकले भक्त। पुणे से दिवे घाट पार करते हुए सासवड़ की ओर बढ़े श्रद्धालु, ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ पंढरपुर पहुंचेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने शुरू की तैयारी, अधिकारियों ने शिविर और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। पूरी में रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन, एनडीआरएफ पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने लिया हिस्सा। पूरी रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील जगहों पर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की परखी गई तैयारियां। यूपी में आज पर्यावरण का महाकुंभ रचा जा रहा, एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ किया, एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित हुआ ये महाअभियान। आम जनता से लेकर वीआईपी तक पौधारोपण महाअभियान में शामिल, वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश के 26 सरकारी विभाग इस महाअभियान को सफल बनाने में जुटे। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पौधारोपण किया, लोगों से महाअभियान से जुड़ने की अपील की। अहमदाबाद में मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ किया गया, गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण करके शुरुआत की। मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की सौगात, सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 982 परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन समारोह में सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। 81वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण में हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने भी हिस्सा लिया, लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया। कोटद्वार के घरों में घुसा हाथी का झुंड, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़, होटल में घुसा पानी, पर्यटकों को बाहर निकाला गया, प्रशासन हालात संभालने में जुटा। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, 5 चरवाहों और सैकड़ों भेड़ बकरियों को सुरक्षित निकाला गया, प्रशासन की अपील, लोग नदी किनारे और निचले इलाकों से दूर रहें। उत्तरकाशी में धराली खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा, पुलिस ने नदी किनारे रहने वालों का सावधान किया। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए किए गए सेवा कार्य, लोगों के बीच लड्डू बांटे गए, गायों के लिए भी तैयार किए गए बूंदी के लड्डू। जापान और ताइवान के में तबाही मचाने के बाद तूफान बावी चाइना के पूर्वी हिस्से में पहुंचा, बीजिंग समेत चाइना के कई शहरों में राहत और बचाव अभियान जारी। उत्तराखंड में लगातार हो रही है भारी बारिश, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, मसूरी में 75 मिलीमीटर बारिश। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार में बारिश जारी, तो वहीं ऊखीमठ में 15.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर आया। रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन की टीम कंट्रोल रूम में हालात परखती हुई नजर आ रही है, केदारनाथ यात्रा रूट पर भी पूरी नजर। जम्मू कश्मीर में गांव की महिलाएं सरकारी डेयरी योजना का उठा रही हैं फायदा, उधमपुर में डेयरी के काम में लगी महिलाओं ने बताई अपनी सफलता की कहानी। लक्सकोजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आधारशिला रखी। एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 76 में प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया, अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग। गुजरात के नवसारी शहर में बड़ा हादसा, होते होते टला झुकी हुई दो इमारतों को तुरंत खाली कराकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 100 से ज्यादा लोग। करीब 40 साल पुराने अमरदीप अपार्टमेंट की दो इमारतों में अचानक दरारें पड़ गईं और भवन एक ओर झुका। नगर पालिका फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लिया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: Good news today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will
0: from the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति, सफर होगा आसान। यूपी में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आज रोपे जा रहे 35 करोड़ पौधे, पर्यावरण संरक्षण और प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन, हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। पुरी में गुंडिचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में, मंदिर के जीर्णोद्धार और ढांचागत मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है पूरा। शानदार मौसम के बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं भक्त, कुदरत के नजारे भी कैमरे भी कर रहे हैं कैद। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मैच।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आज है पेपर बैग डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि किस तरह छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी सोच का हिस्सा होते हैं। एक पेपर बैग जिस तरह एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना योगदान देता है, उसी तरह टीवी की दुनिया की हर कहानी अपने साथ लेकर आती है नए नए इमोशंस और नए नए सरप्राइजेस। तो चलिए आज तो खोलेंगे हम आम के लिए एंटरटेनमेंट का ये खास पेपर बैग और देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
6: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए आरंभी और ध्रुव की दोस्ती की शुरुआत, रंगोली ने बना दी जोड़ी। शुरू हुआ अपराजिता और रक्षित का पुलिस स्टेशन वाला नया ड्रामा। राध्या की वजह से दादी ने मारा प्रथम को थप्पड़।
7: मेरी जीवन साथी है दादी, वो
6: जाल में फंसी रूही और उसकी बेटी, दिखेगा रूही का मर्दानी रूप। जगधात्री और शिवाय की शुरू होगी नोकझोंक, घर में शुरू होगा नया ड्रामा। प्यार के रंग में रंगे रूहानी और गुरु, हुई पिलो फाइट। मुश्किल में वृंदा, कृष्णा बेन बनी सहारा।

0: असली खूबसूरती दिखावे में नहीं, सोच में होती है, बिल्कुल एक पेपर बैग की तरह, जो सिंपल होते हुए भी कितना यूजफुल है। और ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी राध्या। वैसे राध्या बात तो सही है, क्योंकि दिखावा करने की जरूरत ही क्या है। देखिए, जो आपके अच्छे कर्म होंगे वो ऑटोमेटिकली सबको दिख ही जाएंगे, और जितना आप बोल बोल कर काम करेंगे उतना ही आप बोल बच्चन बनेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको मन अति सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज।
1: राध्या को बचाने पुलिस स्टेशन पहुंचा प्रथम। दादी ने मारा प्रथम को थप्पड़। घर में शुरू हुआ तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या जेल में बंद है, ऐसे में वो पहुंच गया है राध्या को बचाने के लिए। और देखिए कैसे वो पुलिस वालों से भी लड़ रहा है, लेकिन उसे धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है।
2: राध्या, राध्या, राध्या, राध्या, राध्या, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है राध्या,
3: पकड़ा इसे,
4: लेके जाओ इसे बाहर,
3: लेके जाओ इसे बाहर,
1: लेकिन जैसे तैसे प्रथम राध्या को बचा ही लेता है। और देखिए कैसे वो उसे घर ले आया है। राध्या को घर में देखकर सभी घर वाले तो खुश है, लेकिन अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो है दादी, जो काफी गुस्से में है।

0: प्रतियोगिता में भाग लेने चली गई थी ना, उसी तरह इस घर से उल्टे कदम वापस लौट जाओ। गुनहगारों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है।
1: भाई राध्या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भगवान की कसम भी खाती है, लेकिन दादी को तो राध्या पर विश्वास नहीं। उसे लग रहा है कि राध्या ने जुर्म किया है और वो गुनहगार है।
0: अच्छा, कंपटीशन के सारे जजेस, प्रतियोगी, बाकी के प्रतियोगी, प्रतियोगिता से जुड़ा हर इंसान तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहा है और तुम कहती हो वो सब गलत है, एक तुम ही सच्ची हो।
1: ऐसे में राध्या की ढाल बनकर आता है प्रथम, जो दादी को हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है, जहां दादी को ये एहसास होता है कि दादाजी की घड़ी जो उन्होंने प्रथम को दी थी वो प्रथम की कलाई में है ही नहीं।
2: क्या आपको मेरे भरोसे पे भरोसा है? आप मेरी मदद करना, आपने मनोज कुमार की फीस के भरोसा क्यों की? इससे बहुत डरना नहीं है राज, हम सब आराम से फीस
0: बेटा जी की थी।
1: तब प्रथम करता है खुलासा कि राध्या को बेल दिलवाने के लिए प्रथम ने वो घड़ी गिरवी रख दी है, जिसके बाद दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो प्रथम को थप्पड़ जड़ देती है। इतना ही नहीं, वो तो राध्या को भी खरी खोटी सुना रही है।
0: देख बेटा,
2: थारी राध्या की बेल के लिए मेरे को घड़ी गिर
0: गई। तूने अपने दादाजी के निशानी आखिरी निशानी गिर गिरा दी। क्यों शर्म नहीं आई तुझे? इस बेहरत लड़की के लिए तूने हमारे जवान को मार लगा दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया बोल? क्यों किया? क्यों किया?
2: दादा कोई बेहरत लड़की नहीं हो, तू मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी जीवन साथी है दादी। वो
3: क्या कर रही है आप? होश में तो है, मतलब कोई बच्चा नहीं है।
0: चुप! एक काम करो, आज कोई दादी पते के बीच में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ऐसा तू जानता है तेरे 21वें जन्मदिन पर तुझे तोहफा देने के लिए तेरे दादाजी ने उसको संभाल कर रखी थी वो घड़ी। वो तो नहीं रहे, नहीं, हमने उनका मान सम्मान करने के लिए उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। इसके लिए तुमने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? इसे हम सफर कहते हैं। तुम इस लड़की को जो जिंदगी की राहों को मुश्किल से आसान बनाता है, और इसलिए तो तेरी क्या, हम सब की राहों में कांटे बिछा रखे।
1: भाई दादी तो किसी की भी नहीं सुनने वाली है। एक तो वो पहले ही राध्या से नफरत करती है और उस पर दादाजी की घड़ी राध्या के बेल के लिए जो गिरवी रखी है इस पर दादी प्रथम से काफी नाराज है। अब देखना होगा कि प्रथम और राध्या दादी को कैसे मनाते हैं और कैसे वो गिरवी रखी हुई घड़ी वापस लेकर आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हर कहानी ना अपने अंदर कुछ ना कुछ खास समेटे होती है और हम अपने शो सास बहू और पेटिया में दिखाते हैं आपको आपकी फेवरेट कहानी का हर अपडेट। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं अब आपको हमारी इस अगली कहानी की ओर, जिसमें फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग मोड जो लेकर आ रहा है इसमें ड्रामा यानी नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। सो गेट सेट गो।
5: छोड़ दिया ना पति ने।
1: वृंदा की मुश्किलें, कृष्णा बेन बनी सहारा, वृंदा और संजय का हिट एंड मिस, जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में कहानी में नया ट्विस्ट आया है जहां पर वृंदा अपने हालातों से काफी परेशान है। संजय से अलग होने के बाद वो निकली है गलत कदम उठाने यानी कि सुसाइड करने के लिए, लेकिन सही समय पर आकर कृष्णा बेन उसे बचा लेती है। इतना ही नहीं, आज फिर एक बार कृष्णा बेन उसकी मददगार बनकर साबित हुई है जहां वृंदा को लग रही है काफी भूख और ऐसे में कृष्णा बेन उसे खाना भी खिला रही है और साथ ही साथ उसे समझा भी रही है

बात, ये कहती है मेरी बात, वो कहती है अरे साहब

0: संजय जी को हमारी शादी हुई थी, हम एक ढाबे पे रुकते हैं, लेकिन मुझे पता चलता है कि संजय जी इज़ ऑलरेडी इन लव विद स्वाति और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं डिसीजन बनाती हूँ कि मैं उनकी लाइफ से चली जाऊँगी और उनकी लाइफ में कोई दरार नहीं बनाऊँगी। तो मैं वहाँ से भागती हूँ और भागते भागते हमने शूट किया है एक सीन जिसमें मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए, आई शुड एंड माई लाइफ। तो मैं नहीं कर पा रही, मुझे फिर कृष्णा बेन आके बचाती हैं। कृष्णा बेन मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आई, उन्होंने मुझे बचाया है, मुझे मोटिवेशन दिया है। और मुझे काफ़ी भूख लग रही होती है, मैं दो दिन से खाना नहीं खाया होता, तो अभी हम वो सीन शूट कर रहे थे जिसमें वो मुझे खाना खिलाती हैं।
1: भाई वृंदा जहाँ है उसी जगह मौजूद है संजय भी, लेकिन यहाँ इन दोनों का हिट एंड मिस होता है और दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। खैर इनका आमना सामना जब होगा तब होगा, फिलहाल तो वृंदा अकेली पड़ चुकी है, बस कृष्णा बेन ही है वृंदा का सहारा।
0: एक्चुअली अभी वृंदा अपनी लाइफ को अकेले कैसे जिएगी हम वो देखने वाले हैं। तो ताकि वृंदा अकेले ना रहे, मुझे ऐसा लगता है कि अम्बे माँ ने कृष्णा बहन को भेजा है ताकि उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे, जो ऐसी मेल डोमिनेंट लाइक दुनिया में उसे बचा के रखे और उसे सिखाए।
1: तो भाई इतनी मुश्किल में अब वृंदा कैसे खुद को संभालेगी ये देखना होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: दिल की अच्छाई ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए देखते हैं मन सुंदर की कहानी में आज कौन सा मोड़ आ रहा है, क्या खुल रहा है यहाँ पर फिर से किसी नए एंटरटेनमेंट का पन्ना। वेल देखिए इनके पास भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक सरप्राइज बैग जिसमें से निकलते हैं रोजाना नए नए इमोशंस। लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
1: बेटी के लिए मर्दानी बनी रूही, रुचिता को बचाने, जाल में फंसी माँ और बेटी, दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है जहाँ पर कुछ गुंडों ने कर लिया है रूही की बेटी रुचिता को किडनैप और वो ले आए हैं उसे इस गोदाम में। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए देखिए कैसे रूही पहुंच गई है और उसने जमकर की इस महिला की पिटाई, डंडा लेकर वो सबको सबक सिखाने पहुंची है। असल में यहाँ बच्चों की तस्करी का काम चल रहा है, ऐसे में रूही ना सिर्फ अपनी बेटी बल्कि बाकी बच्चों को भी बचाने पहुंची है।

बच्ची को और जो बच्ची को तुम लेकर आए हो उसको छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सॉरी, मेरी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस गए, पर मैं आपको सही सलामत यहाँ से लेकर जाऊंगी।

लेकिन रूही तो एक है और गुंडे इतने सारे, ऐसे में रूही और उसकी बेटी इस जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि गुंडों ने इन दोनों को घेर जो लिया है और लाख कोशिशों के बाद भी रूही इस जाल से निकल नहीं पा रही।

0: बच्ची के साथ साथ इसकी माँ की भी कुछ कीमत मिलेगी क्या बॉस? तो कीमत मिल ही जाएगी। हाँ, इसको ही पैक करें, इसको ही बच्ची के साथ बाहर भेजते हैं।
1: बच्ची के साथ भाभी फ्री।
0: हाँ, हमें शर्म नहीं आती, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा।
2: भाई वाकई आज रूही तो बड़ी मुश्किल में फंस गई है, लेकिन यहाँ भी हो गया है चमत्कार, क्योंकि इस गोडाउन में आग लग जाती है और ऐसे में सभी गुंडे भाग जाते हैं। बस एक गुंडा फंस गया है इस आग के बीच, तो वही रूही भी बड़ी ही चालाकी से इस जाल को फाड़कर उससे बाहर निकलती है अपनी बेटी संग, और आग से बचते बचाते वो अब इस गोडाउन से भागेगी।
3: भाग, भाग।
2: तो भाई अब देखना होगा कि रूही कैसे इन बदमाशों को पुलिस के हवाले करती है और खुद की और अपनी बेटी की भी जान बचाती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: मोहब्बत के एहसास भी दिल में संभाल कर रखे जाते हैं, कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी। क्या रूहानी की कहानी में फिर से आया है एक इमोशनल ट्विस्ट, क्या फिर से चल रहा है यहाँ पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा, या फिर कहानी में फिर से लेखक लेकर आएगा एक इंटरेस्टिंग मोड? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको इश्क जुनूनी के सेट पर।
2: और रूहानी की आशिकी। शुरू हुई पति पत्नी की पिलो फाइट। आया मौसम रोमांस का। टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आए दिन कोई ना कोई तमाशे तो होते ही रहते हैं, लेकिन आज कोई तमाशा नहीं हो रहा बल्कि प्यार हो रहा है रूहानी और गुरु के बीच। भाई इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि इनके बीच की गलत फहमियां जो दूर हो चुकी हैं। ऐसे में देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इस रोमांस में चार चांद तब लगे जब इन दोनों के बीच शुरू हो गई खट्टी मीठी नोकझोंक, और फिर शुरू हो गई पिलो फाइट। भाई देखिए कैसे दोनों एक दूसरे को इस पिलो से मार रहे हैं, और फिर हो गई पंखों की बरसात, और इस बरसात में और भी ज्यादा करीब आ गए गुरु और रूहानी।

हम भी सॉरी, हमें ऐसे दौड़ी का नहीं आना चाहिए।

0: वह इस रोमांस पर भी ब्रेक तब लग गया जब गुरु को दिख गया ये नेकलेस का सेट। और ऐसे में अब गुरु को हो रहा है शक, कहीं ना कहीं घर का ही कोई है जो गौतम के साथ मिला हुआ है, जो रूहानी और गुरु को अलग करना चाहता है। भाई अब गुरु गुस्से में निकल तो गया है घर वालों को सबक सिखाने के लिए, लेकिन रूहानी उसे रोक रही है। अब देखना होगा कि गुरु के इस गुस्से से घर में कौन सा बवाल होता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब पेपर बैग के अंदर क्या सरप्राइज छुपा होता है यह हमें पहले से तो नहीं पता होता। इसी तरह ये जो कहानियों में आते हैं ना, नए नए मोड़, इनके बारे में भी हमें पहले से नहीं पता होता, तभी तो हो जाते हैं हम शॉक्ड एंड सरप्राइज। तो चलिए फिर पता कर आते हैं आज कौन सी कहानी में आया है, कौन सा नया ट्विस्ट जो खोल रहा है इस कहानी के राज।
2: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आज टिन्नी अपने दोस्त संग पहुंची है ईशान से मिलने के लिए, लेकिन ईशान ने उससे ये राज छुपाया है कि नोयनिका यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में देखिए कैसे टिन्नी अपनी परेशानियाँ ईशान से शेयर कर रही है, लेकिन जाते वक्त उसे हो गया शक कि नोयनिका यहीं पर ही है। ऐसे में नोयनिका ने भी ईशान को कमरे के अंदर से आवाज लगा दी, यानी अब टिन्नी को सच पता चल चुका है और अब होगा असली तमाशा।
3: मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो बीमार है और वो भी ऐसी एक बीमारी जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही।
4: क्या तुम्हें लगता है उनका ट्रीटमेंट किसी अच्छी जगह पर होना चाहिए?
3: मैं तो वही चाहती हूँ ईशान, लेकिन क्या करूँ, हमारी लाइफ की ट्रेजेडी है। मेरे बाबा इतने बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट है, इतने सारे लोग उनके पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते।
4: क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारी मॉम ने मना किया है क्या?
3: उन्होंने मॉम को बहुत तकलीफ दी है, उनकी इंसल्ट की है।
4: देखो मुंबई में मेरा घर है, मैं रहूं या ना रहूं तुम उस घर में रह सकती हो उसे अपना समझ कर, और जितने समय के लिए चाहो रह सकती हो। और वहाँ विशु दादा भी है, सबका ख्याल रखते वो, और मेरा स्केड्यूल भले कितना भी टाइट हो मैं अपने सारे शोज कैंसिल कराकर बस मुंबई में रहूंगा।
5: ईशान, that's very sweet of you.
3: तो फिर ठीक है, मॉम का ट्रीटमेंट मुंबई में ही होगा। आई नो घर में इस बात को लेकर बहुत ड्रामा होगा, लेकिन मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, क्योंकि मॉम से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, मैं सबसे लड़ लूंगी।
4: गुड, थैंक यू।
3: तो फिर हम चलते हैं। ये बैग ये तो मॉम का बैग है।
4: हाँ, ये तुम्हारी मॉम का ही बैग है।
3: ईशान, ईशान
2: वैसे इसी के साथ नोयनिका को ईशान से प्यार हो गया है, लेकिन इजहार करने से वो डर रही है। सपने में ही सही उसने इजहार तो किया, लेकिन हकीकत में ऐसा करना मुश्किल है।
6: हेलो नोयनिका, कहाँ हो तुम?
7: तुम्हें किडनैप करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज के बाद ईशान के बिना नोयनिका नहीं। आई लव यू ईशान, आई लव यू ईशान।

0: सपने की तरह क्या हमारी कहानी कभी पूरी होगी?
1: इतने साल गुजर गए सचिन, वो बेटा वो कल आज भी नहीं बुला पा रही।
2: स्टार प्लस का सीरियल उड़ने की आशा में 7 साल का लीप आने वाला है और इसी के साथ होगी इस बच्चे की एंट्री भी। ये बच्चा लेकर आएगा कई सारे राज। अब देखना होगा सचिन सायली कैसे सच का खुलासा करेंगे।
1: इतने साल गुजर गए सचिन, वो पिता वो कल आज भी नहीं बुला पा रही।
3: वो कल अपन पीछे छोड़ा है सैली, अपने को आगे बढ़ने गए।
4: ए, मेरे को मेरी गाड़ी वापस दे।
3: ए हीरो, तेरा नाम क्या है?
4: लक्ष तेजस देशमुख।
5: लक्ष लक्ष
6: तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया,
7: अनजान लोगों से बात नहीं करते, बात नहीं करते,
6: बात नहीं करते।
7: चलो
8: क्या सचिन सायली को वापस मिलेगा उनका खोया हुआ दिल का टुकड़ा?
2: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में रिश्तों की उलझनें देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ है अनुपमा और दिग्विजय, तो वहीं दूसरी तरफ है परी और प्रेम का रिश्ता, जिसमें ये सभी उलझ से गए हैं।

0: लीजिए।
1: सर आप रात को इतना मीठा कैसे खा लेते?
0: जराज की बात है, ये हीटिंग पैड है, इसे यूज कीजिए। मैं जानता हूँ आप सोएंगे नहीं, नींद तो आएगी नहीं, आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने की कोशिश कीजिए। गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: इसी के साथ अब अनुपमा बनाएगी अपना सपनों का आशियाना।
3: कंपटीशन शुरू होने को सिर्फ 24 घंटे बचा है सर।
0: आप ऐसे कह रही है तो मुझे भी डर लगना शुरू हो गया है।
3: जहाँ जीत जरूरी हो जाए वहाँ हार का डर सताने लगता है।

अब तो आप सबके लिए एंटरटेनमेंट का पेपर बैग खोल रहे हैं कुंडली भाग्य फेम मनीष चौरा, जो फिलहाल नजर आ रहे हैं मन्नत में, जहां वो निभा रहे हैं धैर्य का किरदार। वैसे किस तरह रखते हैं ये अपने आप को इतना फिट, आज तो कर रहे हैं हम इनके साथ एक वर्कआउट स्टोरी। तो चलिए लेते हैं इनसे कुछ फिटनेस टिप्स, लेकर चलते हैं आपको मनीष के पास।

0: मिलिए मनीष जौरा से, जिन्हें आपने हाल ही में देखा है सीरियल मन्नत में एस धैर्य। लेकिन रियल लाइफ में मनीष जौरा है एक स्ट्रिक्ट फिटनेस फ्रीक। भाई ना सिर्फ करते हैं खास तरह की जिम्नास्टिक्स, रोप पे चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बल्कि साथ साथ जिम में पसीना भी बहाते हैं। लेकिन उतना ही अच्छा डांस भी करते हैं, फिर चाहे शर्टलेस होकर डांस करना हो या फिर पंजाबी मुंडे की तरह डांस करना हो। तो पद पर कुंडली भाग्य हो या फिर हो मन्नत या फिर हो राम मिलाई जोड़ी, मनीष ने ढेर सारे किरदार निभाए हैं। लेकिन रियल लाइफ में उनकी पर्सनालिटी का राज है उनका फिटनेस रूटीन। आज सास बहू और बेटियां में मनीष कर रही हैं एक फिटनेस वाला डे आउट, जहां वो बताएंगे कि कैसे रखते हैं खुद का ख्याल। भाई उन्हें गाड़ी चलाने का शौक है तो आज उनके साथ ड्राइव पर भी चलेंगे, सुनेंगे उनके फेवरेट गानों को और झांकेंगे उनकी जिंदगी में। तो सीधा चलते हैं मनीष के साथ, जो अपनी गाड़ी में सवार होकर आज सास बहू और बेटियां संग कर रहे हैं एक अनोखा डे आउट।
1: जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, जिस दिन मेरा काम का थोड़ा सा लोड कम होता है, तो उस दिन मैं जिमनास्ट भी करता हूँ, या तो जिमनास्ट करता हूँ या स्विमिंग करता हूँ, पर आज मेरा जिमनास्टिक वाला दिन है, तो लेट्स गो, लेट्स डू सम जिमनास्टिक। अब हम जा रहे हैं जिमनास्टिक करने के लिए गोरेगांव वेस्ट, एंड शी इज़ माई वाइट ब्यूटी, और हम लोग इसमें जाने वाले गोरेगांव वेस्ट।
0: सभी मनीष रेडी है, उनकी गाड़ी रेडी है, सवार हो जाते हैं उनकी गाड़ी में। भाई ड्राइविंग उनका शौक है और गाड़ी चलाते जाते वो सुनते हैं म्यूजिक। तो जरा सुनते हैं क्या है उनकी प्लेलिस्ट और वो खुद गाते बजाते जाते हैं।
1: मैंने एक खुद गाना गाया था जो कि मैं आपको गाना सुनाने वाला हूँ, हालांकि इट्स अ स्लो वर्जन, डोंट ट्रीट इट लाइक अ सैड सॉन्ग, इट्स नॉट अ सैड सॉन्ग, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो मैंने वो खुद गाना गाया था, मैं आपको विजुअल्स बाद में दिखाऊंगा। जलता रंग सी हसी तेरी सुनाई दे आज भी, खुशबू तेरी रह गई तेरे जाने के बाद भी, घर का वो कोना तेरा सुना बिछौना तेरा, तेरी गैर मौजूदगी में भी लगे होना तेरा, क्यों रे क्यों।

कांच के लम्हों के रह गए चूरे, रह गए चूरे। मैं एक्चुअली बहुत सारे गाने सुनता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, फोक म्यूजिक, गजल्स, मैं सब कुछ सुनता हूँ। आई थिंक म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं जैसे जिम में जाता हूँ तो भी सुनता हूँ, बट यू बी सरप्राइज, बट मैं जितना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला काम करता हूँ उतने स्लो गाने सुनता हूँ। और फॉर मी इट्स एक्चुअली इट वर्क्स। और यू नो आई एम एन एक्टर, आई थिंक इट ऑलवेज गिव दैट बूस्ट। आपको ना एक बूस्ट मिलता है म्यूजिक सुनने से, आपको वो फील मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सीन पढ़ते हैं और आपको वो फील नहीं आ रहा होता है।

0: माने जौरा के साथ गाड़ी में सफर करते करते उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर भी सुनाया, कैसे उनकी शुरुआत एक ब्यूटी पेजेंट से हुई, फिर वो मॉडल बने, फिर वो एक्टर बने। उनका पहला शो था जी टीवी का सीरियल 12/24 करोड़ बार और मन्नत तक उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। तो जानते हैं मनीत के सफर के बारे में।
1: By choice, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा था तो किसी ने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने बोला कि मैं तुझे स्टार बनाऊंगा, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। इन फैक्ट आई एक्चुअली स्ट्रगल्ड अ लॉट इन अ वे दैट आई वाज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरुआती दौर से मैं थोड़ा सा चूजी था जो कि मैं जो मैं रोल्स करना चाहता हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने 2007 में आई बिगेन विद मॉडलिंग, मुझे ग्लैड रैग्स में बेस्ट फोटोजेनिक का अवार्ड मिला। फिर 2008 में मैंने स्टार प्लस का एक डांस रियलिटी शो किया, आई वॉज गुड एट डांसिंग एंड तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत करी। फिर बहुत सारी मॉडलिंग करी, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के रैंप वॉक किया, प्रिंट एड्स के, बट समहाउ कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट समथिंग बियॉन्ड एंड आई वॉज ऑलवेज गुड एट यू नो आउटडोर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एकेडमिक्स में मैं उतना अच्छा नहीं था, जब मैं स्कूल में था मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था, लेकिन मैं अपने स्कूल लेवल पर कॉलेज लेवल पर थोड़ा थोड़ा सा थिएटर मैंने किया, बहुत प्रोमिनेंटली कुछ नहीं किया था, लेकिन समहाउ मैं एक्टिंग हमेशा से करना चाहता था। देन आई थॉट कि नहीं यार मैं अपने मॉडलिंग करियर को थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। I was earning good in modeling, I was doing very good in modeling, but मुझे लगा कि ये रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। और फिर मैंने अपना मॉडलिंग करियर साइड पे रख के मैंने I'd gone to an acting school और मैंने वहाँ पे एक्टिंग सीखा और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई। मैं एज एन एक्टर बहुत इम्प्रूव हुआ और एज एन एक्टर के साथ साथ मैं एज अ पर्सन बहुत इम्प्रूव हुआ है, ऐसा सब लोग कहते हैं कि, और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस खुद भी किया है। Once I finished my acting course, और फिर वही एक्टर वाला दौर शुरू हुआ, ऑडिशन के बाद ऑडिशन के बाद ऑडिशन के बाद ऑडिशन। But I was lucky enough that I had some fantastic shows. Thanks, a major, my sincere thanks to ZTV जिन्होंने मुझे एक first opportunity दिया 12/24 करोल बाग से, जो कि एक बहुत सुपर हिट शो था। उनके मेकर्स ने बहुत मेहनत करके एक अच्छा सा शो बनाया था, जो कि मैंने कुछ एक साल तक वो शो किया और मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी मिली, मुझे बहुत सारे फैंस मिले, उन्होंने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे मेरी परफॉर्मेंस को सराहा। बेसिकली वहाँ से मेरा एक एज एन एक्टर मेरी जर्नी शुरू हुई करोल बाग से और मैंने नेवर टर्न बैक।

0: मान्यता यहाँ पर करते हैं जिम्नास्टिक और मिलते हैं उनके गुरु से जिन्होंने उनको 80 किलो से आज लीन और स्लिम बनाया।
1: He is the man, Mr. Ratan Kumar behind for all the, इन्होंने मुझे ट्रेन किया है, सालों से मुझे ट्रेन कर रहे हैं। जब मैं इतना ह्यूज था, जब मैं 87 केजी का था, विद ऑल द बिग मसल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तब ही हेल्प मी एक्चुअली टू श्रेड ऑल द वेट। और इन्होंने मुझे जिमनास्ट में इतना स्टिफ था कि मेरे से ऐसे भी नहीं जाता था, पर अब ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे जहाँ पर भी जाता है, हर जगह जाता है। तो आई थिंक ही हैज ट्रेन्ड ऑलमोस्ट एवरीवन इन बॉलीवुड ऑल्सो।
0: मानित पहुंचे स्टूडियो में, शुरू करिए उन्होंने कॉम्बैट एक्सरसाइज, पहले कुछ वार्म अप, भाई इसके बाद उन्होंने कुछ और जिम्नास्टिक एक्सरसाइज की, और यही वो वजह है कि वो इतने फिट रहते हैं।

0: ग्रिप मजबूत हो, मार्शल आर्ट में काफी यूजफुल है ये। अगर आपका ग्रिप बहुत मजबूत है तो आपका पंच, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड बहुत अच्छी होगी। अगेन इसमें कोर एंड मसल्स, बैक मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये सब इसमें यूज होता है। और इसके अलावा जब हम एक्सरसाइज और डिज़ाइन करते हैं तो हम इसमें और भी वर्कआउट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें अभी करना क्या है।
1: हम लोग एक रस्सी से पूरा वर्कआउट कर
0: पूरा वर्कआउट कर सकते हैं।

और उसके बाद शर्टलेस होकर उन्होंने कुछ कॉम्बैट एक्सरसाइज की। वैसे साथ ही मनित का वेल टोन्ड फिजिक भी देखने को मिला। रोप वे हो या मलखम, इन्होंने तरह तरह की जिमनास्टिक्स की और उसके बाद अपना बॉलीवुड फ्री स्टाइल डांस भी किया।

0: वैसे मनीत एक अच्छे डांसर है और आज उन्होंने अपने फैंस के लिए ये खास शर्टलेस होकर डांस किया। भाई वाह, बंदा ये बिंदास है। और कुछ इस अंदाज में मनीत का जिमनास्टिक और उनके फिटनेस का राज हमें पता चला।
1: It's very very important. जो लेडीज थोड़ी सी you know who are crossing 50s and 60s, I mean no one is old. It's all in the head. No one is old. I think. और मुझे personally ऐसा लगता है कि आप सब लोग एटलीस्ट अगर एक फॉर्म ऑफ योगा भी आप रोज करेंगे तो आई थिंक यू विल बी बेटर, यू विल फील ग्रेट। आई थिंक गेट अप इन द मॉर्निंग यू कैन, आप अपने अंदर एक अच्छी आदत डाल सकते हैं सुबह उठने की। जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने आप को एक्चुअली यू नो यू टेक दैट वन स्टेप फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: वैसे मनीत की एक्सरसाइज अभी खत्म नहीं है क्योंकि इसके बाद हम उनके जिम जाने वाले हैं। तो फिर सवार होली उनकी गाड़ी में और पहुंचे उनके जिम में क्योंकि यहां पर वो वर्कआउट करेंगे, वो भी कुछ अलग टाइप का।
1: द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू ईट राइट। यू नो हम लोग बहुत सारा चीटिंग करते हैं, जाके पिज्जा खाते हैं, ओरियो शेक पीते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आई थिंक ईट इन लिमिट, ईट एवरीथिंग, ईट इन लिमिट, और उसके पीछे बहुत सारा वर्कआउट भी करना पड़ता है। सो आई एम गोना शो यू हाउ आई वर्कआउट एंड व्हाट डू आई डू टू एंड टू स्टे फिट। यूजुअली मैं शुरू करता हूँ थोड़े सा फंक्शनल ट्रेनिंग से। फंक्शनल ट्रेनिंग इज समथिंग आई बिगेन विद बिकॉज इट्स अ ग्रेट वे ऑफ एक्चुअली कीपिंग योर बॉडी टोन। ज़्यादा आपका स्टैमिना बहुत अच्छा रहता है। वेट ट्रेनिंग में यूजुअली क्या होता है कि आप वैन यू हैव टू इंक्रीज योर मसल्स, जब आपको अपने मसल्स इम्प्रूव करने होते हैं या स्ट्रेंथन करने होते हैं तब हम ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं। आई प्रेफर ज़्यादा फंक्शनल ट्रेनिंग बिकॉज हम लोग सारा दिन भाग रहे होते हैं। यू नो वी यूजुअली वर्क 15 आवर्स अ डे, देन वी हैव टू रन अराउंड द शूट्स।
0: मनीत अब रेडी है फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए। देखते हैं क्या है उनकी फंक्शनल ट्रेनिंग।
1: यहाँ से मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। मैं बहुत सारे फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूँ और लेट मी टेल यू, फंक्शनल ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग से बहुत मुश्किल होता है। तो बेयर विद मी, आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। कम ऑन। एक चीज़ पता क्या होती है, टू स्टे फिट बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कम।
0: मनीत ने एक्सरसाइज शुरू की लेकिन एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना जरूरी है। तो मनीत के साथ जानते हैं कि एक्सरसाइज से पहले क्या करना चाहिए।
1: मैं अपना टॉवल और वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखता हूँ बिकॉज आई कीप सिपिंग वाटर। इससे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होता है। अपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारा पानी पीना बहुत जरूरी है। सो ड्यूरिंग द वर्कआउट मैं एटलीस्ट 1.5 लीटर 2 लीटर से पानी पीता हूँ, जितना भी पी पाता हूँ। सो विल बिगिन विद सम ऑफ द बेसिक वार्म अप्स, स्ट्रेचिंग, एंड देन विल गेट ऑन टू द 3 cycles ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग एंड देन विल क्विकली मूव टू फंक्शनल द वेट ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग ऑल्सो। हम लोग स्ट्रेचिंग इसलिए करते हैं ताकि ड्यूरिंग द वर्कआउट हमें इंजरीज ना हो, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। बिकॉज वेट ट्रेनिंग के बाद टेंडेंसी होती है कि हम लोग स्टिफ हो जाते हैं, हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं। सो यूजुअली हम लोग पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट इसलिए करते हैं कि हम जो हमारी इंजरीज हैं वो कम से कम हों। सो यस, तो हमें
2: स्ट्रेचिंग हो गई है।
1: तो आई थिंक हम लोग ने बेसिक स्ट्रेच कर लिया है, तो अभी हम थोड़े से किक्स कर रहे हैं।

0: उसके बाद मालिक ने कुछ जंप्स किए, तो जानते हैं कि ये जंप्स क्या होते हैं।
1: पहले हम लोग कुछ जंप्स करेंगे, फ्री जंप्स, देन बर्पीज, देन माउंटेन रनिंग, देन फ्री स्क्वाट्स, देन फॉर फॉर द एक्सरसाइज। कोर नीड्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। फिट रहने का मतलब ये नहीं होता है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मसल्स, अ लॉट ऑफ शोल्डर। आई थिंक स्टे फिट इज इट मेजरली मींस दैट यू नो यू आर इन कंट्रोल। So even if you're running, if you're doing anything, you need to be stay fit always, so that this piece of machinery, which is immaculate, क्योंकि बहुत हमारा अगर अभी देखो तो ये जो body है ये बहुत ही immaculate है, इसकी engineering जो है। So I think it's very very important that your body shouldn't come in the way of whatever you do throughout the day. So this is why I train.

0: अब वक्त है कुछ इंटेंस वर्कआउट का। भाई मलित के पहले दो स्टेप्स तो हो गए, लेकिन आगे अब वो थोड़ी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे।
1: फॉलो देयर बॉट्स जो बहुत सारे बॉडी वेट्स के साथ वर्कआउट होते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि वो वाले वर्कआउट ज़रूर इन्वॉल्व करो बीच में।
0: पर्दे पर किरदार निभाने के लिए एक कलाकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मनित का इंटेंस वर्कआउट उनके जिम में देखने को मिला। देखिए कैसे जिम में एक एक करके में कैसे वो शिद्दत से अपने फिजिक पर मेहनत कर रहे हैं, और यही उनकी पर्सनैलिटी का राज है।
1: तो हम लोग हर रोज सीखते हैं। आई थिंक जो मैं अचीव करना चाहता हूँ ये उसका 20% भी नहीं है जो मैंने अभी तक अचीव किया है। सो और मेरा वो बिग मसल्स बिग बॉडी मैंने करके देख लिया, आई वॉज अराउंड 87 kgs, बिग शोल्डर बिग बाइसेप्स, बट मज़ा नहीं आता। यू नो व्हेन वी आर लीन एंड वी आर फिट आई फील ऑल द मोर फिट। सो आई थिंक दैट्स फॉर मी दैट्स बीइंग फिट। ऐसे जैसे मैंने आपको भी हम लोगों ने 3 cycle फंक्शनल का किया, थोड़ा सा हम लोगों ने पुलअप्स किया, स्ट्रेचिंग किया, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू वेट्स लिटिल बिट।
0: तो ये थे मनित जौहरा, जिनका पूरा फिटनेस रूटीन हमने जाना। तो चाहे वो जिमनास्टिक्स हो या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग हो या फिर वो इंटेंस वर्कआउट, पर ये सब मनित ने हमको दिखाया, साथ ही अपनी लाइफ की कुछ अनजानी बातें बनाई। वैसे वो ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन है, और साथ ही वो फैमिली पर्सन है और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में एक शांत जीवन भी बिताते हैं। तो ये थे आपके मन्नत के धैर्य यानी मनित जौहरा, जिनकी लाइफ की अनजानी बातें हमने आपको बताई। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब कभी कभी तो पेपर बैग में मिलता है हमें कोई खूबसूरत सा सरप्राइज, लेकिन कभी कभी एंटरटेनमेंट की दुनिया का ये जो पेपर बैग है ना, इसमें से निकलता है एक शॉकिंग ट्रुथ। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको एक ऐसे ही सेगमेंट की ओर जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
3: पेश है बॉलीवुड OTT और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं कलर्स पर आने वाले नए रोमांटिक ड्रामा सीरियल की। खबरों की माने तो इस सीरियल में नजर आने वाले हैं आंचल साहू और अंकित गुप्ता, बनेगी दोनों की जोड़ी। लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे कलर्स पर ये नया सीरियल लेकर आ रहे हैं प्रोड्यूसर सोनल कक्कड़।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जल्दी बड़ा लीप आ सकता है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लीप के बाद कास्ट भी चेंज हो सकती है, लेकिन अब तक इस खबर पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। डाल लीजिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए प्रोमो पर, जहां पर तुलसी के बेटे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में तुलसी आकर करेगी शांति निकेतन पर अपना दावा।
1: इस घर के मालिक ने कंप्लेंट किया है।
2: शांति निकेतन का मालिक मैं हूँ।
3: इस घर के मालिक मैं और मिहिर वीरानी है। घर मेरा है, मर्जी मेरी।
4: शांति निकेतन को किस मोड़ पर ले जाएगा तुलसी का ये फैसला,
0: देख लीजिए। सनाया रानी और दृष्टि धामी की पूल मस्ती, भाई दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कर रही हैं अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय।
5: देख चुके हैं, वाह, पानी में इनका तालमेल देखने लायक है। देखने में भले ही ये कठिन लग रहा हो, लेकिन यही इनके प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। और वाह, ये रहा फवारा, और ये रहा आपके लिए एक और शानदार फवारा। और अब भव्य समापन के लिए पेश है ये शानदार लहर, सचमुच मनमोहक। और इसी के साथ दृष्टि और सनाया आप सबको हाथ हिलाकर अलविदा कह रही है। बाय बाय।
0: सुरभि चांदना अपने हस्बैंड करण संग बना रही है ये आइकॉनिक सीन पर रील, जो कि है फिल्म डॉन नंबर वन का सीन।
6: तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा, अपनी सोच।
0: शिव भक्ति में लीन हो चुकी है अदा शर्मा, देख लीजिए अदा का ये वीडियो।

भी निवास की राधिका यानी कि अक्षता का बर्थडे है और उन्होंने थ्रो की बर्थडे पार्टी अपने फ्रेंड्स और फैमिली संग मनाया। उन्होंने बर्थडे, देख लीजिए ये नज़ारे।

अपने इंडिया टूर के दिल्ली कॉन्सर्ट में सिंगर जैस्मिन सैंडलिस ने इंट्रोड्यूस किया अपने फियांसे को। साथ ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो हो गई हैं अब एंगेज। देख लीजिए कॉन्सर्ट से ये रोमांटिक नजारे।

डॉक्टर आलम भी आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पेपर बैग डे और देखिए प्रमोट कर रहे हैं इस एनवायरमेंट फ्री ऑप्शन को, तो बस आप भी इसके बारे में कुछ कह दीजिए क्योंकि आपकी कही हर बात ना आपके ऑडियंस मानते हैं और सीरियसली भी लेते हैं। लेकिन क्या हो रहा है डॉक्टर आलम भी की जिंदगी में, आज क्या फिर से आया है यहाँ पर किसी नए ट्विस्ट का तूफान? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको इनके पास।

आरंभी और ध्रुव की बढ़ती नजदीकियां। रंगोली ने बना दी जोड़ी।

करीब आते दो दिल। प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी ने अवंतिका को घर निकाला तो दे दिया है, लेकिन अब वो खुद अपने घर को अपने हाथों से सजा रही है। और आज देखिए कैसे वो द्वार पर रंगोली बना रही है। ऐसे में वहाँ पर पहुँच जाता है ध्रुव भी, जो आरंभी की मदद करने की गुजारिश करता है, लेकिन आरंभी उसका मजाक उड़ाने लगती है। ऐसे में ध्रुव उसे चैलेंज के तौर पर ले लेता है और देखिए कैसे आरंभी के सामने चुटकियों में वो बना देता है रंगोली, जिसे देखकर आरंभी हैरान हो जाती है। लेकिन इसी रंगोली बनाने के दौरान आरंभी के चेहरे पर लग गया है रंगोली का कलर। ऐसे में उस कलर को छुटाने के लिए ध्रुव पहुंच जाता है और देखिए कैसे दोनों की आंखें टकराती हैं, लेकिन आरंभी वो हिचकिचा जाती है।

0: आप प्लीज जाइए ना, मुझे काम है, आप मेरा ध्यान मत रखिए।
1: मैं कौन हूँ तो ध्यान रखने वाला? क्या पीला रंग लेके बैठे? एक सेकंड।
0: इसी सब मैं कर लूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर। सॉरी मलिन, बस एक सेकंड मुझे देखने दीजिए।
2: भाई पहले जहां आरंभी की धड़कनें तेज हो रही थी, अब ध्रुव की हो रही हैं। भाई आंखों में गए कलर को आरंभी फूंक मारकर हटाने की कोशिश में लगी है और ध्रुव एक टुक सिर्फ आरंभी को देख रहे हैं और उनकी धड़कनें जोरों से धड़कने लगी हैं।

0: खैर आरंभी ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ध्रुव की आंखों में गया कलर अभी भी ध्रुव की आंखों को तकलीफ दे रहा है, जिसके चलते आरंभी वहां से निकल गई है दवाई लाने के लिए, वो भी ध्रुव को स्टैचू बोलकर। लेकिन ध्रुव उसकी बात मानते नहीं है, क्योंकि वो पहुंच जाते हैं अपने कमरे में। ऐसे में वहां पर आ जाता है राज भी, जो ध्रुव से अपनी शादी के बारे में बातें करना चाहता है। और तभी वहां पहुंच जाती है आरंभी भी, जो लेकर आई है ध्रुव के लिए आई ड्रॉप। ऐसे में ध्रुव मना करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते ना आरंभी ध्रुव को छोड़ती है और ना ही राज।
1: तू है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती
2: है।
1: तो झूठे मूठे वादे दुश्मन।
2: अरे यार मैंने कहा था ना जरूरत नहीं है इसकी। तुम दोनों भाभी देवर ना एक नंबर के चीटर हो।
3: चीटर नहीं है
2: डॉक्टर, एक्चुअली हम दोनों एक ही टीम।
3: हाउ स्वीट, दोनों एक ही टीम हो
2: जो मुझे टॉर्चर कर रहे हो। इट्स अ चीटर टीम 1 डीसी 0, बट ये बहुत जल्दी बदलेगा देखना। डीसी 10 चीटर टीम 0।
4: भाईजी की बात में अभी प्लीज मानना बंद करेंगे।
2: किसे?
4: अपनी आंख को।
2: हाँ सुन लिया, ठीक है अभी दिखती है ना तुम्हारी बदलती है नहीं।
4: मैंने कभी शराबत तो
2: मिलाएगी। हाँ लेकिन मल्ला बंद करो। हाँ ठीक।
0: भाई राज तो हमेशा अपनी भाभी के साथ है, और आज ध्रुव को भी पता चल गया है कि आरंभी जो भी करती है सही करती है। अब देखना होगा क्या ध्रुव अपने दिल की धड़कनों को पहचान पाएगा, और क्या राज इन्हें एक करने की कोशिश में लगेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: आज वसुधा तो हमसे कह रही हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती ना छोटी छोटी बातों में होती है, वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स। और बिल्कुल इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं पेपर बैग डे, क्योंकि देखिए छोटी छोटी कोशिशें जो बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। क्या वसुधा की जिंदगी में भी आएगा आप कोई नया बदलाव, या फिर से आएगा कोई ऐसा ट्विस्ट जो कर देगा इन्हें परेशान? चलिए लेते हैं अपने सवालों के जवाब, लेकर चलते हैं आपको वसुधा और देवांश के पास।
6: परिवार की पकौड़ा पार्टी, बिगड़ी दादी की तबीयत, फूटा दादी का गुस्सा, टीवी के सीरियल वसुधा में आज आ गई है खुशखबरी। भाई पहले तो पूरे परिवार वाले बैठकर पकौड़ों का मजा उठा रहे हैं, ऐसे में देव लेकर आया है गुड न्यूज, क्योंकि उसे मिल गया है इन्वेस्टर जिसके साथ आज ही मीटिंग होनी है, जिस बात से वसुधा दादी और बाकी घर वाले काफी खुश है।
7: सोशल मीडिया पर वसु की वीडियो देखने के बाद उसने हमें कॉन्टेक्ट किया, और वो वसु के रजवाड़े चक्का के साथ एक बिजनेस डील करना चाहते
8: हैं।
9: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने में हो रही है डील?
7: पापा साहब 25 लाख का स्टार्टिंग एस्टिमेट है।
9: मैंने कहा 25 लाख, ये तो काफी अच्छी डील है वसु।
8: हाँ वसु, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम मीटिंग कब करेंगे?
7: मुझे तो मीटिंग करने के लिए तैयार है। हम आज ही मीटिंग कर सकते हैं, तुम बताओ। तुम कहो
8: आज ही कर लेते हैं। दादी साहब आप पकौड़े लेंगे?
9: अरे वसु ये सब काम छोड़ो बेटा, और तुम मीटिंग की तैयारी करो, ये सब सावित्री संभाल लेगी। जाओ।
6: लेकिन इस खुशी पर जल्द ही ब्रेक लग जाता है, क्योंकि दादी की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर वहां पहुंचता है, जो दादी को आराम करने की हिदायत देता है, लेकिन डॉक्टर की बात पर दादी भड़क जाती है। और देखिए कैसे दादी ने तमाशा खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो डॉक्टर को भी खरी खोटी सुना रही है। ऐसे में वसुधा दादी को शांत करने की कोशिश कर रही है।
10: जो
11: क्योंकि दोनों का प्रेशर हार्ट पर पड़ता है, और अगर ऐसे में ये बीमार पड़े तो बड़ा खतरा हो सकता है।
12: तू बंद करेगा, उठो बैठो, इधर उधर आना जाना, उससे खाएगा मारे के मारे, कब दुखी होना कब।
8: सबसे दादी साहब की जिम्मेदारी मारी, मैं इनका ध्यान रखूंगी, मैं भी देखती हूँ किसी की।
12: कुछ दिनों पहले मैं बीमार भी थी, एक सर्जरी से निकल के आई, रिकवरिंग मोड में हूँ, लेकिन अपने आप को वो मानती नहीं है कि मैं बीमार हूँ, तो लगी रहती है युद्ध स्तर पे, तो नहीं झेल पाई उस शॉक को और बेहोश हो गई है। तो अब डॉक्टर आए हैं चेक करने, वो हिदायत दे रहे हैं कि आप आराम करिए, इतना दौड़ भाग मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो अब ये तो ऐसी वाली औरत है कि मतलब हार दे किसी को भी, मतलब बिना हाथ चलाए तो रहती नहीं है। तो गुस्सा आ गया कि मतलब मुझे बताओगे कि मैं कैसे उठूं बैठूं, खुश रहूं नहीं रहूं। तो वो डॉक्टर को भी खदेड़ देती।
6: तो भाई वसुधा की बात भला दादी कैसे टाल देती। अब वसुधा ने ले ली है जिम्मेदारी दादी की तबीयत की, कि वो उन्हें ठीक कर ही रहेंगी और पूरा आराम करवाएंगी। ऐसे में देखिए कैसे वो जुट गई है दादी की सेवा में।
13: दादी की तबीयत खराब हो गई है और वो पहले ही बहुत बीमार रहती है, तो सब बहुत टेंस्ड है कि क्या होगा क्या नहीं। घर का माहौल भी कुछ ऐसा अटपटा सा चल रहा है, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और डॉक्टर आते हैं तो वो पहले तो दादी के सामने ही बोल देते हैं कि तबीयत बहुत खराब है, मैंने मना किया था, स्ट्रिक्ट रहने को कहा था, तो दादी उन्हें मारने लग जाती है। हम सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि दादी को कैसे रोके। लेकिन हाँ, वसु बोलती है कि अब दादी की जिम्मेदारी मैं लूंगी और शी गेट्स सम कंट्रोल ओवर सिचुएशन। तो फिर सब लोग थोड़ा बेटर फील करते हैं कि हाँ, शायद वसुधा के समझाने से दादी समझ जाए। और अब दोबारा से दादी की तबीयत खराब हुई थी तो फिर से डॉक्टर आए हैं, तो इस बार डॉक्टर ने एक अलग अप्रोच लगाई, दादी को बहुत प्यार से बात की और हम सब भी को बाहर ले गया। और बाहर जाके हमें पता चला कि दादी की हालत सच में बहुत खराब है एंड शी इज सो सीरियस कि उनका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो बस अभी इसी तरफ हम देख रहे हैं कि दादी कैसे ठीक होंगी, क्या होगा।
14: देव ने मासा से कुछ सवाल पूछे हैं। देव ने पूछा है कि जो भी वसु प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके पीछे मासा है। और देव ने वसु की फैक्ट्री बंद कर दी है इस गुस्से में, क्योंकि मासा ने बोला है। उसके चलते दादी सा से ये सब देखा नहीं जाता, दादी सा की तबीयत खराब हो जाती है और दादी सा की जो बीमारी थी जिसका इलाज हुआ था ट्रिगर हो जाती है, तो काफी सैड माहौल है घर में।
6: तो भाई एक तरफ बिजनेस तो दूसरी तरफ दादी और परिवार, अब वसुधा इन सब में कैसे बैलेंस करेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: आती है। अब लेकर चल रहे हैं आपको ऐसी ही कहानी की ओर, ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा, क्योंकि जब होगा तुम्हारा साथ तो सफर भी हो जाएगा खूबसूरत। लेकर चलते हैं आपको रक्षित और प्राजिता के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
1: ललित का सुसाइड ड्रामा, मंजूर हुआ अपराजिता और ललित का तलाकनामा, मालती और रक्षित को मिली पहली कामयाबी, स्टार्स के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता, रक्षित, मालती, ललित की माँ और वकील संग सभी पहुँच गए हैं पुलिस स्टेशन अपराजिता और ललित का डाइवोर्स करवाने के लिए। ऐसे में अपराजिता तो तलाक के पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन तभी ललित को बुलाया जाता है और ललित पेपर्स पर साइन करने से मना कर देता है। बस फिर क्या, वकील साहिबा ललित को उसके कुकर्म याद दिलाने लगती है।
2: ललित अपराजिता को मारने का, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूएल्टी, किडनैपिंग और बाकी काफी सीरियस केसेस के चार्जेस लगे हैं आप पर।
3: मुझे रक्षित सर को भी
2: वो भी है
3: सारे केसेस के नीचे ऐसा दबेगा ना उनके जिंदगी भर जेल में सड़े। पर एक तरीका है सबसे बचने का, मैं
1: भाई रक्षित बखूबी जानते हैं कि अगर घी सीधे हाथ से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे में रक्षित ने ललित के सामने शर्त रख दी कि अगर वो ये पेपर साइन नहीं करेगा तो जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। बस फिर क्या, ना चाहते हुए भी ललित ने इस पेपर पर साइन तो कर दिए, लेकिन अपना गुस्सा दिखाने लगा। खैर, इससे रक्षित और अपराजिता को क्या फर्क पड़ता है, अपराजिता उसे तो आज़ादी मिल गई है। ऐसे में वो बेहद खुश है। अपराजिता की माँ भी अपनी बेटी की खुशी में शामिल है।

यहाँ सभी ये खुशियाँ मना ही रहे थे कि तभी ललित ने अपना बंदूक ड्रामा शुरू कर दिया। भाई रक्षित ने ललित से न सिर्फ बंदूक छीनी बल्कि उसे अल्टीमेटम भी दे दिया। इतना ही नहीं, ललित ने तो सभी के सामने साबित कर दिया है कि वो नहीं सुधरेगा। खैर, ललित तो अब सलाखों के पीछे चला गया है और अपराजिता वो बहुत खुश है और कर रही है रक्षित का शुक्रिया अदा।

0: सुरक्षित और अपराजिता बात करते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। अपराजिता के चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती है और रक्षित उसी खुशी में बहुत खुश है। इससे पहले कि अपराजिता कुछ और कहती, उसकी नजर पड़ जाती है अपनी माँ पर। ऐसे में अपराजिता हिचकिचाती हुई वहाँ से चली जाती है, ये सोचकर कि कहीं उसकी माँ कुछ गलत ना सोचे। लेकिन तभी अपराजिता की माँ मालती आती है रक्षित के सामने और दोनों मिलकर करते हैं सेलिब्रेशन।
1: Thank you.

0: तो अपराजिता इस बात से अनजान है कि रक्षित और उसकी माँ मालती ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे मालती अपराजिता और रक्षित के बीच की दूरियाँ कम करेगी और कैसे इनका रिश्ता जोड़ेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मजबूती सिर्फ ताकत से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से आती है, और जगदात्री की ये कहानी इसी मजबूत सोच पर टिकी हुई है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको जगदात्री के पास और देखते हैं क्या कुछ है आज इनके एंटरटेनमेंट के पेपर बैग के अंदर। वेल, यहाँ होगा ड्रामा, यहाँ होगा फुल ऑन एक्शन, और उसके साथ साथ यहाँ पर होगी ढेर सारी थ्रिल। लेकर चलते हैं हम सबको जगदात्री और शिवाय के पास।
0: जगदात्री, शिवाय और लड़ाई। मिशन या प्यार, रिश्ते में शुरू हुई तकरार। जी टीवी के सीरियल जगदात्री में शिवाय और जगदात्री की शादी तो हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं हुई है। पर शिवाय और जगदात्री के रिश्ते में ही दरार पड़ चुकी है। एक तरफ इनका प्यार है तो दूसरी तरफ है मिशन। कहीं न कहीं जगदात्री को भी शिवाय से प्यार का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो सोच में है कि वो शिवाय को डिवोर्स दे या ना दे। लेकिन फिलहाल तो शिवाय भी मिशन पर ही फोकस करना चाहता है। ऐसे में दोनों के बीच हो रही है बहसबाजी, जहाँ जगदात्री शिवाय को समझा रही है लेकिन शिवाय समझने को तैयार नहीं।
2: देखिए, जहाँ जगदात्री और शिवाय हैं क्योंकि प्यार उनके मन में है तो प्यार का स्कोप तो हमेशा रहेगा, पर क्योंकि मिशन भी इम्पोर्टेंट है तो मिशन भी साथ साथ चलता रहेगा। ये देखना इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों का बैलेंस कैसे हो पाएगा, कि मिशन प्रायोरिटी पे होगा या प्यार प्रायोरिटी पे होगी, कौन जीतता है मिशन और प्यार के बीच में, वो देखना होगा हमें। तो लेट्स सी, और देखते हैं। जगदात्री अभी शिवाय को नहीं मना पा रही है क्योंकि अभी वो भी फिगर आउट कर रही है कि जो मेरे मन में फीलिंग्स आई हैं, क्योंकि एक ही दिन तो हुआ है ना फीलिंग्स आए हुए, तो वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो मेरे मन में फीलिंग्स आई हैं वो एकदम प्योर हैं शिवाय के लिए या नहीं है, एकदम स्ट्रांग हैं कि नहीं है, तभी मैं आगे बात करूँ। क्योंकि शिवाय ने तो डिवोर्स पेपर्स ऑलरेडी दे दिए हैं, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है ना। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, पर अभी फिलहाल जगदात्री का फोकस ये है क्योंकि शिवाय उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शिवाय के लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जगदात्री इज मेकिंग श्योर कि फैमिली टूटे ना, उनको जोड़ के रखने के लिए वो जो भी बन पाएगा वो करेगी।
0: वहीं दूसरी तरफ घर वालों को भी जगदात्री संभाल रही है। असल में कई ससुराल वाले हैं जो जगदात्री के इस घर में बहू बन के आने से खुश नहीं है और उसमें तपस्या भी शामिल है। ऐसे में जगदात्री पहुंच गई है तपस्या के रूम में उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए। तभी वो फोन पर बात कर रही होती है तो वो सभी को बुला लेती है ब्रेकफास्ट टेबल पर ताकि सब मिलजुल कर ब्रेकफास्ट करें और ढेर सारी बातें हो। भाई, जगदात्री तो चाहती है कि वो शिवाय के परिवार का दिल जीत ले ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। अब इसकी कोशिशें काम आती हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।
3: और तू, बेसिक मैनर्स नहीं है क्या तुझे? कितनी बार कहा है मेरे रूम के अंदर एंटर करना है तो नॉक करके आया कर। हाँ, लेकिन नहीं, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता है ना, समझ नहीं आता है ना, डायरेक्टली मेरे रूम के अंदर आ जाती है, ऐसे बातें सुनना चाहती है ना तू मेरे? ऐसी बनेगी तू घर की बड़ी बहू? ये क्या है, कॉफी कहाँ है मेरी?
4: कॉफी की और बड़ी बहू होने से पहले मैं तेरी बड़ी बहन डाक से कुछ भी नहीं बता रही कि तू दो दिन से सही से सो रही है। माइग्रेशन की मेडिकेशन भी खत्म हो गई, मैंने ऑर्डर कर दिया, तुम लोग खाओ, ब्रेकफास्ट करो, रेस्ट करो। और शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जैसे चीजें हुई थी, खैर जो हुआ सो हुआ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी नाराजगी इतनी जल्दी और आसानी से दूर नहीं होगी, पर मुझे एक मौका तो दीजिए माफी मांगने का, गलत को सही करने का। और आती और भगवान से कैसी नाराजगी, खाने ने क्या गलत किया है?
2: हाँ जी, मैं आती हूँ आरती पूजा करने के लिए, पर मैं पाती हूँ कि वहाँ पर सिर्फ माया ताई और महेश जी हैं, कोई आता नहीं है आरती के लिए। तो मैं समझ जाती हूँ कि सारे लोग जो हैं घर वाले वो नाराज़ हैं जगधात्री से, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी फैमिली मेम्बर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है एज घर की बड़ी बहू, तो इसीलिए वो जाती है। उससे पहले महेश काका और जगधात्री की एक कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर महेश काका बोलते हैं कि घी को निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जैसे मर्द के पेट का रास्ता दिल से होकर जाता है, वैसे ही आपको भी कुछ तकनीक आजमानी पड़ेगी इन सबका दिल जीतने के लिए। तो जगधात्री उस एडवाइस को रखते हुए दिमाग में यहाँ पर आती है, और वो देखती है कि तपस्या ऑलरेडी फ़ोन कॉन्वर्जेसन में है, और वो फ़ोन लेती है उससे और सबको इन्फॉर्म करती है कि आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाओ, कन्विंस करने की कोशिश करती है। और वो थोड़ा सा एक वो भी देती है, क्या बोलते हैं, टॉफ़ी, जैसे कि आपके लिए गिफ्ट्स भी ऑर्डर किए हैं, कुछ तो पार्सल मंगवाए हैं, तो आप आइए, जब आप आएंगे नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे तभी आपको मिलेगा। क्योंकि जगन काका को, जैसे ही इज़ अ फूडी, उन्हें खाना बहुत पसंद है, तो जगन काका के लिए खाना बनाया है, आरती काकी और पल्लवी काकी के लिए भी पार्सल्स ऑर्डर किए हैं, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑर्डर किए हैं जो उनके हैसियत के हिसाब से हैं, और बाकी सोना दी के लिए कुछ अपॉइंटमेंट बुक की है जो उनसे हो नहीं रही थी बहुत वक्त से, तो कहीं से रिसोर्सेज का उपयोग करके जगधात्री ने वो भी कर दिया उनके लिए। तो सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ अभी फिलहाल मैं।
0: वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी अपनी ही प्लानिंग में लगा हुआ है। देखिए कैसे बदल गया है रुद्र का रंग ढंग। तो भाई अब देखना होगा कि मिशन के लिए साथ आए जगधात्री और शिवाय कैसे मिशन भी पूरा करते हैं और अपने प्यार को भी संभालते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: पेपर बैग डे तो हमें यही सिखाता है कि किस तरह हमारी छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आज लेते हैं आपसे इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, एनवायरमेंट का ख्याल रखिए, पेपर बैग्स का इस्तेमाल कीजिए, और उसके साथ साथ जुड़े रहिए हमसे, जहां हम लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट इस तरह। टेक केयर, बाय बाय।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
10: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति, सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम महिमीम के तहत आज रोपे जा रहे हैं 35 करोड़ पौधे, पर्यावरण संरक्षण और प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य। दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन हुआ, हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। पुरी में गुंडिचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में, मंदिर के जीर्णोद्वार और ढांचागत मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है पूरा। शानदार मौसम के बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, कुदरत के नजारे भी कैमरे में कर रहे हैं कैद। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची मेसी की टीम अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाली इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्सव, लगातार बढ़ रही है धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारधाम पहुंचे, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़। हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, शनिवार को 1827 यात्री पहुंचे, अब तक 1,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। हर महादेव के जयकारों के साथ पवित्र अमरनाथ की जारी है यात्रा, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं की तारीफ की, पहलगाम में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए। बद्रीनाथ धाम के पास बादल और धुंध के बीच खूबसूरत प्राकृतिक नजारा, पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। शानदार मौसम के बीच भक्त कर रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन, कैमरे में भी कैद कर रहे हैं शानदार नजारा। बद्रीनाथ में 11 जुलाई को 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान का आशीर्वाद दिया, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बादलों से गिरे नजर आए चमोली के पहाड़, दूर दूर तक दिख रही है बारिश की फुहार। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर बह रही है नदी। ओडिशा में रथ यात्रा को भव्य और सुरक्षित बनाने की तैयारियां पूरी, यात्रा मार्ग के साथ मंदिर परिसर की भी सजावट। पुरी के गुंडेचा मंदिर में हो रही है खास सजावट, वहीं पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ 7 दिन रहेंगे विराजमान। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है गुंडिचा मंदिर, भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहलाता है ये मंदिर। गुंडिचा मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात, बैरिकेटिंग्स भी तैनात। 16 जुलाई को रथ यात्रा के भव्य और दिव्य उत्सव का होगा शुभारंभ। गर्भगृह से लेकर राजशिखर तक हर कोने में की जा रही है सफाई। पुणे में दिखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी को लेकर रामभक्त पहुंचे। पुणे से देवघाट पर करते हुए सासवड की ओर बड़े श्रद्धालु ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ पंढरपुर पहुंचेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। अधिकारियों ने शिविर और डीजी संचालकों के साथ बैठक की। पुरी में रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। एनडीआरएफ पुलिस और आरपीएफ जवानों ने लिया हिस्सा। पुरी रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील जगहों पर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर की गई तैयारियां। जम्मू कश्मीर की रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। सलाल बांध के गेट खोले गए। चिनाब के किनारे इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए उठाया गया कदम। प्रशासन की हालात पर पूरी नजर। दक्षिण कश्मीर के चित्तरगुल इलाके के ऊपरी हिस्सों में बादल फटा। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। पहलगाम में बादल फटा। अबोरा नाला इलाके में पानी बढ़ने से अचानक बाढ़। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी जोरदार बारिश। कई इलाकों में जलजमाव। बेलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़। होटल में घुसा पानी। पर्यटकों को बाहर निकाला गया। प्रशासन हालात पर संभालने में जुटा। मेरठ के हसनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। 5 चरवाहों और सैकड़ों भेड़ बकरियों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तरकाशी में धराली खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा। पुलिस ने नदी किनारे रहने वालों को सावधान किया। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए सेवा कार्य किए गए। लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। जापान और ताइवान में तबाही मचाने के बाद तूफान बावी चीन के पूर्वी हिस्से में पहुंचा। उत्तराखंड में लगातार हो रही है भारी बारिश। रुद्रप्रयाग और चमोली समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बारिश की गई दर्ज। मसूरी में 75 मिलीमीटर बारिश। उत्तरकाशी अल्मोड़ा चंपावत और हरिद्वार में भी बारिश लगातार जारी। ऊखीमठ में 15.5 मिलीमीटर बारिश। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीरगंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन की टीम कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रखे हुए। केदारनाथ रूट पर पूरी नजर। उत्तर प्रदेश में आज पर्यावरण का महाकुंभ रचा जा रहा है। एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ कर दिया। आम जनता से लेकर वीआईपी तक पौधारोपण महाअभियान में शामिल हुए। वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश के 26 सरकारी विभाग शामिल हुए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी पौधारोपण किया। लोगों से महाअभियान से जुड़ने के लिए। अहमदाबाद में मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ हुआ। मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की सौगात। सिंगदरपुर लेख फ्रंट का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 982 परियोजनाओं का शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे। 81वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण में हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने भी हिस्सा लिया। कोटद्वार के घरों में घुसा हाथी का झुंड। सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर में गांव की महिलाएं सरकारी डेयरी योजना का उठा रही हैं फायदा। उधमपुर में डेयरी के काम में लगी महिलाओं ने बताई अपनी सफलता की कहानी। लक्स कोजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी में 600 करोड़ रुपए के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आधारशिला रखी। नोएडा के सेक्टर 76 में प्रिंसली स्टेट के निवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया। गुजरात के नवसारी शहर में बड़ा हादसा टला। झुकती हुई दो इमारतों को तुरंत खाली कराया गया। करीब 40 साल पुराने अमरदीप अपार्टमेंट की दो इमारतों में अचानक दरारें पड़ने लगी। चुनाव आयोग ने नया वोटर बनने के लिए बदल दिया नियम, अब फॉर्म 6 में जोड़ा गया कॉलम। नोएडा के शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति। फ्लाईओवर बनने से ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर हो जाएगा और आसान। उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। अयोध्या श्रीराम मंदिर में दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, INS महेंद्रगिरी पर लगाई जा सकती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने में सक्षम। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है जहाज का नाम। नौसेना को इस साल मिला छठा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी, 40 और जंगी जहाजों के निर्माण कर चल रहा है काम। अगले 2 महीनों में नेवी को मिल सकते हैं 4 और जंगी जहाज। रक्षा क्षेत्र में मोर्चे से देश के लिए शानदार खबर निकल कर आई, भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। मेक इन इंडिया
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: क्या आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या हैं आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत Connection.
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: Na bimari duniya se kahin jaane wali aur na hi hospital ke kharche. Bas aapko ye sochna hoga ki hospital ka bill kaun bharega? Aap ya aapki insurance policy? Aaj hi policy bazaar se हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरा पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: No.
2: Oh, no.
3: Welcome to Get Real.
1: I got something to say.
3: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
2: Oh my God.
4: It's got to be deliciously desperate.
2: Why do these girls forgive him?
5: Well, she has a soft spot for troubled men.
4: Boo bloody hoo.
3: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
2: Love runs deeper than we know.
3: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
1: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है.
1: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है.
1: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
13: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर. जाम से मिलेगी मुक्ति, सफर होगा आसान. उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आज रोपे जा रहे हैं 35 करोड़ पौधे. पर्यावरण संरक्षण और प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य. दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन. हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला. पुरी में गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में. मंदिर के जीर्णोद्वार और ढांचागत मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है पूरा. शानदार मौसम के बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं भक्त. कुदरत के नजारे भी कैमरे में कर रहे हैं कैद. फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची मैसी की टीम अर्जेंटीना. एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया. नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला.

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। सुबह की शुरुआत अगर पूजा पाठ और ईश्वर की आराधना से हो तो पूरा दिन ताजगी भरा और मंगलमय बीतता है। लेकिन मंदिर घर से दूर हो और समय कम हो तब क्या करें? अगर घर में ही एक छोटा सा मंदिर स्थापित हो जाए तो यकीन मानिए इससे आपको ईश्वर की भक्ति के लिए समय तो मिलेगा ही, साथ ही घर का मंदिर आपके भाग्य को भी संवार सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में मंदिर का होना कितना आवश्यक है और कैसे घर के मंदिर में भगवान की स्थापना करनी चाहिए। देखिए,

0: दिव्य और अलौकिक होते हैं देवस्थान। मंदिर में की गई प्रार्थना से बन जाते हैं बिगड़े का। सुबह की पहली किरण के साथ कीजिए ईश्वर का ध्यान, अपने आराध्य का गुणगान। भक्ति की शक्ति से आपका जीवन होगा खुशहाल। जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो रोम रोम में ऊर्जा का संचालन होता है। भगवान की भक्ति में डूबने पर हम सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। पूजा पाठ, ध्यान और आराधना से जो मानसिक शांति मिलती है वो दिन की बेहतर शुरुआत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन तब क्या करें जब हम रोज मंदिर ना जा सके। ऐसे में अगर घर में ही एक छोटा सा मंदिर स्थापित हो तो प्रभु आराधना के साथ दिन की बेहतर शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, आपकी पूजा उपासना के साथ ही जुड़ा है आपके घर का मंदिर भी, क्योंकि घर का छोटा सा मंदिर चमका सकता है आपका भाग्य।
1: सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वह पूजा स्थल से होती है, घर के मंदिर से होती है। पॉजिटिव ऊर्जा जो उससे प्राप्त होती है, मन में एक सकारात्मकता का जो बोध होता है वह उसके पूजा स्थल से होती है, घर के मंदिर से होती है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा उसको नियमित रूप से प्राप्त होगा, उसके कर्मों के साथ प्राप्त होगा, तो निश्चित तौर पर उसका जो जीवन लक्ष्य है, जीवन के लक्ष्य में सकारात्मक परिवर्तन बहुत ही सुंदर तरीके से होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा।
0: सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है आपके घर का मंदिर। घर की समस्याओं का समाधान छिपा है आपके घर के मंदिर में। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है आपके घर का मंदिर। ज्योतिष के जानकारों की माने तो घर में मंदिर होने से तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लेकिन घर में मंदिर स्थापित करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं घर के मंदिर से जुड़ी वो खास बातें।
2: सबसे पहले मंदिर साफ सुथरा रहना चाहिए। भगवान के आगे शुद्ध घी का दीपक सुबह और शाम अवश्य जलना चाहिए और इन पंच देवों का घर में आगमन अवश्य हो। गणेश जी हर प्रकार से शुभता देते हैं और व्यक्ति के घर में लक्ष्मी उसके घर में हर प्रकार के धन की आगमन की व्यवस्था बनाए रखती है। नर्मदेश्वर वाले शिव के घर में व्यक्ति के शांति बनी रहती है और नारायण स्वरूप जो भगवान ठाकुर जी का है, शालिग्राम जी वाले व्यक्ति के घर में सदैव प्रीति, धर्म और भक्ति बनाई रहती है। और जिस व्यक्ति के घर में पांचवे देव हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, उस घर में सदैव संतान अवश्य होती है और संतान सुखी स्वस्थ रहती है।
0: घर में दो तरह की ऊर्जा होती है, शुभ और अशुभ। घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए मंदिर का होना आवश्यक है। घर में मंदिर या पूजा का स्थान नियत होने से तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सेहत और मन की समस्याओं का निवारण शीघ्र होता है। मन में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर के लोगों में आपसी तालमेल बना रहता है। मंदिर का पूरा लाभ तभी होता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन हो। सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और मंदिरों को जागृत रखें।
1: मेष लग्न में मेष राशि जो है पूर्व दिशा की है, सिंह राशि भी पूर्व दिशा की है और धनु राशि भी पूर्व दिशा की है। मेष लग्न यानी मेष राशि लग्न है, शरीर है, पिंड है, पंचम जो भाव है विवेक है, ज्ञान है, बौद्धिक है। साथ में नवम भाव पूर्वजों का है, भाग्य का है, इष्ट देव का है। तो लग्न पंचम और नवम का जो दिशा बनता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह बनता है पूरब दिशा, ईशान कोण की दिशा। और हम जब उधर मुंह करके पूजा करते हैं तो इन तीनों का यानी मन का, बुद्धि का, भाग्य का सम्मिश्रण हमें प्राप्त होता है।
3: कृष्णा
0: घर में मंदिर स्थापित करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और घर का माहौल सकारात्मक बन जाता है। लेकिन घर में मंदिर स्थापित करने से पहले कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जानकार बताते हैं कि घर का मंदिर सही दिशा में होना बहुत आवश्यक है। आइए आपको बताते हैं घर के मंदिर का वास्तु कनेक्शन। पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग करें। अगर फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखें। पूजा का स्थान नियत होना चाहिए और उसे बार बार ना बदलें। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला या सफेद रखें, गहरे रंग से बचें।
2: सामान्यतः ये एक वास्तु का विधान है कि पूर्व और उत्तर का जो कोण कहलाता है उसको भगवान के मंदिर के लिए कहा गया है। ईशान कोण इसका नाम है। यहाँ पर मंदिर को रखने का विधान बताया।

0: प्यार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चित्र कितना भी बड़ा हो, पूजा स्थान पर शंख, गोमती, चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें।
1: पूजा स्थल अपवित्र नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र स्थल होना चाहिए, एकांत प्रिय जगह होना चाहिए, शांत वातावरण वाला जगह होना चाहिए, ईशान कोण होना चाहिए। पूजा स्थल में कोई भी मूर्ति टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में मूर्ति जो भी रखे वह 9 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति जो भी हो वह खोखली ना हो, ठोस मूर्ति रखने से ज्यादा फल प्राप्त होता है। यद्यपि फोटो रखते हैं तो फोटो आप 9 अंगुल से बड़ी भी रख सकते हैं, परंतु मूर्तियां हमेशा 9 अंगुल से छोटी होना ज्यादा शुभ फल प्रदायक होता।
0: अपने अंतर मन से साक्षात्कार होना यानी अपने अंदर बसे ईश्वर को पा लेना, घर के मंदिर से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखते हुए की गई पूजा उपासना आपके मन मंदिर में सकारात्मक शक्ति का संचार कर सकती है। भगवान की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और घर आंगन में खुशियों की बहार आ जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर को जागृत कैसे करें। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देखिए, आस्था कहती है कि भगवान का जहाँ विग्रह होता है वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। साथ ही घर के मंदिर को अगर जागृत कर लिया जाए तो परिणाम बेहद कल्याणकारी होते हैं। घर का मंदिर आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि घर के मंदिर को जागृत कैसे किया जाए और घर के मंदिर से जुड़ी सावधानियाँ क्या होती हैं।

0: जब मंदिर की नींव रखी जाती है तो भूमि पूजन होता है। मंदिर बनने के बाद विधिवत पूजा अर्चना होती है। मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जहां से वरदान बनकर निरंतर बहती रहती है ईश्वर की कृपा। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है घर के मंदिर के लिए भी, जिनके लिए सही दिशा से लेकर पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र ऊर्जा का स्रोत होता है घर का मंदिर।
1: सूर्य की दिशा भी पूरब है, सिंह राशि की दिशा भी पूरब है, बृहस्पति की दिशा धनु राशि की दिशा, नवम की दिशा पूरब है और बृहदेव गुरु बृहस्पति की भी पूरब है। तो इंद्र, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की जब सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के साथ प्राप्त होगा तो व्यक्ति का जो कर्म होगा वो सत्कर्म वाला होगा, सकारात्मक होगा। तो इसी कारण से सही दिशा में बनाया गया घर का पूजा स्थल, घर का मंदिर आपके भाग्य में चार चांद लगा देगा, प्रगति वाला बना देगा, इसका ध्यान रखें।
0: सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में मंदिर का उचित स्थान पर होना बहुत जरूरी है। अगर आप शुभ फल पाने की इच्छा रखते हैं और अपने घर परिवार पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि घर का मंदिर जागृत हो। तो किस विधि से करें मंदिर को जागृत, चलिए जानते हैं।
2: घर के मंदिर को कभी गंदा ना रखें और गलत दिशा में ना रखें। कई लोग स्थानाभाव में गलती से गलत स्थान पर रख लेते हैं, उसमें मंदिर जागृत नहीं रहता, मंदिर कई प्रकार नुकसान पहुंचा देता है। मंदिर किसी भी शौचालय आदि के पास ना हो, ऐसी जगह पर ना हो जहां जूते चप्पल रहते हो, या किसी ऐसी जगह ना हो जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे आदि मंदिर ना बनाए, ये विशेष बात का ध्यान रखें।
0: ज्योतिषी मानते हैं कि घर का मंदिर जितना व्यवस्थित और वास्तु अनुकूल होगा परिणाम उतना ही शुभ फलदायी होगा। मंदिर के स्थान को लेकर काफी सचेत होना चाहिए, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि घर का मंदिर कैसा हो ताकि दैवीय कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बने

0: तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किन उपायों से आप कर सकते हैं मंदिर को जागृत। दोनों वेला यानी सुबह शाम एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाएं। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाएं। दीपक पूजा स्थान के बीच में रखें। पूजा के पहले कीर्तन या उच्चारण सहित मंत्र जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें। मंदिर में एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें। अगर गुरु मंत्र नहीं मिला तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा के बाद अर्पित किया हुआ जल प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर करें। शास्त्रों के मुताबिक भगवान के भजन और मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। घर में स्थापित एक छोटा सा मंदिर आपके पूरे घर का माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा।
1: वास्तु के अनुसार हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है, जो फोटो है, वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लगा सकते हैं। भगवान गणेश, माता दुर्गा, कुबेर देवता की जो मूर्ति है वह उत्तर दिशा की तरफ होना श्रेयस्कर होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की मुंह की ओर मुंह करके आप रख सकते हैं। ये ठीक सम्मुख रहे तो बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं।
0: आइए अब आपको बताते हैं कि मंदिर में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंदिर या पूजा स्थान पर गंदगी ना रखें। शयन कक्ष या बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश शयन कक्ष में मंदिर बनाना भी पड़े तो मंदिर पर पर्दा अवश्य रखें। पूजा स्थान पर पूर्वजों के चित्र ना रखें। शनिदेव का चित्र या मूर्ति भी ना रखें। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। पूजा स्थान के साथ स्टोर रूम या रसोई ना बनाएं। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए।
2: महा उपाय के लिए सबसे पहले भगवान के चूंकि नारायण जी को लाल रंग कभी भी प्रिय नहीं है, तो कभी भी मंदिर के ऊपर बिछावनी लाल रंग की कम से कम प्रयोग करें। वहां पीले रंग का कपड़ा प्रयोग करें और जो लोग पीले रंग का करेंगे उस घर में जल्दी जल्दी बच्चों का विवाह आदि होना, घर में शुभ कामों की लगातार बने रहने की हमने बहुत सुंदर शुभ देखे हैं।
0: सच तो ये है कि घर में मंदिर होने से सकारात्मक ऊर्जा घर में रहने वालों पर हमेशा बनी रहती है। तो इन सावधानियों और नियमों का ध्यान में रखकर घर के मंदिर को व्यवस्थित कीजिए। ईश्वर की अनुकंपा और दया आप पर सदा बनी रहेगी। आगे हम जानेंगे किस उपाय से घर का मंदिर आपका भाग्य चमका सकता है।
3: तो घर का मंदिर आपके भाग्य को कैसे संवार सकता है ये तो आपने जाना, लेकिन घर का मंदिर वास्तु सम्मत भी होना चाहिए। तो चलिए अब कुछ और जानकारियां आपको घर में मंदिर स्थापित करने से जुड़ी दे देते हैं। इन बातों का ध्यान रखने से आपके जीवन में होगा शुभता का प्रवेश।

0: जब भी हम होते हैं परेशान, ईश्वर का ध्यान लाता है हमारे चेहरे पर मुस्कान। जब किसी समस्या का नहीं मिलता समाधान, तो संकट दूर करने के लिए करें देवों का गुणगान। हमें नित्य ही एक तय समय पर ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ऐसा करने से हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है।
1: यदि किसी व्यक्ति के घर का मंदिर सुंदर सुयोग्य स्थान पर और विधि पूर्वक रखा गया हो, विधि पूर्वक उनका प्रतिदिन पूजन होता हो, तो व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ ही नहीं सकता। उस व्यक्ति को घर में जाने से पहले भगवान को कह के जाए कि मैं अपने कार्य को जा रहा हूँ, आते हुए कह के आए कि मैं आ गया आपकी कृपा से। उस व्यक्ति की रक्षा साथ साथ स्वयं सखा भाव से भगवान करते हैं।
0: शास्त्रों में ईश्वर की आराधना के चमत्कारिक प्रभाव बताए गए हैं। माना जाता है कि मंत्रों और श्लोकों के जाप से संकट दूर होते हैं, साथ ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है। सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में मंदिर का होना बहुत जरूरी है। घर में मंदिर के कुछ जरूरी नियमों और बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि दैवीय कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा बना रहे। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ और खास बातें। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी उचित नहीं माना जाता है। अगर मंदिर में एक ही भगवान की दो तस्वीरें हैं, तो उन्हें आमने सामने ना रखें। भगवान की मूर्तियों को एक दूसरे से कम एक इंच की दूरी पर रखें। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर या आसपास में शौचालय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि मंदिर की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए।
1: भगवान के घर में मंदिर में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शंख ध्वनि संध्या के समय, दीपक और घंट ध्वनि सुबह के शाम अनिवार्य कही गई है। जिन लोगों को पत्थर के बड़े मंदिर बनाना घर में रखना होता है, उन लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में कमी आने लगती है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप पत्थर का पूरा मंदिर स्थापित करेंगे तो गृहस्थ को मंदिर में रहने का विधान नहीं गया, तो उसमें गृहस्थी शांत होने लगती है। ऐसा ना करें, ये विशेष लोग का ध्यान रखें।
0: वैसे तो भगवान का स्थान कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी हैं। उनका स्थान तो सच्चे भक्त के हृदय में होता है। अपने घर के मंदिर को सर्वशक्तिमान विधाता की शक्ति का बिंदु मानकर उस स्थान पर नित्य पूजन करें, फिर देखिए आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होगा।
2: और चलिए प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।

0: For the past 25 years, APMEX has been America's most trusted precious metals exchange. Whether as a hedge against inflation and uncertainty in the economy, or thinking about the future and planning for your retirement, precious metals are safe haven assets that can help grow and secure your wealth for generations to come. At APMEX, we help you secure your tomorrow, today. Get started on your precious metals investing journey by visiting us at APMEX.com. That's APMEX.com.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए
9: सावन की शुरुआत तो अभी उसमें समय है लेकिन बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश मौसम को और भी ज्यादा सुनहरा बनाई हुई है हालांकि बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है लेकिन कहते हैं ना कि जब बुलावा बाबा का हो तो मौसम की बंदिशें बेसर हो जाती हैं खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है वहीं पर माणा गांव में भी रौनक देखने को मिल रही है पौराणिक स्वर्गारोहण मार्ग पर भी पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रिमझिम बरसती बूंदे और फिजाओं में घुली ठंडक। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और अलौकिक मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्तों के दिलों में आस्था की गर्मी साफ देखी जा सकती है। बद्रीनाथ में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस अनवरत बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, लेकिन बाबा के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि खराब मौसम पर भक्तों की अटूट आस्था भारी पड़ रही है।
1: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंह शिला बारह शिला है, वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक यात्रा मार्ग सुचारू होने से श्रद्धालु बहुत उत्साहित है, वे बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि मानसून का असर यात्रा पे जरूर दिखाई दे रहा है, यात्रा में जो कमी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे, सुगम दर्शन जो मंदिर समिति द्वारा और तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो इस समय सबसे बेहतर व्यवस्थाएं इस समय है।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवा सीधे रुक कर रहा है देश के पहले गांव माना की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। देश के कोने कोने से सैलानी जादुई और सुहाने मौसम का गवाह बनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। धुंध की सफेद चादर के बीच ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दोगुना कर रही हैं। कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गांव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। आज इस कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहाँ बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तिहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। बद्रीनाथ धाम से कमल नैन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University transforming your passion into profession.
11: ग्रेटर नोएडा के शावेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। हर रोज लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति, सकरे रास्ते पर सफर हो जाएगा आसान। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद। दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन। हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। पुरी के गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मंदिर के जीर्णोद्वार और ढांचागत मरम्मत के काम में तेजी। शानदार मौसम के बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। धार्मिक यात्रा के बीच कैमरे में कैद कर रहे हैं कुदरत का खूबसूरत नजारा। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची मैसी की टीम अर्जेंटीना। एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को होने जा रहा है मुकाबला।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। आज स्पेशल शो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रहस्यों की जिन्होंने दुनिया में सदियों से खौफ का माहौल बना रखा है, या फिर उनको देखने सुनने पर अजीब सा अनुभव होता था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यों से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। इन रहस्यों को वैज्ञानिकों ने अपनी शोध से उजागर कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसके नाम से ही सिहरन पैदा हो जाती है। कई सौ साल से ट्रायंगल पहली बना हुआ था। आखिर कैसे इस ट्रायंगल में जो भी जहाज या विमान आता था गायब हो जाता था, उसका पता नहीं चलता था। लेकिन अब इस पहेली को वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है। रिपोर्ट देखिए।

0: दशकों से बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे रहस्यमयी इलाकों में गिना जाता रहा है। कभी जहाज गायब होने की कहानियाँ, कभी अचानक लापता हुए विमान, तो कभी कंपास खराब होने जैसी घटनाओं ने इसे एलियन और दूसरी दुनिया से जोड़ दिया। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ ऐसा खोजा है जिसने इस रहस्य को नई दिशा दे दी है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में मौजूद है। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और ऊपर बरमूडा देश के बीच त्रिकोण बनाता है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को लेकर कई तरह की कहानियां और दावे किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कोई अलौकिक शक्ति है जो जहाजों और विमानों को गायब कर देती है, तो कुछ लोग इसे समुद्री तूफान, गैस विस्फोट और मानवीय त्रुटि जैसी प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी कई सौ साल पुरानी है। इतिहास में पहली कहानी 1498 में देखने को मिलती है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के पास कुछ रहस्यमयी गतिविधियां देखी थी, जैसे उनके जहाज का असंतुलित होना, दिशा सूचक यंत्र की दिशा भी बदलने लगी थी। इस घटना के अलावा भी समय समय पर कई नामचीन लोगों ने इस जगह को लेकर बहुत कुछ दावा किया है, इसलिए बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में रहस्य और उत्सुकता पैदा हो जाती है। वैज्ञानिकों को बरमूडा द्वीप के करीब 20 किलोमीटर नीचे एक बेहद अनोखी और हल्की चट्टानी परत मिली है। रिसर्चर का कहना है कि ऐसी संरचना अब तक किसी दूसरे समुद्री द्वीप के नीचे देखी नहीं गई। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक रहस्यमयी इलाका माना जाता है, जिसे आमतौर पर मियामी, सान जुआन और बरमूडा को जोड़कर बने एक काल्पनिक त्रिकोण के रूप में बताया जाता है। इसी वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। कार्नेगी साइंस और येल यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने भूकंप की तरंगों की मदद से धरती के अंदर की 3D इमेज तैयार की। इसमें पता चला कि बरमूडा के नीचे समुद्री सतह और मेटल के बीच कम घनत्व वाली मोटी चट्टानी पर मौजूद है, जो किसी तैरते प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले यहां ज्वालामुखीय गतिविधि खत्म होने के बाद मैग्मा जमा होकर ठंडा हुआ और इसी ने ये हल्की चट्टानी नींव बना दी। यही वजह है कि बरमूडा आज भी समुद्र के ऊपर स्थिर बना हुआ है, जबकि आमतौर पर ज्वालामुखीय द्वीप समय के साथ नीचे धंसने लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि इस खोज का विमान दुर्घटनाओं, जहाजों के गायब होने या कंपास गड़बड़ी जैसी घटनाओं से सीधा संबंध नहीं मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड समेत कई एजेंसियां पहले भी कह चुकी हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में असामान्य संख्या में हादसे होने के कई पक्के सबूत नहीं हैं।
1: बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ढेर सारे मिथ प्रचलित हैं कि यहां से विमान गायब हो जाते हैं, जहाज गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है, वो एक भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिसमें ये होता रहा है कि या तो ये माना गया है कि पानी की डेंसिटी जो है मीथेन गैस निकलने से कम हो जाती है, जिससे कि बड़े से बड़े जहाज जो है डूब सकते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें नॉर्थ साउथ को गलत बताने लगता है और जहाज जो है दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं।
0: विशेषज्ञों के मुताबिक इस इलाके में तेज तूफान, ऊंची लहरें, मौसम का अचानक बदलना और मानवीय गलतियां हादसों की बड़ी वजह हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। कुछ रिसर्चर मान रहे हैं कि ये संरचना उस दौर से जुड़ी हो सकती है जब सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकअप ऑफ पैंगिया टूट रहा था। अमेरिका की मौसम और समुद्र से जुड़ी एजेंसी NOAA, US कोस्ट गार्ड और कई वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों या विमानों के गायब होने की घटनाएं दुनिया के दूसरे व्यस्त समुद्री इलाकों से ज्यादा नहीं है। ज्यादातर हादसे खराब मौसम, तूफान, इंसानी गलती, नेविगेशन की परेशानी और समुद्र की तेज धाराओं की वजह से होते हैं। कई बार समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी लहरें भी हादसों का कारण बनती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य काफी हद तक फिल्मों, कहानियों और मीडिया की वजह से मशहूर हुआ। असल में ये एक सामान्य समुद्री इलाका है जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण हादसे भी ज्यादा सुनने को मिलते हैं। इसमें एलियन या किसी सुपर नेचुरल ताकत जैसी बातों का कोई सबूत नहीं मिला है।
1: कई जगह उथले जो है जो समुद्र की सतह है वो ऊपर है, और उसमें क्या होता है कि वहाँ के जहाज उसमें जा कर के टकरा जाते हैं। तो ये विभिन्न भिन्न भिन्न कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये होता है कि अगर कोई जहाज डूब गया तो, या वो किसी और डायरेक्शन में जा करके कहीं और डूब गया, तो ये बरमूडा ट्रायंगल का वो होता गया है। फिर बाद में ढेर सारी कहानियां उसके बारे में प्रचलित हो गई। तो ये माना जा सकता है कि सारा कुछ उन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से है जिसके कारण ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और उसमें कोई ऐसा मिस्टिसिज्म नहीं है जो कि कई कई स्पेशल नाविकों ने और लोगों ने प्रचलित कर दिया है।
0: दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पूरा माजरा बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में हवा की बेहद तेज रफ्तार से जुड़ा है। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्रियोरोटो रिको के बीच समुद्र में 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहती हैं, जो किसी ताकतवर बम का असर पैदा करती हैं। इसलिए इन्हें एयर बम भी कहा जाता है, और ये एयर बम उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों और विमानों के लिए काल बन जाते हैं, क्योंकि इनके जरिए समुद्र में बेहद ऊंची लहरें पैदा होती हैं, जो इधर से गुजरने वाले जहाजों का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी होती हैं। हवा की भीषण रफ्तार के चलते आसमान में उड़ रहे विमानों के भी क्रैश करने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल घूमड़ रहा होगा कि आखिर उसी खास इलाके में 100 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ जैसी हवा क्यों चलती है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा के इलाके में भीषण रफ्तार वाली हवा के लिए जिम्मेदार हैं वहां के आसमान में हेक्सागोन यानी षटकोणीय आकार वाले बादल। तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में आसमान में ऐसे बादल देखे गए हैं जो बेहद घातक होते हैं। इन बादलों के किनारे बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसा आमतौर पर कहीं नहीं देखा जाता। इन बादलों की चौड़ाई 32 से 88 किलोमीटर तक आंकी गई है, और ये बादल खासतौर से बरमूडा ट्रायंगल के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जो बेहद खतरनाक इलाका माना जाता है। इन बादलों के तले 160 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाली हवा इतनी खतरनाक होती है जैसे कोई बेहद ताकतवर बम। लिहाजा जो भी विमान या जहाज इनकी चपेट में आया वो तो समझ लीजिए कि गया। ये सारी जानकारी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों के विश्लेषण से मिली है। दरअसल होता ये है कि बादलों के तले तेज रफ्तार से चलने वाली हवा जब समुद्र की सतह से टकराती है तो बेहद भयानक लहरें उठती हैं। कई बार ये लहरें एक दूसरे से मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर और विशाल हो जाती हैं, और फिर लहरों के कहर से जो कुछ होता है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आइए बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिस पर 100 साल से भी ज्यादा वक्त से पर्दा पड़ा हुआ था। ये रहस्य है अंटार्कटिका में बहने वाले खूनी झरने का। देखिए, जिस पर से 100 साल के बाद अब वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा दिया है, अंटार्कटिका के माइनस तापमान में टेलर ग्लेशियर से बहने वाले इस झरने का पानी इंसानी खून की तरह लाल है, जिसके कारण इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिक काफी समय से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ग्लेशियर के अंदर से खून जैसा लाल पानी क्यों निकलता है, शून्य से नीचे तापमान में भी ये जमता क्यों नहीं है, और भारी बर्फ के भीतर से पानी बाहर कैसे आता है। बर्फ की गहराइयों में छुपे इन तमाम रहस्यों को वैज्ञानिकों ने डीकोड कर लिया।

0: अंटार्कटिका में शून्य से काफी नीचे तापमान में जहाँ सब कुछ जम जाता है, वहाँ ये झरना जमता क्यों नहीं? चारों तरफ बर्फ के साम्राज्य में सब कुछ सफेद है, तो भी इस झरने का रंग लाल क्यों है? अंटार्कटिका का ये रहस्यमय खूनी झरना कुदरत का करिश्मा है या कोई श्राप, या फिर इसके पीछे की वजह ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में बहने वाले लाल झरने के रहस्य ने एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक दुनिया को अचरज में रखा। पहली नजर में इंसानी खून जैसा नजर आने वाला एक खौफनाक नजारा दुनिया भर के लोगों को डराता रहा। 1911 में अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से बहते हुए इस रहस्यमय झरने की खोज के बाद इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश लगातार जारी रही, लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी ये पहेली बना रहा। लेकिन अब इसके रहस्य से पर्दा उठ चुका है। अंटार्कटिक साइंस जर्नल में वैज्ञानिक ने एक नई रिसर्च प्रकाशित कर खूनी झरने के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे सदियों से आखिर झरने का पानी खून की तरह क्यों लाल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व है। इस रिजर्व में बहुत ही ज्यादा खारा पानी भरा हुआ है। ग्लेशियर के मूवमेंट से भारी दबाव पैदा होता है, जिससे खारा पानी बर्फ के छिपे दरारों से बाहर आ जाता है। इस पानी में भारी मात्रा में आयरन घुला होता है। बाहर आते ही आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल लोहे पर जंग लगने जैसा ही एक प्रोसेस है। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। 1911 में जब ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इसकी खोज की, तो उन्हें लगा था कि शैवाल की वजह से पानी का रंग लाल है, और उन्होंने तुरंत इस जगह का नाम ब्लड फॉल्स रख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि शैवाल इस लाल रंग की वजह से नहीं, और अब ये साफ है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से झरने का रंग लाल है, और भारी दबाव की वजह से भारी बर्फ के नीचे दबा हुआ पानी नेटवर्क चैनलों से बाहर सतह पर आ जाता है। वैज्ञानिकों के सामने एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी था कि अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में माइनस तापमान में भी ये पानी जमता क्यों नहीं। इस पहेली का जवाब पानी में मौजूद भारी नमक में छिपा है। रिसर्चर्स ने बताया कि इस खारे पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अत्यधिक नमक के कारण पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल पानी से काफी नीचे चला जाता है। जब ये पानी जमने की कोशिश करता है तो उसमें से हीट निकलती है। इस हीट और नमक के मिश्रण से पानी कभी नहीं जमता है। इसी वजह से टेलर ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर माना जाता है। यहाँ से लगातार लिक्विड फॉर्म में पानी का बहाव होता रहता है। वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल ये है कि ग्लेशियर के नीचे छिपे इस प्राचीन पानी में क्या जीवन संभव है। शोधकर्ताओं को इस प्राचीन खारे पानी में एक नई तरह के सूक्ष्म जीव मिले हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाखों सालों से ग्लेशियर के नीचे बिना धूप के जिंदा है। इन सूक्ष्म कणों से सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम जैसे कई महत्वपूर्ण एलिमेंट्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवन मुमकिन है। मंगल ग्रह और बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी ऐसी ही बर्फीली सतह है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वहाँ भी इस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये खोज ब्रह्मांड में एलियन लाइफ तलाशने में बहुत मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और देखिए, इटली में स्थित दुनिया के महान आश्चर्यों में से एक पीसा की मीनार की तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। वही मीनार जो एक तरफ से थोड़ी झुकी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस मीनार के पिछले 750 सालों में भी ना गिरने का कारण ढूंढ निकाला है। साल 1280 में बने इस मीनार का सामना कई शक्तिशाली भूकंपों से हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो खड़ी रही, वो एक भी तरफ झुकी नहीं। वैज्ञानिकों ने इस स्ट्रक्चर के पीछे की वजह का पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य का भी खुलासा कर दिया है कि 5 डिग्री के खतरनाक कोण तक झुकी होने के बावजूद मीनार को कैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

0: इटली के पीसा शहर में पियाजा डेल डुओमो में किसी भी दिन चले जाइए, आपको टूरिस्ट तस्वीर के लिए पोज देते हुए दिखाई देंगे। उनके हाथ एक मीनार की ओर फैले हुए रहते हैं, मानो वे अपनी पूरी ताकत से उसे सहारा दे रहे हों। ये कोई और इमारत नहीं है बल्कि पीजा की झुकी हुई मीनार, जो दुनिया की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जो झुके होने के चलते चर्चा में रहता है। पीसा की मीनार यानी लीडिंग टावर ऑफ पीसा ने साल 1280 के बाद कई शक्तिशाली भूकंप झेले हैं, लेकिन इसके बावजूद वह खड़ी है। दरअसल 12वीं शताब्दी में इटली में अर्नो नदी पर स्थित एक व्यस्त व्यापार केंद्र था, जो फ्लोरेंस से लगभग 50 मील दूर था। इस जगह का नाम पीसा है। यहाँ एक गिरजाघर के घंटाघर का निर्माण शुरू हुआ। जब घंटाघर बनकर तैयार हुआ तो वह एक तरफ झुका हुआ था। आधिकारिक तौर पर पीसा की मीनार करीब 1370 में बनकर तैयार हुई, लेकिन अगले 6 शताब्दियों में इसका झुकाव और भी बढ़ता गया। जो स्मारक के अनूठे आकर्षण की एक पहचान बन गई। तब से लेकर अब तक आधुनिक इंजीनियरों का कहना है यह एक चमत्कार ही था, यह पूरी तरह से कभी ढहा नहीं। इसे मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद पीसा का टावर लगभग 0.5 इंच प्रति वर्ष की दर से धसता रहा, जिससे इसके ढहने का खतरा बढ़ता गया। इस मीनार के झुकी होने के कारण ऐसी आशंका रहती थी कि इसे गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, या यहां तक कि हल्के से भूकंप के कारण ये गिर भी सकती है। बहरहाल इस इलाके में वर्ष 1280 के बाद 4 बार शक्तिशाली भूकंप भी आए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मीनार का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब सवाल उठा कि यह मीनार झुकी कैसे है। 1990 तक ये मीनार वर्टिकली 5.5 डिग्री यानी लगभग 15 फीट झुकी हुई थी, जो अब तक का सबसे एक्सट्रीम एंगल था। उसी साल स्मारक को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया और घंटियों को हटा दिया गया। तब 16 इंजीनियरों की एक टीम बनाई गई और भूकंपीय भू तकनीकी और ढांचागत सूचना का अध्ययन करने के बाद शोध समूह ने पाया कि इस मीनार के खड़े रहने के लिए इसकी नींव में डाली गई मिट्टी जिम्मेदार है, जिसने जमीन के नीचे हुई गतिविधि के कारण मीनार में हुई गतिविधि पर प्रभाव नहीं डाला। मीनार की ऊंचाई और कठोरता के साथ साथ नींव में डाली गई मिट्टी की कोमलता से भूकंप आने पर यह हिलती नहीं है, यही इसके बचे रहने की मुख्य वजह है।
1: पीसा की मीनार लोगों को आश्चर्यचकित करती है, ये और ये वर्ल्ड के वंडर्स में है, 7 वंडर्स में है। और इसमें क्या है कि जब ये इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो 3 स्टोरीज बनने के बाद लोगों ने ये रियलाइज किया कि एक तरफ झुकने लगी। एक्चुअली स्पेशल वो जो सॉइल की कंडीशन वहाँ पे थी, वो सॉइल लूज थी, तो एक तरफ जो है ये झुकने लगी। और फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम तक इसका कंस्ट्रक्शन बंद रहा। उसके बाद में जब लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो उल्टे दूसरी वाली साइड पे ज़्यादा वेट डालने की कोशिश की, और फिर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, लेकिन वो इनका ये मामला जो है सफल नहीं हो पाया और इवेंचुअली ये झुकी रही। अभी फिर काफ़ी टाइम पहले ये रियलाइज़ किया गया कि ये और भी झुकती चली जा रही है, तो लोगों को ये मतलब 5 डिग्री से ज़्यादा का जब लोगों को लगा कि इससे ज़्यादा झुक जाएगी तो फिर इसकी अपने वजूद पे ही खतरा मंडराने लगा। तो उसके बाद इस पे जो है इंजीनियरिंग इंटरवेंशन किए गए और फिर काफ़ी डिटेल में जा करके दूसरी तरफ जो है सॉइल को लूज किया कुछ करके, फिर इसका 4 डिग्री से इसके इंक्लिनेशन को कम किया गया और अभी इस पे कोई खतरा नहीं है और ये अगले काफ़ी वर्षों तक टोटली जो है ये सेफ है।
0: जब रहस्य का पता चल गया तब इंजीनियरों ने इसे स्थिर करने के लिए बड़े स्तर पर मरम्मत का काम शुरू किया। नीचे से मिट्टी निकालकर और मीनार के उत्तरी छोर पर भार लगाकर वे मीनार के झुकाव को 13.5 फीट या वर्टिकली 4 डिग्री तक कम करने में सफल रहे। तब 2001 में मीनार को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसे सीधा करने का काम जारी रहा और 2008 में सेंसर ने दिखाया कि लगभग 19 इंच के कुल सुधार के बाद मीनार के झुकने की गति रुक गई थी। इस प्रक्रिया को डायनेमिक सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन कहा जाता है। शोध समूह में ब्रिटेन में ब्रिसल विश्वविद्यालय के इंजीनियर भी शामिल है। इंजीनियरों का मानना है कि भूकंप या किसी और अप्रत्याशित आपदा को छोड़कर पीसा की झुकी हुई मीनार करीब 200 सालों तक स्थिर रहेगी। पीसा की मीनार की इस कहानी से यही साबित होता है कि ना तो इसे जानबूझकर कभी झुका हुआ बनाया गया, न ही इंजीनियरों ने कोई लापरवाही की। गलती बस इतनी थी कि इसकी नींव नरम और दलदली जमीन पर बनाई गई। इस वजह से ये मीनार झुक गई और आज तक ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।

0: You hear it once and remember everything.
1: I'm too sexy for your party. Too sexy for your party.
0: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, हर रोज लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति, संकरे रास्ते पर सफर हो जाएगा आसान। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य, पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद। दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन, हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। कुंडेश्वर मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, मंदिर के जीर्णोद्वार और ढांचागत मरम्मत के काम में तेजी। शानदार मौसम के बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, धार्मिक यात्रा के बीच कैमरे में कैद कर रहे हैं कुदरत का खूबसूरत नजारा। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची मैसी की टीम, अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: देश भर में एक बार फिर से बदल सकता है मौसम का मिजाज। 18 से 25 जुलाई के बीच हो सकती है मानसून की वापसी। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसेंगे बदरा। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। मेघालय में आज बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन के लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश के चलते चेतावनी के चलते मौसम विभाग की अपील। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले आईएमडी की एडवाइजरी का पालन करें। धुंध की चादर में सजा डलहौजी, पर्यटकों को भा रहा मिनी स्विट्जरलैंड का नजारा। मानसून में डलहौजी बना टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। बादलों के बीच देखी झांकती नजर आई वादियां। गांधी चौक से पंचकुला तक हर रोज जन्नत का नजारा। लगातार बारिश से बाधित हुआ कैंपटी से मसूरी बैंडमार्क। जेसीबी की मदद से जारी है मरम्मत का कार्य। यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी विशेष गाइडलाइंस। गुजरात के अमरेली में गांव की गलियों में घूमते नजर आए जंगली मेहमान। बारिश रुकते ही 3 शावकों के साथ कैद हुआ शेरनी का वीडियो। अमरेली इलाके में वन विभाग का अलर्ट, 24 घंटे जारी निगरानी। लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया लायन फैमिली की मूवमेंट। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। जूते पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का ऑटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हुए तस्वीर। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देखा मुख्यमंत्री विजय का अलग अंदाज। समर्थन जूते पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर की रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। सलाल बांध के खोले गए कपाट। चिनाब के किनारे इलाकों में बाढ़ से बचने के लिए कदम उठाया गया। प्रशासन की हालात पर पूरी नजर। दक्षिण कश्मीर के चित्तरगुल इलाके के ऊपरी हिस्सों में बादल फटा। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। पहलगाम में बादल फटा। अबोरा नाला इलाके में पानी बढ़ने से अचानक बाढ़। बांग्लादेशी राजधानी ढाका में भी जोरदार बारिश लगातार जारी। कई इलाकों में जलजमाव। पहलगाम के नाला ओवेरा में अचानक आई बाढ़। होटल में घुस गया पानी। मेरठ के हस्तनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। 5 चरवाहों और सैकड़ों भेड़ बकरियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में धराली खीरा गंगा का जलस्तर बढ़ा। पुलिस ने नदी किनारे रहने वालों को सावधान किया। गुजरात के जामनगर में अच्छी बारिश और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए सेवा कार्य। लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। गायों के लिए भी तैयार किए गए बूंदी लड्डू। जापान और ताइवान में तबाही मचाने के बाद तूफान बाही चीन के पूर्वी हिस्से में पहुंचा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश। रुद्रप्रयाग और चमोली समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बारिश की दर्ज की गई। मसूरी में 75 मिलीमीटर बारिश। उत्तरकाशी अल्मोड़ा चंपावत और हरिद्वार में भी बारिश लगातार जारी। ऊखीमठ में 15.5 मिलीमीटर बारिश। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीरा गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन की टीम कंट्रोल रूम से हालात पर लगातार नजर रखी हुई है। केदारनाथ यात्रा रूट पर भी पूरी नजर। बद्रीनाथ धाम के पास बादल और धुंध के बीच खूबसूरत प्राकृतिक नजारा। पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। शानदार मौसम के बीच भक्त कर रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन पूजन। कैमरे में कैद की तस्वीर। बद्रीनाथ में 11 जुलाई को 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान का आशीर्वाद लिया। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बादलों से घिरे नजर आ रहे हैं चमोली के पहाड़, दूर दूर तक दिख रही है बारिश की फुहार। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, पूरे उफान पर नदी नाले। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, लगातार बढ़ रही है धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारधाम पहुंच चुके हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सबसे ज्यादा आंकड़ा। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब। शनिवार को 1,827 यात्री पहुंचे, अब तक 1,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज रहा पवित्र अमरनाथ यात्रा का धाम, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं की तारीफ कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु। उड़ीसा में रथ यात्रा को भव्य और सुरक्षित बनाने की पूरी तैयारियां, यात्रा मार्ग के साथ मंदिर परिसर में भी सजावट। पुरी के गुंडीचा मंदिर में भी हो रही है खास सजावट, यहीं पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ 7 दिन तक रहेंगे विराजमान। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, कहलाता है मंदिर। गुंडीचा मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम, बैरिकेड्स तैयार। 16 जुलाई को रथ यात्रा के भव्य और दिव्य उत्सव का होगा शुभारंभ, गर्भगृह से लेकर शिखर तक कोने कोने में सफाई। पुणे में देखा आस्था और श्रद्धा का जनसैलाब, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर भक्त पहुंचे। पुणे से देवे घाट पर पार करते हुए सासवड और बड़े श्रद्धालु ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ पंढरपुर पहुंचेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने शुरू कर दिया तैयारियां, अधिकारियों ने शिविर और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। पूरे में रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन और

अहमदाबाद में मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण करके शुरुआत की। मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की सौगात, सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 982 परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल। 81वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शामिल हुए तमाम लोग। संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण में हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी ने भी हिस्सा लिया। कोटद्वार के घरों में घुस गया हाथी का झुंड, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। जम्मू कश्मीर में गांव की महिलाएं सरकारी डेयरी योजना का उठा रही हैं लगातार फायदा। उधमपुर में डेयरी के काम में लगी महिलाओं ने बताई अपनी सफलता की कहानी। लक्स कोजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी में 600 करोड़ रुपए के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आधारशिला रखी। नोएडा के सेक्टर 76 में प्रिंसली स्टेट के निवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया, अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग। गुजरात के नवसारी शहर में बड़ा हादसा टल गया, चुकती हुई दो इमारतों को तुरंत खाली कराया। करीब 40 साल पुराने अमरदीप अपार्टमेंट की दो इमारतों में अचानक दरारें पड़ गईं और भवन अचानक झुक गया। चुनाव आयोग ने नया वोटर बनने के लिए बदले नियम, अब फॉर्म 6 से जुड़ा है कॉलम। नोएडा के शाबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति। फ्लाईओवर बनने से ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर हो जाएगा आसान। फ्लाईओवर पर अभी करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित। उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। अयोध्या श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। मैसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए मैसी। अर्जेंटीना ने 112वें मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ निर्णायक गोल। सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है अर्जेंटीना का मुकाबला, 15 जुलाई को खेला जाएगा मैच। 14 जुलाई को आमने सामने होने जा रही है फ्रांस और स्पेन, खेला जाएगा सेमीफाइनल।

क्वार्टर फाइनल में हार के बाद फैंस के हीरो बन गए नॉर्वे की टीम, हजारों प्रशंसकों ने जबरदस्त स्वागत किया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान नॉर्वे टीम के प्रदर्शन को फैंस ने सराहा।

0: जिमी शेरगिल स्टार वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर हुआ रिलीज। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी हटाई गई एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज। एक्टर आमिर खान की पत्नी गौरी के साथ अपने पुराने फैमिली हाउस में होंगे शिफ्ट, बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहेंगे परिवार के साथ। मुंबई की सड़कों पर घूमे द ओडिसी के स्टार्स। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर। फिल्म की कार्यकारी निर्माता हैं प्रियंका। दिल्ली के कलाकार पीके महानंदिया पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की कहानी सच्चे प्यार की तलाश में भारत से स्वीडन तक 6000 मील की यात्रा कर साइकिल से की थी। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर अपनी पहली वाली भूमिकाओं में नजर आएंगे। 16 जुलाई को अमेजॉन प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होने जा रही वेब सीरीज रक्तांचल 3। शादी के बंधन में बंधी टेलीविजन एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक पुरस्वानी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: आइए बात करते हैं अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और रामकथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।

0: बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
1: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य, इस प्रकार 20 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
0: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय जिसमें 20 गैलरी हैं, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
1: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है, राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है, 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पे अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय लिया जाएगा।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
3: जब कोई खिलाड़ी खेल से बढ़कर एक प्रेरणा बन जाए तो उसे सम्मान देना जिम्मेदारी होता है, और ऐसा ही सम्मान दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हजारों ड्रोन्स ने मिलकर रोनाल्डो की ऐसी शानदार तस्वीर बनाई कि पूरा नजारा यादगार बन गया। लगा मानो आसमान भी एक लेजेंड के नाम हो गया। सच भी तो है, एक खिलाड़ी जब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाए तब उसे ऐसे ही सम्मान मिलते हैं, और ये सम्मान उसकी विरासत को और खास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर ड्रोन के बने रोनाल्डो की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं। मोबाइल का चस्का कैसा होता है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आजकल हो भी ऐसा गया है कि काम चाहे कोई करो, मोबाइल देखने का काम हर काम के साथ जारी रहना चाहिए। अब इन महाशय को देखिए जरा, पानी से भरे खेत में काम करते हुए मोबाइल देखना नहीं छूटा। जुगाड़ लगा के मोबाइल को देखते हुए किसी को काम करते देखा है कभी? अब सोशल मीडिया पर लोग जनाब को कह रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए। कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आई तेज बाढ़ के दौरान यूं तो एक दूसरे की जान बचाने की और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है जो संवेदनशीलता को प्रकृति के एक स्थायी भाव के रूप में सुनिश्चित करती है। यहाँ तेज बाढ़ में एक हाथी ने बाघ को सहारा दिया। बीच पानी में फंसे बाघ को हाथी ने सूंड की मदद से अपने ऊपर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की संवेदना सबका मन मोह रही है, भावुक कर रही है और इंसान को भी सीख दे रही है कि प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। अब तक का सबसे बड़ा मानव पिरामिड सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही लूट रहा है। एक बेहद लंबा ऊंचा संकरे मानव जैसा पिरामिड जैसा आकार बनाया गया। तेज हवा में जब ये डगमगाने लगा तब भी किसी तरह ये स्थिर रहता है। एक शख्स भी इस पिरामिड से नीचे नहीं गिरता। एक बार को तो देखने वालों को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा संतुलन बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग इस वीडियो को संतुलन, विश्वास और शानदार टीम वर्क बताकर तारीफ कर रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: दुर्लभ बीमारी की दस्तक ने लगाया ग्रहण। ग्यारह की उम्र में बिखर गए थे सपने। अर्जेंटीना से बार्सिलोना, जुनून का सफर। मेसी है तो मुमकिन है। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
15: क्या आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या हैं आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
2: ग्रेटर नोएडा के शाबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, हर रोज लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति, सकरे रास्ते पर सफर हो जाएगा आसान। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य, पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद। दिल्ली में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन, हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी थौदम ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। पुरी के गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, मंदिर के जीर्णोद्वार और ढांचागत मरम्मत के काम में तेजी। शानदार मौसम के बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, धार्मिक यात्रा के बीच कैमरे में कैद कर रहे हैं कुदरत का खूबसूरत नजारा। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची मैसी की टीम अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को होने जा रहा है मुकाबला।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जेय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 की उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में 16 बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो बंदे मेरे दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
5: बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से अब की जा रही हैं। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कांवड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत करने के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारियां कर रही है, कांवड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
6: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कांवड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कांवड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मेले के दौरान कोई भी कांवड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या है आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
8: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त तक पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। शानदार मौसम के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु, धार्मिक यात्रा के बीच कुदरत के खूबसूरत नजारों का दीदार, पिछले 4 दिनों से हो रही है बारिश से तूफान पर अलकनंदा। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य, पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, हर रोज लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति, सक्रिय रास्ते पर सफर हो जाएगा आसान। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची मेसी की टीम अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मुकाबला।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
5: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में साल बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, साल 2025 के मुकाबले भक्तों की संख्या में इजाफा। रामनगरी में 28 जून बना नया रिकॉर्ड, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से दिए गए आंकड़े, 21 जून से 3 जुलाई के बीच में बढ़ी है भक्तों की संख्या। अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा यातायात और दर्शन व्यवस्था मजबूत। 3 जुलाई को रामनगरी अयोध्या पहुंचे करीब 88,000 श्रद्धालु, पिछले साल की तुलना में दर्ज की गई बढ़त। जम्मू में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां थी, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। 16 अगस्त को जम्मू में होगा श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का उद्घाटन, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगी पहली। 18 अगस्त को पहला जत्था करेगा श्री बूढ़ा अमरनाथ दर्शन पूजन, अलर्ट मोड पर प्रशासन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का रखा जा रहा है पूरा ख्याल, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, पवित्र यात्रा सामूहिक का सहभागिता की मिसाल। बद्रीनाथ धाम के बाद बादल और धुंध के बीच खूबसूरत प्राकृतिक नजारा, पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। शानदार मौसम के बीच भक्त कर रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन पूजन, कैमरे में कैद कर रहे हैं नजारा। बद्रीनाथ में 11 जुलाई को 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान का आशीर्वाद लिया, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बादलों से घिरे नजर आ रहे हैं चमोली के पहाड़, दूर दूर तक दिख रहा है बारिश का फुहार। बारिश के कारण बद्रीनाथ के पास बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, उफान पर नजर आ रही है नदी। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, लगातार बढ़ रही है धाम पहुंचने वालों की संख्या। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा भीड़। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब, शनिवार को 1,827 यात्री पहुंचे। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पवित्र अमरनाथ की यात्रा लगातार जारी, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा सुविधाओं की तारीफ की, पहलगाम में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए। ओडिशा में रथ यात्रा को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारियां, यात्रा मार्ग के साथ मंदिर परिसर भी सजावट। पुरी के कुंडिचा मंदिर को ही खास सजावट किया गया, यहीं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ रात गुजारे। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है गुंडिचा मंदिर, भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं। गुंडिचा मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम, बैरिकेड्स भी तैयार। 16 जुलाई को रथ यात्रा के भव्य और दिव्य उत्साह का होगा शुभारंभ, गर्भगृह से लेकर शिखर तक हर कोने में की जा रही है सफाई। पुणे में देखा आस्था और श्रद्धा का सैलाब, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेकर भक्त निकले। पुणे से देवी घाट पर करते हुए सासवड़ की ओर बढ़े श्रद्धालु, ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ पंढरपुर पहुंचेंगे। कांवड़ यात्रा के लेकर मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां, अधिकारियों ने शिविर और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। पुरी में रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन और आपदा स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, एनडीआरएफ पुलिस आरपीएफ जवानों ने हिस्सा लिया। पुरी रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील जगहों पर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल और आयोजन। नासिक पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अशोका हेल्थ सिटी का उद्घाटन किया। अशोका हेल्थ सिटी उद्घाटन के मौके पर नासिक में दिखी सांस्कृतिक विरासत की शानदार झलक। बिहार की बघा से शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आई। ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर और श्रमदान करके 60 फीट लंबा द्रोही का पुल तैयार किया। बघा में ग्रामीणों ने पेश की एकजुटता की मिसाल। बिहार में पर्यटन को नई उड़ान, 13 जुलाई 2026 से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। देशभर में एक बार फिर से बदल सकता है मौसम का मिजाज। 18 से 25 जुलाई के बीच हो सकती है मानसून की वापसी। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसेंगे बदराव। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में होगी भारी बारिश। मेघालय में आज बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन के लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश के चलते चेतावनी, मौसम विभाग की अपील। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले आईएमडी की एडवाइजरी का पालन करें। धुंध की चादर में सजा डलहौजी, पर्यटकों को खूब भारा है मिनी स्विट्जरलैंड। मानसून में डलहौजी बना टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। बादलों के बीच दिखी झांकती वादियां। अब गांधी चौक से पंचकुला तक हर ओर दिख रहा है जन्नत। लगातार बारिश से बाधित हुआ कैंपटी से मसूरी बैंड मार्ग। जेसीबी की मदद से जारी है मरम्मत का कार्य। यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी विशेष गाइडलाइन। गुजरात के अमरेली में गांव की गलियों में घूमते नजर आए जंगली मेहमान। बारिश रुकते ही 3 शावकों के साथ कैद हुआ रोशनी शेरनी का नजारा। अमरेली इलाके में वन विभाग का अलर्ट, 24 घंटे निगरानी। लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया लायन फैमिली का मूवमेंट। जूते पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने किया ऑटोग्राफ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देखा मुख्यमंत्री विजय का अलग अंदाज। समर्थक के जूते पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आए।

वूरा नाला इलाके में पानी बढ़ने से अचानक बाढ़। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलजमाव। उत्तर प्रदेश में आज पर्यावरण का महाकुंभ रचा जा रहा है, एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ कर दिया। आम जनता से लेकर वीआईपी तक पौधारोपण महाअभियान में शामिल हुए। वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश के 26 सरकारी विभाग इस महाअभियान को सफल बनाने में जुटे। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पौधारोपण करने के लिए पहुंचे। अहमदाबाद मिशन 5 बिलियन ट्री का शुभारंभ हुआ, गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत की। मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की सौगात, सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन हुआ। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 982 परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे। 81वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण में हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी पहुंचे। कोटद्वार के घरों में घुस गया हाथी, सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर में गांव की महिलाएं सरकारी डेयरी योजना को उठा रही हैं फायदा, उधमपुर में डेयरी के काम में लगी हुई हैं महिलाएं। लक्स कोजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के डंकुरी में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आधारशिला रखी। नोएडा के सेक्टर 76 में प्रिंसली स्टेट के निवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया, आजुका ने अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। गुजरात के नवसारी शहर में बड़ा हादसा टल गया, झुकती हुई दो इमारतों को तुरंत खाली कराया गया। करीब 40 साल पुरानी अमरदीप अपार्टमेंट्स के दो इमारतों में अचानक पड़ गई थी दरार। चुनाव आयोग ने नया वोटर बनने के लिए बदल दिया नियम, अब फॉर्म 6 में जोड़ा गया है कॉलम। नोएडा के शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति। फ्लाईओवर बनने से ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर हो जाएगा आसान, फ्लाईओवर पर अभी करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित। उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। अयोध्या श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। मैसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए मैसी। अर्जेंटीना ने 112वें मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ निर्णायक गोल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा अर्जेंटीना का मुकाबला, 15 जुलाई को खेला जाएगा मैच। 14 जुलाई को आमने सामने होने जा रही है फ्रांस और स्पेन, खेला जाएगा सेमीफाइनल्स। चोंगकिंग चिड़ियाघर में विशाल पांडा शावक ने बनाया अपना पहला बर्थडे, वांगशू रखा गया नाम। जन्म के समय सिर्फ 188 ग्राम का था शावक का वजन, एक साल में 36 किलो बढ़ा। पारंपरिक संस्कृति के बीच मनाया गया बर्थडे, झूले पर झूमता हुआ नजर आया पांडा। समारोह में शावक के लिए ब्रश, फुटबॉल, लकड़ी की तलवार भी नजर आई। पांडा वांगशू ने पानी में मस्ती करते हुए मनाया अपना बर्थडे, अपने साथियों के साथ खेलता हुआ नजर आया। क्वार्टर फाइनल्स में हार के बाद फैंस के लिए हीरो बनी नॉर्वे की टीम, हजारों प्रशंसकों ने भाग लिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान

0: नॉर्वे की टीम के प्रदर्शन को फैंस ने सराहा व वाइकिंग रूह से किया खिलाड़ियों का स्वागत। ओस्लो में आधी रात को देखा शानदार नजारा, टीम की जर्सी में नजर आए हजारों फैंस। ब्रिटेन के वॉरविकशायर में देखा प्रिंस हैरी का अनोखा अंदाज, स्कॉटिश समर फेस्टिवल में भाग लिया। बच्चों और युवाओं के साथ प्रिंस हैरी ने बताया खास पल, सबके साथ मिलकर गुट योगा किया। स्पेन में सैन फर्मिन महोत्सव की धूम, दुनिया भर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। महोत्सव में बुल रन लोगों के लिए बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, जिसे देखने के लिए हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या पर पहुंचे श्रद्धा। बुल रेस में देखा अनोखा रोमांच, दौड़ लगाते हुए लोगों दर्शकों ने जमकर बढ़ाया उत्सव। इटली में फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि, 27 मीटर ऊंचे और 11 मीटर चौड़े म्यूरल का अनावरण। म्यूरल में अरमानी के चेहरे के साथ दिखाई गई उनकी फैशन यात्रा। गोविंदा की पत्नी और यूट्यूबर सुनीता आहूजा जल्द एक्टिंग की दुनिया में करने जा रही हैं कदम, एकता कपूर प्रोडक्शन की फिल्म में बेटे के साथ करेंगी डेब्यू। जिमी शेरगिल स्टार और वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर हुआ रिलीज, 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम।
1: यस करते हैं।
0: इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी हटाई गई एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज। एक्टर आमिर खान अपनी पत्नी गौरी के साथ अपने पुराने फैमिली हाउस में होंगे शिफ्ट। मुंबई की सड़कों पर घूमे द ओडिसी के स्टार्स स्पाइडरमैन।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: College shouldn't waste your time or your money. That's why WGU's programs are designed with input from industry experts. You'll learn the skills that employers need today and be ready for the opportunities of tomorrow. Learn more at WGU.edu.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: जब कोई खिलाड़ी खेल से बढ़कर एक प्रेरणा बन जाए तो उसे सम्मान देना जिम्मेदारी होता है, और ऐसा ही सम्मान दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हजारों ड्रोन्स ने मिलकर रोनाल्डो की ऐसी शानदार तस्वीर बनाई कि पूरा नजारा यादगार बन गया। लगा मानो आसमान भी एक लेजेंड के नाम हो गया। सच भी तो है, एक खिलाड़ी जब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाए तब उसे ऐसे ही सम्मान मिलते हैं, और ये सम्मान उसकी विरासत को और खास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर ड्रोन के बने रोनाल्डो की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं। मोबाइल का चस्का कैसा होता है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आजकल हो भी ऐसा गया है कि काम चाहे कोई करो, मोबाइल देखने का काम हर काम के साथ जारी रहना चाहिए। अब इन महाशय को देखिए जरा, पानी से भरे खेत में काम करते हुए मोबाइल देखना नहीं छूटा। जुगाड़ लगा के मोबाइल को देखते हुए किसी को काम करते देखा है कभी? अब सोशल मीडिया पर लोग जनाब को कह रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आई तेज बाढ़ के दौरान यूं तो एक दूसरे की जान बचाने की और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है जो संवेदनशीलता को प्रकृति के एक स्थायी भाव के रूप में सुनिश्चित करती है। यहाँ तेज बाढ़ में एक हाथी ने बाघ को सहारा दिया। बीच पानी में फंसे बाघ को हाथी ने सूंड की मदद से अपने ऊपर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की संवेदना सबका मन मोह रही है, भावुक कर रही है और इंसान को भी सीख दे रही है कि प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। अब तक का सबसे बड़ा मानव पिरामिड सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही लूट रहा है। एक बेहद लंबा, ऊंचा, संकरे मानव जैसा पिरामिड जैसा आकार बनाया गया। तेज हवा में जब ये डगमगाने लगा तब भी किसी तरह ये स्थिर रहता है। एक शख्स भी इस पिरामिड से नीचे नहीं गिरता। एक बार को तो देखने वालों को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा संतुलन बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग इस वीडियो को संतुलन, विश्वास और शानदार टीम वर्क बताकर तारीफ कर रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या हैं आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। शानदार मौसम के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। धार्मिक यात्रा के बीच कुदरत के खूबसूरत नजारों को कर रहे हैं कैद। पिछले 4 दिनों की बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीबा 9,00,000 वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माह के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची मेसी की टीम अर्जेंटीना। एक्स्ट्रा टाइम में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। नॉर्वे को 2-1 से हराने वाले इंग्लैंड से 15 जुलाई को मैच।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कभी ना कभी किसी न किसी की शादी में शरीक ना हुआ हो, जिन्हें कभी कोई शादी का कार्ड ना मिला हो। आमतौर पर शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन और उनके माँ बाप या भाई बहन के नाम होते हैं। पर अगर मैं आज आपको ये बताऊं कि इस देश में एक इलाका ऐसा भी है जहां शादी के कार्ड पर एक पुलिस अफसर की तस्वीर छपती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी राजस्थान के एक खास इलाके की है। जानते हैं इस इलाके के लोग एक खास पुलिस अफसर की तस्वीर शादी के कार्ड पर क्यों छपवाते हैं। तो चलिए मेरे साथ, आपको बताती हूँ।

0: हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी शादी का गवाह जरूर बना है। बैंड बाजा, बारात, गीत संगीत, नाचना गाना, ये हमारे यहाँ के शादी की आम बातें हैं। लेकिन असल में एक शादी की शुरुआत शादी के कार्ड से होती है। शादी का कार्ड असल में एक संदेश होता है। संदेश ये कि किसकी शादी कब, कहाँ और किस तारीख को होगी। अमूमन शादी के कार्ड पर दूल्हा, दुल्हन, उनके माँ बाप और नजदीकी परिवार के लोगों के नाम होते हैं। हम सब शुरू से इसी तरह की शादी के कार्ड देखते आए हैं। पर आज मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ शादी के कार्ड के ऊपर एक खास नाम और एक खास शख्स की तस्वीर छपती है, और वो शख्स दूल्हा दुल्हन का कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर है। तो क्या आप यकीन करेंगे? अव्वल तो ये कि अगर किसी शादी में खाकी वर्दी वाले घुस आए तो सभी डर जाते हैं। पर इस इलाके में इसके उलट एक पुलिस अफसर की तस्वीर और नाम लोग अपने शादी के कार्ड पर क्यों छपवाते हैं, जानना चाहेंगे? ये आईपीएस अफसर विकास कुमार है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF के IG। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि इनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी ड्रग्स के खिलाफ है, और बस इनकी इसी ड्यूटी ने इनसे वो करवा दिया कि ये सीधे उठकर राजस्थान के मारवाड़ में होने वाली शादियों के कार्ड पर आ गए। दरअसल जब मारवाड़ रीजन में इनकी पोस्टिंग हुई तब इन्होंने पाया कि वहाँ के लोगों के बीच ड्रग्स, खासकर अफीम का इस्तेमाल एक जुर्म नहीं बल्कि परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जो बच्चे के जन्म से लेकर किसी की मौत तक, यानी इन दोनों के बीच आने वाली हर खुशी और गम के मौके पर इस्तेमाल करना जरूरी है।
1: राजस्थान में परंपरागत रूप से एक मनुहार की परंपरा हुआ करती थी। कोई भी समारोह हो, कोई भी आयोजन हो, सुख की घड़ी हो, दुख का मौका हो, सामाजिक मिलन हो, कोई अनुष्ठान हो, किसी भी तरह का समारोह हो, उसकी शुरुआत आए हुए अतिथियों को अफीम, जिसको अमल बोलते थे, या डोडा चूरा का पानी है, उसकी मनुहार करके उनका स्वागत किया जाता था।
0: जब बात परंपरा की आती है तो मान लीजिए वो पुरानी ही होगी, पुराने दौर से चली आ रही होगी। राजस्थान के मारवाड़ में मनोहर या अमल की परंपरा दरअसल एक मजबूरी से शुरू हुई थी जो गुजरते वक्त के साथ जुर्म बन गई।
1: अब इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण था। वैज्ञानिक कारण यह था कि इस पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे आप तो दूरियां बहुत ज्यादा हैं, सड़कें नहीं थी, आवागमन बड़ा कठिन था। ऊंट की पीठ पर बैठकर या घोड़े की पीठ पर बैठकर लोग कच्चे पक्के रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से आते थे। रेतीली जमीन थी, दोरों की जमीन थी और बहुत लंबी दूरियां थी। तो किसी भी समारोह के लिए कोई भी आएगा तो काफ़ी थकान होगी, शरीर में दर्द होगा और उसकी ऊर्जा बड़ी कम होगी। तो अफीम वैज्ञानिक रूप से अगर आप देखें तो एक डिप्रेसेंट है, नारकोटिक ड्रग है, और यह दर्द को कम करना, थकान को कम करना, शरीर को आराम देना और थोड़ी ऊर्जा भरना, यह इस अफीम का नैसर्गिक गुण है। तो इस कारण इन अफीम उत्पादों को उन अतिथियों को खिलाया जाता था ताकि वो समारोह का आनंद ले सकें, थकान भूलकर, दर्द भूलकर आनंद ले सकें। तो इसलिए यह परंपरा शुरू हुई थी और यह बड़े लंबे समय तक चलती रही। बट यह परंपरा आगे चलकर एक दुष्वृत्ति में तब्दील हो गई, क्योंकि आज सड़कें भी अच्छी हैं, आवागमन के साधन भी अच्छे हैं, शारीरिक श्रम भी नहीं करना पड़ता, तो इसकी जरूरत खत्म हो गई। पर कोई भी परंपरा, कोई भी विधान समय के साथ यदि परिवर्तित न हो तो वह एक अभिशाप के रूप में बदल जाता है। तो यह पूरा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र इस अभिशाप को झेल रहा था।
0: बस एक परंपरा की वजह से मारवाड़ रीजन में न जाने कितनी ही बेटियों के बाप को कर्ज लेना पड़ा, घर जमीन बेचनी पड़ी। जो पैसे वो शादी में बेटी की जरूरतों पर खर्च कर सकते थे वो पैसे मनोहर या अमल के नाम पर घोटकर लोगों को पिलाना पड़ा। यहाँ एक बेटी की शादी पर बाकी खर्चा छोड़िए, सिर्फ मेहमानों को अफीम परोसने के लिए लगभग 5 लाख रुपए अलग से खर्च करने पड़ते थे। सोचिए एक गरीब बाप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करता होगा। ये वो दौर था जब इलाके में हर जवान बेटी का बाप कर्ज में डूब चुका था।
1: लोगों पर यह दबाव था कि इस परंपरा का निर्वहन आपको करना है, यदि समाज में रहना है तो आप आश्चर्य करेंगे कि एक बेटी का बाप जो 20 साल से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा होता था, बड़ी मुश्किल से उसकी गृहस्थी जमाने के लिए कुछ सामान खरीद पाता था, अतिथियों के खाने पीने की व्यवस्था कर पाता था। शादी के ठीक 10 साल पहले समाज के कुछ तथाकथित पंच उसके यहाँ पहुँच जाते थे, कहते मनुहार की व्यवस्था कैसे, मनुहार नहीं होगी तो आपके यहाँ कोई आएगा नहीं, आपका समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, और मरता क्या ना करता।
0: आईजी विकास कुमार की जब यहाँ पोस्टिंग हुई तब उनका भी इसी परंपरा से पहली बार आमना सामना हुआ। धीरे धीरे वो इलाके के बहुत से लोगों से मिले, बहुत सी बेटियों के पाप भी उनसे मिले जिन्होंने परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी अपनी मजबूरी बताई, और ये भी बताया कि कैसे ये परंपरा उनकी बेटियों की शादियों में रुकावट पैदा कर रही है। वो लोग इस परंपरा की जंजीर को तोड़कर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन समाज में परंपरा की जड़ें इतनी गहरी थी कि इसको तोड़ने का मतलब तोड़ने वाले का सीधे समाज से बाहर हो जाना था।
1: अपनी बेटी की गृहस्थी के लिए चूल्हा चौका बर्तन फ्रिज एसी बेड टेबल सब कुछ खरीद सकता था, वो पैसे उसको कर्ज लेके मनुहार में लगाने पड़ते थे। तो मैंने शुरू में देखा 5-6 महीने के भाई ये क्या है क्यों है, तो देखने में फिर ये आया कि लोग चाहते नहीं है इसको, बट परंपरा की बेड़ियों में जकड़े हैं कि कौन तोड़े, तोड़े वो बहिष्कृत हो जाएगा।
2: एक बार बाड़मेर प्रवास पर जोधपुर संभाग के संभाग आईजी साहब बाड़मेर आए, उनसे मिले व्यक्तिगत, उनके विचारों को अपने विचारों से का उनको साझा किया। उस समय नशा मुक्ति अभियान के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी आप मिलोगे तो ये शिकवा शिकायत नहीं रहेगा।
0: विकास कुमार को एहसास हो चुका था कि यहाँ वो किसी जुर्म से नहीं लड़ रहे बल्कि एक परंपरा से उनकी लड़ाई है, वो परंपरा जिसने पूरे समाज को शिकंजे में ले रखा है। इसीलिए उन्होंने कानून के डंडे का इस्तेमाल करने की बजाय गांव-गांव घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की। इलाके के कुछ समझदार लोगों को साथ जोड़ा, नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी, खुद पुलिस की सोच बदलने पर जोर दिया। वक्त लगा पर धीरे धीरे लोग समझने लगे, लेकिन परंपरा इतनी आसानी से कहाँ छूटती है, लिहाजा लोगों को समझाने के साथ साथ कानून का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। गांव-गांव लोगों तक सूचना भिजवाई कि अगर कहीं भी किसी भी शादी के समारोह या किसी की मौत पर मनोहार हो रहा हो तो वो बस चुपके से वीडियो शूट करके भेज दे। इसका असर हुआ, खास तौर पर ऐसे बाप ने जिनकी बेटियों की शादी हो रही थी, चुपचाप से खुद ही वीडियो बनाकर भेजना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती और लोगों को पकड़ना शुरू कर देती। फिर एक वक्त ऐसा आया जब लोग खुद ही डर गए कि पता नहीं कब कौन चुपके से उनके घर के समारोह का वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये परंपरा दम तोड़ती गई। अब मारवाड़ में किसी बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए 4-5 लाख रुपए अलग से मनोहार पर खर्च करने नहीं पड़ते। इत्तेफाक से उसी वक्त एक गांव में शादी थी, एक बेटी की शादी। उस बेटी के बाप को पता था कि अब लोग उससे मनोहार नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं पुलिस को पता चल गया तो वो पकड़े जाएंगे। बस इसी खुशी में उस बाप ने जब अपनी बेटी की शादी का कार्ड छपवाया तब पहली बार कार्ड पर बिना विकास कुमार से पूछे उनकी तस्वीर छाप, फिर वो कार्ड उन्हें दे भी आया। इसके बाद तो इसकी शुरुआत ही हो गई। जब जब किसी बेटी की शादी होती कार्ड पर आईजी विकास कुमार की फोटो छपती।
2: और मैंने अपनी दोनों बच्चियों की शादी के इनविटेशन कार्ड निमंत्रण पत्र पर सर का फोटो और उनका स्लोगन जो उनके विचार है उनको उस पर साझा किया। नशा मुक्त शादी करने के लिए उन्होंने मेरा अमूमन सहयोग भी बढ़ाया।
0: हालांकि खुद विकास कुमार कहते हैं कि उनकी जगह किसी देवी देवता की तस्वीर छापी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, मगर फिर भी वो कहते हैं कि ये उनके जैसे पुलिस अफसरों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। हालांकि अभी तक विकास कुमार को ऐसी किसी शादी में जाने का वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश जताई है कि जब भी कभी मौका मिला वो उनकी शादी में जरूर शामिल होंगे। आज राजस्थान के मारवाड़ में मनोहार या अमल लगभग खत्म हो चुका है, इक्का दुक्का केस को छोड़कर, लेकिन जिस परंपरा को तोड़कर पुलिस की ड्यूटी से शादी के कार्ड तक विकास कुमार पहुंचे, वो परंपरा एक दौर में कैसे मारवाड़ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए आपको उस दौर में लिए चलते हैं जब यहाँ मनोहार जुर्म नहीं रवायत हुआ करती थी। ये तस्वीरें उसी दौर की हैं। पहली नजर में इसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, लगता है ना ये हूबहू तराजू जैसा। इस कमाल की चीज को मारवाड़ में खल कहते हैं। अब इस खल का करामात दिखाने से पहले दो चीजें और देखिए। यहाँ ये लोग इस वक्त मातम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मातम गांव में हुई एक मौत का। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए, इसी शोक सभा से महज कुछ ही दूरी पर यहाँ शादी का जश्न मनाया जा रहा है। शोक और जश्न दोनों एक दूसरे से जुदा है, मगर खल का खेल देखिए, वो शोक में भी मौजूद है और जश्न में भी। दरअसल इस खल में मौजूद है अफीम नाम का वो जहर, जिसने पूरे मारवाड़ को बस यू ही अपना गुलाम बना रखा था। मारवाड़ में चाहे खुशी हो चाहे गम, अफीम की मनोहार एक आम बात थी। जी हाँ, इस पूरे इलाके में हर त्योहार, जश्न, समारोह और यहाँ तक कि शोक सभा की भी शुरुआत अफीम से ही होती थी। शादी और शोक तो छोड़िए, घर में बच्चा पैदा होने, नई गाड़ी खरीदने, पंचायत की बैठक होने, झगड़ा शुरू करने, झगड़ा खत्म करने, गरज ये कि हर वो काम जो इंसानों से जुड़ा था उसकी शुरुआत बस अफीम और अफीम से होती थी। हमारे देश में भले ही अफीम का इस्तेमाल गैर कानूनी है, मगर पूरे मारवाड़ के लिए एक ऐसी परंपरा जिसे तोड़ने में खुद कानून अपने आप को बेबस महसूस करता था। उस दौर में पूरे मारवाड़ में अफीम खिलाने या पिलाने को मनोहार कहा जाता था। मौका अगर गम का हो तो शोक जताने आए लोगों का मनोहार अफीम या अफीम के सूखे टुकड़े से किया जाता, जबकि खुशी के माहौल में मनोहार खल के अफीम के घुटे हुए पानी को पिलाकर किया जाता। ठीक ऐसे ही अफीम पिलाने के बाद बकायदा साफ पानी से हाथ भी धुलाया जाता। शोक या खुशी के मौके पर अगर कोई अफीम लेने से इनकार कर दे या उसके मनोहार को ठुकरा दे तो उसे बिरादरी से किनारे कर दिया जाता। इस रवायत का सबसे बड़ा खामियाजा उन गरीबों को भुगतना पड़ता जिनके पास अफीम खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसी सूरत में या तो उन्हें उधार लेना पड़ता या अपनी कीमती चीज गहने, घर, जमीन गिरवी। बेशक रवायत के नाम पर मारवाड़ के इलाके में अब इस जुर्म का लगभग खात्मा हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुरानी परंपरा ने नई पोशाक पहनकर अब नौजवानों को और नई पीढ़ियों को अपनी नशीली बेड़ियों में जकड़ना शुरू कर दिया। ये समाज के सामने एक नई चुनौती है।
3: खुशी हो चाहे गम, अफीम की मनवार एक आम बात है। हर में पहले अफीम ही होता है। इसको हमारे इधर किसी बात को, जैसे कि उस बात को खरी करनी है, पक्की करनी है, उसमें अफीम होता है।
0: बेशक रवायत के नाम पर मारवाड़ के इलाके में अब इस जुर्म का लगभग खात्मा हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुरानी परंपरा ने नई पोशाक पहनकर अब नौजवानों को और नई पीढ़ियों को अपनी नशीली बेड़ियों में जकड़ना शुरू कर दिया। ये समाज के सामने एक नई चुनौती है।
1: तो आज का युवा प्रतियोगिता के युग के तनाव से दूर होने के लिए और समाज की मर्यादाओं को तोड़कर सिर्फ आनंद की अनुभूति, इसके चक्कर में ड्रग्स का शिकार हो रहा है। हर व्यक्ति को यह लगता है कि वह इतना मजबूत है कि एक बार लेने से वो एडिक्ट नहीं होगा, और उसको खुद को ही नहीं पता होता कि वो कब वो एडिक्ट होकर इसका शिकार हो गया। जिसको कहते हैं कि वो कहता है बस एक बार, बस एक और बार, बस एक आखिरी बार, वो सोचता है नशे के बारे में और उसकी सांसें हो जाती हैं, फिर बस एक आखिरी बार, तो वह खेल जाता है अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने परिवार की आकांक्षाओं के साथ, समाज की मर्यादाओं के साथ, और इस लोक से परलोक चला जाता है।
0: परंपरा से लत तक पहुंच चुका नशा जिस तरह से नौजवानों को अपना शिकार बना रहा है, उसे देखते हुए विकास कुमार का मानना है कि इसे रोकने का एक रास्ता ये भी है कि नई पीढ़ी ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, न कि अपराधियों को।
1: कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसकी अगली पीढ़ी नशे का शिकार हो जाए, नशे का सौदागर हो जाए, पर उस नशे के सौदे से वो इतना पैसा कमा कर लाता है कि उस पैसे से वो अपने आलोचकों का मुंह बंद कर लेता है। तो मीडिया की यह शक्ति है, समाज के पहरुओं की यह शक्ति है, समाज के आध्यात्मिक गुरु धर्म गुरुओं का यह दायित्व है कि वह उस चीज को रोकें और उन रोल मॉडल्स को आगे करें, उन छवि दूतों को अग्रदूत बनाएं जो इस देश को, इस समाज को, इस पूरी पीढ़ी को सही मुकाम तक ले जा सकते।
0: इसमें कोई शक नहीं कि देश में इस वक्त नशा एक बड़ी समस्या है। स्कूल कॉलेज तक में ये जहर पहुंच चुका है, लेकिन अगर एक पुलिस अफसर बरसों पुरानी परंपरा की जंजीर को तोड़ सकता है तो हम सब मिलकर इस नशे का नाश क्यों नहीं कर सकते। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ मनीषा झा, जयपुर आज तक।
4: तो इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
0: It was to live sports action.
2: To the near side corner, to wrap around, he scores!
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: बात करते हैं अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। 30 जुलाई तक श्रीराम मंदिर का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी मंदिर पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम चलता रहेगा और रामकथा संग्रहालय का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों काम श्रीराम मंदिर परिसर से बाहर चलते रहेंगे।
6: बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर 30 जुलाई को संपूर्णता पर पहुंच जाएगा, यानी श्री राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और अब सिर्फ दो काम पूरे किए जाने बाकी हैं। पहला, एक पुराने राम मंदिर में 24 घंटे जलने वाली ज्वाला की व्यवस्था बाकी है, जबकि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा स्मारक है जो 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
10: निर्माण कार्य में मुख्य रूप से दो कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पूर्ण स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य, इस प्रकार 30 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
6: इसके अलावा अयोध्या में दो काम चलते रहेंगे, पहला 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य और दूसरा मंदिर परिसर के बाहर ऑडिटोरियम का। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय जिसमें 20 गैलरी है, इसकी स्टोरी लाइन बन गई है। अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा, उस पर अंतिम रूप से निर्णय लेना बाकी है।
10: दो कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा, और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त जो संग्रहालय है, राम कथा संग्रहालय, वह कार्य 20 गैलरी है। 20 गैलरी में सभी अपने अपने स्थिति स्क्रिप्ट वगैरह आप जानते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अब बन गई है। और अब उसका टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो किस प्रकार का होगा उस पर अंतिम रूप से एक तरीके से निर्णय दिया जाएगा।
6: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है 30 सितंबर तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो जाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय का सारा काम नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या हैं आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत Connection.
11: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: अयोध्या के राम मंदिर में बड़े श्रद्धालुओं की तादाद पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा, भक्त दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। शानदार मौसम के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन को मड़ रहे हैं श्रद्धालु, धार्मिक यात्रा के बीच कुदरत की खूबसूरती को कर रहे हैं कैद, पिछले 4 दिनों की बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, करीब 9,00,000 वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ, 18 जुलाई से हर शनिवार को रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य, पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: मौसम की चुनौतियों के बीच बद्रीनाथ में आस्था का सैलाब, रोजाना 3,000 से 4,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल 14,50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए, पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश के बावजूद प्रशासन ने समय रहते खोले रास्ते, श्रद्धालुओं की बड़ी राहत। उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी बड़ी श्रद्धालुओं की भारी संख्या, जल्द 2,00,000 को पार कर सकता है आंकड़ा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह लगातार बढ़ रही है। धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चार धाम पहुंचे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़। श्री हेमकुंड साहिब में भी उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब। शनिवार को 1827 यात्री पहुंचे। अब तक 1,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पवित्र अमरनाथ की यात्रा लगातार जारी। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमरनाथ तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा और सुविधाओं की तारीफ की। पहलगाम श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए। जम्मू में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां तेज। सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम। 16 अगस्त को जम्मू में होगा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का उद्घाटन। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा पहला जत्था। 18 अगस्त को पहला जत्था करेगा श्री बूढ़ा अमरनाथ में दर्शन पूजन। अलर्ट मोड में प्रशासन।
13: 1,70,000
9: श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है बूढ़ा अमरनाथ। पवित्र यात्रा सामूहिक का सहभागिता की मिसाल। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में इस साल बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। साल 2025 के मुकाबले इजाफा। रामनगरी में 28 जून को बना नया रिकॉर्ड। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक दिन में दर्शन किए। पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से आंकड़े जारी किए गए। 21 जून से 3 जुलाई के बीच बढ़ी संख्या। अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा यातायात दर्शन व्यवस्था को मजबूत करने का इंतजाम। 3 जुलाई को रामनगरी अयोध्या पहुंचे करीब 88,000 श्रद्धालु। पिछले साल की तुलना में दर्ज की गई बढ़त। ओडिशा में रथ यात्रा और भव्य सुरक्षित बनाने की तैयारियां तेज। यात्रा मार्ग के साथ मंदिर परिसर भी सजावट में जुटा। पुरी के गुंडिचा मंदिर की हो रही है खास सजावट। यहीं पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ 7 दिनों तक विराजमान। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर गुंडिचा मंदिर है। भगवान जगन्नाथ की मौसी है गुंडिचा। गुंडिचा मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। बैरिकेडिंग भी तैयार। 16 जुलाई को रथ यात्रा के भव्य और दिव्योत्सव का होगा शुभारंभ। गर्भगृह से लेकर शिखर तक हर कोने में की जा रही है सफाई। नासिक पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अशोका हेल्थ सिटी का उद्घाटन। अशोका हेल्थ सिटी उद्घाटन के मौके पर नासिक में देखिए सांस्कृतिक विरासत की शानदार झलक। बिहार के बगहा से आई शानदार तस्वीरें। ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर और श्रमदान करके 60 फीट लंबा लोहे का पुल तैयार किया। बगहा के ग्रामीणों ने पेश की एकजुटता की मिसाल। 2.5 लाख रुपए बना 60 फीट का पुल। बिहार में पर्यटन को नई उड़ान। 13 जुलाई 2026 से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। देश भर में एक बार फिर से बदल सकता है मौसम का मिजाज। 18 से 25 जुलाई के बीच हो सकती है मानसून की वापसी। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल बिहार के अगले 2 से 3 दिनों के लिए अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसेंगे बदरा। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। मेघालय में आज बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन के लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश की चेतावनी के चलते मौसम विभाग की अपील। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले IMD की एडवाइजरी का पालन करें। धुंध की चादर में सजा डलहौजी पर्यटकों को खूब लुभा रहा है मिनी स्विट्जरलैंड। मानसून में डलहौजी बना टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। बादलों के बीच देखी झांकती नजर आई वादियां। गांधी चौक से पंचकुला तक का हर ओर नजर आ रहा है जन्नत का नजारा। लगातार बारिश से बाधित हुआ कैंप की मसूरी बैंड मार्ग का अलर्ट मोड में प्रशासन। JCB की मदद से जारी है मरम्मत का कार्य। यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी है विशेष गाइडलाइंस। गुजरात के अमरेली में गांव की गलियों में घूमते नजर आए जंगली मेहमान। बारिश के रुकते ही 3 शावकों के साथ कैद हुआ शेरनी का वीडियो। अमरेली इलाके में वन विभाग का अलर्ट। 24 घंटे जारी निगरानी। लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया लायन फैमिली का मूवमेंट। सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जूते पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने ऑटोग्राफ दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देखा मुख्यमंत्री विजय का अलग अंदाज, समर्थक के जूते पर हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश में आज पर्यावरण का महाकुंभ रचा जा रहा है, एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। आम जनता से लेकर वीआईपी तक पौधारोपण महाअभियान में शामिल हुए वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश के 26 सरकारी विभाग इस अभियान में शामिल हुए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी पौधारोपण किया। अहमदाबाद में मिशन 5 बिलियन ट्री का शुभारंभ हुआ, गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण किया। मुजफ्फरपुर का 1,047 करोड़ रुपए की सौगात, सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 982 परियोजनाओं का शुभारंभ। 81वीं फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। संडे ऑन साइकिल की 81वीं संस्करण में हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी ने शिरकत की। कोटद्वार के घरों में घुस गया हाथी का झुंड, सीसीटीवी में कैद। चुनाव आयोग ने नया वोटर बनने के लिए बदल दिया नियम, अब फॉर्म 6 से जुड़ा है नया कॉलम। नोएडा में शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर बनने से ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर हो जाएगा आसान। उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। अयोध्या श्रीराम मंदिर में दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में गांव की महिलाएं सरकारी डेयरी योजना का उठा रही हैं लाभ, उधमपुर में डेयरी के काम में लगी हुई हैं महिलाएं। लक्स कोजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आधारशिला रखी। नोएडा के सेक्टर 76वीं प्रिंसली स्टेट के निवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मांग। गुजरात के नवसारी शहर में बड़ा हादसा टल गया, झुकती हुई दो इमारतों को तुरंत खाली कराया। करीब 40 साल पुरानी अमरदीप अपार्टमेंट की दो इमारतों में अचानक पड़ गई थी दरारें। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। मैसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने 112वीं मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ निर्णायक गोल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा अर्जेंटीना का मुकाबला, 15 जुलाई को खेला जाएगा मैच। 14 जुलाई को आमने सामने होने जा रहे हैं फ्रांस और स्पेन। चीन ने पेश किया नया सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट, गांसू प्रांत में आयोजित इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फेयर में पहियों वाला रोबोट बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट खास पेट्रोलिंग के लिए किया गया है डिजाइन, इंसानों की भावनाएं भी समझता है। रोबोट में लगाया गया है AI आधारित इमोशनल रिकॉग्निशन सिस्टम, लोगों की भावनाओं को पहचान कर उनसे संवाद करता है। थर्मल और वर्चुअल सेंसर से लैस रोबोट आग का लगाएगा पता। छह पहियों और ऑल टेरेन ड्राइव सिस्टम से लैस है रोबोट। दक्षिण कोरिया में पहली बार जारी हुआ इमरजेंसी हीट वेव का अलर्ट, ग्योंग सान और पोहांग शहरों में भीषण गर्मी के चलते चेतावनी। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी इलाकों में 39 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, लोगों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन अलर्ट। सड़क किनारे लगाए गए हैं मिस्ट कूलिंग सिस्टम, धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए तमाम इंतजाम। बच्चों और बुजुर्गों से प्रशासन की खास अपील, पार्कों में कूलिंग मिस्ट का सहारा लें। मौसम विभाग का अलर्ट, सोमवार तक जारी रहेगा प्रचंड गर्मी का दौर। चोंकिंग चिड़ियाघर में विशाल पांडा शावक ने बनाया अपना पहला बर्थडे, वांगशु रखा गया नाम। जन्म के समय से सिर्फ 188 ग्राम शावक का वजन था, अब 36 किलो से ज्यादा। पारंपरिक संस्कृति के बीच मनाया गया जन्मदिन समारोह, झूले पर पांडा की नाम पट्टिका भी अनावरण किया गया। समारोह में शावक के लिए ब्रश, फुटबॉल, लकड़ी की तलवार भी नजर आई। पांडा वांगशु ने पानी में मस्ती करते हुए बनाया अपना बर्थडे, अपने साथियों के साथ खेलता हुआ नजर आया। क्वार्टर फिनाले में हार के बाद फैंस के लिए हीरो बनी नॉर्वे की टीम, हजारों प्रशंसक जुटे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान नॉर्वे टीम के प्रदर्शन को फैंस ने सराहा, वाइकिंग रूस से किया स्वागत।

ओस्लो में आधी रात को देखा अद्भुत नजारा, टीम की जर्सी में फैंस ने रॉयल पैलेस तक मार्च किया। ब्रिटेन के वॉर विकशायर में देखा प्रिंस हैरी का अनोखा अंदाज, स्कॉट समर फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बच्चों और युवाओं के साथ प्रिंस हैरी ने बताया खास पल, सबके साथ गोट योगा किया। स्पेन में सैन फोमिन महोत्सव की धूम, दुनिया भर से बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। महोत्सव में बुल रन लोगों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, जिसे देखने के लिए और हिस्सा बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बुल रेस में देखा अनोखा रोमांच, दौड़ लगाते हुए नजर आए दर्शकों ने जमकर बढ़ाया हौसला।

0: किस्मत कनेक्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: बुलेटिन में बात करेंगे ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में हैं। पुरी धाम इस समय भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। कारीगरों के हाथ दिन रात भगवान के रथों और उनके परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं।

0: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम और भव्य चरण में है। पूरा पुरी धाम इस समय भक्ति के रंग में सराबोर है। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजती पुरी की ये धरती, जहां आस्था का ऐसा समंदर उमड़ता है जिसे देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और इसी भव्य यात्रा की गवाह बनती है पुरी की रथ यात्रा। इस महायात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सड़कों को दुरुस्त करने से लेकर भगवान के रथ को सजाने का काम जारी है। साथ ही भगवान के लिए भी विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। 17 हुनरमंद कारीगर दिन रात एक एक कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के इन दिव्य परिधानों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
1: रथ के ऊपर जो पारा भड़ी होता है उसके ऊपर से जो पोटोल बनता है, पोटोल का वो झालर होता है, वो झालर में पोटोल के बीच में किंभिरिया लगता है। ये टोटली जो काम जो बनता है, ये हम जैसे चाहते हैं जो जगन्नाथ जी का रथ जितना सुंदर हो, उसके लिए मन जो भी जो सामान होता है, जैसे लेस होता है, जो हमारा फूल होता है।
0: महाप्रभु के विशाल रथों को सजाने में भी भव्यता की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इन दिव्य रथों को सजाने के लिए इस बार कुल 1250 मीटर विशेष कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से भगवान जगन्नाथ और भैया बलदेव के रथों के लिए 425-425 मीटर, जबकि देवी सुभद्रा के रथ के लिए 400 मीटर कपड़ा उपयोग में लाया जा रहा है।
1: जो कपड़े का काम होता है, ये सब जैसे जगन्नाथ जी का खाली दर्जी का सेवक होता है वो बात नहीं है, जो भोई सेवक होते हैं, रूपकार सेवक होते हैं, चित्रकार सेवक होते हैं, बहुत सारे सेवक होते हैं, सबको मिला के जगन्नाथ जी का काम होता है। एक कोई एक काम भी नहीं बना सकते, वो स्वयं जगन्नाथ खुद ही माने उनका काम वो खुद ही करते हैं।
0: लाखों करोड़ों भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि 5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है।
2: पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन, इलैबोरेट पुलिस अरेंजमेंट हैज बीन डन फॉर द अपकमिंग रथ यात्रा 2026 एंड मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज बीन आल्सो अरेंज्ड। देयर आर मोर देन 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस हैज बीन डिप्लॉयड along with 19 IPS officers who has been heading the eight different verticals of crowd management, traffic management, inside temple arrangement, outside temple arrangement, control room, rooftop arrangement and other coastal security and railway arrangement. The main purpose and objective of the arrangement is safe, secured and hassle-free darshan of Mahaprabhu Sri Balabhadra, Mahaprabhu Sri Jagannath, Devi Subhadra and Chakraraj Sudarshan. They are Pahandi and the car festivals and whole Ratha Yatra, the main objective is to hassle-free darshan for the devotees.
0: सुरक्षा कारणों से 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक बिना अनुमति के किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यानी आस्था के सबसे बड़े महोत्सव में सुरक्षा से लेकर भव्यता तक हर एक बारीक पहलू पर पैनी नजर रखी जा रही है। बस अब इंतजार है उस पल का, जब महाप्रभु रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: जब कोई खिलाड़ी खेल से बढ़कर एक प्रेरणा बन जाए तो उसे सम्मान देना जिम्मेदारी होता है, और ऐसा ही सम्मान दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हजारों ड्रोन्स ने मिलकर रोनाल्डो की ऐसी शानदार तस्वीर बनाई कि पूरा नजारा यादगार बन गया। लगा मानो आसमान भी एक लेजेंड के नाम हो गया। सच भी तो है, एक खिलाड़ी जब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाए तब उसे ऐसे ही सम्मान मिलते हैं, और ये सम्मान उसकी विरासत को और खास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर ड्रोन के बने रोनाल्डो की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं। मो मोबाइल का चस्का कैसा होता है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आजकल हो भी ऐसा गया है कि काम चाहे कोई करो, मोबाइल देखने का काम हर काम के साथ जारी रहना चाहिए। अब इन महाशय को देखिए जरा, पानी से भरे खेत में काम करते हुए मोबाइल देखना नहीं छूटा। जुगाड़ लगा के मोबाइल को देखते हुए किसी को काम करते देखा है कभी? अब सोशल मीडिया पर लोग जनाब को कह रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आई तेज बाढ़ के दौरान यूं तो एक दूसरे की जान बचाने की और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है जो संवेदनशीलता को प्रकृति के एक स्थायी भाव के रूप में सुनिश्चित करती है। यहाँ तेज बाढ़ में एक हाथी ने बाघ को सहारा दिया। बीच पानी में फंसे बाघ को हाथी ने सूंड की मदद से अपने ऊपर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की संवेदना सबका मन मोह रही है, भावुक कर रही है और इंसान को भी सीख दे रही है कि प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। अब तक का सबसे बड़ा मानव पिरामिड सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही लूट रहा है। एक बेहद लंबा, ऊंचा, संकरे मानव जैसा पिरामिड जैसा आकार बनाया गया। तेज हवा में जब ये डगमगाने लगा तब भी किसी तरह ये स्थिर रहता है। एक शख्स भी इस पिरामिड से नीचे नहीं गिरता। एक बार को तो देखने वालों को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा संतुलन बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग इस वीडियो को संतुलन, विश्वास और शानदार टीम वर्क बताकर तारीफ कर रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
6: जाए। Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
10: क्या आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या हैं आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी श्रद्धालुओं की तादाद पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा। भक्त दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। श्री शानदार मौसम के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। धार्मिक यात्रा के बीच कुदरत की खूबसूरती का ले रहे हैं आनंद। पिछले चार दिनों की बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9,00,000 वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। मां पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी।

0: आपत्ति भी नहीं, यही है हमारा आज का मुद्दा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत चंदावा। और ये बात कही है बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में। बुजुर्ग माता पिता ने बेटे से अपना फ्लैट वापस मांगा तो बेटा कोर्ट चला गया। इस पर अदालत ने बेटे को फटकार लगाई और साफ कहा कि जब माता पिता इस भरोसे पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं कि उनकी देखभाल की जाएगी और अगर उस वायदे को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के फैसले को रद्द भी किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी के मामले सामने आते रहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं जब माता पिता से संपत्ति पाकर बच्चे माता पिता को उनके ही घर से बेदखल कर देते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला एक बड़ी नजीर साबित होगा? माता पिता को क्यों वापस मिलेगा घर? कारोबारी बेटे के लिए कोर्ट ने क्या कहा है? माता पिता ने फ्लैट की गिफ्ट डीड क्यों की थी? और क्या माता पिता की देखभाल करने का वायदा पूरा नहीं हुआ? माता पिता को क्या मिला था भरोसा? और क्या ये फैसला दूसरे मामलों पर भी एक उदाहरण बनेगा? कोर्ट ने हर बेटे को दी है बड़ी सीख, बुढ़ापे में माता पिता की अनदेखी क्या समाधान, बुजुर्गों में अधिकार पर क्या कहता है हमारा कानून, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के बड़े कानून के जानकार मौजूद होंगे, समाज सेवी भी होंगे, जिनसे हम इसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे। तो आज जिस मसले पर चर्चा हो रही है वो हर जगह पर नजीर बन सकता है। कारोबारी बेटे को पिता का फ्लैट वापस करना होगा, यही है कोर्ट का फैसला। मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कारोबारी बेटे की अर्जी खारिज कर दी है। माता पिता ने बेटे को दिए फ्लैट की गिफ्ट डीड रद्द कर दी है। बेटे पर माता पिता ने देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया है। अनबन होने पर माता पिता को लोअर परेल का फ्लैट छोड़ना पड़ा था। पहले माता पिता ने बेटे को दो फ्लैट गिफ्ट किए थे, फिर माता पिता ने बेटे से फ्लैट वापस ले लिया। माता पिता ने भरोसे के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, लेकिन आरोप है कि बेटे ने देखभाल करने का वायदा नहीं निभाया है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि वायदा पूरा नहीं होने पर फ्लैट की ऑनरशिप ट्रांसफर तक रद्द की जा सकती है, क्योंकि गिफ्ट डीड में देखभाल की शर्त शामिल थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ कहा है कि माता पिता की फाइनेंशियल हालत ये तय नहीं करती कि डीड ट्रांसफर रद्द की जा सकती है या फिर नहीं। कोर्ट के मुताबिक शर्त या फिर वायदा पूरा होना मायने रखता है, और फिर चाहे माता पिता कितने ही धनवान क्यों ना हो। हालांकि कारोबारी बेटे ने फ्लैट वापस लिए जाने से अपनी पत्नी और बच्चों पर असर पड़ने की दलील भी दी थी, क्योंकि वो सभी वहां पर रह रहे थे। साथ ही बेटे ने फ्लैट खरीदने में अपने पैसे भी देने की अपील की दलील दी थी, पर कोर्ट ने आखिर में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेटे की अर्जी को खारिज कर दिया है। और इसके अलावा कहा है कि बेटा लोअर परेल के फ्लैट का कब्जा वापस माता पिता को लौटा दे, क्योंकि माता पिता भी पहले वही रहा करते थे। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरी सहयोगी विद्या भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा जो खास मेहमान है एक बार उनका परिचय करा देती हूँ। आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा सिंगल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। गार्गी लखनपाल डायरेक्टर हैं वृद्धि केयर फाउंडेशन से, और साथ ही साथ स्वेच्छा लोहिया एक्टिविस्ट हैं वर्किंग विद मानव लोक एनजीओ। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विद्या आप ही के पास आना चाहूंगी, पूरा मामला क्या है जरा बता दीजिए, कोर्ट का आदेश क्या है और कैसे ये दूसरे मामलों के लिए भी एक नजीर साबित हो सकता है?
1: देखिए, इस मामले में दरअसल जो माता पिता थे उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने बेटे के नाम पे गिफ्ट डीड बना के अपने बेटे को सौंप दिया था ये प्रॉपर्टी, जहां पर वो खुद रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र हुई, रिश्ते उन लोग के बीच में जो बेटे और बच्चे के साथ उन लोग का जो रिश्ता था वो खराब हो गया, और वो इस तरह से खराब हुआ कि दरअसल उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो है घर से निकल जाना, और इसीलिए वो लोग घर छोड़ के निकल गए। लेकिन जिस तरीके से बेटे ने बताव किया था उसको लेके उन्हें ठीक नहीं लगा और वो लोग ट्राइब्यूनल गए थे, और ट्राइब्यूनल में अदालत ने माना कि क्योंकि जो एक वादा था कि आपको ये गिफ्ट डीड क्यों मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि आप अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं तो एक ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट का, और इसकी वजह से अदालत ने कहा कि इसके लिए आपको ये वापस देना पड़ेगा। अब अदालत ने में यहां तक इन्होंने कहा कि, और क्योंकि ट्राइब्यूनल ने जब इनकी बात नहीं मानी तो हाईकोर्ट गए, बेटे ने अदालत में हाईकोर्ट में कहा कि दरअसल इस मामले में अगर आप देखें तो दे आर वेरी वेल टू डू, उनको कोई जरूरत नहीं है इस पूरे प्रॉपर्टी की, तो वो उनके पास अलग से अपने पास रहने के लिए सब कुछ है तो उनको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा क्योंकि जिस तरीके से ये आपने ख्याल नहीं रखा था, आपने ब्रीच किया है, तो अब ये प्रॉपर्टी भी आपको लौटानी होगी। वादा तो वादा होता है, अगर आपने तोड़ा है तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि जस्टिस घुगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस घुगे और जस्टिस अंकित की ये बेंच ने ये निर्णय अपने अपने पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ दिया।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अविदे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी मामले को लेकर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशुतोष श्रीवास्तव जी आप ही के पास आऊंगी, एक बार समझाइए हमें हमारा कानून इस तरह के मामलों को लेकर क्या कहता है, गिफ्ट डीड में जो शर्त रखी गई। अब इसमें यह भी बात है कि बेटे ने यह भी दलील दी कोर्ट में कि उसके माता पिता वेल टू डू हैं और कोई जरूरत नहीं है वो फ्लैट उनको वापस करने की। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए कानूनी नजरिए से क्या कहता है हमारा कानून?
2: देखिए कंडीशनल, जो कंडीशनल गिफ्ट डीड होते हैं वो तो वैसे भी कैंसिल किया जा सकता है, जो सेक्शन 126 है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1882 का, उसके हिसाब से अगर कोई भी कंडीशन अगर लगाया गया है किसी भी गिफ्ट को करने के लिए और वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो वो उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट बनाया गया था 2007 में, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, तो ये जो बनाया गया था वो सीनियर सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और इसमें जो बेसिकली अगर हम देखेंगे सेक्शन 5 में तो बोलता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अगर सीनियर सिटीजन को अगर चाहिए अपने बच्चों से तो वो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, उस ट्रिब्यूनल को सर्टेन पावर्स दिए गए हैं, और पावर्स में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,000 तक का वो जो है ऑर्डर कर सकता है ट्रिब्यूनल। उसके अलावा अगर वो कोई उनके बच्चे अगर घर में रह रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जो है उनको बाहर निकाला जाए तो उसके लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। या फिर जैसे इस केस में हमने देखा, जो अगर गिफ्ट किया है पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ये सोच के कि उनका ध्यान रखेंगे और वो नहीं रख रहे हैं, तो वो जो है गिफ्ट को कैंसिल करने का भी पावर ट्रिब्यूनल को दिया गया है, जो कि सेक्शन 23 में है सीनियर सिटीजन जो एक्ट मैंने आपको 2007 बताया उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने जो है ऑर्डर किया, पेरेंट्स जब वहां गए उन्होंने कहा कि उनको ये इशू है और उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है, और उन्होंने इसी जो है शर्त की वजह से ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, तो ट्रिब्यूनल ने जो है ये सारी बातों को सुनते हुए उनके फेवर में ऑर्डर किया। और बाद में जो है इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया अपोजिट पार्टी ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये चैलेंज होता है, वहां पर भी जो है इसी तरीके का ऑर्डर आया, और तब जो है पिटिशनर जो है अपील लेकर के हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट गए और वहां पे ये जो है मामला चला, और जो है हाईकोर्ट ने भी इन सारे तमाम दलीलों को दोनों तरफ से सुनने के बाद ये फैसला किया कि ये जो ट्रांसफर है ये कैंसिल होना चाहिए, ये गिफ्ट डीड कैंसिल होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली जो है जो मैंने आपको 2007 का जो एक्ट बताया उसके सेक्शन 23 के हिसाब से वो गिफ्ट डीड को जो है कैंसिल करने का ऑर्डर किया गया, और साथ में जो है पोजीशन जो है इमीडिएटली देने के लिए। और इसमें ऐसा कोई भी अदरवाइज भी कोई ऐसा आर्गुमेंट कि वो अगर वेल टू डू हैं पेरेंट्स है या उनका सेपरेट इनकम है या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो ये सारे ग्राउंड्स जो हैं वो नॉन मेंटेनेबल हैं। और ये एक्ट को बनाया ही गया था सीनियर सिटीजन और जो ओल्ड जो 60+ जितने भी सिटीजन हैं जिनको छोड़ दिया जाता है या जिनका ध्यान नहीं रखा जाता है, बच्चे उनको छोड़ देते हैं या उनकी प्रॉपर्टी में उनको इंटरेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, तो ऐसे मामलों के लिए ही ये इस कानून को बनाया गया था और इसी कानून के तहत जो है ये फैसला सुनाया गया है। और मुझे लगता है
0: आशुतोष जी एक सवाल और फिर आगे अपने बाकी पैनलिस्ट के पास चलेंगे, क्या इस मामले में आगे कहीं और अपील की जा सकती है, क्या बेटा आगे किसी और कोर्ट में अपील कर सकता है, हाईकोर्ट का हालांकि फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बेटा?
2: हाँ जी जी हाँ, अपील करने का जो है जो अपीलेंट है उसको अपना राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि कानून जो बनाया गया है, एक्ट जो बनाया गया है 2007 में, बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप है अपील का। हालांकि अपील, जैसे मैंने बताया, वो जा सकते हैं अपील का, उनको पूरे पूरे पूरी राइट है उनको
0: बिल्कुल
2: जाने के लिए अपील
0: जी
2: में।
0: जी
2: जी
0: चलिए अब गार्गी लखनपाल आपके पास आऊंगी। देखिए कानून हमारा क्या कहता है इसको लेकर तो आशुतोष जी ने समझा दिया और पॉइंटर्स आगे हम उनसे जानेंगे समझेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो क्या है, क्या नजर आता है समाज में? क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सामने आता है, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी या पैसा कई बार ट्रांसफर कर देते हैं, हालांकि इस केस में शर्त वहां पर लिखवाई गई थी, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स नहीं लिखवाते हैं क्योंकि रिश्ता ऐसा होता है, पेरेंट्स को भरोसा होता है और बच्चे भी उस तरह का भरोसा जगाते हैं माता पिता में।
3: महाराष्ट्र हाई कोर्ट का बहुत बहुत सम्मान कि उन्होंने इसको लागू किया और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में ये लागू होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। देखिए जिस तरह से भारत में बुजुर्गों की जो आबादी है वो बढ़ रही है, हमारे अभी 60+ जो हमारे आयु के जो बुजुर्ग हैं अभी 2034 में उनका जो वो है 15 से लेकर 16% उनकी आबादी बढ़ जाएगी। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों को ये समझना पड़ेगा, ये जो हमारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे जो हमारा हक है ये हमारा राइट नहीं है, ये हमारा प्रिविलेज है। हमारे पेरेंट्स हमको ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं देते। देखिए इतनी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पेरेंट्स को हमें प्रॉपर्टी इसलिए देनी पड़ रही है कि बच्चे उनकी सेवा करेंगे। तो ये हमारे देश का हमारे नैतिक मूल्यों की कहीं ना कहीं कमी है। हमें बचपन से कानून नहीं सिखाया जाता, हमें बचपन से नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ देश के नागरिक, हम सबको इसमें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी पड़ेगी। हम सबको ये जो हम मिसयूज करते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का और ये इन कानून का, ये जो हमारे राइट्स हैं हमें दिए जाते हैं, मुझे लगता है बहुत गलत है। ये हमारा कोई राइट नहीं है हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, ये हमारा प्रिविलेज है जो हमारे पेरेंट्स अपनी खुशी से हमें देते हैं और उसके बदले में हमें उनको सम्मान देना होता है, जिसको हम आज सेवा का नाम देते हैं। हम एज अ बच्चे हम भी सोचते हैं कि हमने अपने माँ बाप को अपने घर रखा हुआ है, हम नहीं अपने माँ बाप को रखने वाले, हमारे पेरेंट्स ने हमें अपने पास रखा हुआ है, ये हमारा लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये एक बेसिक और जहां तक मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, अभी वृद्ध केयर फाउंडेशन 1100 ओल्ड एज होम्स के साथ काम कर रहा है। तो अगर ये कानून पूरे देश भर में लागू होता है तो हम उन 1100 वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के साथ न्याय करेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके अच्छे घर होने के बावजूद भी वो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं।
0: स्वेच्छा आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, ये तो एक बात है। देखिए गार्गी ने बात सही कही है, लेकिन ये एक बात है, लेकिन आप बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप वो सेंसिटिविटी किस तरीके से जगाएंगे, वो अपनापन किस तरीके से जगाएंगे, क्योंकि सही बात है कि आने वाले समय में हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और कितने ओल्ड एज होम है उनकी तादाद भी, गिनती भी इन्होंने बताई है, लेकिन क्या फोर्सफुली आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं? क्या वो रिश्ता वापस हो पाएगा? कहीं वो घर आपको घुटन तो नहीं देगा? जाहिर सी बात है कि उसके बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहेंगे कि हम इससे बेटर है कि हम यहाँ से चले जाएं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है।
4: बिल्कुल सही बात कही है आपने। मेरा ऐसा मानना है कि ये हम जिस समाज में रहते हैं, हम इंडिया जिस हमारे अपब्रिंगिंग और जिन वैल्यूज के साथ आगे चला है, ये वैल्यूज हमारे कल्चर का एक भाग है जिसको दर्शाता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हमारा रहना, उनका जीवन में उनके आगे साथ उनका देना, ये सिर्फ हमारी मॉरल, ये सिर्फ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारी मॉरल वैल्यूज पे भी आता है।
0: लेकिन यही पे यही सवाल है। देखिए जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं शिक्षा, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, मॉरल वैल्यूज कहीं नहीं नजर आती है हमारे देश में।
4: बिल्कुल करेक्ट है आपका, एंड आई थिंक हमें वहां पे थोड़ा सा इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि क्या हम पेरेंट्स के साथ एक संवाद फैमिली में जो होना चाहिए, एक कॉन्वर्सेशन जो एक छोटे लेवल से जब हम शुरुआत करते हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच में एक जो रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, वो किस तरीके से हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें ऐसे लॉस की जरूरत ना पड़े। मैं ग्राउंड रियलिटी की भी थोड़ी बात करूंगी कि मैं मराठवाड़ा के जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जहां से आती हूँ, यहाँ पे हमने बुजुर्गों के ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे बच्चे पुणे, मुंबई या नासिक चले जाते हैं जॉब्स के लिए, और उसके बाद वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने माता पिताओं का, उनके खाने तक का भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ तो क्वेश्चन, एक सवाल आता है ह्यूमैनिटी की तरफ, हम किस डायरेक्शन में एज अ समाज की तरफ हम आगे जा रहे हैं, और हमें आने वाले समय में किस तरीके की समाज की संरचना करनी है। तो मेरा फोकस यहाँ पे
0: स्वेशा,
4: कुछ
0: कोई
4: इस तरीके
0: एक
4: की
0: अगर
4: साउथ
0: केस
4: में।
0: स्टडी आप हमें बता पाए स्थिति
4: बिल्कुल
0: कैसी है,
4: बिल्कुल,
0: बिल्कुल इसी से हमारे दर्शक समझ भी पाएंगे उसे अच्छे से।
4: हम मराठवाड़ा के जिस जिले में, बीड जिले से मैं बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या, क्योंकि ये हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में आता है मराठवाड़ा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि मोस्टली फोकस्ड हमारी पुणे मुंबई नासिक इन एरिया में ज्यादा है, तो जितने भी यहाँ के मजदूर हैं या लो फाइनेंशियल फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, ये सभी लोग अपने घर बार छोड़ के पुणे मुंबई में चले जाते हैं। ऐसे ही एक केस, एक मैं महिला का बताना चाहूंगी कि जो कि बुजुर्ग हैं, अपने 64 ईयर्स की हैं, उनके बच्चे चले गए, और कुछ सालों तक तो उन्होंने अपना संबंध रखा अपनी माँ के साथ, फिर उन्होंने इन बच्चों ने वहीं पे अपने पुणे ही मुंबई में अपनी ही दुनिया उन्होंने बसा ली, उन्होंने अपनी फैमिली वहां पे शुरू करी, और अपनी माँ को उन्होंने भूल गए, उन्होंने छोड़ दिया अपनी माँ को यहाँ पे लोगों के सहारे, या उन्होंने ऐसा सोचा कि गांव वाले देखेंगे। तो हम जो संस्था से, मैं मानव रूप जिस संस्था से बिलोंग करती हूँ, हमारी संस्था ऐसे कम से कम रोज 500 बुजुर्गों को 2 टाइम का खाना उनको प्रोवाइड करती है, जिनके पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे कितने हमें यहाँ पे ऐसे केसेस देखने मिलते हैं कि बच्चे एक बार चले जाने के बाद वो वापस भी एक बार आने का सोचते नहीं है, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं, उनका मेडिकल तो चीजें तो बहुत ही दूर की बात है कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उनके खाने के बारे में भी नहीं सोचते, उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो ये जो लॉ एक जो आया है, ये जो ऑर्डर जो एक पास किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, यहाँ पे मैं उस पर फोकस करना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर ये फोकस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का फोकस था कि सीनियर सिटीजन का प्रोटेक्शन, सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट और डिग्निटी कैसे हम मेंटेन करी जाए, कि जिस घर में उन्होंने एक
0: हाँ,
4: साथ
0: क्योंकि
4: अपने
0: उन्होंने
4: बच्चों को
0: स्पेसिफिकली उस
4: रखा।
0: लाइन पर जिक्र किया, जब ये जब बेटे की तरफ से दलील दी जाती है कि ये तो वेल ऑफ है, इनको जरूरत नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रॉमिस इज प्रॉमिस, और इसीलिए आपने प्रॉमिस किया था कि उनकी देखभाल करेंगी, वो फुलफिल नहीं हुआ है, इसीलिए कोर्ट का ये ऑर्डर है। मनीषा जी, अब यहां पर हम दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और दोनों पहलुओं की मानसिक स्थिति को समझाइए। एक तरफ वो बुजुर्ग पेरेंट हैं जिनको जरूरत है बच्चों की, ताकि वो उनकी देखभाल कर सके, एक इमोशनल बॉन्डिंग जाहिर सी बात है कि माता पिता की बच्चों के साथ होती है, इमोशनली माता पिता चाहेंगे कि वो उनका जो बुढ़ापा है अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों नाते नातियों के साथ ही बीते। लेकिन यहाँ पर कुछ मजबूरियां उन युवाओं की भी हैं। अब जैसा अभी बता ही रही थी हमारी पैनलिस्ट की, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी की वजह से शहर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आके पूछते भी नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ उनके माता पिता हैं। ये दोनों कंडीशन को किस तरीके से आप देखती हैं?
5: मैं ये कहूंगी कि केवल पैसा अर्न नहीं किया जाता है, रिस्पेक्ट भी अर्न की जाती है, और जो एक अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट जो पेरेंट्स का बच्चों से बहुत ज्यादा होता है और बच्चों का भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों का टाइम के साथ। और आज के समय की बात अगर करें, टुडेज एज, जहां पे आजकल कैसे भी केसेस हो रहे हैं, तो जो ये जो लॉ पास हुआ है तो इसमें बिल्कुल ये सही है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की वो हार्ड एंड मनी है। अब वो उनके राइट्स हैं, उनकी चॉइस है कि वो किस तरह से उस मनी को यूज करना चाहते हैं। अगर बच्चे उनको आदर सत्कार दे रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी ओल्ड एज में जो भी उनकी जरूरतें हैं, चाहे वो मेडिकल इश्यूज है किसी भी तरह के, या फिर उनकी दिनचर्या रिलेटेड है, उनको किसी भी तरह की सुविधाओं की जरूरत है, तो अगर बच्चे वो सब कुछ कर रहे हैं तो मतलब जो भी पेरेंट्स के पास है, नेचुरली पेरेंट्स से वो अर्न कर सकते हैं उस चीज को। अगेन पेरेंट्स की चॉइस होगी, लेकिन जहां पे ये जो संबंध है बच्चों का और पेरेंट्स का, वो थोड़ा सा उसमें दरारें आने लगती हैं, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मनी माइंडेड होना बच्चे का, या फिर बच्चे का इंटेंशन क्या है, उस पैसे को वो आगे कैसे लगाना चाह रहा है, या वो फ्रीडम चाह रहा है, उसको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं चाहिए, उसको केवल अपना घर, एक अपना सुकून से उसको अकेले रहना है, या अपनी फैमिली के साथ, फैमिली जो बच्चे की फैमिली चेंज हो जाती है, कहाँ तो पेरेंट्स उनकी फैमिली होते थे, लेकिन जहां वो इंडिपेंडेंट हुए तो उनकी फैमिली में उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, उनके बच्चे हो गए, तो नेचुरली पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा थोड़ा डिसहार्टनिंग होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही डिसहार्टनिंग होता है। बच्चे उस इमोशन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि उनका भी टाइम ये आएगा, और उसके टाइम के हिसाब से शायद उनके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। अपने उनके अपने बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें उनके साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो वो देख रहे हैं वो काफी कुछ वो वैसा करने लगते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की चॉइस होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उनका बच्चा है तो वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास जाएगी, और अगर उन्होंने गिफ्ट कर भी दिया है सो डेफिनेटली दे कैन टेक दैट बैक ऑल्सो। सो ये फ्रीडम, ये लिबर्टी उनके पास 100% होनी चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है कि हमारे कानून में भी इस तरह के प्रावधान हैं। आशीष जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार गार्गी, दूसरा पक्ष भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप हर दिन इस तरह की चीजों को डील भी कर रही हैं। जो नॉर्मली देखा गया है, जिस वजह से पेरेंट्स और बच्चे दोनों अलग होते हैं, रोजगार एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि रोजगार की वजह से बच्चे, जाहिर सी बात है, कि घर से दूर चले जाते हैं, और ये एक बड़ा कारण बनता है। दूसरे शहरों में रहना उनकी एक मजबूरी भी हो जाती है कई बार, और एक प्रेशर जो रहता है कि एक तरफ तो बच्चों की भी देखभाल करनी है, और दूसरी तरफ बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी देखभाल भी करनी है, और अपनी नौकरी को भी उस ऐसी सिचुएशन में सस्टेन करना है, जिस वजह से परिवार में टेंशन भी बहुत ज्यादा होती है, इमोशनली कई बार लोग बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, बैलेंस नहीं बैठा सकते हैं। तो ये भी एक रियलिटी है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। ये आपने अगर इस तरह के केसेस देखे हैं तो किस तरीके से इसको डील किया जाता है?
3: देखिए, इसमें मैं कहूंगी कि आपकी जो मोरल वैल्यूज दोबारा आ जाती है कि आपकी मंशा होनी चाहिए, आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मुझे अपनी नौकरी की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कोई सॉल्यूशन निकाल के जाऊं, तो मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का जो दौर चल रहा है, हम सब बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग अपनी अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, और अब तो डे केयर सेंटर्स हमने सीनियर सिटीजन के लिए देखे हैं कि अपने जो पेरेंट्स हैं वो डे केयर सेंटर में छोड़कर जाते हैं। बट इसमें मैं बात कहूंगी कि दोनों को ही ये समझना पड़ेगा, और दोनों की ही काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में ये है कि दोनों हम बैठे और बैठ के डिस्कशन हो हमारा, कि देखिए ये हमारा सीमित दायरा है, ये चीजें हम कर सकते हैं और ये चीजें हम नहीं कर सकते। तो वो जो डिस्कशन है एज अ फैमिली, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको ओल्ड एज होम में आना पड़ता है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसमें मैं आपको एक दो रियलिटीज और बताऊंगी कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब माता पिता वृद्धाश्रम में आ गए, बट काउंसलिंग के द्वारा उनको दोबारा से वापस घर भेजा गया। तो इसमें चीजें यही है कि हम कैसे दोनों में आपस में बैठे, बात करें, डिस्कशन हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें, तो वो जो हम अपनी मोरल वैल्यू में हम हमेशा बोलते हैं कि माता पिता और बच्चों को आपस में समय बिताना बहुत जरूरी है, तो वो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। सेकेंड चीज
0: बिल्कुल
3: जो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, बच्चों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि हमारे माता पिता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर कोई भार नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, नौकरी जो है आय होना बहुत जरूरी है। आज उन्होंने जो धन कमाया है उसकी वजह से वो जो बच्चों को दे पा रहे हैं, सेम उन्होंने भी अपने बच्चों को वही लेगेसी देनी है। तो ये जब तक हम आपस में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, ये प्रॉब्लम्स आती ही
0: ठीक है
3: रहेंगी।
0: आशुतोष जी, आपको इंक्लूड करूंगी, कानून इसको लेकर क्या कहता है, अगर हम बुजुर्गों के अधिकार की बात करें, लेकिन ऐसे बहुत से मामले भी आए, क्योंकि हम दोनों पक्षों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। हम यहाँ मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर वाकई मॉरल वैल्यूज को बिल्कुल ताक पर रख दिया जाता है, और ये शायद वैसा मामला होगा जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन कई ऐसे मामले भी हमने देखे हैं जहां पर तालमेल की कमी की वजह से इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं।
2: वो तो बिल्कुल है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो कानून बनाया गया था उसका जो मेन पर्पस था, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जो मेन पर्पस यही था कि किसी भी हाल में सीनियर सिटीजन को छोड़ा नहीं जा सकता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस उनका बंद नहीं किया जा सकता। अब जैसे इस केस में तो मान लीजिए कि उसके पेरेंट के पास प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया और फिर जो है अभी रिवोक किया गया गिफ्ट डीड को। लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और उनके पास कोई भी ऐसे ट्रांसफर करने के लिए कोई भी एसेट नहीं होता, तब क्या होता? तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए ही, ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए ही इस कानून को बनाया गया था कि सेक्शन 5 के तहत जो है अगर कोई भी पेरेंट्स ट्रिब्यूनल में जाते हैं जो सीनियर सिटीजन के, और वहां वो बोलते हैं कि मुझे मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए और फाइनेंशियली हमारे पास हम कैपेबल नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, तो जो उनके बच्चे हैं जो अर्निंग मेंबर हैं वो बाउंड हैं एज पर द लॉ कि वो मेंटेनेंस उनको दें, भले ही वो 10,000 तक का उन्होंने रखा है लिमिट, लेकिन वो है। और बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि इसी एक्ट में सेक्शन 24 में यहाँ तक कि 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट तक का पावर है ट्रिब्यूनल को, और फाइन भी वो लगा सकता है अगर मेंटेन नहीं किया जाता है ऐसे सीनियर सिटीजन को, अगर उनका फाइनेंशियल ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये कानून बनाने का मेन पर्पस तो यही था। अब जहां तक तालमेल का सवाल है तो देखिए तालमेल अलग है, अगर जैसे अभी हम सुन रहे हैं पैनल पे कि भाई कोई नौकरी लग गई और वो भी मजबूर है, बेटा भी कहीं बाहर चला गया, किसी दूसरे सिटी में चला गया अपनी फैमिली को लेके, उसको अपनी फैमिली अपने बच्चे को देखना है, साथ में पेरेंट्स को भी देखना है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देना ही देना है। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस जो है, आप भले ही आप फिजिकली वहां पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, आपकी मजबूरियां हैं, आपके अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना है। और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है तो वो ट्रिब्यूनल के पास वो जा सकते हैं अपने राइट्स को लेकर के। तो ये बहुत ही क्लियर इसको जो है बनाया गया था, ये कानून को बनाने का यही मेन पर्पज था। और देखिए जो कंडीशनल जो है, जो गिफ्ट डीड हुए हैं वो कैंसिल, वो तो ऐसे भी ठीक है, वो सेक्शन 126 जो मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो एक अलग मामला है कि गिफ्ट हुआ, गिफ्ट के अंदर जो है गिफ्ट डीड में ये कंडीशंस लिखे गए थे, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ, इस वजह से जो है गिफ्ट डीड कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट डीड कैंसिलेशन का पूरा मामला नहीं है हाई कोर्ट का देखा जाए तो, यहाँ पे ये मामला है मेंटेनेंस का कि सीनियर सिटीजंस को किस तरह से उनको सपोर्ट मिले ताकि जो है वो अपनी लाइफ जो है कंफर्टेबली वो जी सकते हैं, जो
0: सपोर्ट के साथ सम्मान की भी बात यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट के साथ सम्मान की तरफ भी इशारा किया है। तो किस तरीके से ये मामला आगे दूसरे मामलों के लिए नजीर साबित होगा, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
6: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
7: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community, and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
6: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या हैं आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: सेवा नहीं तो संपत्ति भी नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं जहां पर कोर्ट ने माता पिता की तरफ से बेटे को दी गई प्रॉपर्टी वापस करने के लिए कहा, यानी कि बेटे को कहा है कि वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल सकती क्योंकि उसमें एक क्लॉज था कि आप माता पिता की सेवा करेंगे, जो कि नहीं हुई, जिसके बाद माता पिता को घर छोड़ना पड़ा और अब कोर्ट ने फैसला माता पिता के हक में दिया है। आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार स्वेच्छा आपके पास आऊंगी, कुछ एक केसेस अगर आप हमें बता पाए, समझा पाए किस तरह के होते हैं। देखिए, दो तरह की चीजें हैं, एक तो हम ये मानते हैं कि बच्चे बाहर चले गए और फिर उन्होंने टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया, जहां पर एक मॉरल वैल्यूज की बात आती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि बच्चे पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कट गए, उन्हें पता ही नहीं कि माँ बाप कहाँ रहते हैं। एक वो केसेस भी होते हैं ऐसे में जहां पर तालमेल की कमी रहती है, माता पिता और बच्चों के बीच में तालमेल की कमी, या तो बच्चे नहीं समझ रहे माता पिता को या माता पिता बच्चे को नहीं समझ रहे, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, तो किस तरह कि केसेस आपके सामने ज्यादा आते हैं?
2: दोनों ही केसेस हैं हमारे पास, और एक ऐसा भी हमारे पास जो आपने सेकंड जो केस की बात करी है कि सेम ही गांव में रहने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो हम एज एन अप्रोच क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम उनके काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनबन कहाँ पर है, कहाँ पे हमें फैमिली को, कहाँ पे बच्चों को माँ बाप की समझने की जरूरत है और कहाँ पे माँ बाप को बच्चों की समझने की जरूरत है। तो हम दोनों पे फोकस करते हैं। मैं एक इसका एक छोटा सा उदाहरण भी आपको देती हूँ कि जैसे कि हमने बताया कि हम मील्स प्रोवाइड करते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, तो ऐसा एक केस हुआ था कि जहाँ पे सास और बहू की नहीं जम रही थी, और इस चक्कर में ऐसा हुआ कि बहू ने सास को ही घर से निकाल दिया और बेटे ने भी अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी माँ कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे रोज का अपना आना जाना कैसे करेगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जाके उन दोनों को आपस में बैठाया, उन दोनों को एक समझाने की कोशिश करी और उनको, बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमने एहसास दिलाया है कि आपके माता पिता जिन्होंने आपकी एक एज तक आपका एक साथ दिया और अभी आपकी एक जवाबदारी बनती है कि आप उनका साथ दीजिए।
1: एक बार गार्गी जी आपके पास आऊंगी, ये वो केसेस हैं जो अभी स्वेच्छा बता रही है रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों के, लेकिन अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, यहाँ पर बहुत बार केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। ऐसे केसेस अगर आपके पास आते हैं, अगर हैं तो कोई एक आध केस स्टडी हमें बताइए वहां पर कैसे सॉल्व होते हैं ये डिस्प्यूट्स।
3: ये प्रॉब्लम है ग्रैटिट्यूड और ईगो। जब हम लोगों में ग्रैटिट्यूड की कमी होगी और हमारे बच्चों में ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम्स को हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं ओल्ड एज होम में, बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो सिर्फ इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हैं कि बच्चे समय नहीं बिताते, बच्चे बैठ के साथ में खाना नहीं खाते, कोई घर पे बात करने वाला नहीं है, कोई खाना नहीं दे रहा। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, ये एक मेजर और ये इश्यू हमें अभी सुनने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है, बट ये इश्यू कब मेजर बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बच्चे ड्रिंक करके आ रहे हैं और ड्रिंक करके आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माता पिता पे हाथ उठा रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स कब एक मेजर इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, बेटा अपनी जॉब से परेशान होकर घर आया, उसने ड्रिंक करी, फादर को कुछ बोला, फादर उल्टे झूम निकल गए। अगले दिन सुबह अगर बेटे को अपनी गलती का एहसास भी होता है तो वो फादर दोबारा घर वापस नहीं आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक मेजर ईगो क्लैशेस और सबसे बड़ी बात है ग्रैटिट्यूड की कमी, ग्रैटिट्यूड ना होना इस तरह की। देखिए, हमारे सीनियर सिटीजन को इस उम्र में दो तीन चीजें कर चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिग्निटी और दूसरी चीज है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये उनका बेसिक रोल है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। कहीं लग्जरीज का मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है, उनकी डिग्निटी इम्पोर्टेंट है। अगर क्योंकि हमारे शहरों में ये ट्रेंड बढ़ गया है, सैटरडे नाइट्स का कल्चर बढ़ गया है और ड्रिंक करना हमारे हमारे समाज में बहुत ही नॉर्मल हो गया
1: जी
3: है, माता पिता के सामने ही करना और नॉर्मल हो गया है। तो मुझे लगता है ना कहीं इन सब चीजों को आपको जब हम बढ़ावा देते हैं तो ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल
3: मुझे लगता
1: बिल्कुल
3: है ओल्ड एज होम खत्म ही हो जाएंगे अगर ये ईगो क्लैशेस और ग्रेटिट्यूड को हमने एक सही राइट एज में संभाल
1: ठीक है
3: लिया। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, मैं बोलना चाहूंगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ज्यादा मोरल वैल्यूज को ऐड करने की
1: बिल्कुल
3: जरूरत है।
1: ठीक है, ये इस पर मैं लौटती हूँ। लेकिन एक बार, अब मनीषा जी,
3: बिल्कुल
1: एक चीज जो बहुत कॉमन देखी गई है, हम लोग भी अपने आसपास देखते हैं, संवाद की कमी। ये बहुत, आपने अभी पॉइंट भी उठाया है गार्गी जी ने, कि बड़ा, ये बहुत एक कॉमन सी बात है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। बच्चों से पूछेंगे तो उनका तर्क ये होता है कि उनके पास समय नहीं है, ऑफिस में समय बिता रहे हैं, घर आ रहे हैं तो वो सारा काम घर पे लेकर आ रहे हैं, कभी वर्क फ्रॉम हो रहा है, होम होता है, तो उसमें वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उनको अपना मी टाइम नहीं मिलता है। जब उनको मी टाइम नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरों को नहीं देते। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और ऐसे में देखा गया है कि जो जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसी चीज की सबसे बड़ी कमी है। मुझे लग रहा है कि अगर कहीं ना कहीं इसको ठीक किया जाए तो आपकी सारी वैल्यूज एकदम लाइन पे आ सकती हैं। कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है?
4: आपने एकदम सही पॉइंट का जिक्र किया है, जो चेंज जरूरत है आज की समय में। और अगर बच्चे साथ में रह रहे हैं या बच्चे साथ में नहीं रह रहे हैं पेरेंट्स के, दोनों ही केसेस में साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि जो एक बॉन्ड बनता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो अफेक्शन, वो अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से या पेरेंट्स का बच्चों के लिए, जितना मिलते हैं उतना ही ज्यादा उनके बीच में नजदीकी आती है, और वो एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है। डेफिनेटली जहाँ दो बर्तन होते हैं, कहते हैं ना, वो खटकते हैं आपस में, तो नेगेटिव कम्युनिकेशन या एक दूसरे की बातें बुरी लगना, कुछ हर्ट हो जाना, वो ठीक है। लेकिन उस समय में एक हमारी 4A स्ट्रेटेजी फॉर्मूला होता है, जिसमें हम बोलते हैं अवॉइड करना, अवॉइड एंड एक्सेप्ट। तो उसको एक्सेप्ट किया और अवॉइड कर लिया। अब अगर हम उसी चीज पे अटके रहे, उसी चीज को हम बार बार कुरेद के हम बार बार उसी पे बात करते रहे, या हमें पता है कि किसी एक फैमिली मेंबर की ईगो हर्ट हो रही है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को है या बच्चों की तरफ से पेरेंट्स के लिए है, तो अगर हम वहां से मूव ऑन नहीं करेंगे, तो जैसे होता है ना, कहीं पे आपके एक जख्म है तो उसी को अगर आप कुरेदते रहेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा डीप होता जाएगा और ज्यादा पेन देगा। तो उससे बाहर निकल के अगर हम उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें, और बाकी चीजें जो अच्छी हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें तो बेटर रहेगा। और चेंज बहुत जरूरी है। अगर हम चेंज नहीं लाते हैं तो चेंज अपने आप से नहीं होता है। तो किन किन चीजों पे, जो हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं उसमें एक्चुअली फोकस किया जाता है कि क्या क्या इस तरह के मुद्दे हैं जिनपे क्लैश है, जिनपे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और उसमें दोनों ही पार्टीज में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, जिससे हम मिडिल ग्राउंड पे आ जाएं। अगर मिडिल ग्राउंड पे नहीं भी आ पाते हैं तो क्या हम उनको उन उसमें से कितनी चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, और क्या पॉजिटिव है बाकी जो आपस में फैमिली मेंबर्स हैं, क्या हम उन उस पे फोकस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सपोज आपस में कुछ भी, किसी भी बात पे उन लोग की आर्गुमेंट होता है किसी भी तरह का, तो उस आर्गुमेंट का ट्रिगर क्या है, कहाँ से वो शुरुआत हुई, अगर हम उस पे थोड़ा सा फोकस करें और उस ट्रिगर को हम रिप्लेस या रिमूव करने की कोशिश करें, तो 100% बेटर लाइफ, पीस और लव के साथ में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है।
1: बिल्कुल
4: और अगर बच्चे शहर आ गए हैं, गांव में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो शहर मूव कर जाते हैं, तो पेरेंट्स के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है, नहीं प्रॉपर्टी है तो भी यहाँ पर एक म्यूचुअल एक बॉन्ड होता है, जिसमें बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स पेरेंट्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता जब बच्चे छोटे होते हैं भाई, उनको उन्हें बड़ा करना ही है, उनको सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, स्कूल की फीस भी देते हैं वो, उनके टॉयज के लिए, उनके महंगे महंगे ड्रेसेस के लिए, या उन्होंने कुछ बोला कि मुझे साइकिल चाहिए, बड़े होके उन्होंने बोला मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरह से वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हमें याद रहेगा तो हम अपने काम को भी, अपनी दिनचर्या को भी उसी के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। जो
1: संवाद
4: चीज
1: बहुत
4: अपने
1: इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। कम्युनिकेशन गैप की वजह से केसेस ज्यादा बढ़ रहा है। आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला यकीनन दूसरे मामलों के लिए नजीर तो बनेगा, लेकिन ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सुझाव, क्या टिप्स देंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे को जरूरत है, पेरेंट्स हर बार तैयार रहते हैं कि ठीक है आप सारा पीएफ का पैसा ले लीजिए या हमारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम कर लीजिए। जाहिर सी बात है क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही किया है, वो बिना सोचे समझे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद बच्चा जब अपनी अपने दुनिया में बिजी हो जाता है तो भूल जाता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए क्या कुछ किया है। तो ऐसे में कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखकर पेरेंट्स को आगे चलना चाहिए? कम से कम आज की डेट में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, पैसा ट्रांसफर हो, उसको देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो आप क्या टिप्स देंगे बुजुर्गों को?
5: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि वो अपना जो है पैसे जो उनको चाहिए, जो भी सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो जरूर अपना रख करके ही आगे दें, ताकि देखिए फ्यूचर में भी वो बच्चों को ही जाने वाला है जिस दिन वो नहीं रहे, या तो वो विल बनाएं, विल में वो सारी बातों को लिखें, रेदर देन कि वो अपने जीते जी सारा ट्रांसफर कर दें, फिर वो मजबूर हो जाएं उन पे डिपेंड होने के लिए। और अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ भी जाता है तो जो मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए जो कानून बनाए गए हैं 2007 में जो बनाया गया, उसमें ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, उस ट्रिब्यूनल में वो जा सकते हैं, वहां से वो बहुत तरीके के फाइनेंशियल रिलीफ वो जो है ले सकते हैं, और कानून में हर तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है ये बनाया गया है, ताकि वो जो है इस उम्र में जहाँ पे उनके पास कोई भी असिस्टेंस नहीं है फाइनेंशियल, और ये जो है उनका राइट माना गया है, जो जो बेसिक जो नीड्स होती हैं जैसे क्लोथ्स हो गए या शेल्टर हो गया या फूड हो गया, या उसमें उन्होंने हेल्थ केयर को भी ऐड किया हुआ है, तो ये सारी जो चारों चीजें हैं इनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, उन ट्रिब्यूनल्स में वो जाकर के और अपने लिए वो रिलीफ मांग सकते हैं। और इसके अलावा जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर का मेरे ख्याल जो नंबर है 14567 है, जो डायल करके वो हर तरीके का असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं अथॉरिटीज से। और मेरा अपना मानना है कि वो सीधा जो है गिफ्ट डीड करने के बजाय अगर वो विल बनाए आगे अपने फ्यूचर के हिसाब से, और ये देखते हुए कि उनका ध्यान सबसे ज्यादा कौन रखता है और किसको जो है वो क्या प्रोपोर्शन में उनको जो है देना चाहिए, वो विल में वो मेंशन कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम वो विल को अमेंड भी कर सकते हैं उनके लाइफ टाइम में। तो मुझे लगता है ये सारे प्रिकॉशंस लेने से जो है वो सेफ गार्डेड रहेंगे, और मुझे लगता है उनको ज्यादा वैल्यू भी मिलेगा, क्योंकि अगर वो पूरा प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वैल्यू उनका जो है बच्चों की नजर में कम हो जाता है,
1: जिसके
5: वजह से उनको बहुत तकलीफों का सामना भी करना पड़ता
1: ये
5: है।
1: ये एक बड़ा कारण देखा गया। लेकिन आशुतोष जी, खासतौर पर अगर हम इस केस की बात करें, यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ ये कि बेटा सिंगल चाइल्ड हो सकता है क्योंकि माँ बाप के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए शायद वो क्लॉज लिखवाया गया था, लेकिन अगर बच्चे दो हैं या तीन हैं तो ऐसे में जिम्मेदारियां कैसे बटेंगी फिर?
5: देखिए, ये इसमें अगर क्लाउज नहीं भी होता मेंटेन करने का और देखभाल करने का, तो भी ये जो हमारा जो कानून जो 2007 का है उसमें ये सारे प्रावधान लिखे हुए हैं, सारे प्रोविजन हैं, तो वो तो उनको ही ध्यान देना ही है। जहां तक

0: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
1: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
0: More top sports.
2: And he's going to go! There's the tying goal!
0: And everything in between.
2: This game is over!
0: Upgrade now for the premium listening experience.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से अब की जा रही हैं। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है, और इस पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बनने जा रही है बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। कांवड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर धर्मनगरी में इस समय तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग, हर कोई शिव भक्तों के स्वागत करने के लिए पलके बिछाए बैठा है। पुलिस हर स्तर पर तैयारियां कर रही है, कांवड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
11: एक बार फिर फिजाओं में सिर्फ बम बम भोले की गूंज होगी। केसरिया रंग का समंदर होगा और महादेव के भक्तों की आस्था चरम पर होगी, क्योंकि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, और इस पावन महीने के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ लगभग हो चुका है। लाखों करोड़ों शिव भक्तों और कांवड़ियों की आमद को देखते हुए हरिद्वार में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के भव्य कांवड़ मेले को सकुशल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, और इस महामेले के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है।

0: मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने शिव भक्तों से एक खास अपील की है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मेले के दौरान कोई भी कांवड़िया अपने साथ त्रिशूल, लाठी डंडे या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं आएगा। इन सभी वस्तुओं पर मेले के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का मकसद सिर्फ शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरिद्वार में इस बार आस्था, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। 3 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव में गंगा जल भरने आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: क्या आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं? क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है? क्या है आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
11: अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी श्रद्धालुओं की तादाद पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा, भक्त दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। शानदार मौसम के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, धार्मिक यात्रा के बीच कुदरत की खूबसूरती का ले रहे हैं आनंद, पिछले 4 दिनों की बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। मां पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आज 35 करोड़ पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना मकसद।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर।
11: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे पुरी की, जहां पर महाप्रभु जगन्नाथ देव जी की वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा के उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। सदियों पुराने इस उत्सव की तैयारियां सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि इंसानी आस्था और ईश्वरीय प्रेम का चरम रूप है। रिपोर्ट देखिए।

0: 16 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के पावन अवसर पर शुरू होने जा रही रथ यात्रा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ तैयार हो रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में सजावट का काम भी पूरा हो चुका है और सबको उस पल का इंतजार है जब रथ यात्रा के भव्य और दिव्य उत्सव का शुभारंभ होगा।
1: Both at the end of the Sri Mandira and at the other end of Sri Gundicha temple, all the preparations are reaching their full speed. And you can see the traditional Jyoti Chita, the traditional painting of Odisha are being done in both the ends. And inside the temple also, all the developmental works are almost over. So we wish and pray before Mahaprabhu Jagannath that all the rituals will be performed on time. And we seek cooperation of all the devotees and all the servitors and everyone who would be witnessing this great festival.
0: खास बात ये है कि पुरी के श्री मंदिर के साथ साथ यहाँ के मशहूर गुंडिचा मंदिर में भी रथ यात्रा के पावन उत्सव के सिलसिले में तैयारियाँ जोर शोर से जारी। मंदिर के गर्भगृह से लेकर शिखर तक हर कोने में सफाई की जा रही है, हर तरफ रंग रोगन जारी है और मंदिर परिसर को चमकाया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जारी है, क्योंकि श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होने वाली रथ यात्रा का अहम मुकाम यही मंदिर है। लिहाजा रथ यात्रा की जितनी तैयारी जगन्नाथ मंदिर में होती है, उतनी गुंडिचा मंदिर में भी होती है। इसका कारण ये है कि पुरी में स्थित गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। ये मुख्य श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बड़ा दंड के दूसरे छोर पर स्थित है। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडिचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़त दर्शन कहा जाता है। गुंडिचा मंदिर में भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसे आड़त महाप्रसाद कहते हैं।
2: एक प्रथा है, कई कथा है, मैं एक ही कथा आपके सामने बोलूंगा। जगन्नाथ महाप्रभु जगत के नाथ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो इसी समय रथ यात्रा वो खुद के लिए बनाते हुए अपने भक्त को मिलने के लिए रथ के ऊपर विराजमान होके वो सीधा गुंडिचा मंदिर चले आते हैं। क्यों? जो वेस्टर्न डिवोटी हो गया, जो अलग जात के भी लोग रहते, जो भगवान के मंदिर के अंदर जाने के लिए उनको पाबंदियां है, खुद जगन्नाथ महाप्रभु जगत पिता है, वो उन्हीं के सामने सब समान है, इसके लिए खुद वो रत्न सिंहासन छोड़ के गुंडिचा टेम्पल चले आते हैं रथ के ऊपर विराजमान होते हुए।
0: माना जाता है कि गुंडिचा मंदिर में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान की मूर्तियों का निर्माण किया था। ऐसी मान्यता है कि गुंडिचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ दर्शन करने से भक्तों के 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं। इतना ही नहीं, रथ यात्रा के शुभारंभ से लेकर अंत तक श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन होते हैं, जिससे वे अपना जीवन धन्य मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा पल होता है जब महाप्रभु खुद लोगों को दर्शन देने उनके बीच आते हैं। रथ यात्रा की यही महिमा है जिसके कारण मंदिर प्रशासन, सेवायत और सरकार से लेकर पूरी के तमाम लोग मुस्तैद हैं, ताकि ये उत्सव शानदार तरीके से संपन्न हो सके।
2: महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ यात्रा खुद करा रहे, इसके लिए यही तो बोलूंगा, हम सारे भक्त जो है सब निमित्त मात्र है और सब जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपके रथ यात्रा को आप खुद ही करिए, आप जगत पिता है और जगत पति है, जगत के नाथ जगन्नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर है, निर्विघ्न से ये रथ यात्रा ये खुद आप ही कर सकते हैं, हम लोग सब प्रयासरत रहेंगे। तो ठीक उसी तरह श्री मंदिर में समस्त कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है महाप्रभु का ये भव्य और दिव्य रथ यात्रा के लिए। आप देखेंगे
0: गुंडीचा मंदिर में प्रवास के दौरान भगवान को अत्यंत सुंदर और विशेष वेश में सजाया जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ उनके दिव्य दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में रुकने के पांचवे दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती है, क्योंकि भगवान उन्हें अपने साथ रथ यात्रा में नहीं लाते हैं। वो गुस्से में भगवान के रथ का एक पहिया भी तोड़ देती है। माता लक्ष्मी की गुंडीचा मंदिर आने की तिथि हेरा पंचमी कहलाती है। हेरा पंचमी के अगले दिन गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े तीनों विशाल रथों का रुख दक्षिण दिशा यानी मुख्य जगन्नाथ मंदिर की ओर घुमा दिया जाता है, और इसके साथ ही माना जाता है कि अब भगवान की वापसी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुंडीचा मंदिर में 9 दिन बिताने के बाद भगवान फिर से अपने रथ पर सवार होकर वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पुरी की रथ यात्रा में शामिल होंगे और इस उत्सव का नया इतिहास रचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बाबद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश से मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। पहाड़ों पर हरियाली बढ़ गई है, बादलों का टेरा साफ साफ नजर आ रहा है। बद्री धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान बद्री विशाल का बुलावा आया हो तो मौसम की बेरुखी भी बेअसर हो जाती है। मानसूनी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं पर माणा गांव में भी रौनक जबरदस्त है, तीर्थयात्री मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं।

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रुक रुक कर बरसाती बूंदे और वातावरण में ठंडक का एहसास। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और दिव्य मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्त आस्था के साथ साथ मौसम का मजा लेने में भी पीछे नहीं दिख रहे। बद्रीनाथ में बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि मौसम का असर से भक्तों के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही।
1: पहाड़ों में भले ही मानसून अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए इस समय सबसे सुंदर मौसम देखने को मिल रहा है। जहां बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार पिछले चार दिनों से बारिश का दौर जारी है, वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी मौसम साफ होता है तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। ऐसे में जो यात्रा मार्ग है वो सबसे बेहतर इस समय है। यात्रा मार्ग कहीं भी बाधित नहीं हो रहे हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवां सीधे रुख कर रहा है देश के पहले गांव माणा की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। धुंध की सफेद चादर के बीच जब ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दुगना कर रही हैं, कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गांव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ के कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी उस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहां बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दे दी है। देखिए, मौसम विभाग का कहना यह है कि 14-15 अप्रैल के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रशांत महासागर में एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में इससे मानसून को मजबूती मिल सकती है।

0: उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, हर इलाके में मानसून ने काफी इंतजार कराया, लेकिन जब बरसा तो झूम के बरसा। हालांकि मानसून की बेरुखी से अभी भी कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश तो हुई है लेकिन जरूरत भर नहीं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 से 25 जुलाई के बीच मानसून में नई जान आ सकती है। शांत महासागर में ट्रॉपिकल सिस्टम या लो प्रेशर एरिया बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ये सिस्टम मजबूत हुआ और पश्चिम की ओर बढ़ा तो ये मानसून को मजबूती दे सकता है। हालांकि अभी 6 से 7 दिन बाकी हैं, इसलिए मौसम वैज्ञानिक सतर्कता से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्वी भारत में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भाग में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से हटी हुई है, जिसके कारण नमी वाली हवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश अभी 1 से 2 दिन जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा।
1: ओवरऑल अगर बाकी हिस्सों की बात करें ईस्ट इंडिया के, वहाँ भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है हमारा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सबसे पहले है
2: मॉनसून की फुहारों के साथ ही पर्यटन नगरी डलहौजी में भी सैलानियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। डलहौजी में इन दिनों घने कोहरे और हरियाली की चादर ने बसेरा बना लिया है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। बादलों से ढके पर्वत, देवदार के घने जंगल और कोहले और धुंध के बीच जो है झांकती वादियां देखने को मिल रही हैं। जबरदस्त कोहरा भी है, डलहौजी की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद जो लगा रहा है। वहीं पर यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक जो है जबरदस्त तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं, मनमोहक नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इसलिए डलहौजी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जा रहा है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेता है, जिससे गांधी चौक, सुभाष चौक, गर्म सड़क, पंचपुला और आसपास के पर्यटन स्थल बहुत आकर्षक नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर छाई धुंध और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को सुकून और रोमांच का अद्भुत अनुभव दे रही है। मानसून के मौसम में डलहौजी की असली खूबसूरती देखने को मिल रही है। भविष्य में भारतीय नौसेना की तैयारियों पर हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन से खास बातचीत की। हाल में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है।
3: सवाल सर, आपने हाल में ही नौसेना की कमान संभाली, इस वक्त जो समुद्री मोर्चे की चुनौतियां हैं, और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी नौसेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान?
4: मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने 4 प्राथमिकताएं मैंने ऑलरेडी कह दिया लोगों से। सबसे पहले जो हमारे ऑपरेशनल रेडीनेस, उसको हमेशा ही एक ऊंचा लेवल पे रखें, क्योंकि आप हमारे जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन है। तो एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, द इंडियन नेवी विल मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस एंड बीइंग ऑपरेशनली रेडी एंड ऑपरेशनली स्ट्रांग एंड कॉम्बैट इफेक्टिव इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ये मैंने बता दिया, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरे जो हमारे कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान है, जो इंडियन नेवी सेट है एक वेरी एम्बिशियस कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान में, उसको मैं लगातार जो मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए इम्पेटस देता रहूंगा, और हमेशा मेरा ध्यान यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कितना कैपेबिलिटी और मैं जोड़ सकता हूँ नेवी के लिए। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑफ आर यू नो, बिकॉज जो हमारा सिक्योरिटी एनवायरमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज माई थर्ड प्राथमिकता, जो मैंने अपने टीम मेट्स को बताया है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्राथमिकता है द वेलनेस एंड द वेलबींग ऑफ द मैन एंड द वुमन हु वर्क्स इन द इंडियन नेवी। मैं मानता हूँ कि यू नो, दुनिया भर में जहाँ भी आप जाके ढूंढेंगे, जो इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जो यू नो मैन एंड वुमेन काम करते हैं, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इन दियर प्रोफेशनलिज्म, इन दियर डेडिकेशन, इन द लॉयल्टी, द डिवोशन टू द ड्यूटी। तो जहाँ मैंने मुझे यू नो गुड फॉर्चून मिला कि मैं दुनिया के काफ़ी आर्म फोर्सेज वालों के साथ मैंने यू नो इंटरेक्शन किए हैं, कहीं भी मेरे को ऐसे वाले लॉयल, प्रोफेशनली साउंड प्रोफेशनल्स कहीं भी नहीं मिले। मैं उनके ऊपर बहुत ही गर्व बहुत ही ज्यादा गर्व करता हूं और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता उनके वेलफेयर वेलनेस और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे रहेगा।
3: इस वक्त जो माहौल है सुरक्षा का, चाहे समुद्र हो, मल्टी डोमेन वॉर चल रहा है, चाहे समुद्र के नीचे हम सबमरीन की बात करें या एयर में देखें, उस मोर्चे पर फ्यूचर की क्या तैयारी होगी भारतीय नौसेना की प्रमुख?
4: सो आपने सही बात कही है कि द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग, मल्टी डोमेन वॉरफेयर इज ऑलरेडी अपॉन अस। भारतीय नौसेना में हम लोग हमेशा ही जितने डेवलपमेंट्स है वॉरफेयर के ट्रेंड्स टेंडेंसीज क्या है उसको देखते हैं, टेक्नोलॉजीज क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज अभी करंट इरा में इस्तेमाल हो रहे हैं और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो क्या है, उन सबको देखते हुए हम अपने प्लान बनाते हैं फॉर द फ्यूचर। उसको हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। जब हम कहते हैं कि द इंडियन नेवी नीड्स टू बी फ्यूचर रेडी, इसका मतलब यह है कि हमको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे होने वाले हैं, कौन से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने वाले हैं, और जब फ्यूचर हमारे पास आएगा उसके लिए हमको रेडी ऑलरेडी बनना चाहिए। तो हमेशा ही हम लगातार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर 10 साल के बाद जो माहौल होगा उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं और 10 साल के बाद जब वो माहौल आएगा उस समय हम उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें। तो उसको लेके मन में हम हमेशा ही फ्यूचर को देखते हुए करते हैं। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात चलती है, अभी भी हम लोग बहुत सक्षम हैं। द इंडियन नेवी ऑपरेट्स एंड फाइट्स इन ऑल 6 डोमेन्स, सो वी आर रेडी फॉर दैट एंड वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव आवर कैपेबिलिटीज बाय द डे टू फाइट मल्टी डोमेन ऑपरेशंस।
3: बहुत धन्यवाद। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना जो वर्तमान की चुनौतियां हैं और इस वक्त जो जरूरत मल्टी डोमेन वॉरफेयर की उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीत नेगी।
2: अब खबर तिब्बत से। धूप की पहली किरण जब तिब्बत में ल्हासा के पहाड़ों पर छूती है तो चांदी की तरह चमकती सफेद दीवारों वाली सुर्ख लाल रंग की इमारत जादुई नजर आने लग जाती है। यूनेस्को की इस विश्व धरोहर पोटाला पैलेस को चमकने के लिए किसी आधुनिक का केमिकल पेंट का नहीं बल्कि आस्था के एक जैविक और मीठे नुस्खे का इस्तेमाल होता है। पहाड़ पर बने इस शानदार महल पर सैकड़ों लोग रंग छिड़कते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वे आसमान और जमीन के बीच श्रद्धा का एक नया कैनवास तैयार कर रहे हैं। आखिर क्या है पोटाला पैलेस के पेंटिंग के पीछे की कहानी, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
5: ल्हासा में स्थित मशहूर ऐतिहासिक इमारत पोटाला पैलेस की रौनक देखते ही बनती है। इस अनोखे महल का आर्किटेक्चर मीलों दूर से लोगों को आकर्षित कर सकता है। घुमावदार सीढ़ियों से सजी इस बहुमंजिला इमारत की शानदार रौनक को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से यहां पर रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है। तिब्बत के सैकड़ों स्थानीय लोग और दूर दूर से आए वॉलंटियर इन दिनों पोटाला पैलेस की नए सिरे से पेंटिंग के काम में हाथ बटा रहे हैं। इमारत के कोने कोने को चमकाने के लिए ये लोग पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। इसकी एक खास वजह ये भी है कि पोटाला पैलेस की खास तरीके से पेंटिंग और रंग रोगन की ये परंपरा 300 साल पुरानी है। हर साल जुलाई यानी तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से सितंबर में सदियों पुराने नुस्खे के आधार पर खास तरीके के पेंट तैयार करके इस महल की पुताई की जाती है। इस पेंट को बनाने में चूने और दूसरी सामग्रियों के साथ दूध, शहद और केसर का भी इस्तेमाल किया जाता है। खास तरीके से बनाए गए इस पेंट से रंगाई पुताई के कारण ही इस इमारत की चमक अभी तक बरकरार है। आपको बता दें कि पोटाला पैलेस का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। ये मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनी पारंपरिक तिब्बती शैली की इमारत है। इसमें 1200 से ज्यादा कैमराज हैं। पोटाला पैलेस ल्हासा के बीचों बीच माउंट मारपोरी पर स्थित है। तिब्बती भाषा में माउंट मारपोरी का अर्थ है लाल पहाड़ी। पोटाला पैलेस लंबे समय तक बौद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बती लोगों के धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान रहा है। 1959 तक ये दलाई लामा का शीतकालीन निवास हुआ करता था। इसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित महल परिसर माना जाता है। 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पोटाला पैलेस की पेंटिंग की परंपरा केवल इस इमारत के संरक्षण से ही नहीं जुड़ी, बल्कि इसका संबंध बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध से भी है। मान्यता है कि तिब्बती कैलेंडर के 9वें महीने के 22वें दिन भगवान बुद्ध का धरती पर अवतरण होता है। उनके स्वागत के लिए इस महल की पेंटिंग की जाती है और महल की बाहरी दीवारों पर नया रंग रोगन किया जाता है। भगवान बुद्ध के धरती पर आगमन की तिथि से 3 हफ्ते पहले इमारत की इस तरह से खास पेंटिंग का काम पूरा कर लिया जाता है। इस बार एक और खास बात ये भी है कि अब पटोला पैलेस में रखी 10,000 पेजेस से ज्यादा पुरानी और दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण का भी काम जोर शोर से चल रहा है। पांडुलिपियों के एक एक पन्ने को डिजिटल तरीके से स्कैन किया जा रहा है और उनकी कैटलॉगिंग की जा रही है। इनमें बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, तो साथ ही दूसरे विषयों पर भी लिखी गई सामग्री काफी मात्रा में मौजूद है।
6: 从内容上看呢，布达拉宫里面其实我们发现了一些比较有特点的，并且是其他地方目前还没有发现的，尤其是这种阴明学的这个典籍里面有一些新的发现，比如说这种中观经也好，阴明经，可能在大的这个甘珠尔丹珠尔里面没有发现那个翻译过的，类似这种的是从这个文献的这个解读方面有很大的这个。
5: दावा किया जा रहा है कि इनमें कई पांडुलिपियां हजारों साल तक पुरानी हो सकती हैं। पुराने जमाने में इन्हें खास किस्म के बॉक्स में बेहद सावधानी से रखा गया था ताकि ये खराब ना हो। अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें आने वाले समय में बचाए रखने की तैयारी है। माना जा रहा है कि पोटाला पैलेस में रखी इन पांडुलिपियों में ज्ञान का अनूठा खजाना है, जो अब अगर दुनिया के सामने आए तो सभ्यताओं के कई राज खुल सकते हैं, कई बड़ी समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: केरल के वायनाड जिले पर प्रकृति जमकर मेहरबान है। देखिए, प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इस जिले की कोई सानी इसका नजर नहीं आता। यहां के कई गांव आजकल अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से सैलानियों की पहली पसंद बन चुके हैं। वजह है ग्रामीण परिवेश में आधुनिकता का संगम, यानी गांव का पारंपरिक खाना और झोपड़ी में 5-स्टार सुविधा सभी को आकर्षित कर रही है। आज बात करेंगे वायनाड के चिकाड़ी गांव की।

तक खेत ही खेत, गांव का वातावरण, इधर उधर टहलते जानवर, खेतों के बीच बना देसी रेस्टोरेंट और पारंपरिक रूप से बनी झोपड़ी में आलीशान कमरा, ये नजारा केरल के वायनाड जिले के चेकार्डी गांव का है।

हरे भरे पहाड़, चमचमाते तालाब और नदियाँ और जीवो जंतुओं का अद्भुत प्राकृतिक संगम इस चेकाटी गांव को प्रकृति की लय में ढाल देता है। चेकाटी गांव में आदिवासी लोग रहते हैं और यहां प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं और यहां के देसी पकवान और परंपरा का आनंद लेते हैं।

वायनाड का ये गांव लग्जरी रिजॉर्ट्स के विकल्प के तौर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही जिले की विरासत को भी बचा रहा है। यहाँ पर जो भी सैलानी आते हैं वो जनजातीय लोगों के पारंपरिक जीवन का आनंद भी लेते हैं। यहाँ रिजॉर्ट गार्बेज मैनेजमेंट, जल संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भर मामले में कोई समझौता नहीं करते, तभी तो पूरा इलाका साफ सुथरा है। इको टूरिज्म से स्थानीय तौर पर रोजगार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय का लाभ अब यहाँ के जनजातीय समुदाय उठाने लगे हैं। केरल के 14 जिलों में वायनाड को प्रकृति ने जितना प्यार दिया है उसको सींचने का काम वहाँ की जनजातियों ने किया है। केरल के हिल स्टेशनों में वायनाड सबसे टॉप पर आता है।

0: केरल के वायनाड जिले को हरियाली का स्वर्ग कहा जाता है और ये पूरा जिला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का आदर्श उदाहरण है। यहाँ पर्यटक न केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं बल्कि इसके संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर पर्यावरण अनुकूल पर्यटन कारोबार का केंद्र बिंदु भी है। कई गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और देश के अलग अलग इलाकों से लोग इको टूरिज्म का आनंद लेने यहाँ पहुँचते हैं। वायनाड से शिवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पांडा को बर्फ के टुकड़े पर बैठकर ठंडा तरबूज और गाजर खाते हुए आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको लिए चलते हैं हम उत्तर पश्चिम चीन के शांक्सी प्रांत में, शियान शहर में, जहां पर गर्मी के चलते किनलिंग वाइल्ड लाइफ पार्क के जानवरों को उनकी जरूरतों और आदतों के हिसाब से खास ठंडी ट्रीट दी गई है। तस्वीरें देखिए, बंदरों को गर्मी से राहत देने के लिए मूंग की दाल का सूप भी दिया गया, जबकि देखिए रिंग टेल्ड लीमर जमे हुए फल और आइस पॉप्स का मजा लेते हुए नजर आए। चीन में इन दिनों का जो काफी गर्मी देखने को मिल रही है, इसलिए जानवरों के भोजन में खास तरल पदार्थ डाले जा रहे हैं और फल, बर्फ और मूंग की दाल के सूप का काफी स्टॉक तैयार किया गया। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: आपके हाथों की अंगुलियां आपकी रुचि के बारे में बताती हैं, क्या अंगुलियों के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं, क्या पैरों का अंगूठा भी कोई बड़ी जानकारी देता है, क्या हैं आपके शरीर के लक्षण और क्या है उनका अर्थ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको बताएंगे आज कि शरीर के जो अलग अलग लक्षण हैं, शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, अंग हैं, उनका आपके भाग्य और जीवन से क्या संबंध है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और आपके भाग्य को बेहतर बनाने के उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:49 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 5:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लक्षण विज्ञान की या सामुद्रिक शास्त्र की, और लक्षण विज्ञान में आपके शरीर की बनावट, आपके शरीर के चिन्ह, ये आपके भाग्य और आपके जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके पैर के अंगूठे के बारे में। देखिए, व्यक्ति के पैर का अंगूठा व्यक्ति के प्रभाव और उसकी आध्यात्मिक रुचि को, उसकी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा लंबा हो, तो व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है, धर्म कर्म वाला रहता है। अगर पैर के अंगूठे से ठीक बगल वाली उंगली ज्यादा लंबी हो तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों की ऑफिस में और घर में खूब चलती है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा छोटा हो तो व्यक्ति जीवन में केवल धन की चिंता करता रहता है। और पैर का अंगूठा छोटा हो तो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। ज्यादातर जो वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हैं, आप देखेंगे उनके पैर का अंगूठा थोड़ा लंबा होता है और पैर के अंगूठे का बड़ा होना इस बात की सूचना है कि आपके अंदर आध्यात्मिक स्पार्क मौजूद है। मेष राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी, शिव जी को जल अर्पित करें तो बेहतर होगा। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, आपके हाथ की जो अंगुलियां हैं वो आपके विचारों के बारे में, आपके इंटरेस्ट, आपकी रुचि के बारे में बताती हैं। हाथ की अंगुलियां अगर लंबी हों और पतली हों तो व्यक्ति कलात्मक होता है, आर्टिस्टिक होता है, गाना बजाना, पेंट करना, क्रिएशन करना, ये कलात्मक गुण उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे लोग सामान्यतः सरल स्वभाव के होते हैं और ज्यादा दांव पेच में, ज्यादा खुराफातों में नहीं पड़ते। अगर अंगुलियां मोटी हैं और सख्त हैं तो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। अंगुलियों का मोटा और सख्त होना अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ज्यादा कठोर होती है। अंगुलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हैं तो व्यक्ति को पैसे तो बहुत मिलते हैं, व्यक्ति किसी न किसी तरीके से पैसा कमाता है, लेकिन सेहत को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर अंगुलियां गांठदार हों, अंगुलियों का जोड़ थोड़ा फूला हुआ हो, नॉटेड अंगुलियां हों, तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है, केवल धन की फिराक में लगा रहता है। अंगुलियों का पतला और लंबा होना यह भी बताता है कि आदमी आलसी है, आदमी लापरवाह है। लेकिन अंगुलियां पतली हैं, लंबी हैं, तो व्यक्ति भाग्यवान भी जरूर होता है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आपके जो कान हैं वो बहुत सारी बातें आपके जीवन में बताते हैं, और कान से भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अगर आपके कान बड़े हैं, सामान्य से थोड़े ज्यादा बड़े हैं, तो ये लंबी आयु का संकेत है। कान का बड़ा होना बहुत अच्छा है। कान अगर आपके छोटे हैं तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और जीवन में दुर्घटनाओं के संकेत मिलते हैं। अगर कान पर बाल है तो व्यक्ति काफी छोटे स्तर से काफी ऊंचाइयों तक पहुंचता है और लंबी आयु तक जीता है। कान का बड़ा होना या कान पर बाल होना आयु के लिए अच्छा है। कान का

निचला हिस्सा है, कान की जो लौ है अगर ये लंबी है तो व्यक्ति काफी प्रभावशाली होता है, रिश्तों को समझता है और निभाता है। नेचुरली जिसके कान की लौ लंबी होती है ऐसे लोगों के बारे में देखा गया है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता ज्यादा होती है। आपके नाखूनों को देखकर तुरंत आपके स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र भी इसके बारे में कुछ कहता है। हाथ के नाखून अगर लंबे हैं और सुंदर हैं, नेचुरल नाखून अलग से लगाए हुए नहीं, हाथ के नाखून अगर लंबे और सुंदर हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। नाखून अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। अक्सर आप देखेंगे नाखून पर अर्धचंद्र बना होता है, आधा चंद्रमा नीचे की तरफ। नाखूनों पर अर्धचंद्र अगर बड़ा है तो व्यक्ति की रोगों से रक्षा होती है, और अगर नाखूनों पर अर्धचंद्र नहीं है तो व्यक्ति की बीमारी लंबे समय तक चलती है, व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है। अगर अचानक से आपके नाखून पर सफेद निशान आ जाएं या बिंदु आ जाए सफेद रंग का, तो ये किसी रोग की सूचना देते हैं। तो आपके नाखून मुख्यतः आपके स्वास्थ्य के बारे में बड़ी परफेक्ट जानकारी देते हैं, और नाखूनों का सुंदर होना ये बताता है कि आप अंदर से भी कोमल व्यक्ति हैं, अंदर से भी सरल व्यक्ति हैं। धनु राशि, करियर में नई शुरुआत होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं भौं की, यानी आपके आईब्रोज की। अगर भौं गाढ़ी है, मोटी है, तो व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है। अगर दोनों आंखों के ऊपर की भौं बीच में सट जाए या बीच में मिल जाए तो ऐसे लोग काफी क्रोधी होते हैं और इनका वाणी पर नियंत्रण नहीं होता।
अगर आपकी

0: रोज आपकी भौह कटी फटी है तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा काफी ज्यादा होती है। अगर भौह नीचे की तरफ अपने आप झुक रही है तो व्यक्ति का झुकाव वैराग्य की तरफ हो जाता है और ऐसे लोग कभी कभी घर द्वार त्याग देते हैं। देखिए, आपने अपनी भौंह सेट करवा ली है, उसे सुंदर बना लिया है, उसकी हम बात नहीं करते। जो नेचुरल आपकी भौंह है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, वो एग्जैक्टली आपके स्वभाव, आपकी वाणी और आपके क्रोध के बारे में बता देगा। आम तौर पर हम सबके शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए हाथ और पैरों में रोएं होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका क्या अर्थ है? पुरुषों के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा होता है। अगर आप पुरुष हैं, आपके हाथ और पैर में ज्यादा बाल हैं, तो ये अच्छा है। ऐसे पुरुष सरल और विश्वास पात्र होते हैं। महिलाओं के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा नहीं होता। ऐसी महिलाओं को जीवन में मुश्किलों का, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जब कोई पुरुष बहुत सरल स्वभाव का हो जाए, बहुत करुणा वाला हो जाए, जीवन में बड़ा अच्छा हो जाए, तो उसके हाथ पैर और सीने पर घने बाल आने लगते हैं। जिन लोगों को मन की चिंताएं ज्यादा हों, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, उनके बालों पर, सर के और शरीर के बालों पर गहरा असर पड़ता है। बालों के गिरने की स्थिति बन जाती है। देखिए, पुरुषों के लिए घने बाल शरीर में होना अच्छा है, महिलाओं के लिए शरीर में घने बाल होना अच्छा नहीं माना जाता। अगर करियर में आपको लगातार असफलता मिल रही है, करियर में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, तो रविवार को अपने घर में, गमले में या जमीन में एक मदार का पौधा लगाइए और नियमित रूप से उसकी देखभाल करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कि अगर आपको पेट की या लिवर की कोई समस्या है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। और अगर लिवर या पेट की दिक्कत ज्यादा है तो पीला पुखराज और सोना बिल्कुल भी धारण मत करिएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: No ticket, no line, just showtime. Qualo Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qualo Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
10: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मानसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है, केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार, बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना, निशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने देखा गजब का उत्साह, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीबन 9 लाख वर्ग फुट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

फिल्मों में रिश्ते और जज्बातों को खास अंदाज में पेश करने वाले निर्देशक इम्तियाज अली ने गुड न्यूज टुडे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प पहलू साझा किए, साथ ही अपनी चर्चित फिल्म मैं वापस आऊंगा से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी सुनाए। देखिए इम्तियाज अली के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत।

0: ダッシュ公開イモーションズ。
1: पंजाब बॉयज तो में स्प्लिट हो गए।
2: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
0: फिल्में अगर आपको रुला दे,
3: ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
0: फिल्म अगर आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो भाई फिल्म मेकर को मिलती है सबसे बड़ी खुशी। और ऐसी खुशी मिल रही है राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इम्तियाज अली को, जो अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा का लाइव रिएक्शन लेने पहुंचे थिएटर्स में। यूं तो ये फिल्म जून के महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म ने लोगों के बीच में जगह बना ली है। आज सास बहू और बेटियां निकला है इम्तियाज अली के साथ उनकी फिल्म का लाइव रिएक्शन ले ले। थिएटर्स में जाकर इम्तियाज के साथ हम फिल्म देखेंगे। दर्शकों से करेंगे बातचीत, जानेंगे उनका फीडबैक। फिर चाहे युवा हो, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, मैं वापस आऊंगा ने सबके मन में इमोशंस जगा दिए हैं।
4: वी वांट मोर फिल्म्स लाइक दिस। थैंक यू,
5: थैंक यू। आप देखते रहो, मैं बनाते रहूंगा।
6: आई हैव रिक्वेस्ट यू टू मेक अ सीक्वल टू दिस दैट शोस अ लव लाइक दैट कैन हैपन इन टुडे।
5: थैंक यू, आई विल सी व्हाट आई कैन डू।
0: फिल्म आधारित है भारत के 1957 के पार्टीशन की, और आज के जमाने में वो लोग जिन्होंने उस बंटवारे के दर्द को झेला था, ये फिल्म उसको बयां करती है। तो दर्शक कितने इम्प्रेस हुए फिल्म से, ये जानने के लिए इम्तियाज ने इन सभी से लिया रिएक्शन। किसी को गले लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की बातें सुनी।
7: मतलब आपने जिस तरह से दो सोल्स का जो कनेक्शन दिखाया, दोनों अलग है फिर भी दोनों मिल रहे हैं। एंड देन मैं वापस आऊंगा, एंड वी फील लाइक हाँ हम जा रहे हैं अपने लव के पास। इट्स लवली।
8: I felt so much through this movie. I had been crying for like 10 minutes late, and I understand what you were trying to depict in this movie. And thank you for the end credits. That was very nice.
9: Thank you. Spread the word. Spread the word.
0: इम्तियाज के साथ खाएंगे हम पॉपकॉर्न और समोसा, जानेंगे उनके जमशेदपुर के दिनों में जहां वो पले बढ़े, जानेंगे कि उनकी कौन सी फिल्म दर्शकों को छूती है। फिर चाहे वो जब वी मेट हो, हाईवे हो, तमाशा हो, रॉकस्टार हो, या फिर हो अमर सिंह चमकीला। मैं वापस आऊंगा में शर्वरी वाघ वेदांग राणा की जोड़ी है, साथ में है नसरुद्दीन शाह और दलजीत दोसांझ जैसे कलाकार। फिल्म बेहद इमोशनल है, और फिल्म देखने के बाद दर्शकों का एक बेहद इमोशनल रिएक्शन इम्तियाज को मिला। तो सीधा चलते हैं मुंबई की बारिश के बीच थिएटर्स में, जहां इम्तियाज अली आज हमारे संग करेंगे ये खास थिएटर वाला डे आउट।
10: आज हम निकले खास डे आउट पर, और मेरे साथ एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने मिलेनियल से लेकर जेन जी को रोमांस करना सिखाया, मेरे साथ मिस्टर इम्तियाज अली। और इम्तियाज जी, जैसे मैंने कहा कि आपने मिलेनियल से लेकर जेन जी तक लोगों को रोमांस करना सिखाया, मुझे याद है कि 2007 में आई सॉ सोचा ना था, एंड दैट वाज अ वेरी कमिंग ऑफ एज फिल्म। एंड नाउ इन 2005 फिल्म को बहुत वर्ड ऑफ माउथ मिला था, एंड आई थिंक 2026 में अब मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई है। आई थिंक वही हो रहा है, बिकॉज कई फिल्में स्लोली स्लोली स्लोली दिलों तक पहुंचती हैं, एंड आई थिंक ये फिल्म धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
5: इस फिल्म का पहला गाना भी धीरे धीरे ही है।
10: बट वॉट काइंड ऑफ रिएक्शन आर यू गेटिंग पोस्ट, बिकॉज उस वक्त तो मिलते, लेकिन अब भी जो स्लोली स्लोली वर्ड ऑफ माउथ जो कहते हैं ना कि मुझे आपकी पहली फिल्म में ऐसा ही हुआ था, तो आई थिंक आई एम गेटिंग दिस देजा वो, एंड इवन तमाशा ऑल्सो पीपल सेड कि वो इतिहास में लिखी जाएगी।
5: जी, मगर इस बार क्या हुआ है ना, जो अलग है कि मैं वापस आऊंगा में वो इतिहास तभी लिखा जा रहा है जब अभी भी फिल्म थिएटर में है।
10: ये
5: बहुत बड़ी बात इसलिए भी है ना कि मतलब जो बिजनेस है फिल्म मेकिंग का और जो रिकवरी का पैटर्न है, वो बेस्ड है सिनेमा परफॉर्मेंस पे, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस पे ना। तो जब सिनेमा थिएटर में फिल्म चलती है और लोग उसको पसंद कर लेते हैं, इन दिस केस तो रिट्रीव ही कर लिया उन लोगों ने, तब इट्स गुड फॉर बिजनेस, लाइक दिस फिल्म हैज बीन फॉर अस। That is different from other films, and I would actually, मतलब ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपने देखा होगा कि almost बीड़ा सा उठा लिया था कि अगर ये फिल्म ठीक हुई इनके आज की तो फिर हम जो है ना we'll make sure that जनता आएगी हम ही push करके भेज देंगे and we will make sure that ये picture theater में रहते हुए ही लोगों तक पहुंच जाए।
10: सोशल मीडिया का एक बड़ा हाथ है।
5: सोशल मीडिया का भी हाथ है सर, मगर सोशल मीडिया के बियॉन्ड जैसे मैं थिएटर में जाके देख रहा हूँ ना कि एक बड़ी ऑडियंस वो भी है जो सोशल मीडिया में मेरे से तो इंटरेक्ट नहीं करती है, वो फिल्म की जनता है जो सोशल मीडिया में नहीं है। कहने का मतलब ये भी है कि जितने लोग सोशल मीडिया में होते हैं वो लोग फिल्में नहीं देखते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जनरल जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि एक बंदे ने देखी कहीं पर किसी जगह, उसने चार लोगों को कहा, दो गए, उन दोनों ने फिर आठ लोगों को कहा, उनमें से छह गए, इस तरह से फिल्म पड़ी।
10: तो हम बात करते रहे इम्तियाज सर के साथ, क्योंकि हम थिएटर्स के अलग अलग रिएक्शन ले रहे हैं। अब फिल्म चल रही है, अभी ऑडियंस निकलेगी, वी विल गिव यू लाइव व्हाट पीपल से टू द डायरेक्टर व्हेन डायरेक्टर गोज डायरेक्टली टू द पीपल। स्टे ट्यून्ड।
0: वैसे फिल्म वापस आऊंगा को रिलीज के कई दिनों बाद वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी मिली, और इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। कई लोग ट्रोल करता है, कोई प्यार देता है, लेकिन दर्शक इस पे रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे दर्शक हमें मिले जो इम्तियाज अली के सिनेमा के फैन हैं, और उन्होंने ही मैं वापस आऊंगा को रिलीज के एक महीने बाद भी थिएटर्स में एक्टिव रखा है।
10: सर एक आपके देखिए आपकी फिल्म का ये आई सी रॉकस्टार क्यों अच्छी लगती है, वो फिल्म आपको मतलब इट्स वन ऑफ द सर की बेस्ट क्रिएशन।
11: मैं भी 21 साल का हूँ, जब आपकी मूवी रिलीज हुई थी तो मुझे सबकी तरह समझ में नहीं आई थी जब मैंने वो मूवी
5: देखी थी। आप बहुत छोटे होंगे ना,
11: क्योंकि मैंने सुना है कि लाइफ के अलग अलग एज पे मूवी सेम मूवी अगर आप देखेंगे तो आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो मैंने फिर आपकी वो मूवी देखी, फिर मैंने तमाशा भी देखी, तो मैंने वो फिल्म देख के सीखा कि मैं कैसे अपने डैड को अपनी मम्मी को बता सकता हूँ कि मैं कैसे ये करना चाहता हूँ। तो सर आपकी सारी मूवीज हमेशा रिलेटेबल रहती है। मैं वापस आऊंगा अभी, मैं जब लास्ट में जब नसीर सर उनको मिलते हैं वीडियो कॉल पे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपका मैजिक हमेशा मतलब बहुत मजा आता है सर आपकी फिल्म देखने में। चमकीला भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर, थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी मूवीज बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
10: तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स आर लाइक सोशल वर्कर्स, जो काम हमारे भाषण नहीं कर पाते हैं वो फिल्में कर देती हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड इज द मीडियम, लाइक उन्होंने इतनी बातें बोली, वो ऐसे बोलेंगे शायद कोई नहीं समझेगा।
5: एब्सोल्युटली, मतलब मुझे लगता है ना देयर इज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। मैं कुछ भी नहीं हूं, बट मेरा जो ये मीडियम है ये बहुत बड़ा है। सिनेमा इज वेरी वेरी बिग, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल, इट कैन इन्फ्लुएंस यू टू बी मोर एथिकल पर्सन, यू नो, हर तरह से बहुत बहुत पावरफुल और एक्सप्लोसिव मीडियम है ये। जिस तरह से बातें घर कर जाती है ना, मैंने खुद भी, मुझे लगता है कि फिल्मों से बहुत कुछ अपनी जिंदगी में शामिल किया है। मतलब जितना मैंने मॉरल साइंस बुक से नहीं दे लिया है, उतना तो सिनेमा से लिया हो। सो आई नो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक दैट अपनी तरफ से कोई गलत चीज ना चली जाए मेरे किसी भी फिल्म में, दिस वन हैज टू कीप इन माइंड।
10: आपकी फिल्में युवाओं को बहुत कनेक्ट करती है, बहुत कम ऐसी फिल्में होती है मतलब बनती तो है लेकिन युवाओं को जो इंस्पायर करती है, एक होती है युवाओं को जैसे बॉबी आई, लव स्टोरी आई, सैयारा आई, हर सदी में आती है, लेकिन कुछ फिल्में होती है जो युवाओं को इंस्पायर करती है
5: जी।
10: तो आपको जब आप युवा थे आपको किस तरह की फिल्में इंस्पायर करती?
5: क्या होता है ना कि आदमी की उम्र कोई भी हो जाए, उसके अंदर का जो एक सेल्फ एज होता है ना वो अलग होता है। Maybe that keeps coming out in my films. When I was younger, I used to like all kinds of films. मतलब मेरा तो बहुत ही रेंज था, मतलब मुझे शोले मेरी फेवरेट फिल्म है, मगर साथ में जुनून भी मेरी फेवरेट फिल्म है, जो श्याम बेनेगल वाली, शशि कपूर वाली। सो हर तरह की फिल्में मुझे पसंद हुआ करती थी, बट जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले वाली फिल्म है ना, जहाँ ध्यान हटता नहीं है, जब आप डूब जाते हैं और आप मतलब अपने वातावरण से ट्रांसपोर्ट आउट हो जाते हैं, वो फिल्में मुझे बहुत पसंद।

0: इम्तियाज अली पहुंचे मुंबई के थिएटर में जहां फिल्म खत्म हुई और हमें बहुत सारे चेहरे इमोशनल मिले। ऐसे में इम्तियाज अली को देखकर सब बहुत एक्साइटेड थे। किसी ने आंसुओं के साथ, किसी ने अपनी बातों के साथ, किसी ने गले लगकर फिल्म के रिएक्शन को बयां किया।
1: This girl is actually crying and
2: It was too good. I have seen all your films. But I have no words to be honest. Emotions, love story, everything was so good. And starting I was like ki nahi rona hai, like everyone was crying, but my emotions control nahi kar paya apne. It was too good. So thank you so much. Like we want more films like this. Thank you.
3: Aap dekhte raho, main banata raho.
2: I actually fought with my love, my husband, because he didn't want to see this movie. I said, "Kuch bhi ho jaye, main ja rahi hu." So I brought my mother-in-law with me.
3: Best.
2: And she saying partition, jhagda jhagdi hoga.
1: Can we get her?
2: Yes, ma'am. There's partition hai, jhagda. I said, "Mummy, kuch jhagda wala movie nahi hai. It's a love story. Please come with me. Your son doesn't want to come." She's also come here and she's enjoyed the movie. So
3: Achhi lagi aapko main.
2: She's still trembling. She saw that love.
3: अच्छी लगी ना।
2: थैंक यू।
4: दादी नानी लोग ये सब सुनाते थे कि ऐसे पार्टीशन हुआ, हम लोग भागे थे, तो वो सब रियल में देखे थे, बहुत अच्छी। इट्स गुड। थैंक यू
3: सो मच। थैंक यू। You should also do work like that. I'm sure that you are also like that in your work.
2: I am, sir, yes. And that's why I felt like someone so legendary is speaking for the truth. There's hope, man, in this world. What are we?
3: This is
2: what we live for.
3: Yeah, this is what we
2: work for, man.
3: Yeah, we work.
1: तो इस वक्त हमें थिएटर के अंदर और लाइव ऑडियंस के रिएक्शंस मिल रहे हैं, और सबसे मेरे को जो दिल को छुआ, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, सवाल थे, तो इम्तियाज दिस इज द आपने कमाया है अपनी फिल्मों से, सो व्हाट इमोशंस यू गेट व्हेन यू मीट पीपल, हैव सो मेनी क्वेश्चंस, दे एनालाइजिंग योर फिल्म, आई मीन इट्स लाइक यू नो एंड सो मच लव।
0: दर्शकों की बात करें तो सबका रिएक्शन बहुत मिक्स था। आइए जानते हैं कि इम्तियाज अली और दर्शकों के बीच में क्या क्या बातें हुई। इम्तियाज अली की फिल्में युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के लिए युवाओं के साथ यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी हैं, और एक मिला जुला ऑडियंस देखने को मिला। वैसे यहाँ पर सब लोग सेल्फी खिंचा रहे थे, भाई वो जमाना गया जब लोग फिल्म के अभिनेता अभिनेताओं के साथ फोटोज खिंचाते थे। आजकल लोग डायरेक्टर को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों को। इसके बाद मौका था पॉपकॉर्न और समोसे का, और इसी के साथ इम्तियाज अली ने अपनी जमशेदपुर की यादें ताज़ा करी, यानी वो शहर जहां उन्होंने सबसे पहले फिल्में देखना शुरू किया था।
1: पिक्चर का मजा आता है पॉपकॉर्न के साथ, और इम्तियाज अली सर के साथ मैं पॉपकॉर्न एंड समोसे, सर हम बात कर रहे थे समोसे की
3: जी,
1: तो जमशेदपुर का समोसा और बॉम्बे के समोसे में क्या फर्क है?
3: सर जमशेदपुर का समोसा बहुत अच्छा होता है, जो बॉम्बे के समोसे से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो चीजें मेमोरी में होती है ना, वो चीजें ज्यादा अच्छी होती है जो प्रेजेंट है उससे। मगर समोसा इज वेरी एसोसिएटेड, इट्स एन इमोशन। पॉपकॉर्न भी, मगर ये जो पॉपकॉर्न है ना, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मॉडर्न है। मैं क्योंकि थोड़ा पुराने जमाने वाला आदमी हूँ ना, तो जो पॉपकॉर्न हुआ करता था, जो पेपर के पैकेट में आता था, इसमें बहुत ही अजीब तरह का मक्खन होता था, नमक बहुत ज्यादा होती थी, वही याद आता है आजकल।
0: दिल्ली के हिंदी कॉलेज से इम्तियाज अली ने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुंबई में उन्होंने सीरियल भी बनाए, ओटीटी शोज भी बनाए और फिल्मों से नाम कमाया। लेकिन आज सास बहू बेटे आपको ट्रिविया दे रहा है कि इम्तियाज अली ने एक फिल्म में भी अभिनय किया था, तो आज हम जानते हैं कि कौन सी वो फिल्म थी जिसमें इम्तियाज अली ने काम किया था, और क्या एक्टर बनना उनका भी ख्वाब है।
1: सबसे जब मिलते हैं सबकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन थोड़ा इन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। सो आई रिमेम्बर ब्लैक फ्राइडे आपका छोटा सा रोल, एंड ऑल्सो अभी आपने फिल्म में खुद को ही आपने अभी रिप्ले किया था। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कम टू यू टू बिकम एन एक्टर, सो व्हाट डू यू थिंक एक्टिंग, एंड यू नेवर आई मीन फुल फ्लेज्ड एक्टिंग के बारे में?
3: I'm not interested in acting at all. I always wanted to direct. Theater में मैंने act किया है, और ये जो दोस्त दोस्तों की फिल्म में उसने बहुत बोला, मैंने कर दिया उस तरह का था, मतलब
0: इम्तियाज अली को पूरे 26 साल हो चुके हैं फिल्में बनाते हुए। फिल्म सोचाना के साथ उन्होंने करियर शुरू किया था, जब वी मेट से प्रसिद्धि पाई, उसके बाद रॉकस्टार, लव आजकल, हाईवे जैसी फिल्मों के उन्होंने नाम कमाया और अब मैं वापस आऊंगा के साथ उन्होंने अपना 25 साल का सफर पूरा किया, लेकिन आज भी लोग उनकी पुरानी फिल्मों के लिए याद रखते हैं।
1: इमोशन जो है हर इंसान को, हमें इंसान को इंसान बनाता है।
3: मैं आपसे ये बोल रहा था, आपका सवाल का जवाब, सवाल का जवाब ये है सर कि क्या हो रहा है ना कि जब मैं थिएटर में जा रहा हूँ, लोगों को रिएक्ट करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जिंदगी की सच्चाई है। यानी कि एक आदमी जो इमोशन में रिएक्ट कर रहा है ना, वो अपने ही किसी गम या अपनी किसी खुशी से रिएक्ट कर रहा है, वो इमोशन उसका जिंदगी का ट्रूथ है। यहाँ पे हम लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी पिक्चर चले एंड ऐसे वैसे, वो तो हो गई, बट दैट इज अ वेरी बिग रियलिटी एंड आई वैल्यू इट। मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, मतलब आई फील दैट आई मस्ट रिस्पेक्ट टुवर्ड दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू, ऐसा होता है मेरे साथ।
1: लोग जनरली आपको कौन सी फिल्मों के लिए याद करते हैं? ऑफ कोर्स जब वी मेट इज लाइक अ नेशनल, आपकी सबसे बड़ी हिट थी, बट दे टॉक अबाउट तमाशा, दे टॉक अबाउट रॉकस्टार। यस,
3: रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, मगर इट डिपेंड्स ऑन सेंटर, यू नो, जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि मैं झांसी में चला जाऊँ, वहाँ ज़्यादा हो सकता है, मगर यूथ जो है ना वो रॉकस्टार की बात ज़्यादा करता है। बट जो और मतलब बहुत सारे लोग जब भी मैं की बहुत बात करते हैं, तमाशा की बहुत सारे यूथ जो है वो बात करते हैं, अक्सर लोग हाईवे की बात करते हैं, बहुत एक पर्सनल तरीके से उनका उनसे कनेक्शन है, अलग अलग फिल्मों की बात करते हैं।
0: भाई, दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स में अभी भी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देख रही है, तो उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिल्म को रिलीज हुए अभी 4 हफ्ते हो चुके हैं और धीरे धीरे फिल्म अभी भी थिएटर्स में लोगों का दिल जीत रही है। आज सास बहू और बेटिया के साथ इस थिएटर वाले डे आउट में हमने इम्तियाज अली से यही जाना कि फिल्म बनती है सिर्फ और सिर्फ दिल से।
1: और कुछ बोलना चाहेंगे अभी आज हम सब दर्शकों के साथ? नहीं, आई फील दैट समोसा है, व्हाट यू कुछ
3: वेलकम टू द सिनेमास, व्हाट यू गेट इन द सिनेमा यू कांट गेट एनीवेयर एल्स।
1: थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, आज हमने लाइव महसूस किया कि सिनेमा के बाद फिल्म बन तो जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है, और अगर एक फिल्मकार खुद आके अपने प्रोडक्ट को सैंपल करे, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द बेस्ट, एंड आप ऐसी तरह उम्मीद लोगों के जहन में जलाते रहिए, जो जो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि आप एक करेक्ट सोशल वर्क कर रहे हैं फिल्मों के थ्रू, सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू कम सून। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर, मैं वापस आऊंगा।
3: थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
0: मुंबई सामित्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfacion.
1: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
2: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
1: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
2: Remember, around here, we use the F word.
1: Never the S word.
0: The S word, available now on TuneIn,
3: wherever you get your podcasts,
0: and on the S word YouTube channel.
4: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
6: जाए। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मानसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार, बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली में 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए रवाना, निशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में देखा गजब का उत्साह, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ, 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।

0: भगवान शिव का परम धाम कैलाश।
1: शिवाय
0: जिसके कण कण में है महादेव का वास।
1: नमः शिवाय।
0: जीएनटी के साथ आज चलो कैलाश।

0: यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
1: अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय।
0: कर रहे थे
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम रुवा रूप में बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम।
1: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था।
0: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है।

0: सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।
0: कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो जाती है तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आरी पुलान एयरपोर्ट से।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस समय हम आरी पुलान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और क्योंकि ये एक सैन्य एयरपोर्ट और सिविल एयरपोर्ट दोनों है, इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर झील से कुछ किलोमीटर पहले दर्शन होते हैं राक्षस ताल के। मान्यता है कि मानसरोवर के पश्चिम में मौजूद यही वो झील है जहां कभी लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि जहां मानसरोवर का जल अमृत के समान मीठा है, वहीं इसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद राक्षस ताल का जल बिल्कुल खारा है, मानो रावण के अहंकार का कसैलापन इस झील के पानी में समा गया हो। जहां मानसरोवर जीवन का स्रोत है, वहीं राक्षस ताल शांत और निर्जीव दिखता है। राक्षस ताल में मछलियां तक नहीं, इस ताल की परिक्रमा और पूजा करने का विधान है।
1: ठीक मेरे पीछे इस समय ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल यानी कैलाश मानसरोवर के बेहद निकट खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक, लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर यह राक्षस ताल है। मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण ने यहां भगवान शिव की स्तुति की थी और अहंकार रावण में इतना था कि राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। मान्यता तो ये भी है कि जो मानसरोवर झील है उससे जमीन के नीचे ही एक पानी का स्रोत राक्षस ताल भी आता है, क्योंकि अगर आप देखें इतनी ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील, और ये वो इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, तो इस झील के लिए बार बार पानी आना ये आसान नहीं है। हालांकि आसपास यहाँ ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स से पानी बहुत आता है, लेकिन राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि ये पानी जो धरती के नीचे से ही एक स्रोत है, लेक मानसरोवर जब ओवरफ्लो करती है पवित्र झील मानसरोवर, तो उसी का पानी इस दिशा में भी आता है, लेकिन जमीन के नीचे ही वो खारा होता रहता है। इसकी कोई परिक्रमा नहीं करता इस झील की। हालांकि उपासना यहां भी होती है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जैन धर्म के अनुयायी हों, उपासना यहां भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा यहां नहीं करते। खारे पानी की इस झील में मछली नहीं है, जीवन दायिनी नहीं है, मोक्ष दायिनी, प्राण दायिनी, जैसे भारत में माँ गंगा को कहा जाता है, वैसे ही मानसरोवर झील को माना जाता है, राक्षस ताल को नहीं।
0: राक्षस ताल से आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था धरती का अमृत कुंड मानसरोवर। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बन का सरोवर। समुद्र ताल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है।
1: इस समय हम लोग लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है और वैसे तो यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप प्राणदायिनी मानसरोवर झील के निकट आ जाते हैं तो आपकी वो थकान एकाएक गायब हो जाती है। जिस तरह से भारत में हम माँ गंगा को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी मानते हैं, वैसे ही यहाँ तिब्बत में यहाँ के बौद्ध या फिर यूं कहे सनातन धर्म को मानने वाले, भारत में हो, तिब्बत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, यहाँ के पौन धर्म को मानने वाले, जिसको कई लोग बौन धर्म भी कहते हैं, उन सभी के लिए ये नदी प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है। कुछ कदम चलते ही सांस यहाँ फूलने लगती है, इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मन करता है कि आप इस पवित्र जल को छुए, आचमन करें और उस मोक्ष की कामना करें जिसकी कामना करके सदियों से श्रद्धालु भारत से और दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हर धर्म में मानसरोवर का बहुत महत्व है। कई कहानियाँ हैं मानसरोवर झील के चारों ओर, कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के मुताबिक ये जो झील है ये ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जी के मानस से इस झील को उत्पन्न किया ताकि शुभ कार्य, धर्म के कार्य किए जा सके।
0: कई धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भूलोक पर स्वर्ग के समान स्थान कैलाश खंड को खोजा और इन्हीं आंसुओं से इस स्थल पर मानसरोवर का निर्माण किया। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर क्षीर सागर भी कहा गया है। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं।
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुवारुक्मे बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम। हम भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, तीनों नेत्र से ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार एक कंकड़ी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के पास समर्पित हो जाए।
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: मानसरोवर के दर्शन हो चुके थे और अब हमारा अगला पड़ाव था महादेव का धाम, पवित्र कैलाश पर्वत। हमारे साथ इस पथ पर महादेव के कई मतवाले भक्त आगे बढ़ रहे थे, आस्था और उत्साह के भाव से भरे। उत्साह की वजह भी है लंबी प्रतीक्षा और असंख्य प्रार्थनाओं के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा था। आप भी गुड न्यूज टुडे के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश तक की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वत है यत्र वैश्रवणो राजन गुहकेह सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता बरकरार रही है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान सिर्फ सनातन नहीं बल्कि हर उस धर्म के निशान दिखते हैं जिनके लिए कैलाश पर्वत पूजनीय है।
1: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये 5वें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर साल अप्रैल के महीने में यहां जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहां बकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहां पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर यह बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान, उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश पर्वत यात्रा मार्ग पर अब हम यमद्वार के नजदीक थे। मान्यता है कि यमद्वार में प्रवेश करते ही आप जीते जी संसार को पीछे छोड़ शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं।
1: इस समय हम लोग यमद्वार

0: इस समय हम लोग यम द्वार पर हैं और कैलाश यात्रा के लिए, पवित्र कैलाश यात्रा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते ये हैं कि यहाँ से आप सांकेतिक रूप में भूलोक से सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए अब इस द्वार को पार करके शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपके जीवन में जो भी आपने किया हो सांसारिक सुख दुख भुलाकर अब शिव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपासना करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीन बार इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अब ये पूरा परिक्रमा का मार्ग शुरू हो जाता है। लगभग तीन दिन लगते हैं, 50 किलोमीटर से लंबी ये परिक्रमा रहती है। तो तीन बार इस यमद्वार के की आप परिक्रमा करते हुए फिर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
1: यमद्वार के पीछे कैलाश पर्वत जगमगा रहा था अपनी पूरी भव्यता के साथ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके, और जो दर्शन कर पाता है वो खुद को धन्य समझता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ ही प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना रेखा जैना भी महादेव के धाम के दर्शन करने पहुंची थी।
2: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था, बस यही थी अनुभूति। और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, समस्या खत्म हो जाती थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर, बहुत सुविधाजनक बनाने की पूरी अपनी कोशिश लगा दी है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और चीन सरकार को।
0: क्या अब इसको आप अपने नृत्य में और उड़ीसी नृत्य में भी आप इसका वर्णन करेंगे कि भावी पीढ़ियां से प्रेरित हो?
2: बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी नृत्य शिव तांडव करती थी, मैं उसी लिए जानी जाती थी, रेखा जैना का जब भी शिव तांडव अनाउंस होता था तो दर्शकगण इंतजार करते थे।
1: आपको बता दें कि महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस क्षेत्र को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजते हैं, उसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।
3: भोलेनाथ बांट दियो तीनों पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिए वेद कत्कारी, विष्णु को दिए चक्ष सुदर्शन लक्ष्मी सिनारी, इंद्र को दिए काम देनु एरावत को बलसारी, कुबेर को दिए संपत्ति कत्कारी, अपने पास रखे ना बघम्बर, ऐसे दीन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दी हल हल पान किए, ब्रह्मा को ज्ञान दी सूत्र ध्यान किए, भागीरथ को दे दी गंगा लोगों के स्नान किए, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किए।
1: तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी और ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में भी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में सदा से पूजा जाता रहा है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश से मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। पहाड़ों पर हरियाली बढ़ गई है, बादलों का टेरा साफ साफ नजर आ रहा है। बद्री धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान बद्री विशाल का बुलावा आया हो तो मौसम की बेरुखी भी बेअसर हो जाती है। मानसूनी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं पर माणा गांव में भी रौनक जबरदस्त है। तीर्थयात्री मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं।

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रुक रुक कर बरसाती बूंदे और वातावरण में ठंडक का एहसास। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और दिव्य मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्त आस्था के साथ साथ मौसम का मजा लेने में भी पीछे नहीं दिख रहे। बद्रीनाथ में बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि मौसम का असर से भक्तों के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही।
1: पहाड़ों में भले ही मानसून अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए इस समय सबसे सुंदर मौसम देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार पिछले चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी मौसम साफ होता है तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। ऐसे में जो यात्रा मार्ग है वो सबसे बेहतर इस समय है। यात्रा मार्ग कहीं भी बाधित नहीं हो रहे हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवां सीधे रुख कर रहा है देश के पहले गांव माणा की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। धुंध की सफेद चादर के बीच जब ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दुगना कर रही हैं, कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गांव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ के कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहां बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
15: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मानसूनी सीजन में भी पवित्र चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है, केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार, बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना, निशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने देखा गजब का उत्साह, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, करीबन 9 लाख पर फुट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ, 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रमकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्किमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है, यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संबाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संबाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संभाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25 से 40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60 से 80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा वो द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड, एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है, एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: उन्नीस सौ अस्सी के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। INS जटायू नौ सैनिक बेस से मालदीप की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीप पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीप को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. Right field, and it will... From the first pitch of the season to the stretch run.
6: And that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: Good news today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दे दी है। देखिए मौसम विभाग का कहना यह है कि 14-15 अप्रैल के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रशांत महासागर में एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में इससे मानसून को मजबूती मिल सकती है।

0: उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, हर इलाके में मानसून ने काफी इंतजार कराया, लेकिन जब बरसा तो झूम के बरसा। हालांकि मानसून की बेरुखी से अभी भी कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश तो हुई है लेकिन जरूरत भर नहीं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 से 25 जुलाई के बीच मानसून में नई जान आ सकती है। शांत महासागर में ट्रॉपिकल सिस्टम या लो प्रेशर एरिया बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ये सिस्टम मजबूत हुआ और पश्चिम की ओर बढ़ा तो ये मानसून को मजबूती दे सकता है। हालांकि अभी 6 से 7 दिन बाकी हैं, इसलिए मौसम वैज्ञानिक सतर्कता से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्वी भारत में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भाग में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से हटी हुई है, जिसके कारण नमी वाली हवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश अभी 1 से 2 दिन जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा।
1: ओवरऑल अगर बाकी हिस्सों की बात करें ईस्ट इंडिया के, वहाँ भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है हमारा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हिमालय की बात करें, हमारा अनुमान है उत्तराखंड में ऑलमोस्ट आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। हिमाचल में भी 2 से 3 दिन रह सकती है। नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आने वाले 2 दिन में एक्टिविटी रहने का अनुमान है।
0: अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में 14 और 15 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस दाखिल हो रहा है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश ला सकता है।
1: एनसीआर दिल्ली में इससे पहले तो एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा टेम्परेचर भी उसमें बढ़ गया है और 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लेकिन आज बाय इवनिंग हल्का फुल्का कहीं रेनफॉल हो सकता है, उसके बाद एक दूसरा स्पेल जो 14 और 15 को आ सकता है एनसीआर दिल्ली के लिए।
0: बारिश के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन झमाझम बारिश की फुहारे राहत लेकर जरूर आएंगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मानसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाय। केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार। बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतारें। उत्तराखंड के चमोली में 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए रवाना। निशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने देखा गजब का उत्साह। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण। आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार।

आज ढाई महीने में पहली बार 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, मां भी 3 महीने की यात्रा बाकी। केदारनाथ धाम में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, श्रद्धालु में दर्शन पूजन का जोरदार उत्साह। केदारनाथ में बारिश के बीच अलर्ट में प्रशासन, प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई जवानों की तैनाती। केदारनाथ में इस बार नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है, यात्रियों के लिए डेंजर जोन पर जवान तैनात। मौसम की चुनौतियों के बीच बद्रीनाथ में आस्था का सैलाब, रोजाना 3 से 4 हजार श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल 15 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार रोक रोक कर हो रही है बारिश। बारिश के बावजूद प्रशासन ने समय रहते खोले रास्ते, श्रद्धालुओं की बड़ी राहत। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी बड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जल्द 2 लाख को पार कर सकता है आंकड़ा। चमोली से सोमनाथ के लिए रवाना हुआ 40 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, उत्तराखंड सरकार करा रही निःशुल्क यात्रा। सीडीओ ने तीर्थ यात्रियों की बस को दिखाई हरी झंडी। 13 जुलाई को देहरादून से सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेगा तीर्थयात्रियों का दल, 19 जुलाई को संपन्न होगी यात्रा। धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार, श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह। श्रद्धालुओं ने यात्रा से पहले लगाया महादेव के जयकारे। जम्मू में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, सुरक्षा को लेकर अहम बैठक। 16 अगस्त को जम्मू में होगा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का उद्घाटन, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा पहला जत्था। 18 अगस्त को पहला जत्था करेगा श्री बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन पूजन, अलर्ट मोड में प्रशासन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का रखा जा रहा है पूरा ख्याल, श्रद्धालुओं में खास उत्साह। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, पवित्र यात्रा सामूहिक सहभागिता की भी मिसाल। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में इस साल बढ़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, आज साल 2025 के मुकाबले भक्तों की संख्या में इजाफा। रामनगरी में 28 जून को बना रिकॉर्ड, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से दिए गए आंकड़े, 21 जून से 3 जुलाई के बीच बढ़ी संख्या भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या में बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा यातायात और दर्शन व्यवस्था को मजबूती के इंतजाम। 3 जुलाई को रामनगरी अयोध्या पहुंचे करीब 88,000 श्रद्धालु, पिछले साल की तुलना में दर्ज की गई बढ़त। ओडिशा में रथ यात्रा के भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारियां, यात्रा मार्ग के साथ मंदिर परिसर में भी सजावट की गई। पुरी के गुंडीचा मंदिर की हो रही है खास सजावट, यहीं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ 7 दिन रहेंगे विराजमान। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम, बैरिकेड्स की भी रंग रोगन। 16 जुलाई को रथ यात्रा के भव्य और दिव्य उत्सव का होगा शुभारंभ, गर्भगृह से लेकर शिखर तक हर कोने में सजावट। पीलीभीत में गोमती नदी के पुनर्जीवन के लिए अनोखी पहल, चलाया गया वृक्षारोपण अभियान। पीलीभीत में 47 किलोमीटर तक हरियाली की मुहिम, गोमती किनारे लगाए गए 30,000 पौधे। गोमती नदी के किनारे देखा शानदार नजारा, तिरंगे के साथ बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। अरुणाचल मेगा फूड पार्क का रफ्तार उसको मिली, बंदरदेवा में प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। 75 एकड़ में तैयार हो रहा है अरुणाचल का बड़ा फूड हब। नासिक पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अशोका हेल्थ सिटी का उद्घाटन। अशोका हेल्थ सिटी उद्घाटन के मौके पर नासिक में दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। बिहार के बघा से आई शानदार तस्वीरें, ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर श्रमदान किया, 60 फीट लंबा लोहे का पुल तैयार। बघा के ग्रामीणों ने पेश की एक जुटता की मिसाल, 2.5 लाख

लाख रुपए में बना दिया 60 फीट लंबा पुल। बिहार में पर्यटन को नई उड़ान, 13 जुलाई 2026 से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। देश भर में एक बार फिर से बदल सकता मौसम का मिजाज, 18 से 25 जुलाई के बीच हो सकती है मानसून की वापसी। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी बारिश की चेतावनी, पश्चिम बंगाल बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक का अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसेंगे बदला, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में बारिश होने की संभावना। मेघालय में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी, प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश की चेतावनी के चलते मौसम विभाग की अपील, संवेदनशील इलाकों में रहने वाले IMD की एडवाइजरी जारी। धुंध की चादर में सजा डलहौजी, पर्यटकों को खूब लुभा रहा है मिनी स्विट्जरलैंड। मानसून में डलहौजी बना टूरिस्ट डेस्टिनेशन, देश के अलग अलग राज्यों से लगातार पहुंच रहे हैं पर्यटक। बादलों के बीच दिखी झांकती नजर आई वादियां, गांधी चौक से पंचपुला तक हर ओर दिख रहा है जन्नत जैसा नजारा। लगातार बारिश से बाधित हुआ कैंपटी से मसूरी बैंडमार्क। जीसीबी की मदद से जारी है लगातार मरम्मत का कार्य, यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी किया गया विशेष गाइडलाइन। गुजरात के अमरेली में गांव की गलियों में घूमते नजर आए जंगली मेहमान, बारिश रुकते ही 3 शावकों के साथ कैद हुआ शेरनी का वीडियो। अमरेली इलाके में वन विभाग का अलर्ट, 24 घंटे जारी निगरानी। लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया लायन फैमिली का मूवमेंट। जूते पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने ऑटोग्राफ दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देखा मुख्यमंत्री विजय का अलग अंदाज, समर्थक के जूते पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के महाकुंभ रांची जा रहा है 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। आम जनता से लेकर VIP तक पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। लखनऊ में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी पौधारोपण किया, लोगों से इस अपील मुहिम में जुड़ने की अपील की। अहमदाबाद में मिशन 5 बिलियन ट्री का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण किया। मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की सौगात, सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन हुआ। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 982 परियोजनाओं का शुभारंभ। 81वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण में हॉकी एशियन चैंपियन सुमन देवी ने हिस्सा लिया। कोटद्वार के घरों में घुस गया हाथी का झुंड, CCTV में कैद। चुनाव आयोग ने नया वोटर बनने के लिए बदल दिए नियम, अब फॉर्म 6 में जुड़ा है नया कॉलम। नोएडा के शाहबेरी में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से छुटकारा मिलेगा। फ्लाईओवर बनने से ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर हो जाएगा आसान। उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य आरती हुई, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। अयोध्या श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन का दौर लगातार जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। मैसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने 112वें मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ निर्णायक। सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है अर्जेंटीना का मुकाबला। 14 जुलाई को आमने सामने होने जा रहे हैं फ्रांस स्पेन, खेला जाएगा सेमीफाइनल्स। चीन ने पेश किया नया सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट, गांसू प्रांत में आयोजित इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फेयर में पहियों वाला रोबोट बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट खास पेट्रोलिंग के लिए तैयार किया गया। रोबोट में लगाया गया है AI आधारित इमोशनल रिकॉग्निशन सिस्टम, लोगों की भावनाओं को समझेगा।

थर्मल और विजुअल सेंसर से लैस ये रोबोट आग का लगाएगा पता, अपराधियों की भी पहचान करेगा। छह पहियों और ऑल टेरेन ड्राइव सिस्टम से लैस ये रोबोट। दक्षिण कोरिया में पहली बार जारी हुआ इमरजेंसी हीटवेव अलर्ट, क्योंगसान और पोहांग शहरों में भीषण गर्मी के चलते चेतावनी जारी।

0: Some Silas, ये रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया में पहली बार जारी हुआ इमरजेंसी हीट वेव अलर्ट, क्योंगसान और पोहांग शहरों में भीषण गर्मी के चलते चेतावनी जारी। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी इलाकों में 39 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, लोगों को सख्त निर्देश। सड़क किनारे लगाए गए हैं मिस्ट वाले कूलिंग सिस्टम, धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए बड़े छाते। बच्चे और बुजुर्गों से प्रशासन की खास अपील, पार्कों में कूलिंग मिस्ट का सहारा लें। मौसम विभाग का अलर्ट, सोमवार तक जारी रहेगी प्रचंड गर्मी। चोंकिंग चिड़ियाघर में विशाल पांडा शावक ने मनाया अपना पहला जन्मदिन, वांगशु रखा गया उसका नाम। जन्म के समय सिर्फ 188 ग्राम था शावक का वजन, एक साल में 36 किलो से ज्यादा हो गया वजन। पारंपरिक संस्कृति के बीच मनाया गया जन्मदिन समारोह, झूले पर पांडा की नाम पट्टिका लगाई गई। समारोह में शावक के लिए ब्रश, फुटबॉल की लकड़ी, तलवार भी नजर आई। पांडा वांगशु ने पानी में मस्ती की और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्वार्टर फिनाले में हार के बाद फैंस के लिए हीरो बन गए नॉर्वे की टीम, हजारों प्रशंसकों ने जबरदस्त स्वागत किया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान नॉर्वे टीम के प्रदर्शन को फैंस ने सराहा और वाइकिंग रो से किया सम्मानित। ओस्लो में आधी रात को दिखा दिन जैसा माहौल, टीम की जर्सी में फैंस ने रॉयल पैलेस तक किया मार्च। ब्रिटेन के वॉरविकशायर में दिखा प्रिंस हैरी का अनोखा अंदाज, स्कॉटिश समर फेस्टिवल में हिस्सा लिया। बच्चों और युवाओं के साथ प्रिंस हैरी ने बताया खास पल, सबके साथ मिलकर किया गोट योगा। गोविंदा की पत्नी और यूट्यूबर सुनीता आहूजा जल्द एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। एकता कपूर प्रोडक्शन की फिल्म में बेटे के साथ करेंगी डेब्यू। जिमी शेरगिल स्टारर वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर हुआ रिलीज, 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी हटाई गई है अब एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज। आमिर खान अपनी पत्नी गौरी के साथ अपने पुराने फैमिली हाउस में होंगे शिफ्ट, बिल्डिंग अपार्टमेंट में होंगे शिफ्ट। मुंबई की सड़कों पर घूमे उड़ीसी के स्टार्स स्पाइडरमैन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: केरल के वायनाड जिले

पर प्रकृति जमकर मेहरबान है। देखिए, प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इस जिले की कोई सानी इसका नजर नहीं आता। यहाँ के कई गांव आजकल अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से सैलानियों की पहली पसंद बन चुके हैं। वजह है ग्रामीण परिवेश में आधुनिकता का संगम, यानी गांव का पारंपरिक खाना और झोपड़ी में 5 स्टार सुविधा सभी को आकर्षित कर रही है। आज बात करेंगे वायनाड के चिकाड़ी गांव की।

तक खेत ही खेत, गांव का वातावरण, इधर उधर टहलते जानवर, खेतों के बीच बना देसी रेस्टोरेंट और पारंपरिक रूप से बनी झोपड़ी में आलीशान कमरा, ये नजारा केरल के वायनाड जिले के चेकार्डी गांव का है।

हरे भरे पहाड़, चमचमाते तालाब और नदियाँ और जीवो जंतुओं का अद्भुत प्राकृतिक संगम इस चेकाटी गांव को प्रकृति की लय में ढाल देता है। चेकाटी गांव में आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ के देसी पकवान और परम्परा का आनंद लेते हैं।

वायनाड का ये गांव लग्जरी रिसॉर्ट्स के विकल्प के तौर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही जिले की विरासत को भी बचा रहा है। यहाँ पर जो भी सैलानी आते हैं वो जनजातीय लोगों के पारंपरिक जीवन का आनंद भी लेते हैं। यहाँ रिजॉर्ट गार्बेज मैनेजमेंट, जल संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भर मामले में कोई समझौता नहीं करते, तभी तो पूरा इलाका साफ सुथरा है। इको टूरिज्म से स्थानीय तौर पर रोजगार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय का लाभ अब यहाँ के जनजातीय समुदाय उठाने लगे हैं। केरल के 14 जिलों में वायनाड को प्रकृति ने जितना प्यार दिया है उसको सींचने का काम वहाँ की जनजातियों ने किया है। केरल के हिल स्टेशनों में वायनाड सबसे टॉप पर आता है।

0: केरल के वायनाड जिले को हरियाली का स्वर्ग कहा जाता है और ये पूरा जिला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का आदर्श उदाहरण है। यहाँ पर्यटक न केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं बल्कि इसके संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर पर्यावरण अनुकूल पर्यटन कारोबार का केंद्र बिंदु भी है। कई गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और देश के अलग अलग इलाकों से लोग इको टूरिज्म का आनंद लेने यहाँ पहुँचते हैं। वायनाड से शिवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: Sage University, transforming your passion into profession.
10: अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी श्रद्धालुओं की तादाद पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे, ज्यादा भक्त दर्शन, व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पहुंच जाएगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मानसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है, केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार, बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतारें। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थ यात्रियों का दल सोमनाथ के लिए रवाना, निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में हुआ है निर्माण। आधुनिक और सुलभ व्यवस्था पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पटना में कल हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आज बात करेंगे शरीर की बनावट से आप कैसे जान सकते हैं अपनी किस्मत का हाल और इससे आपके भाग्य और स्वभाव का क्या संबंध है, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन पहले आज जान लेते हैं गुड लक मंत्र।
1: अगर करियर में आपको लगातार असफलता मिल रही है, करियर में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, तो रविवार को अपने घर में गमले में या जमीन में एक मदार का पौधा लगाइए और नियमित रूप से उसकी देखभाल करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 13 जुलाई 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या रहेगा।
1: दिनांक 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:49 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 5:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके शरीर में पैर का अंगूठा कितना महत्वपूर्ण होता है और ये किस तरह की सूचना देता है।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लक्षण विज्ञान की या सामुद्रिक शास्त्र की, और लक्षण विज्ञान में आपके शरीर की बनावट, आपके शरीर के चिन्ह, ये आपके भाग्य और आपके जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके पैर के अंगूठे के बारे में। देखिए, व्यक्ति के पैर का अंगूठा व्यक्ति के प्रभाव और उसकी आध्यात्मिक रुचि को, उसकी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा लंबा हो, तो व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है, धर्म कर्म वाला रहता है। अगर पैर के अंगूठे से ठीक बगल वाली उंगली ज्यादा लंबी हो तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, ऐसे लोगों की ऑफिस में और घर में खूब चलती है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा छोटा हो तो व्यक्ति जीवन में केवल धन की चिंता करता रहता है, और पैर का अंगूठा छोटा हो तो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। ज्यादातर जो वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हैं, आप देखेंगे उनके पैर का अंगूठा थोड़ा लंबा होता है, और पैर के अंगूठे का बड़ा होना इस बात की सूचना है कि आपके अंदर आध्यात्मिक स्पार्क मौजूद है।
0: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी, शिव जी को जल अर्पित करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब बात करेंगे आपके हाथ की अंगुलियों की, जिससे आपके स्वभाव और आपके भाग्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है, पंडित जी से जान लेते हैं।
1: देखिए, आपके हाथ की जो अंगुलियां हैं वो आपके विचारों के बारे में, आपके इंटरेस्ट, आपकी रुचि के बारे में बताती हैं। हाथ की अंगुलियां अगर लंबी हों और पतली हो तो व्यक्ति कलात्मक होता है, आर्टिस्टिक होता है, गाना बजाना, पेंट करना, क्रिएशन करना, ये कलात्मक गुण उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे लोग सामान्यतः सरल स्वभाव के होते हैं और ज्यादा दांव पेच में, ज्यादा खुराफातों में नहीं पड़ते। अगर अंगुलियां मोटी हैं और सख्त हैं तो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। अंगुलियों का मोटा और सख्त होना अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ज्यादा कठोर होती है। अंगुलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हैं तो व्यक्ति को पैसे तो बहुत मिलते हैं, व्यक्ति किसी न किसी तरीके से पैसा कमाता है, लेकिन सेहत को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर अंगुलियां गांठदार हों, अंगुलियों का जोड़ थोड़ा फूला हुआ हो, नॉटेड अंगुलियां हों, तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है, केवल धन की फिराक में लगा रहता है। अंगुलियों का पतला और लंबा होना ये भी बताता है कि आदमी आलसी है, आदमी लापरवाह है। लेकिन अंगुलियां पतली हैं, लंबी हैं, तो व्यक्ति भाग्यवान भी जरूर होता है।
0: और चलिए आप जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।

0: बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका सवाल लेने का। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि सबसे पहले पंडित जी किसका सवाल लेना चाहेंगे।
0: जी आज का पहला प्रश्न हरिराम जी ने हमें लिखा है, मुरादाबाद से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर 1964। जन्म का समय शाम के 4:45। जन्म स्थान है मुरादाबाद। हरिराम जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। हरिराम जी, आपको कर्ज से मुक्ति पाने में अभी वक्त लगेगा। हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़े। 2027 के आखिरी तक जाते जाते काफी हद तक कर्जे से मुक्ति पा जाएंगे। आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपने कान नाक गले का आप ध्यान रखिएगा, बाकी मामलों में कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आपके दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न कोमल ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। कोमल की जन्म तारीख है 24 मई 1994। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म स्थान है कानपुर। कोमल कह रही हैं कि मैं अभी लखनऊ में नौकरी कर रही हूं, मेरे पास नौकरी का एक ऑफर आया है दिल्ली की तरफ से, तो क्या मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए और इस समय नौकरी बदलना मेरे लिए कैसा रहेगा। कोमल, आपकी कुंडली के हिसाब से स्थान परिवर्तन करना अच्छा है और इस समय नौकरी बदलने से आपको लाभ भी होगा, तो बिल्कुल आप नौकरी बदल लीजिए, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। एक मोती बनवा के पहने ताकि नौकरी बढ़िया चले, तरक्की मिले। एक मोती लगभग 10-12 रत्ती की, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके कान से आपके जीवन के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके भाग्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है।
0: आपके जो कान हैं वो बहुत सारी बातें आपके जीवन में बताते हैं और कान से भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अगर आपके कान बड़े हैं, सामान्य से थोड़े ज्यादा बड़े हैं, तो ये लंबी आयु का संकेत है। कान का बड़ा होना बहुत अच्छा है। कान अगर आपके छोटे हैं तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और जीवन में दुर्घटनाओं के संकेत मिलते हैं। अगर कान पर बाल है तो व्यक्ति काफी छोटे स्तर से काफी ऊंचाइयों तक पहुंचता है और लंबी आयु तक जीता है। कान का बड़ा होना या कान पर बाल होना आयु के लिए अच्छा है। कान का जो निचला हिस्सा है, कान की जो लौ है, अगर ये लंबी है तो व्यक्ति काफी प्रभावशाली होता है, रिश्तों को समझता है और निभाता है। नेचुरली जिसके कान की लौ लंबी होती है, ऐसे लोगों के बारे में देखा गया है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता ज्यादा होती है।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं आपके नाखून की। आप जान लेते हैं पंडित जी से कि आपके नाखून से आपके स्वभाव, आपके जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है।
0: आपके नाखूनों को देखकर तुरंत आपके स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र भी इसके बारे में कुछ कहता है। हाथ के नाखून अगर लंबे हैं और सुंदर हैं, नेचुरल नाखून अलग से लगाए हुए नहीं, हाथ के नाखून अगर लंबे और सुंदर हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। नाखून अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। अक्सर आप देखेंगे नाखून पर अर्धचंद्र बना होता है, आधा चंद्रमा नीचे की तरफ। नाखूनों पर अर्धचंद्र अगर बड़ा है तो व्यक्ति की रोगों से रक्षा होती है, और अगर नाखूनों पर अर्धचंद्र नहीं है तो व्यक्ति की बीमारी लंबे समय तक चलती है, व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है। अगर अचानक से आपके नाखून पर सफेद निशान आ जाएं या बिंदु आ जाए सफेद रंग का, तो ये किसी रोग की सूचना देते हैं। तो आपके नाखून मुख्यतः आपके स्वास्थ्य के बारे में बड़ी परफेक्ट जानकारी देते हैं, और नाखूनों का सुंदर होना ये बताता है कि आप अंदर से भी कोमल व्यक्ति हैं, अंदर से भी सरल व्यक्ति हैं।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, करियर में नई शुरुआत होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आप पंडित जी से जानेंगे कि आपकी भौं यानी कि आपकी आईब्रोज आपकी सोच के बारे में क्या बताती है।
0: अब बात करते हैं भौं की यानी आपके आईब्रोज की। अगर भौं गाढ़ी है मोटी है तो व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है। अगर दोनों आंखों के ऊपर की भौं बीच में सट जाए या बीच में मिल जाए तो ऐसे लोग काफी क्रोधी होते हैं और इनका वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर आपकी आईब्रोज आपकी भौं कटी फटी है तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा काफी ज्यादा होती है। अगर भौं नीचे की तरफ अपने आप झुक रही है तो व्यक्ति का झुकाव वैराग्य की तरफ हो जाता है और ऐसे लोग कभी कभी घर द्वार त्याग देते हैं। देखिए, आपने अपनी भौं सेट करवा ली है, उसे सुंदर बना लिया है, उसकी हम बात नहीं करते। जो नेचुरल आपकी भौं है उसका जो शेप है उसका जो आकार है वो एग्जैक्टली आपके स्वभाव आपकी वाणी और आपके क्रोध के बारे में बता देगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि आपके हाथ और पैरों के जो बाल होते हैं वो आपकी सोच और आपके स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं।
0: आम तौर पर हम सबके शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए हाथ और पैरों में रोएं होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका क्या अर्थ है? पुरुषों के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा होता है। अगर आप पुरुष हैं आपके हाथ और पैर में ज्यादा बाल हैं तो ये अच्छा है। ऐसे पुरुष सरल और विश्वास पात्र होते हैं। महिलाओं के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा नहीं होता। ऐसी महिलाओं को जीवन में मुश्किलों का दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जब कोई पुरुष बहुत सरल स्वभाव का हो जाए, बहुत करुणा वाला हो जाए, जीवन में बड़ा अच्छा हो जाए, तो उसके हाथ पैर और सीने पर घने बाल आने लगते हैं। जिन लोगों को मन की चिंताएं ज्यादा हों, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, उनके बालों पर, सर के और शरीर के बालों पर गहरा असर पड़ता है। बालों के गिरने की स्थिति बन जाती है। देखिए, पुरुषों के लिए घने बाल शरीर में होना अच्छा है, महिलाओं के लिए शरीर में घने बाल होना अच्छा नहीं माना जाता।
1: और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, करियर में आपके उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर दी गई है, आप इस पर मेल करके पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज तीसरा सवाल किसका लेने वाले हैं
0: जी? अगला प्रश्न दुष्यंत जी ने हमें बेंगलोर से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 5 मार्च 1989। जन्म का समय शाम के 6:51। जन्म का स्थान है खेतड़ी, राजस्थान। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि मैं काफी समय से अपनी नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और करियर मेरा कैसा रहेगा? दुष्यंत जी, आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है, और नौकरी बदलने के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। बेंगलोर से आपको दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। चंद्रमा को प्रबल करने का प्रयास करें, रोज शाम को 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः। चंद्र का मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़ें, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इस साल के अंत तक आपकी नौकरी और आपका स्थान बदल जाएगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका चौथा सवाल लेने का। पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी,

0: अंतिम प्रश्न शिप्रा जी ने हमें लिखा है और शिप्रा जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1994। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है दिल्ली। शिप्रा कह रही हैं कि मेरी शादी अभी 1 साल पहले हुई थी और 6 महीने से मैं अपने मायके में रह रही हूँ। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरी शादी चल सकेगी? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? शिप्रा, जो आपने अपने पति की कुंडली भेजी है और अपनी कुंडली भेजी है, उसके हिसाब से इस शादी के चल पाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये शादी चल पाना बहुत कठिन है। ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से अगले 6-8 महीने में आपका सेपरेशन होगा। आपकी दूसरी शादी साल 2028 में होगी, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ, लेकिन इस विवाह से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन 13 जुलाई को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। अब जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: दिन 13 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान बनाए रखिएगा। करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि दान करने से भी लाभ नहीं होता, तो कब दान करने से लाभ नहीं होगा? अगर दान दिखावे के लिए किया गया है या दबाव में किया गया है तो दान का फल नहीं मिलेगा। और अगर दान खराब वस्तुओं का, खराब चीजों का किया जाए तो भी फल नहीं मिलेगा। और अगर आप दान का ढिंढोरा पीटते हैं, हर जगह बताते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो ऐसे दान का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दान प्रेम से, श्रद्धा से, गोपनीय तरीके से अच्छी वस्तुओं का करेंगे तो दान से दान वाले को भी और आपको भी लाभ अवश्य होगा।
1: और चलिए अब जान लेंगे पंडित जी से कि 13 जुलाई 2026 का शुभ पहर क्या रहने वाला है।
0: दिनांक 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 जुलाई सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में।
1: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की आपकी गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है कुंभ। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और करियर और जीवन के मामले में कोई रिस्क, कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए।
1: और चलिए कार्यक्रम के अंत में अब समय हो चला है आज का महा उपाय जानने का।
0: आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको पेट की या लिवर की कोई समस्या है तो क्या करेंगे। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। और अगर लीवर या पेट की दिक्कत ज्यादा है तो पीला पुखराज और सोना बिल्कुल भी धारण मत करिएगा।
1: तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बुलेटिन में अब खबर ओडिशा के पुरी से देखिए, जहां पर महाप्रभु जगन्नाथ देव जी के वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर से लेकर पुंडेचा मंदिर तक रथ यात्रा के उत्सव के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। सदियों पुराने इस उत्सव की तैयारियां सिर्फ एक आयोजन ही नहीं बल्कि इंसानी आस्था और ईश्वरीय प्रेम का चरम रूप है। रिपोर्ट देखिए।

0: 16 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के पावन अवसर पर शुरू होने जा रही रथ यात्रा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ तैयार हो रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में सजावट का काम भी पूरा हो चुका है और सबको उस पल का इंतजार है जब रथ यात्रा के भव्य और दिव्य उत्सव का शुभारंभ होगा।
1: Both at the end of the Sri Mandira and at the other end of Sri Gundicha temple, all the preparations are reaching their full speed. And you can see the traditional Jyoti Chita, the traditional painting of Odisha are being done in both the ends. And inside the temple also, all the developmental works are almost over. So we wish and pray before Mahaprabhu Jagannath that all the rituals will be performed on time. And we seek cooperation of all the devotees and all the servitors and everyone who would be witnessing this great festival.
0: खास बात ये है कि पुरी के श्री मंदिर के साथ साथ यहाँ के मशहूर गुंडिचा मंदिर में भी रथ यात्रा के पावन उत्सव के सिलसिले में तैयारियाँ जोर शोर से जारी। मंदिर के गर्भगृह से लेकर शिखर तक हर कोने में सफाई की जा रही है, हर तरफ रंग रोगन जारी है और मंदिर परिसर को चमकाया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जारी है, क्योंकि श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होने वाली रथ यात्रा का अहम मुकाम यही मंदिर है। लिहाजा रथ यात्रा की जितनी तैयारी जगन्नाथ मंदिर में होती है उतनी गुंडिचा मंदिर में भी होती है। इसका कारण ये है कि पुरी में स्थित गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। ये मुख्य श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बड़ा दंड के दूसरे छोर पर स्थित है। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडिचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडिचा मंदिर में भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: एक प्रथा है, कई कथा है, मैं एक ही कथा आपके सामने बोलूंगा। जगन्नाथ महाप्रभु जगत के नाथ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो इसी समय रथ यात्रा वो खुद के लिए बनाते हुए अपने भक्त को मिलने के लिए रथ के ऊपर विराजमान होके वो सीधा गुंडिचा मंदिर चले आते हैं। क्यों? जो वेस्टर्न डिवोटी हो गया, जो अलग जात के भी लोग रहते, जो भगवान के मंदिर के अंदर जाने के लिए उनको पाबंदियां है, खुद जगन्नाथ महाप्रभु जगत पिता है, वो उन्हीं के सामने सब समान है, इसके लिए खुद वो रत्न सिंहासन छोड़ के गुंडिचा टेम्पल चले आते हैं रथ के ऊपर विराजमान होते हुए।
0: माना जाता है कि गुंडिचा मंदिर में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान की मूर्तियों का निर्माण किया था। ऐसी मान्यता है कि गुंडिचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ दर्शन करने से भक्तों के 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं। इतना ही नहीं, रथ यात्रा के शुभारंभ से लेकर अंत तक श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन होते हैं, जिससे वे अपना जीवन धन्य मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा पल होता है जब महाप्रभु खुद लोगों को दर्शन देने उनके बीच आते हैं। रथ यात्रा की यही महिमा है जिसके कारण मंदिर प्रशासन, सेवायत और सरकार से लेकर पूरी के तमाम लोग मुस्तैद हैं, ताकि ये उत्सव शानदार तरीके से संपन्न हो सके।
2: महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ यात्रा खुद करा रहे, इसके लिए यही तो बोलूंगा, हम सारे भक्त जो है सब निमित्त मात्र है और सब जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपके रथ यात्रा को आप खुद ही करिए, आप जगत पिता है और जगत पति है, जगत के नाथ जगन्नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर है, निर्विघ्न से ये रथ यात्रा ये खुद आप ही कर सकते हैं, हम लोग सब प्रयासरत रहेंगे। तो ठीक उसी तरह श्री मंदिर में समस्त कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है महाप्रभु का ये भव्य और दिव्य रथ यात्रा के लिए। आप देखेंगे
0: गुंडीचा मंदिर में प्रवास के दौरान भगवान को अत्यंत सुंदर और विशेष वेश में सजाया जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां उनके दिव्य दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में रुकने के पांचवे दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहां आती है, क्योंकि भगवान उन्हें अपने साथ रथ यात्रा में नहीं लाते हैं। वो गुस्से में भगवान के रथ का एक पहिया भी तोड़ देती है। माता लक्ष्मी की गुंडीचा मंदिर आने की तिथि हेरा पंचमी कहलाती है। हेरा पंचमी के अगले दिन गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े तीनों विशाल रथों का रुख दक्षिण दिशा यानी मुख्य जगन्नाथ मंदिर की ओर घुमा दिया जाता है, और इसके साथ ही माना जाता है कि अब भगवान की वापसी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुंडीचा मंदिर में 9 दिन बिताने के बाद भगवान फिर से अपने रथ पर सवार होकर वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पुरी की रथ यात्रा में शामिल होंगे और इस उत्सव का नया इतिहास रचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दे दी है। देखिए, मौसम विभाग का कहना यह है कि 14-15 अप्रैल के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रशांत महासागर में एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में इससे मानसून को मजबूती मिल सकती है।

उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, हर इलाके में मानसून ने काफी इंतजार कराया, लेकिन जब बरसा तो झूम के बरसा। हालांकि मानसून की बेरुखी से अभी भी कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश तो हुई है लेकिन जरूरत भर नहीं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का

0: वाली हवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश अभी एक से दो दिन जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा।
1: ओवरऑल अगर बाकी हिस्सों की बात करें ईस्ट इंडिया के, वहाँ भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है हमारा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हिमालय की बात करें, हमारा अनुमान है उत्तराखंड में ऑलमोस्ट आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। हिमाचल में भी 2 से 3 दिन रह सकती है। नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आने वाले 2 दिन में एक्टिविटी रहने का अनुमान है।
0: अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में 14 और 15 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस दाखिल हो रहा है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश ला सकता है।
1: एनसीआर दिल्ली में इससे पहले तो एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा टेम्परेचर भी उसमें बढ़ गया है और 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लेकिन आज बाय इवनिंग हल्का फुल्का कहीं रेनफॉल हो सकता है, उसके बाद एक दूसरा स्पेल जो 14 और 15 को आ सकता है एनसीआर दिल्ली के लिए।
0: बारिश के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन झमाझम बारिश की फुहारें राहत लेकर जरूर आएंगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब खबर तिब्बत से। धूप की पहली किरण जब तिब्बत में ल्हासा के पहाड़ों पर छूती है तो चांदी की तरह चमकती सफेद दीवारों वाली सुर्ख लाल रंग की इमारत जादुई नजर आने लग जाती है। यूनेस्को की इस विश्व धरोहर पोटाला पैलेस को चमकने के लिए किसी आधुनिक का केमिकल पेंट का नहीं बल्कि आस्था के एक जैविक और मीठे नुस्खे का इस्तेमाल होता है। पहाड़ पर बने इस शानदार महल पर सैकड़ों लोग रंग छिड़कते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वे आसमान और जमीन के बीच श्रद्धा का एक नया कैनवास तैयार कर रहे हैं। आखिर क्या है पोटाला पैलेस के पेंटिंग के पीछे की कहानी, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
3: तिब्बत के ल्हासा में स्थित मशहूर ऐतिहासिक इमारत पोटाला पैलेस की रौनक देखते ही बनती है। इस अनोखे महल का आर्किटेक्चर मीलों दूर से लोगों को आकर्षित कर सकता है। घुमावदार सीढ़ियों से सजी इस बहुमंजिला इमारत की शानदार रौनक को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से यहां पर रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है। तिब्बत के सैकड़ों स्थानीय लोग और दूर दूर से आए वॉलंटियर इन दिनों पोटाला पैलेस की नए सिरे से पेंटिंग के काम में हाथ बटा रहे हैं। इमारत के कोने कोने को चमकाने के लिए ये लोग पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। इसकी एक खास वजह ये भी है कि पोटाला पैलेस की खास तरीके से पेंटिंग और रंग रोगन की ये परंपरा 300 साल पुरानी है। हर साल जुलाई यानी तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से सितंबर में सदियों पुराने नुस्खे के आधार पर खास तरीके के पेंट तैयार करके इस महल की पुताई की जाती है। इस पेंट को बनाने में चूने और दूसरी सामग्रियों के साथ दूध, शहद और केसर का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर तरीके से बनाए गए इस पेंट से रंगाई पुताई के कारण ही इस इमारत की चमक अभी तक बरकरार है। आपको बता दें कि पोटाला पैलेस का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। ये मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनी पारंपरिक तिब्बती शैली की इमारत है। इसमें 1200 से ज्यादा कैमराज हैं। पोटाला पैलेस ल्हासा के बीचों बीच माउंट मारपोरी पर स्थित है। तिब्बती भाषा में माउंट मारपोरी का अर्थ है लाल पहाड़ी। पोटाला पैलेस लंबे समय तक बौद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बती लोगों के धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान रहा है। 1959 तक ये दलाई लामा का शीतकालीन निवास हुआ करता था। इसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित महल परिसर माना जाता है। 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पोटाला पैलेस की पेंटिंग की परंपरा केवल इस इमारत के संरक्षण से ही नहीं जुड़ी बल्कि इसका संबंध बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध से भी है।

0: मान्यता है कि तिब्बती कैलेंडर के 9वें महीने के 22वें दिन भगवान बुद्ध का धरती पर अवतरण होता है। उनके स्वागत के लिए इस महल की पेंटिंग की जाती है और महल की बाहरी दीवारों पर नया रंग रोगन किया जाता है। भगवान बुद्ध के धरती पर आगमन की तिथि से 3 हफ्ते पहले इमारत की इस तरह से खास पेंटिंग का काम पूरा कर लिया जाता है। इस बार एक और खास बात ये भी है कि अब पटोला पैलेस में रखी 10,000 पेजेस से ज्यादा पुरानी और दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण का भी काम जोर शोर से चल रहा है। पांडुलिपियों के एक एक पन्ने को डिजिटल तरीके से स्कैन किया जा रहा है और उनकी कैटलॉगिंग की जा रही है। इनमें बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, तो साथ ही दूसरे विषयों पर भी लिखी गई सामग्री काफी मात्रा में मौजूद है।
1: 多种价值展现的这么一个无可替代的一个文物的一个种类，大量的传入北京，应该是从公元八世纪中叶开始，一直延续到了十七世纪，差不多是将近1000年左右。从内容上看呢，布达拉宫里面其实我们发现了一些比较有特点的，并且是其他地方目前还没有发现的，尤其是这种音明学的这个。 典籍里面有一些新的发现，比如说这种中观经也好，音明经，可能在大的这个甘珠尔丹珠尔里面没有发现那个翻译过的，类似这种的是，从这个文献的这个解读方面，有很大的这个。
0: दावा किया जा रहा है कि इनमें कई पांडुलिपियां हजारों साल तक पुरानी हो सकती हैं। पुराने जमाने में इन्हें खास किस्म के बॉक्स में बेहद सावधानी से रखा गया था ताकि ये खराब ना हो। अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें आने वाले समय में बचाए रखने की तैयारी है। माना जा रहा है कि पोटाला पैलेस में रखी इन पांडुलिपियों में ज्ञान का अनूठा खजाना है, जो अब अगर दुनिया के सामने आए तो सभ्यताओं के कई राज खुल सकते हैं, कई बड़ी समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: केरल के वायनाड जिले पर प्रकृति जमकर मेहरबान है। देखिए, प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इस जिले की कोई सानी इसका नजर नहीं आता। यहाँ के कई गांव आजकल अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से सैलानियों की पहली पसंद बन चुके हैं। वजह है ग्रामीण परिवेश में आधुनिकता का संगम, यानी गांव का पारंपरिक खाना और झोपड़ी में 5-स्टार सुविधा सभी को आकर्षित कर रही है। आज बात करेंगे वायनाड के चिकाड़ी गांव की।

तक खेत ही खेत, गांव का वातावरण, इधर उधर टहलते जानवर, खेतों के बीच बना देसी रेस्टोरेंट और पारंपरिक रूप से बनी झोपड़ी में आलीशान कमरा, ये नजारा केरल के वायनाड जिले के चेकार्डी गांव का है।

हरे भरे पहाड़, चमचमाते तालाब और नदियाँ और जीवो जंतुओं का अद्भुत प्राकृतिक संगम इस चेकाटी गांव को प्रकृति की लय में ढाल देता है। चेकाटी गांव में आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ के देसी पकवान और परम्परा का आनंद लेते हैं।

वायनाड का ये गांव लग्जरी रिजॉर्ट्स के विकल्प के तौर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही जिले की विरासत को भी बचा रहा है। यहाँ पर जो भी सैलानी आते हैं वो जनजातीय लोगों के पारंपरिक जीवन का आनंद भी लेते हैं। यहाँ रिजॉर्ट गार्बेज मैनेजमेंट, जल संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भर मामले में कोई समझौता नहीं करते, तभी तो पूरा इलाका साफ सुथरा है। इको टूरिज्म से स्थानीय तौर पर रोजगार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय का लाभ अब यहाँ के जनजातीय समुदाय उठाने लगे हैं। केरल के 14 जिलों में वायनाड को प्रकृति ने जितना प्यार दिया है उसको सींचने का काम वहाँ की जनजातियों ने किया है। केरल के हिल स्टेशनों में वायनाड सबसे टॉप पर आता है।

0: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. All streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार, बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना, निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ, 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं।
1: भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है।
1: भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है।
0: फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रमकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
2: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्कीमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
1: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संभाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संभाग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संभाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संभाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
2: देखिए, जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
2: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
1: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
2: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25 से 40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60 से 80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
1: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
2: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहाँ पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा वो द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफ़ी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड, एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है, एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
1: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
2: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: उन्नीस सौ 1980 के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
1: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। आईएनएस जटायू नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
2: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दे दी है। देखिए, मौसम विभाग का कहना यह है कि 14-15 अप्रैल के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रशांत महासागर में एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में इससे मानसून को मजबूती मिल सकती है।

0: उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, हर इलाके में मानसून ने काफी इंतजार कराया, लेकिन जब बरसा तो झूम के बरसा। हालांकि मानसून की बेरुखी से अभी भी कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश तो हुई है लेकिन जरूरत भर नहीं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 से 25 जुलाई के बीच मानसून में नई जान आ सकती है। शांत महासागर में ट्रॉपिकल सिस्टम या लो प्रेशर एरिया बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ये सिस्टम मजबूत हुआ और पश्चिम की ओर बढ़ा तो ये मानसून को मजबूती दे सकता है। हालांकि अभी 6 से 7 दिन बाकी हैं, इसलिए मौसम वैज्ञानिक सतर्कता से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्वी भारत में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भाग में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से हटी हुई है, जिसके कारण नमी वाली हवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश अभी 1 से 2 दिन जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा।
1: ओवरऑल अगर बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया के, वहाँ भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है हमारा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हिमालय की बात करें, हमारा अनुमान है उत्तराखंड में ऑलमोस्ट आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। हिमाचल में भी 2 से 3 दिन रह सकती है। नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आने वाले 2 दिन में एक्टिविटी रहने का अनुमान है।
0: अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में 14 और 15 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस दाखिल हो रहा है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश ला सकता है।
1: एनसीआर दिल्ली में इससे पहले तो एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा टेम्परेचर भी उसमें बढ़ गया है और 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लेकिन आज बाई इवनिंग हल्का फुल्का कहीं रेनफॉल हो सकता है, उसके बाद एक दूसरा स्पेल जो 14 और 15 को आ सकता है इनसे दिल्ली के लिए।
0: बारिश के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन झमाझम बारिश की फुहारें राहत लेकर जरूर आएंगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाय। केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार। बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना। निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जेय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 की उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में 16 बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल यह है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया यह कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी। यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था। इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देख

0: पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश से मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। पहाड़ों पर हरियाली बढ़ गई है, बादलों का टेरा साफ साफ नजर आ रहा है। बद्री धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान बद्री विशाल का बुलावा आया हो तो मौसम की बेरुखी भी बेअसर हो जाती है। मानसूनी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं पर माणा गांव में भी रौनक जबरदस्त है, तीर्थयात्री मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं।

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रुक रुक कर बरसाती बूंदे और वातावरण में ठंडक का एहसास। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और दिव्य मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्त आस्था के साथ साथ मौसम का मजा लेने में भी पीछे नहीं दिख रहे। बद्रीनाथ में बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि मौसम का असर से भक्तों के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही।
1: पहाड़ों में भले ही मानसून अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए इस समय सबसे सुंदर मौसम देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार पिछले चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी मौसम साफ होता है तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। ऐसे में जो यात्रा मार्ग है वो सबसे बेहतर इस समय है। यात्रा मार्ग कहीं भी बाधित नहीं हो रहे हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवां सीधे रुख कर रहा है देश के पहले गांव माणा की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। धुंध की सफेद चादर के बीच जब ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दुगना कर रही हैं, कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गाँव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ के कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहां बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
7: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
9: You're listening to MSNBC.
7: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
13: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार, बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना, निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ, 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्किमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संबांग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संबाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां हम ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25 से 40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60 से 80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके। और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे इस मलक्का स्टेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है। एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल है। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
0: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहाँ पर आइलैंड के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास हैं। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस आईएनएस जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
2: आईएनएस जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजीशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। INS जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
1: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगोंग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव्स में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं, और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दे दी है। देखिए, मौसम विभाग का कहना यह है कि 14-15 अप्रैल के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रशांत महासागर में एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में इससे मानसून को मजबूती मिल सकती है।

0: उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, हर इलाके में मानसून ने काफी इंतजार कराया, लेकिन जब बरसा तो झूम के बरसा। हालांकि मानसून की बेरुखी से अभी भी कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश तो हुई है लेकिन जरूरत भर नहीं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 से 25 जुलाई के बीच मानसून में नई जान आ सकती है। शांत महासागर में ट्रॉपिकल सिस्टम या लो प्रेशर एरिया बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ये सिस्टम मजबूत हुआ और पश्चिम की ओर बढ़ा तो ये मानसून को मजबूती दे सकता है। हालांकि अभी 6 से 7 दिन बाकी हैं, इसलिए मौसम वैज्ञानिक सतर्कता से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्वी भारत में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भाग में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से हटी हुई है, जिसके कारण नमी वाली हवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश अभी 1 से 2 दिन जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा।
1: ओवरऑल अगर बाकी हिस्सों की बात करें ईस्ट इंडिया के, वहाँ भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है हमारा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हिमालय की बात करें, हमारा अनुमान है उत्तराखंड में ऑलमोस्ट आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। हिमाचल में भी 2 से 3 दिन रह सकती है। नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आने वाले 2 दिन में एक्टिविटी रहने का अनुमान है।
0: अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में 14 और 15 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस दाखिल हो रहा है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश ला सकता है।
1: एनसीआर दिल्ली में इससे पहले तो एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा टेम्परेचर भी उसमें बढ़ गया है और 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लेकिन आज बाय इवनिंग हल्का फुल्का कहीं रेनफॉल हो सकता है, उसके बाद एक दूसरा स्पेल जो 14 और 15 को आ सकता है एनसीआर दिल्ली के लिए।
0: बारिश के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन झमाझम बारिश की फुहारें राहत लेकर जरूर आएंगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है। केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार। बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना। निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 के उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में 16 बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाए

0: चीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: You've got a big day, so you use Unstoppable Scent Boosters to give your laundry non-stop freshness. So no matter how long the day goes, you
3: can't stop this power, this walk, this pose, this strut, this look, this talk.
2: Your clothes will be so fresh you can confidently strut into that end-of-the-day meeting like a
3: boss, boss, boss, boss, boss, boss, bosses. Let's talk business in my office.
2: Add new Unstoppables beads to your wash for 24-hour non-stop freshness so you can smell unstoppable.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश से मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। पहाड़ों पर हरियाली बढ़ गई है, बादलों का टेरा साफ साफ नजर आ रहा है। बद्री धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान बद्री विशाल का बुलावा आया हो तो मौसम की बेरुखी भी बेअसर हो जाती है। मानसूनी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं पर माणा गांव में भी रौनक जबरदस्त है। तीर्थयात्री मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं।

0: और काले घने बादल, रुक रुक कर बरसाती बूंदे और वातावरण में ठंडक का एहसास। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और दिव्य मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्त आस्था के साथ साथ मौसम का मजा लेने में भी पीछे नहीं दिख रहे। बद्रीनाथ में बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि मौसम का असर से भक्तों के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही।
1: पहाड़ों में भले ही मानसून अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए इस समय सबसे सुंदर मौसम देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार पिछले चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी मौसम साफ होता है तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। ऐसे में जो यात्रा मार्ग है वो सबसे बेहतर इस समय है। यात्रा मार्ग कहीं भी बाधित नहीं हो रहे हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवां सीधे रुख कर रहा है देश के पहले गांव माणा की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। धुंध की सफेद चादर के बीच जब ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दुगना कर रही हैं, कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गाँव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ के कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहां बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
7: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
9: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां, 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाय, केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार, बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना, निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ, 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि कोस्टल बैटरी, कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्किमिंग, लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। यह तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संबांग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संबाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां हम ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का

0: स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट से, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
1: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
1: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
0: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई, व्यापार जो 25-40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60-80% तेल यहाँ से आता है, तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा। उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
1: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहाँ पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
1: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
0: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो

0: की सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा वो द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफ़ी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
1: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
2: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, ये जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी ट्रेड एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है। एंड हॉर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
1: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है। हिंदुस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो 3 तरफ से समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें 7,516 किलोमीटर का लगभग ये पूरा एरिया पड़ता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और कई राज्य भी आते हैं। और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है कि भारत अपनी समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करे और इसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करे।
3: भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे INS जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर, उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
0: देखा जाए तो INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
3: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन INS जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा।
1: इससे पहले साल 2012 में करवती में INS द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। मिनिकॉय में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस INS जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
4: INS जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है, और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
1: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। INS जटायु नौसैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तेल और गैस। ज्यादातर तेल गैस हिंद महासागर से जुड़े तीन अहम पॉइंट से ले जाया जाता है। इनमें से एक जगह है फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचता है, उसका 40% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच मौजूद है। हिंद महासागर में तीसरा मुख्य बिंदु है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। अगर कोई भी देश या फिर देशों का गठबंधन हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के तीन प्रमुख रास्तों पर अपना दबदबा बना ले तो वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप भी शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब मालदीव की अहमियत को चीन अच्छी तरह से समझता है और वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मालदीव को साधने में जुटा है।
0: चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है, जहां पर वो भारत को चौथों से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हम्मनटोटा पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या बांग्लादेश में चितगांग पोस्ट हो, और अब वो मालदीव में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनकी नेवी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, हिंद महासागर में घूमते रहते हैं, और भारत के शिपिंग पर, भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारत की रक्षा की तैयारियों पर पूरी तरह से नजर रखते हैं।
4: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
5: गुंडी चुंडी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
6: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
7: Swing and a foul out of play off to the left.
6: Big 12 Radio.
8: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
6: Talk Sport.
9: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
6: And more. Search sports to find the stations covering your team.
5: गुंडी चुंडी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दे दी है। देखिए, मौसम विभाग का कहना यह है कि 14-15 अप्रैल के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रशांत महासागर में एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में इससे मानसून को मजबूती मिल सकती है।

0: उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, हर इलाके में मानसून ने काफी इंतजार कराया, लेकिन जब बरसा तो झूम के बरसा। हालांकि मानसून की बेरुखी से अभी भी कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश तो हुई है लेकिन जरूरत भर नहीं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 से 25 जुलाई के बीच मानसून में नई जान आ सकती है। शांत महासागर में ट्रॉपिकल सिस्टम या लो प्रेशर एरिया बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ये सिस्टम मजबूत हुआ और पश्चिम की ओर बढ़ा तो ये मानसून को मजबूती दे सकता है। हालांकि अभी 6 से 7 दिन बाकी हैं, इसलिए मौसम वैज्ञानिक सतर्कता से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्वी भारत में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भाग में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से हटी हुई है, जिसके कारण नमी वाली हवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश अभी 1 से 2 दिन जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा।
1: ओवरऑल अगर बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया के, वहाँ भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है हमारा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हिमालय की बात करें, हमारा अनुमान है उत्तराखंड में ऑलमोस्ट आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। हिमाचल में भी 2 से 3 दिन रह सकती है। नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आने वाले 2 दिन में एक्टिविटी रहने का अनुमान है।
0: अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में 14 और 15 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस दाखिल हो रहा है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश ला सकता है।
1: एनसीआर दिल्ली में इससे पहले तो एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा टेम्परेचर भी उसमें बढ़ गया है और 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लेकिन आज बाय इवनिंग हल्का फुल्का कहीं रेनफॉल हो सकता है, उसके बाद एक दूसरा स्पेल जो 14 और 15 को आ सकता है एनसीआर दिल्ली के लिए।
0: बारिश के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन झमाझम बारिश की फुहारें राहत लेकर जरूर आएंगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाय। केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार। बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना। निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम, पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना की ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगो युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 के उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में शोला बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान हैं। वो इंसान हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान 2 गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान 1 गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे

0: सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को न झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने लियोनेल मेसी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश से मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। पहाड़ों पर हरियाली बढ़ गई है, बादलों का टेरा साफ साफ नजर आ रहा है। बद्री धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान बद्री विशाल का बुलावा आया हो तो मौसम की बेरुखी भी बेअसर हो जाती है। मानसूनी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं पर माणा गांव में भी रौनक जबरदस्त है। तीर्थयात्री मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं।

0: पीछे नहीं दिख रहे। बद्रीनाथ में बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि मौसम का असर से भक्तों के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही।
1: पहाड़ों में भले ही मानसून अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए इस समय सबसे सुंदर मौसम देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार पिछले चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी मौसम साफ होता है तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। ऐसे में जो यात्रा मार्ग है वो सबसे बेहतर इस समय है। यात्रा मार्ग कहीं भी बाधित नहीं हो रहे हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवां सीधे रुख कर रहा है देश के पहले गांव माणा की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। धुंध की सफेद चादर के बीच जब ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दुगना कर रही हैं, कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गाँव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ के कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी आज हमने उस चीज को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस चीज का, तो विश्वास कर इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है।
0: एक तरफ जहां बद्री विशाल के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत रही है। मौसम भले ही इम्तहान ले रहा हो, लेकिन देवभूमि का ये सफर यादगार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
8: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: सोच दिखाती तो कुछ
6: दिखा। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार। बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थयात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना। निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण। आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रुक रुक कर बरसाती बूंदे और वातावरण में ठंडक का एहसास। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और दिव्य मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्त आस्था के साथ साथ मौसम का मजा लेने में भी

0: समंदर का समीकरण जिसने भी साधा, वो लहरों पर नया इतिहास लिखता चला गया। इन्हीं लहरों पर राज करने की मंशा लिए चीन लगातार विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी के एक इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और अब उसकी निगाहें हिंद महासागर पर हैं। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत चीन के पड़ोसियों को न सिर्फ ताकतवर हथियार दे रहा है, बल्कि भारत अब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहा है जो आने वाले समय में चीन के गले की फांस बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बड़ा विस्तार दिया है। दोनों देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद की डील की है। साथ ही साथ अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ समझौता न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत को सामरिक तरीके से बढ़त भी दिलाता है। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक और मकासर जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और 9-line के दावों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से इंडोनेशिया को मजबूत समुद्री प्रतिरोध मिलेगा।
1: देखा जाए तो चीन लगातार नटूना समुद्र के ऊपर भी अपना दावा पेश करता रहा है, जिसको कि इंडोनेशिया अपनी EEZ का हिस्सा मानता है। चीन की आए दिन मछली पकड़ने वाली नौकाएं, उनकी नेवी के शिप्स वहां पे आते रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेता है तो उनको एंटी शिप के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि कोस्टल बैटरी कोस्टल मिसाइल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। 290 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सी स्कीमिंग लास्ट मिनट में मैनूवर करके एक्यूरेट होने की वजह से ये शिप्स के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा।
0: सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडोनेशिया ने अपनी सेना के लिए चुना है। ये तो चीन के लिए चिंता की बात हो गई। साथ ही इंडोनेशिया ने समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ एक और अहम समझौता किया है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है।
2: हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस सैन्य समझौते के तहत न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि ये साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाला विषय है चीन के लिए। और इसी के साथ साथ भारत ने एक और अहम डील की है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया दोनों संभाग पोर्ट पर एक संयुक्त परियोजना पर काम भी करेंगे। यहाँ ये बता देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभाग पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है। यानी अगर हम दूरी की बात की जाए तो करीब करीब 100 मील की दूरी है। यानी इस डील के साथ साथ भारत कहीं ना कहीं चीन के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है।
0: ग्रेट निकोबार और संबांग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के दो छोर हैं। इन्हें मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संबाग पोर्ट भारत की ग्रेट निकोबार ट्रांस शिपमेंट पोर्ट से केवल 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए इंडोनेशिया का संबांग पोर्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बहुत अहम है। इससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम एक बड़े समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। संबाग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। और मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संबाग पोर्ट से भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री पहुंच और मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गहरे पानी की बंदरगाह है जहां पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाज आ सकते हैं।
1: देखिए, जहां हम ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलप हो रहा है वहां से सबांग पोर्ट तकरीबन 160 किलोमीटर है, जहां से मलक्का स्ट्रेट निकलता है। चीन का ज़्यादातर तेल और उनका व्यापार यहीं से होता है। तो अगर दोनों तरफ, उधर भारत ने उनको ब्रह्मोस बेचा हुआ है, बेच रहे हैं जो पहुंच रहा है, और साथ साथ में यहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इसको हम पूरी तरह से जरूरत पड़ने पर करेंगे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जा सकता है, जैसे कि आप हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी बात, सबांग पोर्ट में भारत के शिप्स को मदद मिल जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हो जाएगा, वहाँ से आगे फिर रीच उनकी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
0: चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। चीन के आयातित तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से इसी रास्ते होकर चीन पहुंचता है। इसके साथ ही चीन के निर्यात आधारित व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन अपना करीब 80% कच्चा तेल और ऊर्जा आयात स्ट्रेट ऑफ मलक्का रूट से करता है। चीन के कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60% से 2/3 हिस्सा इसी जल मार्ग से आता जाता है। यानी जिस मलक्का स्ट्रेट को चीन के व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर अब भारत की नजर रहेगी।
1: मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तेल उनका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। उनका 25-40% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, साथ साथ में तेल जो है वो 60-80% तेल जो पश्चिमी एशिया से आता है वो मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। यदि मलक्का स्ट्रेट चौक हो जाता है तो चीन के पास ऑप्शन है, आर्कटिक साइड से है या फिर दूसरे स्टेट हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर यदि हम इसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोबार, दूसरी तरफ सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का, तो ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। यही कारण है कि चीन इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल रहता है और वो अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा है।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आने जाने वाले समुद्री मार्ग चीन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दे सकती है।
2: साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का को लेकर एक आशंका जाहिर की थी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मलक्का डिलेमा। दरअसल उस दौरान उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर कहीं तनाव होता है या फिर अगर दुश्मन के साथ, चीनी दुश्मन के साथ भी तनाव होता है, तो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, वहां से रास्ता रोक सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
0: मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और इसकी अहमियत कितनी है, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रास्ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 25-40% हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 80,000 से 1,20,000 कार्गो यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना औसतन 200 से 300 मालवाहक जहाज इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल लगभग $3.5 trillion का सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता है।
1: देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसको अगर ब्लॉक हो जाता है तो चीन के व्यापारिक क्षमता पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज उनका जो व्यापार है यूरोप के साथ है, मध्य पूर्व के देशों के साथ है, और यदि ये ब्लॉक होता है तो उनकी तेल सप्लाई व्यापार जो 25-40% व्यापार यहाँ से निकलता है, उनका जो मध्य पूर्व से तेल आता है उनका 60-80% तेल यहाँ से आता है। तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। अगर ये हट जाता है तो यूरोप के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो एक्सपोर्ट रुकता है तो उनकी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: मलक्का स्ट्रेट पर भारत का सीधा भौगोलिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य ताकत इसे इस मार्ग पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। भारत संवेदनशील समुद्री रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा है, जिससे वो चीन की दुखती रग को कंट्रोल कर सकता है।
2: दरअसल भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिले हैं, जिसका दायरा 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसका एक छोर सीधा मलक्का स्ट्रेट पर जाकर खुलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत यहां पर ग्रेट निकोबार को विकसित कर रहा है, ताकि खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में अपनी रणनीतिक बढ़त को मजबूत बना सके। और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी।
0: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के चार प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथा हिस्सा वाटर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा।
1: जब इंडोनेशिया के संबंध की बात होती है तो ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जहां पे 81,000 करोड़ लगाकर तकरीबन 30 साल के समय का सीमा निर्धारित करते हुए वहां पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, सामरिक पोर्ट और एक पावर प्लांट, हर तरह से एक कंपोजिट डेवलपमेंट करने का विचार है, जो कि सुरक्षा और व्यापार दोनों तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा वहाँ पर, और साथ साथ में सुरक्षा के निगाह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। और जिसको हम कहते हैं कि अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमारा द्वीप ही जब एक एयरपोर्ट हब बन जाएगा, एयरफोर्स होगी, नेवी की बेस हो जाएगी, तो काफी आगे तक हमारी रीच बढ़ जाएगी।
0: ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास में है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन रास्तों पर नियंत्रण स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड है, जो चीन को बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, चीन की टेंशन यकीनन बढ़ गई है।
3: ये जगह जब डेवलप हो जाएगी, जो हमारे जो पोर्ट डेवलप होगा, यहाँ से जो हमारी मैरीटाइम पार एंड रीच जो होगी वो बढ़ेगी, हमारी रीच फ्रॉम डोमिनेंस एंड मैरीटाइम एंड द एयर फ्रंट बहुत बढ़ेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे इस मलक्का स्टेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत जरूरी है। एंड होर्मुज के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए।
0: भारत ने अपने पश्चिमी और पूर्वी तट पर समंदर के पास पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, जिससे भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपनी हद पार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसमें हर तरह की पनडुब्बियां शामिल है। भारत ने हाल ही में 2 पनडुब्बी अड्डे बनाए हैं, पहला है कारवार और दूसरा है INS वर्षा। ये बेस भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बेहद मजबूत हिस्सा है, जो देश को किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में सुनिश्चित सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है।
2: हिंदुस्तान हथियारों से लैस करें।
0: सेना लक्षद्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिनिकॉय द्वीप पर एक हाईटेक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रही है। इसे आईएनएस जटायु का नाम दिया गया है। समंदर के बीच में ये बेस जितना खूबसूरत है स्ट्रेटेजिक तौर पर उतना ही खास है। इस अड्डे से नौसेना टुकड़ी की मूवमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ ही जटायु नेवल बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस बेस पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों की आवाजाही अब आसान होगी।
1: देखा जाए तो आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक नेवी का अग्रिम बेस है, जिसका फायदा यह है कि ये जब अग्रिम बेस बना होता है द्वीप के ऊपर, तो भारत की एक आइलैंड पॉलिसी है जहां पर आइलैंड्स के ऊपर नेवी के बेस बनाकर पूरे इलाके को डोमिनेट करना, उनको नज़र में रखना। क्योंकि जैसे हम चीन की आए दिन खबरें आती रहती कि वो आज वहाँ शिप भेज रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के पास भेजा, मालदीव के पास भेजा, भारत के नेवी की मूवमेंट पर निगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर हम भी निगाह रख सकते हैं उनकी हरकतों पर। दूसरी बात, हमारा एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्री डकैती यानी कि सी पायरेसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेंगे।
0: के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले साल 2012 में करबती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो स्वेज कैनाल और फारस की खाड़ी से जाने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम रूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदर लोम्बोक स्ट्रेट की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनलों में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद खास हैं।

0: अमेरिका में नौसेना बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। मिनिकॉय में तैयार नेवल बेस INS जटायु के नाम को भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। जिस तरह रामायण में जटायु ने सबसे अहम कदम उठाते हुए सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, अपने जीवन को खतरे में डालकर खुद से पहले सेवा का उदाहरण दिया था, उसी तर्ज पर अब देश की हिफाजत होगी।
1: INS जटायु की पोजीशनिंग दरअसल मालदीव के बेहद करीब है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर और यहीं से न सिर्फ चीनी युद्धपोत बल्कि पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी निगरानी की जा सकती है और अगर कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ से चीन को टारगेट पर भी लिया जाता है। दरअसल ये पोजिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से चीन ने मालदीव को अपनी कठपुतली बनाया है, तो उस हिसाब से इस पूरे भूमध्य सागर में भारत के लिए खतरा बहुत अहम हो जाता है।
0: चीन और मालदीव की जुगलबंदी कैसे खतरा बन सकती है और कैसे भारत ने इसकी काट निकाली है, ये बताने से पहले हम आपको मालदीव की भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ और चीन मालदीव से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जो 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। INS जटायु नौ सैनिक बेस से मालदीव की दूरी महज 524 किलोमीटर है, यानी यहां से चीन और मालदीव पर आसानी से नजर रखी जाएगी। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। दरअसल हिंद महासागर से होकर तमाम चीजें ले जाई जा सकती हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दे दी है। देखिए, मौसम विभाग का कहना यह है कि 14-15 अप्रैल के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना यह है कि प्रशांत महासागर में एक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, अगर ये मजबूत हुआ तो आने वाले दिनों में इससे मानसून को मजबूती मिल सकती है।

उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, हर इलाके में मानसून ने काफी इंतजार कराया, लेकिन जब बरसा तो झूम के बरसा। हालांकि मानसून की बेरुखी से अभी भी कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश तो हुई है लेकिन जरूरत भर नहीं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 से 25 जुलाई के बीच मानसून में नई जान आ सकती है। शांत महासागर में ट्रॉपिकल सिस्टम या लो प्रेशर एरिया बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ये सिस्टम मजबूत हुआ और पश्चिम की ओर बढ़ा तो ये मानसून को मजबूती दे सकता है। हालांकि अभी 6 से 7 दिन बाकी हैं, इसलिए मौसम वैज्ञानिक सतर्कता से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्वी भारत में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भाग में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से हटी हुई है, जिसके कारण नमी वाली हवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश अभी 1 से 2 दिन जारी रहेगी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा।

0: ओवरऑल अगर बाकी हिस्सों की बात करें ईस्ट इंडिया के, वहाँ भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है हमारा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सबसे पहले हिमालय की बात करें, हमारा अनुमान है उत्तराखंड में आलमोस्ट आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। हिमाचल में भी 2 से 3 दिन रह सकती है। नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आने वाले 2 दिन में एक्टिविटी रहने का अनुमान है।
1: अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में 14 और 15 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हो सकती है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो रहा है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश ला सकता है।
0: एनसीआर दिल्ली में इससे पहले तो एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा टेम्परेचर भी उसमें बढ़ गया है और 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लेकिन आज बाय इवनिंग हल्का फुल्का कहीं रेनफॉल हो सकता है, उसके बाद एक दूसरा स्पेल जो 14 और 15 को आ सकता है एनसीआर दिल्ली के लिए।
1: बारिश के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन झमाझम बारिश की फुहारें राहत लेकर जरूर आएंगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: क्या आपके हाथ के नाखून आपकी बीमारियों के बारे में बताते हैं? क्या आपका कान आपकी उम्र के बारे में बताता है? और क्या आपके पैर का अंगूठा आपको आध्यात्मिक बना सकता है? शरीर के लक्षणों का, शरीर के अंगों का भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: अयोध्या के राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद, पिछले साल के मुकाबले 21 जून से 3 जुलाई के बीच पहुंचे ज्यादा भक्त। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात में सहूलियत के पुख्ता इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में जोरदार तैयारियां। 17 अगस्त को पुंछ पहुंचेकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के साथ मंथन। मॉनसूनी सीजन में भी पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाय। केदारनाथ में भक्तों का आंकड़ा 14 लाख के पार। बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के चमोली से 40 तीर्थ यात्रियों का दल सोमनाथ के लिए हुआ रवाना। निःशुल्क यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है धामी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन। करीब 9 लाख वर्ग फीट एरिया में निर्माण। आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मकसद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पटना में आज हेली एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ। 18 जुलाई से हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर राइड होगी उपलब्ध।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो खेल के मैदान का वो बाजीगर है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का हुनर बखूबी जानता है। फुटबॉल के मैदान के इस महामानव ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के आखिरी 13 मिनट में निश्चित रूप से हारी हुई बाजी जीतकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि युगांधर के शब्दकोश से असंभव शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

0: तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी हैं। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर जिसके रहते हुए मजबूत से मजबूत टीम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाती, क्योंकि मेसी आखिरी क्षणों में भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। 7 जुलाई को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ करीब करीब मैच हार चुकी थी, लेकिन मैच के आखिरी 13 मिनट में मेसी ने मैदान पर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वो तूफान मचाया कि मिस्र के खिलाड़ी जीती हुई बाजी गंवाने का तमाशा असहाय रूप से देखते रह गए।
1: मखमली रेशमी राहों के धावक तो इस दुनिया में बेशुमार मिलते हैं, पर दुर्जेय चुनौतियों के अग्निपथ पर चलकर मंजिल को चूमने वाले योद्धा युगों युगों में कभी एक बार अवतरित होते हैं। ऐसे ही अपराजेय और अतुल्य योद्धा हैं अर्जेंटीना के सॉकर प्लेयर लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी जो हारी हुई बाजी को अपने दम पर पलटने का हुनर बखूबी जानता है। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में बीते 7 जुलाई को लियोनेल मेसी ने एक बार फिर पूरी हनक के साथ ये साबित कर दिया कि 39 की उम्र में भी विरोधियों की जीत के जबड़े से विजय छीन लेने का जज्बा उनके अंदर बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में 7 जुलाई को अर्जेंटीना के खिलाफ मिस्र ने मुकाबला करीब करीब जीत लिया था। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रहा था। मैदान में मिस्र के समर्थक जीत के जश्न में इतरा रहे थे। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के मन में निश्चित हार को जीत में बदल देने की चिंगारी उठी, जो चंद मिनटों में 16 बनकर मिस्र की उम्मीदों को स्वाहा कर गई। मैच के 79वें मिनट में मेसी ने गोल पोस्ट के पास एक शानदार क्रॉस दिया, जिसे क्रिस्टियन रोमेरो ने हेडर के जरिए गोल में कन्वर्ट कर अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की लौ जगा दी। इस गोल के बाद मेसी विरोधियों के लिए और ज्यादा विनाशक बन गए। 83वें मिनट में उन्होंने खुद ही गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-2 की बराबरी पर पहुंचा दिया। मैदान पर मेसी का रौद्र रूप देखकर मिस्र के खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूटकर बिखरने लगा। इंजरी टाइम से पहले दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर अर्जेंटीना के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। नामुमकिन दिख रही जीत को मुमकिन कर मेसी ने पहली प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने की प्रतिक्रिया में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा खुद की बजाय अपने साथी के सिर बांधने की दरियादिली दिखाई। मेसी ने कहा कि 0-2 से पिछड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। नॉकआउट में इतनी बड़ी वापसी कतई आसान नहीं थी। रोमेरो के गोल से हमारे अंदर बराबरी कर लेने का आत्मविश्वास जगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही मैच जीत लिया। अटलांटा के ऐतिहासिक मैच की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद इतनी सहज और सरल प्रतिक्रिया मेसी जैसा महानतम खिलाड़ी ही दे सकता है। इस प्रतिक्रिया में मेसी ने ना तो 79वें मिनट में दिए अपने शानदार क्रॉस का और ना ही 83वें मिनट में किए अपने गोल का ही जिक्र किया। हालांकि दिग्गज सॉकर प्लेयर ये मान रहे हैं कि मेसी ने एक जादूगर की तरह आखिरी क्षणों में मैच का पासा पलट दिया। इस मैच को सांसें थाम कर देखने वाले फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर थियरी हेनरी ने मेसी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मानव से ऊपर के दर्जे वाले लिविंग विंग हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए थियरी हेनरी ने कहा कि इसने शुरू में हमें बताया कि वो एक इंसान है। वो इंसान है इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ पेनल्टी किक को मिस कर दिया, 8 में से 4 को, लेकिन इसी मैच में हमें दोबारा याद दिलाया कि वो इंसान नहीं है। थियरी हेनरी जैसा महान स्ट्राइकर मेसी को अगर महामानव मान रहा है तो जाहिर है इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो फुटबॉल के दूसरे खिलाड़ियों में नहीं है। मेसी की उम्र 39 साल है, लेकिन इस उम्र में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल दागकर वो गोल्डन बॉल की रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि मेसी का सॉकर करियर मन की वीणा के तार को झंकृत करने वाली रोचक दास्तान है। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज साल 2005 में फीफा वर्ल्ड कप यूथ चैंपियनशिप के साथ किया और अगले ही साल यानी साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के स्क्वाड में शामिल हो गए। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 5 मैचों में मेसी ने 2 अहम गोल किए, जिसकी बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मेसी इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं कर पाए। 2010 वर्ल्ड कप में अपनी नाकामी का मेसी को इतना जबरदस्त मलाल हुआ कि 4 साल तक मैदान में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 2014 के वर्ल्ड कप में इसका असर भी देखने को मिला। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी मैदान पर इतने आक्रामक हो गए कि विरोधी टीमें धराशायी होती चली गईं। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने 4 गोल दागे और अपनी आक्रामकता के दम पर 24 साल बाद अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया। हालांकि फाइनल में जर्मनी से 1-0 से हार की वजह से अर्जेंटीना चैंपियन बनने से चूक गया, लेकिन फाइनल में हार के बावजूद मेसी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गोल्डन बॉल यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है बल्कि प्राण वायु है। इस खेल के साथ उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अर्जेंटीना के 5 करोड़ लोगों के लिए वो मानव नहीं मसीहा हैं। साल 2016 के कोपा अमेरिका सेंटेनारियो टूर्नामेंट में मेसी ने अपना 55वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागकर गैब्रियल बैटिस्टुआ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सॉकर वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। पर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना जब हार गई तो मेसी इतने दुखी हो गए कि संन्यास का ऐलान कर दिया। मेसी के संन्यास की खबर से अर्जेंटीना की जनता इतनी ज्यादा आहत हो गई कि संन्यास वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। मेसी को लेकर अपने देश की जनता का बेपनाह प्यार देखकर अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मेसी को खुद फोन कर फैसला वापस लेने की गुजारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुजारिश पर मेसी ने संन्यास वापस तो ले लिया, लेकिन जनता से मिले बेहिसाब प्यार ने उनकी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कद्रदानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मेसी ने 2021 के कोपा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को चैंपियन बना दिया। इस टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 4 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। अपने देश को कोपा चैंपियन बनाकर मेसी ने अर्जेंटीना की जनता को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन जनता की आस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर और ज्यादा प्रबल हो गई। मेसी अपने देश की जनता की प्रबल अभिलाषा से अनजान नहीं थे, लिहाजा 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अटल निश्चय के साथ उतरे थे। 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर पूरे 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। फाइनल भिड़ंत में मेसी ने मैच के दौरान दो गोल और पेनल्टी शूटआउट के दौरान एक गोल दागकर इतिहास रच दिया। कमाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने कुल 7 गोल कर गोल्डन बॉल का खिताब भी हासिल किया। इस अवार्ड के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। बीते करीब 2 दशक से फुटबॉल जगत पर राज करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूं ही नहीं मेसी को न सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बल्कि अद्भुत खिलाड़ी भी मानते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं, जादुई और शीर्ष स्तर के।
0: लियोनेल मेसी का आज पूरी दुनिया में जलवा है। अर्जेंटीना के लोगों के लिए तो मानो वो भगवान बन गए, लेकिन मेसी के व्यक्तित्व में जड़े कामयाबी के सलमा सितारे की चमक तो दुनिया देख रही है, लेकिन उसके पीछे की मर्मस्पर्शी दास्तान से लोग अमूमन नावाकिफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस अर्जेंटीना के लोगों के लिए मेसी भगवान की तरह है, उसी अर्जेंटीना को भारी मन से छोड़कर मेसी को स्पेन में शिफ्ट होना पड़ गया था। जी हाँ, मेसी बचपन में एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका इलाज इतना खर्चीला था कि मेसी के परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। बेबसी में मासूम मेसी को अपने परिवार के साथ स्पेन में शिफ्ट होना पड़ा। मेसी की पूरी दास्तान आपके दिल को छू लेगी।
1: तारीख थी 14 दिसंबर और साल था 2000। स्पेन के मशहूर बार्सिलोना शहर के एक रेस्टोरेंट में एफबी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्लस रेक्साच ने नैपकिन पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैपकिन पेपर पर साइन किया गया यह कॉन्ट्रैक्ट बाद में सॉकर वर्ल्ड का अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट ने अर्जेंटीना के 13 साल के एक बच्चे की दुनिया के महानतम फुटबॉलर बनने की लाइन क्लियर कर दी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनेल मेसी थे, जो एक बहुत बड़ा दर्द लेकर अर्जेंटीना से स्पेन आए थे। लियोनेल मेसी की जिंदगी की अनूठी दास्तान आपके मन के वीणा के तार को सुरमई सरगम से सराबोर कर देगी। अर्जेंटीना के रोसारियो में जॉर्ज मेसी और सेलिया मारिया कुसिटिनी की तीसरी संतान के रूप में 24 जून 1987 को जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। माँ बाप ने इस बेटे को नाम दिया लियोनेल मेसी। प्यार से माँ बाप जिसे लियो कहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्ज मेसी शहर की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ सेलिया मारिया कुसिटिनी सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी। ऐसा लगता है कि लियोनेल मेसी फुटबॉल का कोई पूर्व संस्कार लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही वो अपने घर और घर के पास की गलियों में फुटबॉल लेकर अकेले ही ड्रिबलिंग करते थे। संयोग देखिए कि उनके पिता जॉर्ज मेसी स्टील फैक्ट्री में काम करने के अलावा एक स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में कोचिंग भी दिया करते थे। नादान उम्र में अपने बेटे लियो का फुटबॉल के प्रति जुनून देखकर जॉर्ज मेसी ने उनका दाखिला उसी ग्रैंडोली क्लब में करवा दिया। तब लियो महज 4 साल के थे। ग्रैंडोली क्लब में मेसी का प्रदर्शन उम्र के लिहाज से कहीं ज्यादा था, लिहाजा साल 1995 में पिता ने उनका दाखिला तब अर्जेंटीना के फेमस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में करवा दिया। इस क्लब से खेलते हुए मेसी की ख्याति पूरे अर्जेंटीना में होने लगी, यहाँ तक कि 10 साल के होते होते मेसी की अद्भुत ड्रिबलिंग स्किल की चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि अर्जेंटीना का दूसरा डिएगो मार्डोना तैयार हो रहा है। सॉकर वर्ल्ड के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर चमकने की सलोनी हसरत जब रूप ले रही थी, उसी दौरान मेसी की जिंदगी में एक नामुराद तूफान ने दस्तक दे दी। 11 साल के मेसी को पता चला कि वे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मेसी को इल्हाम हो गया कि फुटबॉल के मैदान का सितारा बनकर चमकने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी का इलाज नहीं था, इलाज था, लेकिन इतना महंगा था कि मेसी के माँ बाप उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे। पिता जॉर्ज मेसी ने इलाज में मदद के लिए उस न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब के अधिकारियों से संपर्क किया, जो ये जान चुके थे कि लियो भविष्य के स्टार हैं। पर क्लब के कर्ता धर्ताओं ने इलाज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो घर भविष्य के सितारे की चमक से जगमग था, उसी घर में निराशा का अंधियारा छा गया। पर ऐसा लगता है कि मेसी को विधाता ने धरती पर अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत भेजा था, इसीलिए उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अर्जेंटीना के रोसारियो से 10,465 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में कर दी गई। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल स्पेन के वर्ल्ड फेमस एफसी बार्सिलोना क्लब के प्रतिभा अन्वेषकों को मेसी की अद्भुत क्षमता के साथ ही उनकी दुर्लभ बीमारी की भी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मेसी को ट्रायल का निमंत्रण भेज दिया। मेसी के माता पिता रोसारियो की अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर 12 साल के बेटे के साथ बार्सिलोना आ गए। एफसी बार्सिलोना ने उनका बाकायदा ट्रायल लिया और मैदान में उनकी चीते जैसी फुर्ती और बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल को देखकर दंग रह गए। पर इलाज के भारी भरकम खर्चे का वहन करने पर अभी भी संशय बना हुआ था। पर एफसी बार्सिलोना क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने जब मेसी का प्रदर्शन देखा तो बगैर किसी हिचक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आज के दौर के दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर का नया और शानदार सफर। एफसी बार्सिलोना ने मेसी को न सिर्फ अपनी यूथ एकेडमी ला मासिया के लिए सेलेक्ट किया, बल्कि लगे हाथ उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। ला मासिया के लिए खेलते हुए मेसी के पास एक बार जब गेंद आ जाती थी तो उसे छीन पाना विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती थी। कुछ ही समय में वो ला मासिया के सबसे डेडली प्लेयर बन गए। फिर आया 16 अक्टूबर 2004 का वो ऐतिहासिक दिन जब मेसी ने 17 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू मैच खेला। 1 मई 2005 को अल्बासिटे के खिलाफ मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर का पहला गोल किया, और दिलचस्प ये है कि इस गोल के लिए उन्हें असिस्ट किया था ब्राजील के महान प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने। 1 मई 2005 से लेकर अब तक 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इन 20 सालों में मेसी ने मैदान पर इतने जलवे बिखेरे हैं कि हसरत भी उन्हें अपनी हदों में ना समेट सके। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार मेसी 8 बार जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम ही दर्ज है। मेसी ने साल 2012 में 91 गोल किए थे, जिसे 14 साल बाद तक कोई तोड़ नहीं पाया। स्पेन की ला लीगा में मेसी 474 गोल कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूरोप की लीगों में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 6 बार जीतने वाले मेसी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये प्रेस्टीजियस अवार्ड 2014 और 2022 में जीता है। मेसी की बेनजीर कामयाबियों की ये तो चंद झांकियां हैं, इसकी फेहरिस्त तो काफी लंबी है। गौर करने वाली बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने और मैदान पर सबसे ज्यादा मिनट तक खेलने का अनोखा रिकॉर्ड भी मेसी के ही नाम है। कामयाबी की बेनजीर इबारत लिखने वाले मेसी बचपन में हुई अपनी बीमारी को कभी भूल नहीं पाए। उन्हें आज भी याद है कि कैसे पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने वतन को छोड़कर बार्सिलोना में आकर बसना पड़ा। बचपन की वो बेबसी मेसी के लिए मानवता की सेवा की प्रेरणा बन चुकी है। उन्हें लगता है कि जिस बेकसी ने कुछ समय के लिए उनके सपने छीन लिए थे, वैसी किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इसीलिए लियो मेसी फाउंडेशन संस्था के जरिए मेसी दुनिया भर के बेबस, लाचार और अनाथ बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर से लेकर स्पोर्ट्स तक में हर मुमकिन मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मेसी यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मंच के जरिए वो बच्चों से जुड़े अहम सरोकारों के लिए जागरूकता अभियान में मदद करते हैं।
0: तो बंदे मेरे दम में आज आपने लियोनेल मेसी के

0: छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
3: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: बाबा बद्री विशाल के धाम में इन दिनों मानसूनी बारिश से मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो गया है। पहाड़ों पर हरियाली बढ़ गई है, बादलों का टेरा साफ साफ नजर आ रहा है। बद्री धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान बद्री विशाल का बुलावा आया हो तो मौसम की बेरुखी भी बेअसर हो जाती है। मानसूनी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं पर माणा गांव में भी रौनक जबरदस्त है। तीर्थयात्री मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं।

0: चारों तरफ पहाड़ और काले घने बादल, रुक रुक कर बरसाती बूंदे और वातावरण में ठंडक का एहसास। बद्रीनाथ धाम का ये सुहाना और दिव्य मौसम इन दिनों हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन भक्त आस्था के साथ साथ मौसम का मजा लेने में भी पीछे नहीं दिख रहे। बद्रीनाथ में बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पतित पावनी अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन की चाह में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं हो रही। साफ है कि मौसम का असर से भक्तों के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही।
1: पहाड़ों में भले ही मानसून अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए इस समय सबसे सुंदर मौसम देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार पिछले चार दिनों से बारिश का दौर जारी है। वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी मौसम साफ होता है तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। ऐसे में जो यात्रा मार्ग है वो सबसे बेहतर इस समय है। यात्रा मार्ग कहीं भी बाधित नहीं हो रहे हैं।
0: बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं और सैलानियों का कारवां सीधे रुख कर रहा है देश के पहले गांव माणा की तरफ, जो इस समय पूरी तरह बादलों की आगोश में लिपटा हुआ है। धुंध की सफेद चादर के बीच जब ठंडी हवाएं सैलानियों का रोमांच दुगना कर रही हैं, कोई इन वादियों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई इस हसीन मौसम को जी भर के महसूस कर रहा है।
2: बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्म स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान है, वो ही स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छा है।
3: मैं इस जगह को ज्यादातर वीडियोस में देखती थी और वीडियो से बहुत ज्यादा सुंदर ये अब मुझे लग रहा है, और मतलब मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ सपना ही देख रही हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
0: माना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसी गाँव से होकर गुजरता है वो ऐतिहासिक स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे होकर पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ के कोहरे और धुंध के बीच जब सैलानी इस प्राचीन मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें प्रकृति के साथ साथ इतिहास और अध्यात्म का एक अनोखा एहसास होता है।
4: बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। जो हम रह रहे हैं पॉल्यूशन में, उससे बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है सांस आ रही है, सांस आ रही है।
5: यहाँ का वातावरण की आप पूछो तो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग जाने